ओम शांति। हम सभी इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हैं। बाबा की ओर देखकर जरा सच्चे दिल से कहें, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको पाकर हम संतुष्ट हो गए। आपको पाने के बाद और कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। सचमुच भगवान हमारा परम पिता, परम शिक्षक और परम सदगुरु बनकर आया। कितना बड़ा भाग्य है, स्वयं भगवान हमें पढ़ाने के लिए आ गया। और इतना ही नहीं, उसने आकर हमारा सच्चा साथ निभाया, वह आकर हमारा खुदा दोस्त बन गया। सदा साथ निभाने वाला दोस्त, आवश्यकता में साथ देने वाला दोस्त, केवल कहने का दोस्त नहीं, जब भी बुलाओ आ जाता है ऐसा दोस्त। परंतु याद रखेंगे, दोस्ती हमेशा ही दोनों ओर से हुआ करती है। वो हमसे दोस्ती निभाने आया है तो हमें भी उनसे दोस्ती निभानी है। दोस्ती में सर्वप्रथम होता है दो सच्चे दिलों का मिलन। हमारे दोनों के सच्चे दिल हों, पवित्र दिल हों। हमारा खुदा दोस्त पवित्रता का सागर है, हम भी परम पवित्र हो जाएं। तो दोनों के सच्चे दिल मिल जाएं और ये दोस्ती एवरलास्टिंग हो जाए, सदा सदा के लिए हो जाए, द्वापर युग के बाद भी ये दोस्ती चलती रहे। तो विचार करें, क्या हम ऐसे सच्चे दिल वाले हैं? दोस्ती उन्हीं में होती है जिनके विचार समान हों। बाबा के विचार बेहद के महान। हम अपने विचारों को चेक करें, हमारे विचार भी वैसे ही हैं। वो कल्याणकारी, हम भी कल्याणकारी हैं। वो सत्यम शिवम सुंदरम, हम भी सत्यम शिवम सुंदरम हैं। वो सबको देने वाला, वो सबके लिए शुभ चिंतक, क्या हम भी वैसे ही हैं? ऐसे ही अनेक महान विचार बाबा के हैं। एक के बहुत महान विचार हों, दूसरे के बहुत छोटे। एक निस्वार्थ हो, दूसरे में स्वार्थ भरा हो, तो दोस्ती कैसे टिकेगी? तो आइए हम इस दोस्ती को एवरलास्टिंग बनाने के लिए विचारों का मिलन करें। और साथ साथ उसने हमारा आह्वान किया, बच्चे मेरे इस महान कर्तव्य में मेरे साथी बन जाओ। तो बस हम लगा दें अपना सब कुछ उसके महान कर्तव्यों में, और वो भी लगा देगा अपना सब कुछ हमारे लिए। ये हो जाएगी बहुत सुंदर समानता। तो आइए इस खुदा दोस्त का संपूर्ण लाभ उठाएं। घूमने चलें तो दोस्त के साथ, खाएं तो दोस्त के साथ, कार्य पर जाएं तो दोस्त के साथ। ऐसा पक्का प्यार हो जाए कि उसके अलावा हम रह ही ना पाएं। तो अनुभव होगा, कोई भी कठिनाई आए बस उसे याद कर लेना, आ जाओ। मन भारी हो उसे सुना देना, अकेलापन फील हो उसके साथ हो लेना। तो ये दोस्ती जीवन को परम आनंद से भर देगी। आइए बाबा को अपना दोस्त बना लो, ऐसा दोस्त जो चारों युगों में कभी नहीं मिलता। कोई सुने तो वंडर खाएगा, उसके नैन खुले के खुले रह जाएं। भगवान इनका दोस्त बन गया, वह इनके भाग्य। तो आज सारा दिन इस नशे में रहेंगे, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा दोस्त बन गया है। और बार बार उसको अपने पास बुलाएंगे, उसका हाथ पकड़कर सैर करेंगे, उसे बातें करेंगे, अपने मन के सारे बोझ उसे देंगे। कहीं कोई काम भारी हो जाए तो हजार भुजाओं सहित उसका आह्वान करेंगे और कहेंगे, आओ
थोड़ा काम तुम करो थोड़ा हम करेंगे, इस तरह आज सारा दिन खुदा की दोस्ती को एंजॉय करेंगे, इसके भिन्न भिन्न अनुभव सारा दिन करते रहेंगे। ओम शांति।

0: रुक, तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब, और हाँ हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। फ्लाइट पकड़ने के दो तरीके हैं। यदि आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं तो संभव है कि आप इस पहले वाले सामान्य वर्ग में आते हों। सुस्त ट्रैफिक पर तनावग्रस्त होते रहना, ड्राइवर को गाड़ी और तेज चलाने के लिए टोकते रहना, लाल बत्ती को पार कर लेने की सोचना, बार बार घड़ी देखना और फिर दौड़ते हुए हवाई अड्डे में प्रवेश करना, सामान की जांच वाली कतार हो या चेक इन में सुरक्षा जांच वाली कतार, हर जगह

कतार में आगे घुसने की कोशिश करना और हर एक को जताना कि आपको अपनी फ्लाइट पकड़ने में देरी हो रही है। तेज कदमों से चलना और कभी कभी तो दौड़ते हुए भी, चेहरा तनावग्रस्त होते हुए भी, हर कर्मचारी और अधिकारी की ओर इस आशय से मुस्कुराते हुए देखना कि वह आपको आगे निकलने दे और इस तरह अपनी छूटती फ्लाइट को अंतिम पलों में पकड़ ही लेना। दूसरा तरीका है हवाई अड्डे के लिए 10 मिनट पहले निकलना। हर घर में शुरू होने वाली सुबह के दो तरीके हैं। पहला है तीसरे विश्व युद्ध का नाट्य रूपांतरण। हर कोई इधर उधर भाग रहा है, हर कोई किसी दूसरे को कोई काम सौंप दे रहा है। फोन की घंटी घनघना रही है और हर कोई इस उम्मीद में है कि कोई दूसरा उसे उठा लेगा। कोई बाहर दरवाजे पर आया है, लेकिन हर कोई ऐसे जता रहा है जैसे दरवाजे की घंटी उसे सुनाई ही नहीं दी। स्कूल बस नुक्कड़ तक आ पहुंची है, लेकिन अरे टिफिन कहाँ है, लो ये रहा, पानी की बोतल तो ले लो, स्कूल बैग ठीक से बंद नहीं हुआ है, अरे बस में बैठो और जूतों के फीते वहीं पर बांध लेना। लग रहा है जैसे कोई रॉकेट लॉन्च होने वाला हो। 10, 9, 8, ओह। दूसरा तरीका है 10 मिनट पहले उठ जाना। आपाधापी की आदत सबसे खतरनाक होती है। यह ऐसे ऐसे निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देती है जो हम सामान्य स्थिति में लेना शायद ही पसंद करें। हमें यह विश्वास दिलाकर कि गलती परिस्थिति की है, हमारी नहीं, यह हमारे साथ बहुत छलावा करती है। आपाधापी हमारे फूहड़पन और बेतुके निर्णयों पर पर्दा डालने का अच्छा बहाना बनी रहती है। यह एक ऐसा माहौल बना देती है जिसमें हम जो भी कर रहे हैं उसे ही सही ठहराना हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। कतार में आगे घुसने से लेकर फ्लाइट पकड़ने के लिए पागलों की तरह दौड़ने तक। कठिन निर्णय आम तौर पर अच्छे निर्णय होते हैं। शुरू करने के लिए 10 मिनट पहले वाला सूत्र अटपटा लग सकता है, लेकिन आज के भागम भाग वाले पागलपन के लिए यह समझदारी भरा निर्णय है। तनाव से जुड़े जिन अधिकांश मुद्दों से आज का आदमी जूझ रहा है, उसका एक बहुत अच्छा निदान है 10 मिनट पहले। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपको संकटकालीन स्थिति का सामना करना नहीं पड़ेगा। 10 मिनट पहले का अर्थ है कि मेरे हृदय को प्रति मिनट 10 बार कम धड़कना पड़ेगा, यानी मैं 10 वर्ष ज्यादा

लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज्य कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता। ये महान विचार है लाल बहादुर शास्त्री जी के।

हमें यह चीज स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए कि हर व्यक्ति के पास अपनी हर बात के लिए कोई न कोई दलील होती है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वह अपने निष्कर्ष पर अटल रहना चाहता है। नाथूराम गौड़से के पास महात्मा गांधी की हत्या करने की अपनी दलील थी। ओसामा बिन लादेन के पास अपनी दलील है कि उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला क्यों कराया। फिल्मी अभिनेताओं के पास अपनी दलील है कि उनके विचार से स्क्रीन पर सिगरेट पीना गलत क्यों नहीं है। हर किसी के पास अपनी अपनी बात के लिए दलील होती है और वह खुद को ही सही मानता है। सच कहें तो यह समझ आ जाने पर कि अपनी हर बात के लिए अपनी दलीलें देते देते और अपने निष्कर्ष पर अड़े रहते रहते ही हमने अपना सारा जीवन बिता दिया, मन ही मन बड़ी ग्लानी अनुभव होती है। जीवन के महत्वहीन मुद्दों पर दूसरे व्यक्ति को हम उसके निष्कर्ष पर रहने दें, इस प्रकार हम अपनी मेहनत, समय और ऊर्जा काफी हद तक बचा लेंगे और दबाव में आने से भी बचे रहेंगे। दलीलें देने की अपनी सहज वृत्ति को संक्षिप्त कर देने और दूसरे को उसके निष्कर्ष पर बने रहने देने से आप खुद को बहुत खुला खुला और स्वतंत्र अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा केवल महत्वहीन मुद्दों पर ही करना चाहिए, और बढ़िया बात यह है कि हमारे सारे मुद्दों में से 90% से भी अधिक मुद्दे महत्वहीन ही होते हैं। क्या इस बारे में आपकी राय कुछ और है? कोई बात नहीं, आप अपनी राय पर बने रह सकते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने निष्कर्ष पर अटल रह सकते हैं।

के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी, जो हमें बताता है कि बदला ना लें, बदल कर दिखाएं। ये महान विचार है पूज्य बापू के।

लूथर किंग जूनियर का वह ऐतिहासिक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था, मेरा सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र अपने इस सिद्धांत को सही अर्थ में जिएगा। हम इस तथ्य को मानते हैं कि ऊपर वाले ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। मेरा सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की पहाड़ियों पर भूतपूर्व गुलामों की संतानें और भूतपूर्व गुलाम मालिकों की संतानें भाईचारे की मेज पर एक साथ बैठे होंगे। मेरा सपना है कि मेरे चारों छोटे छोटे बच्चे एक ऐसे राष्ट्र में रह रहे होंगे जहां उन्हें उनकी बाहरी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके भीतरी चरित्र से जाना जाएगा। आज मेरा यह सपना है। इसी विश्वास के साथ हम साथ साथ काम करने का, साथ साथ प्रार्थना करने का, साथ साथ संघर्ष करने का, साथ साथ जेल जाने का, स्वतंत्रता के लिए साथ साथ खड़े होने का प्रयास करेंगे। इसी विश्वास के साथ कि हम एक दिन कामयाब होंगे। और अमेरिका को यदि एक महान राष्ट्र बनना है तो इस सपने को सच होना होगा। इसके चार दशक बाद अमेरिका ने अपने प्रथम अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा को चुनकर इतिहास रच दिया। यहाँ जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि सामाजिक चेतना में यह स्वप्न तब नहीं बोया गया था जब इसके लिए समय बहुत अच्छा था, बल्कि यह उस समय बोया गया था जब समय बहुत बुरा चल रहा था, जबकि अश्वेत लोगों को मतदान का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने भारत के डिजिटल होने का सपना देखा था, जहां आम आदमी सूचना और संचार के ऐसे सस्ते साधनों को हासिल कर सके जिससे वह अपनी अशिक्षा और जड़ता की समस्या सुलझा सके। भारत में यह सपना साकार हो चुका है। यहां जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि रिलायंस के प्रबुद्ध वर्ग के मन में सपने का यह पौधा सन 1999 में रोपा गया था जब भारत में आधारभूत संचार माध्यम एक निराशापूर्ण अवस्था में थे। इसी तरह जब हर उत्पाद, सेवा और मद दिनों दिन महंगे होते जा रहे थे, तब रतन टाटा ने 1,00,000 रुपए की कार का सपना देखा था और नैनो को सामने लाकर उन्होंने इस सपने को साकार

देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर्ण निष्ठा है क्योंकि इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि बदले में उसे क्या मिलता है। ये महान विचार है लाल बहादुर शास्त्री जी के।

महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत का सपना तब देखा था जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और 3 शताब्दियों से विदेशी शासकों के चंगुल में फंसा हुआ था। भारत जब विश्व स्तरीय वायुयान बनाने की स्थिति में भी नहीं था, तब भारत के मिसाइल पुरुष के नाम से विख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सपना देखा, अपने 3000 वर्षों के इतिहास में भारत पर गत 600 वर्षों से विदेशियों का शासन रहा है। आपको विकास चाहिए तो देश में शांति होनी चाहिए और शांति को केवल शक्ति द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है। देश को सशक्त बनाने के लिए मिसाइलों का निर्माण किया गया। भारत ने अंतरिक्ष और चंद्रमा दोनों पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। हमें सपने देखने चाहिए, यह तो हम सभी जानते हैं। यहाँ जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि इन सभी महान स्वप्न दृष्टाओं ने इन सपनों को सर्वोत्तम काल और परिस्थितियों में नहीं बल्कि बड़े कठिन समय में, सच कहें तो सबसे कठिन समय में देखा। उस काल में भी जबकि सामूहिक सामाजिक चेतना आशावादी नहीं थी, उन्होंने सपना देखा और उनके सपने के बल पर ही तमाम संगठन, राष्ट्र और मानवता सभी उठ खड़े हुए। आप कठिन दिनों का सामना कर सकते हैं, आप कठिन दिनों से दो दो हाथ भी कर सकते हैं, लेकिन सपने जरूर देखें। जो आप हैं और जो आप होंगे, सपने उसका अंतराल है। क्या मैं कर पाऊंगा या क्या मैं बन पाऊंगा, कभी कोई प्रश्न नहीं रहा है। महान स्वप्न दृष्टाओं के महान सपने हमेशा पूरे होंगे। मानव मन जो कल्पना कर सकता है, वह जो विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है। आपको कुछ करने की शक्ति दिए बिना ईश्वर आपको उसे करने का विचार भी नहीं देता। एक स्वप्न दृष्टा के लिए प्रश्न केवल इतना रहता है, मैं इसे कब तक कर लूंगा। जो काम पानी कर सकता है वह पेट्रोल नहीं कर सकता, जो काम तांबा कर सकता है वह सोना नहीं कर सकता। चींटी का हल्कापन उसे चलायमान रखता है, वृक्ष का भारीपन उसे जड़ों से जोड़े रखता है। हर चीज और हर व्यक्ति किसी प्रयोजन को पूरा करने के अनुसार विशेष रूप से रचे गए हैं। भले ही मुझमें कुछ कमियां क्यों ना हो, मैं अपने खुद के बजाय कुछ और कैसे हो सकती हूँ या कैसे हो सकता हूँ। भले ही किसी और की सशक्तता मुझे लुभाते क्यों ना हो, मैं कुछ और बनने के लिए जूझता या जूझते क्यों रहूं। मैं यहाँ अपने ही स्वरूप में रहने के लिए हूँ। तो आप जो हैं, भाव यही है कि आप जो हैं जैसे हैं, अपने आप को स्वीकार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए और अपने जीवन में हमेशा ऊंचे सपनों को देखते हुए उसे साकार करने का प्रयास कीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन पर।

पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। ये महान विचार है पूज्य बापू के।

0: संकल्पों की महत्ता के बारे में तो हम सभी जानते हैं। संकल्पों से सिद्धि संभव है, इसलिए कहते हैं कि जितने श्रेष्ठ संकल्प होंगे उतना ही सृष्टि में सकारात्मक परिवर्तन होगा। मैं मधुबन कितना भाग्यशाली हूं कि इस धरनी पर लिए गए हर संकल्प पूर्ण होते ही होते हैं। हो भी क्यों ना, आखिर में ये राज ऋषियों की तपस्या भूमि जो है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की वर्तमान प्रमुख दादी रत्न मोहनी जी ऐसी ही एक महान विभूति हैं, जो अपने तप के बल पर किसी के भी संकल्पों को भांप लेती हैं। जैसे उन्होंने पहली ही मुलाकात में बीके दिव्येश के मन में चल रहे संकल्पों को न सिर्फ पढ़ा बल्कि उन्हें सफलता का वरदान भी दे दिया। शक्ति वंदन की आज की कड़ी में बीके दिव्येश के दादी जी के साथ के अनुभवों के बारे में और जानते हैं।
1: शक्ति वंदन में आइए सुनते हैं उन महानुभावों से जिन्होंने दादी रतन मोहिनी जी के अंग संग रहकर उनके सानिध्य में उनके मार्गदर्शन में अनेक शिक्षाएं प्राप्त की, उनके जीवन से ओतप्रोत होकर अपने आप को धन्य महसूस किया। सुनते हैं उनके अनुभव उन्हीं के मुखारविंद से।
2: ओम शांति। तो एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी के साथ मेरा जुड़ना तो जैसे कि एक बहुत ही वंडरफुल और

0: इंटरेस्टिंग कहानी है। आई हैड एक्चुअली बैंगलोर में एक क्लब है, तो मैं वहाँ स्विमिंग करने जाता था, और ब्रह्म कुमारीज का आश्रम बैंगलोर में उस क्लब के बहुत नज़दीक में है। तो मैं स्विमिंग करके बाहर आया और रास्ते पे मुझे राजयोगा मेडिटेशन सेंटर का बोर्ड दिखा, और आई जस्ट थॉट इट वुड बी इंटरेस्टिंग कि राजयोग क्या होता है ये जानें और सीखें। उस समय मैंने जस्ट अपना अंडर ग्रेजुएशन कम्प्लीट ही किया था, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं यूके जाने वाला था। तो यूके में मेरा एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका था फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो बीच का समय था अंडर ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन के समय के जो बीच का समय था 2.5-3 महीने का, उस समय मैंने राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स किया। और जैसे ही कोर्स किया, मेरे को बहुत ही जैसे कि एक स्पिरिचुअल टर्निंग पॉइंट हो गया मेरी लाइफ में, एंड आई कनेक्टेड विद राजयोगा वेरी इजिली। और मेरे को लगा कि ये मेडिटेशन सभी को सीखना चाहिए, क्योंकि ये इतना सिंपल मेडिटेशन है, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स है दे आर मल्टीफोल्ड, दे आर यू नो वेरी वेरी ग्रेट। तो जो एक्सपीरियंसेस मेडिटेशन से होने लगे मेरे को, दैट पुल्ड मी क्लोजर टू द ब्रह्म कुमारीज, पुल्ड मी क्लोजर टू राजयोगा। एंड 3 महीने हुए और फिर आई बिकेम वेरी रेगुलर एट प्रैक्टिसिंग राजयोगा। और उसके बाद मेरा यूके जाना हुआ, तो यूके में भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी कि सभी को जो बैंगलोर से गए थे उनका अकोमोडेशन कहीं दूर था, और मेरा अकोमोडेशन अलग था, और जो मेरा अकोमोडेशन था वो लीड्स के ब्रह्म कुमारी सेंटर के बहुत नज़दीक था। तो जैसे कि वो भी मेरे लिए, जो मेरे को यहाँ बैंगलोर से जाने के समय मालूम नहीं था कि वहाँ पे ब्रह्म कुमारी का आश्रम इतना नज़दीक पे है, और ये बहुत वंडरफुल एंड बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई कि वहाँ कॉलेज में पढ़ाई पढ़ते हुए भी आई कुड गो टू द ब्रह्म कुमारीज आश्रम एंड प्रैक्टिस राजयोगा इन यूके एज वेल। तो दैट पुल्ड मी इवन क्लोजर टू द ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी संस्था जो सारे विश्व में फैली हुई है, और सारे ही धर्म के लोग इस राजयोगा का अभ्यास करते हैं, और फॉरिनर्स भी इस भारत की संस्कृति अनुसार इस राजयोगा मेडिटेशन को सीख करके आश्रम पे रह करके परमात्मा का जो ये ज्ञान है जिससे इतने फायदे, खुशी, शांति की अनुभूति उनको हुई है, ये फैलाने में लगे हुए हैं। सो दैट पुल्ड मी इवन क्लोजर टू द ब्रह्म कुमारीज एंड अस्टाउंडेड मी ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स इट वाज अमेजिंग कि वहाँ के सेंटर्स के साथ हम अपने राजयोगा की जर्नी आई वाज कंटिन्यूइंग। एंड यू नो यूके में मैं बिलीव करता हूँ कि शायद मेरा यूके जाना रतन मोहिनी दादी से मिलने के लिए ही हुआ, बिकॉज द फर्स्ट मीटिंग विच आई हैड विद रतन मोहिनी दादी वो यूके में ही थी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि मेरी 1.5 साल का कोर्स, पढ़ाई का कोर्स पूरा हो रहा था, और आई वॉज गोइंग टू कम बैक टू बैंगलोर, और तब तक राजयोगा ने जैसे कि मेरी आत्मा पे एक बहुत गहरी छाप छोड़ दी थी। एंड आई वॉन्टेड कि सभी को, स्पेशली यंगस्टर्स को, यूथ को इस राजयोगा मेडिटेशन का फायदा हो, उससे बेनिफिट मिले। तो मैं बैंगलोर आने ही वाला था, और मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा था कि कैसे मैं बैंगलोर आकर के वापस स्कूल के बच्चों को और सभी को ये राजयोगा मेडिटेशन क्या होता है और कितना सिंपल है और इससे बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं, तो ये मैं कैसे सिखाऊं। तो ये थॉट आया ही था कि वहाँ के सेंटर से समाचार मिला कि रतन मोहिनी दादी, एक जगह है लेस्टर यूके में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंटर है, उस सेंटर के ओपनिंग के लिए रतन मोहिनी दादी आने वाली है। तो सेंटर के निवासी ऑफ कोर्स वहां जाने वाले थे दादी से मिलने के लिए, तो मेरे को भी बहुत खुशी हुई। ये मेरे बैंगलोर आने से 3-4 दिन पहले की ही बात है। तो वहां के एक भाई ने बोला कि आपका तो बैंगलोर का प्लान सेवा का बहुत अच्छा है, और रतन मोहिनी दादी तो यूथ विंग की हेड है, ब्रह्म कुमारीज की जो भी यूथ विंग द्वारा सेवाएं होती है उसकी हेड है, ये तो यूथ की सेवा का प्लान है आपके अंदर, तो आप जरूर दादी को सुनाना। तो फिर बहुत उमंग आया, तो मैंने सारा कुछ प्लान लिखा, और बहुत खुशी हो रही थी कि मैं, है ना, जो दादी, जो हम बोलते हैं कि शी इज वन ऑफ द फाउंडिंग पिलर्स ऑफ द ब्रह्म कुमारीज इंस्टीट्यूशन, शुरू से लेकर के जब से ये इंस्टीट्यूशन फॉर्म हुआ है, दादी हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ सपोर्ट टू द इंटायर इंस्टीट्यूशन एंड द काइंड ऑफ सर्विस शी हैज डन। ये तो बहुत अलग ही एक एक्सपीरियंसेस हैं सभी लोगों के। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ऐसे एक व्यक्ति के साथ मेरी मुलाकात होगी। और जब वो यूके आई थी तो बहुत बिजी उनका स्केड्यूल था, और दिन रात उनके प्रोग्राम्स हो रहे थे, जगह जगह पे उनके प्रोग्राम्स हो रहे थे। तो लेस्टर में मैं गया दादी से मिलने के लिए, लेकिन वो इनॉग्रेशन में इतना बिजी और इतनी भीड़ की उनसे मिलने का चांस नहीं मिला। फिर नेक्स्ट डे दादी ऑक्सफर्ड जाने वाली थी, वहां पे ब्रह्म कुमारीज का बहुत बड़ा, बहुत मतलब आलिशान महल जैसा आश्रम है। तो फिर मैं फिर से वापस उमंग उत्साह जुटा करके बाद मैंने सोचा ऑक्सफर्ड में दादी से मिलेंगे, तो मैं ऑक्सफर्ड पहुंचा। पूरा दिन वेट किया दादी का कि दादी फ्री हो तो मैं मिलूं, दादी फ्री हो तो मैं मिलूं। और जो मेरे को भाई लेके आया था दादी से मिलाने, वो भी वंडर खा रहा था ना, दादी को टाइम ही नहीं, एक मिनट भी टाइम नहीं, इतना बिजी उनका स्केड्यूल, इतने फॉरेनर्स, इतने प्रोग्राम, सभी से मिल रही है दादी। तो सारा कारोबार दिन का पूरा हुआ, शाम के रात के 10:30 बज गए थे, तो दादी की नजर मेरे पे पड़ी। और फिर उस भाई ने बोला कि दादी इसका एक प्लान है, ये आपको ये उसका सेवा का प्लान सुनाना चाहता है ऑक्सफर्ड में रात के 10:30 बजे। तो सभी बहनें बोलने लगी जो दादी के साथ ही, दादी 10:30 बज गए, आपने अभी तक खाना नहीं खाया है, आप पहले खाना खा लो। लेकिन दादी ने बोला नहीं, पहले मैं इस बालक से मिलूंगी। तो दादी का ये कहना कि मैं इस बालक से मिलूंगी और मेरा दादी को देखना, जैसे कि एक ऐसी फीलिंग हुई कि ये दादी तो मेरे को बहुत समय से जानती है, ये दादी तो मेरी दादी है, ये एक बहुत अपनेपन की, एक बहुत रूहानियत की, एक स्पिरिचुअल फीलिंग जिसको कहते हैं, वो मैंने दादी के साथ फील करी। फिर दादी ने पूरा प्लान सुना, 1 घंटा बैठ करके पूरा प्लान डिटेल में सुना। और दादी को जैसे जो रिकग्निशन पावर है दादी की, इतने सालों की तपस्या के बाद, शी कैन रीड योर सोल, शी कैन रीड योर इंटेंशंस। तो जैसे दादी ने सुना, दादी को त्रिकालदर्शी तो है ही दादी, तो उनको फ्यूचर मालूम चल गया था कि ये प्रोजेक्ट जो भगवान ने इस भाई के द्वारा बनाया है, ये जरूर सक्सेस होगा। और हालांकि मेरे को भी उस प्रोजेक्ट, जो सेवा का प्लान बना था स्कूल्स का, उसकी सक्सेस का इतना गहरा, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन शायद दादी को ये बात मालूम थी। तो दादी ने बोला आप इस प्रोजेक्ट को जरूर करेंगे, और जब भी इस प्रोजेक्ट का फाइनल स्टेज आएगा तब मैं बैंगलोर इस प्रोजेक्ट के निमित्त आऊंगी। और दादी ने अपना फोन लिया और जो उनके साथ असिस्टेंट थे, बोला इस भाई का नंबर सेव करो और इस भाई की फोटो जरूर डालना फोन पे, ताकि जब भी फोन आए तब मेरे को इस भाई की शक्ल दिखे। तो ये दादी ने कहा और नंबर लिया, और दादी ने अपना नंबर मेरे को दिया कि आपको जब भी कोई सहयोग चाहिए, कुछ भी आपको इस प्रोजेक्ट के निमित्त गाइडेंस चाहिए, आप मेरे को कभी भी फोन करके पूछ सकते हो। और उसके बाद हर हफ्ते दादी के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन चलता था। किसी हफ्ते मैं भूल जाता दादी को फोन करने, दादी का फोन आ जाता, बालक प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है और कहाँ तक पहुंचा है, और ऑक्सफर्ड में किया हुआ वादा दादी ने निभाया। 1 साल बाद जब वो प्रोजेक्ट का फाइनल स्टेज हुआ बैंगलोर में, और लगभग 4,000 लोग आए उस प्रोजेक्ट के निमित्त, बच्चे, हजारों बच्चे थे उस प्रोजेक्ट के निमित्त जुड़े हुए, तो दादी ने अपना वादा पूरा किया और दादी उस प्रोजेक्ट में आई। एंड दैट्स हाउ माय जर्नी एंड सस्टेनेंस एंड एक्सपीरियंसेस विद रतन मोहिनी दादी स्टार्टेड।
1: दैट्स सो वंडरफुल दिवेश भाई, आगे की जर्नी सुनाइए कि वो प्रोजेक्ट में आपने क्या किया था और हाउ इट वाज सो यूनिक, जो दादी को भी अट्रैक्ट किया वो वाला प्रोजेक्ट, उसे किस प्रकार की सेवा हुई, कैसे आप यूथ की सेवा कर पाए?
0: तो एक संकल्प आया था कि बच्चों को इस राज्यों का अभ्यास हम मेरे को कराना चाहिए और शायद बच्चों को बहुत फायदा होगा इससे, तो बस ये थॉट आया था। और एक संस्था है वर्ल्ड पीस फ्लेम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, जो यूके में बेस्ड है, तो उन्होंने एक विश्व शांति ज्योति को जागृत किया था जो हर कॉन्टिनेंट में प्रज्वलित हुआ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, और फिर उन सब ज्योतियों को मिला करके एक महाज्योति बनी जो नेदरलैंड्स में अखंड ज्योति के रूप में कई सालों से प्रज्वलित है, लेकिन ये ज्योति भारत में कभी प्रज्वलित नहीं हुई। तो ऐसा संकल्प आया था कि जब भी दादी आए और जब भी इस प्रोजेक्ट का फिनाले हो, तो वो ज्योति विश्व शांति ज्योति के रूप में भारत में भी प्रज्वलित हो। तो हमने उसी प्रोजेक्ट को और बच्चों को राजयोग सिखाने के प्रोजेक्ट को जोड़ करके बैंगलोर पीस प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया। लगभग 16 इंटरनेशनल नेशनल स्कूल्स में उसमें पार्टिसिपेट किया, एंड अबाउट 12,000-13,000 बच्चों को हमने मेडिटेशन कैसे करते हैं, मेडिटेशन के फायदे क्या हैं, और मेडिटेशन को डेली लाइफ में यूज कैसे करना है, ये सारी बातें हमने सिखाई और सभी बच्चों ने मिल करके उस विश्व शांति ज्योति को प्रज्वलित करने में हिस्सा लिया। एक बहुत बड़ा 400 बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम हुआ। बैंगलोर के सभी स्कूल के प्रिंसिपल्स, इंटरनेशनल स्कूल प्रिंसिपल और लगभग 4000 की सभा हुई थी और 4 बार ये प्रोग्राम हुआ। मतलब हजार हजार हजार हजार की सभा के साथ 4 बार वो प्रोग्राम रिपीट हुआ और दादी दोनों दिन प्रोजेक्ट में शामिल हुई। दादी को बैंगलोर आते ही बहुत निमंत्रण मिले कि दादी आपको यहाँ आना है, क्योंकि दादी बहुत सालों बाद बैंगलोर आई थी। तो यहाँ पे जो जितने भी ब्रह्म कुमारीज के ब्रांचेस हैं उनका यही कहना था कि दादी आप हमारे पास आए, दादी आप हमारे पास आए। लेकिन दादी ने बोला इन 2 दिनों को छोड़कर आप किसी भी दिन प्रोग्राम बनाओ, मैं आऊंगी, लेकिन ये 2 दिन पीस प्रोजेक्ट के निमित्त आपको रखने हैं। तो बहुत सुंदर वो कार्यक्रम रहा। दादी ने स्टेज पे खड़े होकर के उस प्रोजेक्ट के फिनाले में मेरे को एक बहुत, जैसे उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि जो भी वो बोलती थी वो सिद्ध हो जाता था, सच हो जाता था। संकल्प से सिद्धि जो बोलते हैं, जो भी उनके मुख कमल से निकलता था वो जैसे कि वरदान के रूप में सच हो जाता था। तो जब फाइनल फिनाले प्रोग्राम हुआ और बहुत मतलब एक रूहानी वातावरण में 400 बच्चों की उपस्थिति में हजारों की सभा के बीच में विश्व शांति ज्योति प्रज्वलित हुई और हील द वर्ल्ड का गीत बजा था, मेरे को याद है, और सभी इस विश्व की हीलिंग के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और उसके बाद तुरंत ही दादी ने माइक लिया और कहा कि आप सभी स्कूल्स इस बच्चे को अंत तक सहयोग देंगे। मेरा हाथ पकड़ा और दादी ने ये बात स्टेज पे कही। लेकिन मेरे को लगा ये दादी क्यों कहती है ये स्कूल्स, मेरे को तो इन स्कूल्स के साथ कोई काम है नहीं, अब तो हो गया ये प्रोजेक्ट तो। बट अगेन त्रिकालदर्शी दादी, वो मुख से उनका निकला हुआ वरदान इतना लकी साबित हुआ मेरे लिए कि आज दिन तक 10 साल हो गए इस प्रोजेक्ट को हुए, 2013 में वो प्रोजेक्ट हुआ था, 10 साल हो गए और आज तक भी मेरा जो भी लौकिक कारोबार भी स्कूल्स के साथ चलता है वो उन्हीं 16-17 स्कूल्स के साथ चलता है और मुझे कभी किसी और स्कूल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और अभी तक भी हम सारे प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, आध्यात्मिक प्रोग्राम्स, वैल्यू एजुकेशन, मॉरल साइंस क्लासेस जो भी लेते हैं, थिएटर और म्यूजिक की क्लासेस लेते हैं, वो इन्हीं 16 स्कूल्स के साथ हमारा कारोबार आज तक चल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये दादी का ही मुझे दिए हुई ब्लेसिंग है, वरदान है कि दादी ने वो कहा और वो बात ऐसा सच और रियल साबित हो गई कि शायद मेरे को भी उस समय नहीं मालूम था कि ये कारोबार आगे बढ़ेगा। और दादी ने ये भी उस समय कहा था कि ये प्रोजेक्ट कई शहरों में फैलेगा। फिर मैंने सोचा कि है ना अपने अंदर की, मैंने तो किसी और स्टेट के लिए प्लान किया नहीं है। लेकिन फिर जैसे ही वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, कलकत्ता से, बॉम्बे से और दिल्ली से हमको निमंत्रण आने लगे स्कूल्स के कि आप इस पीस प्रोजेक्ट को हमारे बच्चों के साथ भी दिल्ली में, कलकत्ता में आप इस प्रोजेक्ट को कराओ। तो फिर कोलकाता पीस प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, दिल्ली पीस प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और बहुत सक्सेसफुल रहा और हजारों लोगों को शांति का संदेश मिला, बच्चों को शांति की अनुभूति हुई, कैसे वो अपनी पढ़ाई करते हुए पीयर प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर सब हैंडल करते हुए मेडिटेशन को यूज कर सकते हैं। कई स्कूलों ने इसको अपने करिकुलम में भी अपनाया और ऐसा हुआ कि पीरियड के बाद बेल नहीं बजती थी, 1 मिनट का मेडिटेशन बजने लग गया कई स्कूलों में, तो बच्चे फिर उस मेडिटेशन का अभ्यास करते और उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती, तो अगली टीचर जो आती क्लास में उसको, उनको भी बच्चों को शांत करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता क्योंकि ये मेडिटेशन बच्चों की एक आदत सी बन गई थी। तो दादी के ही निर्देशन में, दादी के ही गाइडेंस से पूरा प्रोजेक्ट हुआ और मैंने रियलाइज किया कि जो गहरी तपस्या उन्होंने करी है, जो भगवान के साथ उनका संबंध है और जो प्योर इंटेंशंस के साथ, लवफुल नेचर के साथ जो भी वो कहती है वो सच हो जाता है। और सिर्फ उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनका हाथ पकड़ना भी इतना रूहानी प्यार का अनुभव कराता है कि आत्मा के अंदर इतनी शक्ति भर जाती है, आत्मा भगवान के साथ अपना कनेक्शन को और स्ट्रांग बना देता है। तो वही मेरा फाउंडेशन, मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि ऐसी दादी के साथ बात करने का, मिलने का मौका मिला और उसी से फिर आगे भी बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए बिकॉज दादी ने एक तरीके से मेरे को फेमस कर दिया। तो फिर काफी सारी सेवाएं उसके बाद हुई।
1: So wonderful to listen that.
2: अपनी आध्यात्मिक यात्रा के क्रम में दादी रत्न मोहनी जी ने हजारों लाखों मनुष्यों के जीवन को परिवर्तित किया है। उनकी स्नेहमयी पालना एवं मार्गदर्शन में कितने ही युवाओं को जीवन की नई दिशा मिली है। राजयोग मेडिटेशन की मदद से वे आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हुए हैं। संकल्पों में कितनी शक्ति होती है ये दादी रत्न मोहनी जी से बेहतर और कौन जान सकता है। मैं मधुबन धन्य हूं कि ऐसी दादी जी के संग में रहने का इतना बड़ा सौभाग्य मिला है।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। एक पूरी श्रृंखला हम तय कर रहे हैं जिसमें कितना कुछ जान रहे हैं। ये जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, जो पूरा एहसास है, ये हम इस सफर में तय करते हुए जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और जब एक एक पर्दा हटता जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे किताब का एक एक वर्क, एक एक अध्याय हम पढ़ते जा रहे हैं और फिर पूरा का पूरा जो सिनारियो है, जो दुनिया का सिनारियो है, उसको जान पा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस जो कार्मिक फिलॉसफी की हम बात कर रहे थे पिछली कड़ी में, उसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। और हर बार की तरह हमसे बात करने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। बहुत सी बातें हमने जानी है, बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी वेरी कम्फर्टेबल फीलिंग। और जो अगर हम पिछली कड़ी को देखें तो हमने उस कार्मिक फिलॉसफी की बात की थी जो जिसके ऊपर शायद हमारे पूरे अगर हम देखें किसी भी धर्म के हो, हमारा पूरा जीवन खड़ा मिलता है।
1: एब्सोल्युटली। तो एंड मेजॉरिटी ऑफ आवर क्वेश्चंस विल गेट आंसर्ड
0: एक्चुअली,
1: यू नो, अगर आप सीरियसली उसको समझने की कोशिश करें और किसी भी परिस्थिति में हो तो डिटैच होकर एक मिनट उस लॉ को वर्क करें, यू विल गेट योर आंसर।
0: एक लॉ जो हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था पिछली बार, वो ये कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। और ये बात आई थिंक जब मैं छोटी थी, जब मैं सेकेंड क्लास में पढ़ती थी, तब मैंने पढ़ ली थी। और हर बार ये पढ़ते गए जानते गए, लेकिन जिंदगी में अपनाना और क्या बो रहे हैं और क्या पा रहे हैं, मैं तो ये नहीं समझ पाती थी कि मैंने पौधा कौन सा लगाया था। आज जाके इतने समय बाद ये बात क्लियर हुई है कि ये हमारे कर्म है, ये हमारा थॉट है।
1: वही बात हो गई ना, ज्ञान आत्मा हूं ये भी तो पहले पता था, लेकिन अवेयरनेस। इसी तरह कार्मिक लॉ वर्क करता है। सुना था, मतलब ये बात तो इतनी बार सुनी है, एंड उसको न्यूटन्स लॉ से भी कंपेयर करते हैं, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वी नो इट, बट आर वी अवेयर ऑफ इट व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्शन? आर वी अवेयर ऑफ इट व्हेन वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन? यू नो, फिर अगर अवेयरनेस होती तो ये नहीं बोलना पड़ता ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इफ आई रिमेम्बर कि एक बॉल है, उसको मैंने ऊपर फेंका, अब वो नीचे वापस आएगी और उतने ही फोर्स से आएगी, कहीं और नहीं चली जाएगी, वो मेरे पास ही आएगी। तो फिर जब वो मेरे पास गिरती है तो मैं ये क्यों पूछ रही हूँ ये कहाँ से आ गई मेरे पास,
0: क्यों आई,
1: वेयर हैज इट कम फ्रॉम आउट ऑफ द ब्लू। यू नो, कर्म इज लाइक रिपल्स इन द पॉन्ड। अगर आप पॉन्ड के अंदर एक पेबल गिराते हैं, ऐसे एक छोटा सा पत्थर फेंकिए, बहुत सारी लहरें बनती है, रिपल्स बन जाती है, और वो सारी ट्रैवल करती है उस पॉन्ड के अंदर। अब वो जाकर किनारे को हिट करके वापस आ जाती है। और कई जो रिपल्स हैं वो पॉन्ड के बीच में कुछ और पत्थर या कुछ और पौधे होंगे तो उसको हिट करके वापस आ जाएगी, लेकिन वापस हर रिपल आती है। सिमिलरली एवरी एनर्जी दैट आई क्रिएट, एवरी थॉट दैट आई क्रिएट, इट्स अ रिपल।
0: एवरी एक्शन
1: एक्शन से भी पहले, या दैट्स व्हाट, एवरी थॉट, वी कॉल थॉट आल्सो एन एक्शन, यू नो। तो स्थूल कर्म नहीं, लेकिन सूक्ष्म में भी इसको कर्म, तो हर संकल्प वो एक रिपल की तरह है। ये यहाँ से निकलेगा, जिसके लिए क्रिएट किया गया था वहां पर जाएगा, उस टारगेट को हिट करेगा, वापस आएगा। नाउ द रिपल्स व्हेन दे आर कमिंग बैक, कोई रिपल तुरंत आ जाएगा वापस, कोई 10 दिन बाद, कोई 10 महीने बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 100 साल बाद। लेकिन जब वो 100 साल बाद आता है या 10 साल बाद भी आता है तो वी हैव फॉरगॉटन, यू नो, लैक ऑफ अवेयरनेस, हम सो गए हैं फिर से। तो हमें ये भूल गया कि ये उसी का रिटर्न है जो एनर्जी मैंने बाहर भेजी थी।
0: तो ये जरूरी नहीं है कि हमें याद रहे।
1: हाँ,
0: सी अगेन, अगर
1: दैट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स,
0: हमें ये जरूरी नहीं है कि हमने क्या किया है,
1: ये आपको कभी पता भी नहीं चलेगा वैसे भी
0: कि हमने क्या किया।
1: हाँ, नहीं, क्या हमने गलत किया, वो तो करने के टाइम उसकी अवेयरनेस होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हम उसको तुरंत कनेक्ट
0: कर पाए।
1: यू नो, वो वाला जो किया था ये उसका रिजल्ट है। नो, दिस इज एनर्जी फ्लोइंग आउट, कमिंग बैक, व्हेन, वेयर, आई माइट नॉट बी एबल टू कनेक्ट इट। एंड सही बार जरूरी नहीं है उसी टाइम हो जाए ना, कुछ गलतियों का रिजल्ट तो हमें उसी टाइम मिलता है, तब हम बोल सकते हैं कि ये गलती की थी, ये सजा मिली है। लेकिन जब वो एक टाइम गैप के बाद होता है तब वो हम कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारा दिन में हम बहुत सारी एनर्जी इस तरह से कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली।
0: एक बार सिस्टर शिवानी, हम दोबारा वो MIS सिस्टम जो हमारा है, जो पूरा कार्मिक फिलॉसफी का है, कि किस तरह से हमारा जो हम संकल्प करते हैं वो किस तरह से इंटेलेक्ट एक्शन में परिवर्तित करता है और फिर वो इम्प्रेशन बनता है. एक बार और उस ताकि कर्म
1: स्टेप बाय स्टेप एंड आई थिंक हर एक को ये बहुत अच्छी तरह से समझ के फिट कर लेना पड़ेगा ताकि हर टाइम करते समय वो साइकिल जल्दी से माइंड में आ जाना चाहिए. हम एक संकल्प क्रिएट करते हैं, माइंड बुद्धि उस पर निर्णय देती है, इंटेलेक्ट, और फिर वो कर्म में आ जाता है, एक्शन. सो आई हैव टेकन अ थॉट, डिसीजन, एक्शन. जो एक्शन मैंने परफॉर्म किया उसका इम्प्रेशन, तो इट वेंट आउट लाइक दिस, इम्प्रेशन बैक, तो वो मार्क एक बन गया जिसको हम कहेंगे संस्कार बन गया. अब जैसा मेरा संस्कार बन गया है, नेक्स्ट टाइम उस संस्कार की क्वालिटी के आधार पर संकल्प, फिर डिसीशन, फिर एक्शन, फिर उसका संस्कार बनेगा. तो दिस साइकिल इज गोइंग ऑन एवरी टाइम. तो सपोज राइट नाउ किसी भी परिस्थिति की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, आई एम फीलिंग लॉट ऑफ सोरो, लॉट ऑफ पेन इनसाइड. तो सबसे पहले मुझे अपने आप को बताना पड़ेगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. यू नो, लेट्स स्टॉप लुकिंग फॉर द रीजन आउटसाइड. नॉर्मली क्या हो रहा है, मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है. He is responsible, she is responsible, situation is responsible, God is responsible. When nobody else is responsible, God is responsible, my stars are responsible, astrology, everything. I mean, we just go.
0: It has to happen. Yeah. It is written.
1: Destiny, meri luck kharab hai. So, unfortunately, jahan reason hai, usko chhodke, hum bahar ki taraf dekh rahe hain. Spirituality means apne paas dekhna, ki abhi main udaas hoon. इसका कारण है कि कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति में मैंने इस तरह की शक्ति को या इस तरह के इम्प्रेशन को बनाया था, क्योंकि उस समय मेरे में शक्ति नहीं थी एक सही कर्म करने की, एक सही निर्णय करने की. तो आई क्रिएटेड एन इम्प्रेशन ऑफ सोरो. नाउ एवरी टाइम दैट आई एम गोइंग इन टू दैट सिचुएशन या एवरी टाइम आई एम मीटिंग दैट पर्सन, यू नो, कई बार किसी व्यक्ति से मिलकर दर्द होता है, या उनसे मिलकर नहीं लेकिन उनकी वजह से हमें दर्द मिल रहा है हर टाइम. शायद वो हमारे साथ नहीं है इसलिए दर्द हो रहा है, कारण कुछ भी है, बट आई अकाउंट देम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, कि इनकी वजह से मुझे बहुत दर्द होता है. और जैसे आपने कहा वो अच्छा भी लगने लगता है थोड़े टाइम के बाद, तो वो अच्छा लगना मतलब तो हम उसको और भी ज्यादा रीइन्फोर्स करते जा रहे हैं, उस संस्कार को और पक्का करते जा रहे हैं. तो आई अंडरस्टैंड कि ये मेरा संस्कार मैंने पहले क्रिएट किया था, अब फिर जब मैं कर्म में आ रही हूँ उनके साथ, मैं फिर से वही थॉट प्रोसेस से जा रही हूँ, फिर वो संस्कार पक्का होता जा रहा है. अब मुझे समझना होगा कि मुझे कहीं ना कहीं इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम अपने दुख से मुक्त तो होना चाहते हैं, अपने दर्द से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वो इम्प्रेशन दर्द वाला है ना, तो वो ही कर्म में आ जाता है. सी आई हैव क्रिएट, इट्स लाइक सेइंग लेट्स फॉर एग्जांपल अ ब्लैक पिक्चर इनसाइड. अब वो ब्लैक पिक्चर ही एक थॉट क्रिएट करता है, वो ही एक्शन में लाता है, तो एक ब्लैक थॉट क्रिएट होता है, एक ब्लैक एक्शन क्रिएट होता है. अब इस ब्लैक एक्शन का ही इम्प्रेशन
0: दोबारा
1: फिर से ब्लैक वाला बनेगा, तो somehow वो साइकिल ही पूरा ब्लैक कलर का हो गया है. अब नाउ आई एम सेइंग कि आई वॉन्ट टू बी फ्री ऑफ पेन, लेकिन वो कलर ही ब्लैक है यहाँ पे, तो बाहर क्या जा रहा है, तो वो फ्री होने की बजाय वो और भी ज्यादा
0: ब्लैक
1: पक्का होता जाता है, क्योंकि जो अंदर स्टोर्ड है वही एनर्जी बाहर जा रही है, वही एनर्जी फिर से आ रही है, तो वो अकाउंट खत्म होने की जगह कहीं ना कहीं और भी बढ़ता जा रहा है. लेकिन सबसे पहली अवेयरनेस ये चाहिए कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, एंड व्हेन वी से जो कुछ, इट मींस एब्सोल्युटली जो कुछ भी, यू नो, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स है, चाहे वो कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, आई मीन जस्ट थिंक ऑफ एनीथिंग, या चाहे वो हमारे घर में किसी बहुत नजदीक व्यक्ति का शरीर छोड़ना है, व्हाटएवर, एवरीथिंग, हर चीज जो मेरे साथ हो रही है उसका जिम्मेवार
0: मैं हूं.
1: उससे पहली बात स्टेबिलिटी आ जाती है कि ये कर्म मैंने कोई किया था उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, ये अकाउंट मेरा क्रिएट किया हुआ था उसको सेटल मुझे करना पड़ रहा है, तो उसका वाइज वेयर व्हाट हाउ स्टॉप.
0: लेकिन यहां ये जो कार्मिक थ्योरी है पूरी, कि मैं मानती हूँ मैंने मैंने कोई कर्म किया क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन इस जन्म में तो मैं देखती हूँ अगर उसी व्यक्ति के साथ मैंने कोई गलत नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसी भी या किसी भी सिचुएशन में मैंने कुछ वहां पे कुछ नहीं किया हुआ, तो फिर मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ, यू नो, देन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग टू मी बिकम्स रियली टफ.
1: सी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो हु इज द आई?
0: द सोल.
1: द सोल. ये क्लियर हो गया. पहले ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था बिकॉज द आई मेंट
0: द बॉडी.
1: तो इट वॉज लाइक अभी मैं ये हूं ना, पहले जो मैंने किया वो जब मैं हम कह रहे हैं तो हम सोचते हैं पहले तो मैं नहीं थी ना, वो कोई और था. यू सी, वो हम कहते हैं वो पिछले जन्म में वो मुझे नहीं याद ना, लेकिन वी आर फॉरगेटिंग कि वो किसने किया था.
0: लेकिन फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सेप्ट करने के, पिछले जन्मों का ढोती जाऊं.
1: व्हाट इज मुश्किल इन दिस? नाउ यू सी, यस्टरडे यू वर वेयरिंग अ येलो साड़ी, टुडे यू आर वेयरिंग अ रेड साड़ी. जब आपने कल येलो साड़ी पहनी थी एंड आप मेरे से 500 रुपए बोरो करते हैं, ठीक है, मैंने भी आपको दे दिए, आप लेकर चले गए, आज आप आ गए रेड साड़ी पहनकर एंड आई से एक्सक्यूज मी कनुप्रिया माई 500 रुपीज बैक.
0: मेरा मेमोरी लॉस हो गया बीच में फिर.
1: या दैट्स ओके, बट आई तो नीड माई मनी बैक.
0: बट देन अगेन आई एम नॉट लिविंग विद अवेयरनेस दैट आई डोंट हैव दैट मेमोरी.
1: राइट, बट आई नीड माई मनी बैक. सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव इट टू मी विद लव, आई विल पुल इट फ्रॉम यू. I will snatch it from you.
0: But then it will pain me.
1: That is what is happening.
0: So then I accept. I should accept because I have a memory loss.
1: Right.
0: I don't remember that I had given you the money.
1: Right. But you have to remember that when I'm asking you for it, you had borrowed it from me. अब आप आकर कहें कि नहीं मैंने तो नहीं लिया था आपसे, क्योंकि आपने लिया था आपको याद नहीं है. आप कहेंगे उस टाइम मैं येलो साड़ी में थे.
0: नहीं, मुझे तो याद ही नहीं ना.
1: आपको याद नहीं है, लेकिन कॉस्ट्यूम चेंज होने से आप बदले?
0: मैं नहीं बदली.
1: तो आपने ही बोरो किया था, अब आपको रिटर्न करना होगा. अब वो आप प्यार से करें या जबरदस्ती करें, करना तो आपको पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते कि कॉस्ट्यूम चेंज हो गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश हो गई. आपने बोरो किया था, कॉस्ट्यूम है ये भी, आज ये है, थोड़े साल बाद इसको छोड़ेंगे, नेक्स्ट लेंगे, लेकिन इस कॉस्ट्यूम में जो आपके साथ अकाउंट बनाऊंगे, अगर आपको दुख दिया तो फिर कहीं ना कहीं वो दुख मेरे पास वापस तो आना ही पड़ेगा.
0: तो वही मैं कह रही हूँ ना कि आज के वक्त में, आज इस कॉस्ट्यूम में, कानुप्रिया की जिंदगी में, या किसी का भी नाम ले, उसकी जिंदगी में अगर दुख, जिसका वजह वो आज नहीं समझ पा रही, पिछले जन्म का कुछ कहीं कोई कार्मिक डेब्ट या कुछ अकाउंट चल रहा है, तो वो मेमोरी तो नहीं है.
1: कोई बात नहीं,
0: तब एक्सेप्टेंस.
1: इसीलिए तो मेमोरी नहीं है, लेकिन नॉलेज तो अब हो गई ना
0: कि ये कहीं ना कहीं होगा
1: मेरी वजह से है. सी, एक्सेप्ट करना तब मुश्किल होता है जब मुझे उसका रीजन नहीं पता होता कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, आप मेरे से क्यों मांग रहे हैं ये पैसे. लेकिन जब आपको ये नॉलेज मिल जाएगी, भले आपको याद नहीं है, लेकिन आपको ये नॉलेज मिलेगी कि आपने बोरो किया था इसलिए आपको रिटर्न करना है, तो भले आप अनविलिंगली रिटर्न करेंगे, लेकिन ईजी हो जाएगा एक्सेप्ट करना जब आपको ये नॉलेज मिल जाएगी. तो सिमिलरली हमने जो पिछले कॉस्ट्यूम में किया हमें याद नहीं है, लेकिन अब अगर हमें लॉ समझ में आ गया कि हाउ द लॉ वर्क्स, देन वी अंडरस्टैंड वन थिंग कि इट्स माय क्रिएशन. मैंने एनर्जी दी थी, आज मुझे वापस मिल रही है, तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा जो वो हैवीनेस आती है क्वेश्चंस के साथ वो खत्म हो जाएगी. एंड आई विल अंडरस्टैंड कि ठीक है मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैंने ही इसको एक्सप्लॉइट किया होगा, मैंने ही रॉन्ग एनर्जी ट्रांसमिट की थी, आज मुझे मिल रही है. लुक इन द एनवायरमेंट, व्हाट हैव वी डन टू द एनवायरमेंट. सो एनवायरमेंट हमें वापस नहीं देगा वो, और वो दे रहा है,
0: दे रहा
1: अब
0: है.
1: हम कहते हैं जी ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से इतना इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, क्यों ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. डोंट वी समवेयर नो दैट वी हैव डन इट? सो इवन टू दैट हाईएस्ट ग्लोबल लेवल वी आर गोइंग टू गेट द रिटर्न ऑफ आवर एक्शंस, इवन फ्रॉम नेचर. इट वर्क्स एट एवरी लेवल, पर्सनल लेवल, इंटरपर्सनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल, तीनों लेवल्स पर वो वर्क करने वाला है. तो अब सिर्फ चाहिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेवार मैं हूँ. आधा काम उससे खत्म हो जाता है. यू नो, जैसे राह चलते कोई मिलता है और एकदम से, यू नो, रोड पे बहुत बार ऐसे होता है कि थोड़ा सा आप किसी को क्रॉस करते हैं, गाड़ी को टक्कर लग जाती है, कई लोग बस खड़े होकर वहां जोर जोर जोर से आपसे कुछ बहुत कहेंगे और गाड़ी में बैठेंगे चले जाएंगे. पहले वी वुड से ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसे बोल दिया, आई हैव टू रिप्लाई बैक, आई हैव टू डू दिस, इजी वे इज ओके, अकाउंट सेटल्ड, फिनिश्ड, ओम शांति, फुल स्टॉप. देर इज नो
0: कंटिन्यूस प्रोसेस.
1: That is the settling of the account first. जो ये और हम energy create करते हैं ना, where, why did this happen? I'm creating more negative energy. तब फिर वो account settle होने की बजाय और भी ज्यादा accumulate होता जाता है. तो accept कर लीजिए. वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है और एक्चुअली
0: यहाँ यही मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि
1: रेजिस्ट करने से भी कोई ऑप्शन नहीं है, इट जस्ट इज वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग. लेकिन जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, नाउ देन यू कैन चेंज इट.
0: वो
1: दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट,
0: ट्रांसफॉर्मेशन है या एनर्जी.
1: जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी चीज को, हम रेजिस्ट करते रहते हैं. तो वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी. तो पहले ही नेगेटिव कर्म था, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर, दैट्स द बिगेस्ट रीजन कि हम सेटल क्यों नहीं कर पाते. हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो ट्रांसफॉर्म नहीं करते. व्हाट वी कीप डूइंग इज क्रिएटिंग मोर नेगेटिव कर्मा विद दैट नेगेटिव इम्प्रेशन. एक बना है, हम और अपसेट होते हैं, ऐसा क्यों बोल दिया, फिर और अपसेट होते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. सो यू सी अगेन नेगेटिव आउट, नेगेटिव रिटर्न, संस्कार और पक्का. एंड इट्स बिकम अ विशियस साइकिल नाउ. इट्स अ वेरी वेरी विशियस साइकिल.
0: आई थिंक और हम में से
1: एंड आत्मा बिल्कुल जैसे उस बोझ से
0: उसमें घुसता ही जा रहा है, घुसते ही जाते हैं.
1: एंड जितना हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं
0: और उलझ जाते हैं.
1: तो इसलिए जो आपने कहा ना कि कई बार हमने इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, बट अब अपने जन्म की डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉडर करें. कि अब मैं आत्मा, तो आत्मा का कोई जन्म और मृत्यु की बात नहीं है. जीवन की ये यात्रा है, ये एक कॉस्ट्यूम है, या कहें ये एक एपिसोड है. यू नो आजकल जो सीरियल्स आते हैं टेलीविजन पर, सो यू वोंट हैव अ सेपरेट स्टोरी इन एवरी एपिसोड. इट्स अ कैरी फॉरवर्ड एंड दैट इज व्हाई द यू नो द सोप इज वेरी इंटरेस्टिंग. एक है कि एवरी एपिसोड इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट नो, इतने सालों से यू नो एक सीरियल चल रही है, सोप ऑपेरा. तो हर एपिसोड इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस एपिसोड. Every life is a continuation of the previous episode. Now this is one episode. इस एपिसोड में हम जो कुछ करेंगे इसका कैरी फॉरवर्ड हमारे नेक्स्ट एपिसोड में होगा. एंड दैट्स वाई द वर्ल्ड ड्रामा इज इंटरेस्टिंग.
0: ओके, यहाँ एक और बात जानना चाहती हूँ. आई थिंक बहुत से हमारे दर्शक लोग भी जानना चाहते हैं कि ये एक इंक्विजिटिवनेस है कि हर एपिसोड में जो कैरेक्टर्स हैं हमारे आसपास, वही कैरेक्टर्स कैरी फॉरवर्ड होंगे या कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड होंगे या वही सोल. ये भी एक सवाल है कि क्या हम, क्योंकि अगर कार्मिक डेप्थ है या कार्मिक अकाउंट्स है तो वही लोग फिर मिल जाते हैं.
1: एब्सोल्युटली.
0: तो क्या हम वो सब साथ चलते हैं?
1: यस, एब्सोल्युटली. इट इज अ पर्टिकुलर सेट व्हिच इज टुगेदर. जैसे डिफरेंट सीरियल्स चल रहे हैं एट अ टाइम ऑन एयर, लेकिन एक पर्टिकुलर सीरियल में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टर्स है, यू नो, तो उनका इंटरप्ले एक दूसरे के साथ है. हाँ, ये हो सकता है इस एपिसोड में आप चार एक्टर्स को देखते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में उसमें से दो कोई और दो के साथ है. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम हर लाइफ टाइम में मिल रहे हैं, बट घुमा फिरा के या एक दो छोड़ के लाइव्स, देन वी आर अगेन कमिंग बैक इन टू प्ले. लेकिन जिनके साथ जितना अकाउंट होगा, वी विल कम बैक इन टू प्ले विद देम. एब्सोल्युटली. नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज लाइक यू सेड अबाउट राइट एंड रॉन्ग, कि हाउ वुड वी नो. तो अगेन नोबडी टू जज राइट एंड रॉन्ग. लेकिन फिर भी उसको अगर बहुत इटर्नल बेसिस पर देखें, जैसे आत्मा की हमें पहचान मिली कि दैट इज द ट्रूथ, तो उस पहचान में रहकर जो हम कर्म करेंगे और उस पहचान की विस्मृति से जो हम कर्म करेंगे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव की कैटेगरी में आ जाता है.
0: ओके, ये जानते हुए, अपने बेसिक्स को जानते हुए,
1: एक इमेज क्रिएट करके, यू नो, व्हेन आई एम द सोल, ये हम भूल गए, मैं शरीर हूँ और मैं वो सारे लेबल्स हूँ, पोजिशन हूँ. उस भान में जिसको हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर जो भी कर्म करेंगे, इट्स ईगो. ईगो है ना, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ. तो बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान में रहकर जो भी कर्म होगा, इवन अ थॉट, वो नेगेटिव.
0: तो इसका मतलब अभी तक जो हम करते आए या मैं करती आई या अभी जब तब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, सो दैट वाज रॉन्ग.
1: या बिकॉज सी व्हाई इट्स रॉन्ग, अगेन व्हाई इज इट रॉन्ग, क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, आप एक इल्यूजन में चल रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं, आप एक भय में चल रहे हैं कि ये मैं एक दिन खत्म हो जाऊंगी, आप इस भी भय में चल रहे हैं कि ये जो सब कुछ मेरा है ये खत्म ना हो जाए, तो आपके थॉट्स कैसे वाले क्रिएट हो रहे हैं?
0: सारे नेगेटिव है,
1: मेरे कुछ हो ना जाए, इनको कुछ ना हो जाए, ये मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए, तो डर में चल रहे हैं। अब ये जो सारी जिन चीजों से मेरी डिपेंडेंसी जिन पर हो गई है, एडिक्शन भी हो जाती है, ये सारी चीजें मुझे चाहिए, एक सर्वाइवल का सारा दिन लगा हुआ है, और चाहिए और चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स एक्शंस इंप्रेशंस बन रहे हैं इन दिस प्रोसेस? नेगेटिव। अब एक फियर क्रिएट होता है, कहीं इनको कुछ ना हो जाए, कहीं ये मेरे से छूट ना जाए, व्हाट काइंड ऑफ थॉट? नेगेटिव। तो फिर उस प्रोसेस में
0: और उनको बचाने के बचाने लिए सारे के लिए। और तरीके यू नो
1: दाम दाम दान अगर की उनको किसी ने कुछ किया या मेरे उस इमेज को किसी ने कुछ कहा इंसल्ट की, गुस्सा आएगा, विच थॉट एक्शन? एंगर। तो ये एंगर, ग्रीड, जेलेसी, इनके वश जो भी कर्म होगा, मतलब देह अभिमान के वश जो भी कर्म होगा वो नेगेटिव कर्म में जाएगा, जिनको हम कहेंगे सिनफुल एक्शंस। बट सिन क्या है, पाप क्या है? जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाते हैं और उस स्वरूप में हम जो भी कर्म करेंगे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही हमें रिजल्ट दे रहा है, और वो ही आज हमारा रिजल्ट हो गया। इतनी टेंशन, इतनी वरी, इतनी एंग्जाइटी। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में किया गया कर्म नेगेटिव, या जिसको हम विकर्म कहते हैं।

0: दूसरा है न्यूट्रल एक्शन, अकर्म, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ऑर्डिनरी एक्शन, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे आज इनसे मिलना है. लेकिन ये ऑर्डिनरी एक्शन भी अगर हमने बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर किया, इट विल गेट अकाउंटेड इनटू नेगेटिव. सो टू बी वेरी केयरफुल. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अब हमें चांस मिला है करने का, पॉजिटिव एक्शन, या जिसको कहते हैं सुकर्म, अपने सही स्वरूप को पहचान लिया. आई एम ब्यूटिफुल एनर्जी लाइक दैट फ्लावर. वंस आई कम टू नो हु आई एम, आई एम जस्ट स्प्रेडिंग माई अवेयरनेस. आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी. माई फ्रेग्रेंस, माई ब्यूटी इज जस्ट फॉर एवरीथिंग आउटसाइड. मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो भय
1: नहीं रहे.
0: मृत्यु का भय खत्म हुआ, चीजें खोने का भय खत्म हुआ, अपनी पोजिशन, अपने स्टेटस खोने का भय खत्म हुआ, डिपेंडेंसी खत्म हुई. थॉट्स आर चेंजिंग, एक्शंस आर चेंजिंग, एक्शंस आर चेंजिंग, रिजल्ट इज चेंजिंग. जस्ट विद वन चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, जस्ट विद गेटिंग द ट्रूथ. एंड दैट्स व्हाई इतनी सदियों से हम सुनते आए कि हु एम आई. जिस दिन ये आंसर कर लोगे तो सारी प्रॉब्लम्स
1: सॉल्व हो जाएंगे,
0: बिकॉज दैट्स रियली द ट्रूथ. क्योंकि उस एक चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस से सारा हो जाएगा.
1: लेकिन अब सवाल ये आता था कि विकार जो हम करते आए हैं सुप्त अवस्था पे, सुषुप्त अवस्था की बात जो करते हैं, स्लीपिंग, वाइल स्लीपिंग वी कंटिन्यूड डूइंग थिंग्स
0: राइट,
1: जो विकर्म हो गए, इट मींस उनका भी हमें कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट सेटल करना होगा.
0: सारा बन गया ना, एक स्टैक जमा हो गया.
1: तो अब वो जो हम ये सुकर्म कर रहे हैं, क्या वो सेटल कर पाएगा
0: राइट,
1: या वो सेटल होंगे कैसे? ये तो अपने ही कर जो इसी जन्म में हमने किए हैं,
0: एब्सोल्युटली,
1: जिनको हमें अब तो रियलिटी ये है कि इतने सालों से हम वो करते आ रहे हैं
0: राइट,
1: जो कि विकर्म में ही शामिल हो रहा है, चाहे हमें अभी तक क्लियर हुआ नहीं था, लेकिन आज अगर हमें क्लियर होता है तो वो एक कार्मिक डेब्ट है जो हमें क्लियर करना है, अकाउंट को क्लियर करना होगा. अनदर इज जो हम पिछला लेकर आ रहे हैं,
0: वो सारा स्टैक कट्ठे ही है अभी यहाँ पे, यू नो. तो इसलिए जो कहते हैं कि जो कार्मिक अकाउंट है वो काफी
1: हैवी,
0: एंड उसका रिजल्ट हमें प्रत्यक्ष दुनिया में इस टाइम दिखाई दे रहा है. जो हम देख रहे हैं आजकल कि डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है, बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, लोग उदास रहने लगे हैं. दिस इज एन साइन ऑफ अ वेरी डीप कार्मिक डेप्ट. क्योंकि जिसके ऊपर डेप्ट बहुत ज्यादा होता है वो खुश नहीं रह सकता.
1: भार
0: उसके ऊपर बहुत भार है तो वो खुश नहीं रह सकता. तो उसका साइन चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है. बच्चों को देखो, बच्चे हैं. दिस इज द यू नो टाइम व्हेन दे शुड बी एंजॉयिंग. लेकिन व्हाई आर दे नॉट बीइंग एबल टू एंजॉय? क्योंकि आत्मा तो अभी आई है ना. वो बच्चा तो शरीर बच्चा है, आत्मा बच्चा नहीं है. इट्स जस्ट कैरी फॉरवर्ड अ वेरी डीप अकाउंट राइट नाउ. How will it be able to be happy here? Because it's so heavy already. और इसलिए बच्चों को भी स्ट्रेस. ये ज्यादा पहले नहीं था. जितना समय बीतता जा रहा है और हम उस अकाउंट को सेटल करने की बजाय
1: और उसमें घुसते जा रहे हैं,
0: तो जितना घुसते जा रहे हैं उतना ही कम एज से हम में वो हैवीनेस महसूस होने शुरू हो रही है. और मानसिक रीति से सबसे ज्यादा उदासी, परेशानी, चिंता, ये सबसे ज्यादा घेर लेती है. क्योंकि ये सबसे बड़ी भोगना होती है.
1: बिल्कुल. सोसाइटीज आज दुखी है, परेशान है,
0: भोगना है ना. क्योंकि हम पनिशमेंट जैसे कि भोग रहे हैं, तो ये जो भोगना है ये अभी हम भोग रहे हैं. और ये हम इसी तरह भोगते हैं, दुखी अशांत रह के भोगते हैं.
1: तो ये बात सामने आती है कि इसी जन्म में जो हम विकर्म करते आ रहे हैं, जो हम सोते हुए कर रहे थे, एक बात ये जानना चाहते हैं हम सिस्टर शिवानी की, बहुत से दर्शकों के दिमाग में भी ये बात है कि 84 लाख योनियां हैं. हम जो जो कर्म करते हैं उस हिसाब से ये तय किया जाता है कि हमारा अगला जन्म क्या होगा. कभी हम पशु बन जाएंगे, या हम पशु थे पिछले जन्म में, और आगे आने वाले जन्म में जो जो हम कर रहे हैं वही तय करेगा कि हमें कौन सी योनि मिलेगी, कहाँ क्या हम कर सकते हैं. सो ये भी एक बहुत बड़ा एक भार लेके हम चल रहे हैं,
0: ये डर में भी चलते हैं. आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर कि आज दिन तक हम ये सुनते आए थे कि बहुत सारी योनियों में क्रॉस करते हुए अपने सारे पाप को हम उस योनि में भोगते हुए फाइनली हमें
1: इंसान की योनि मिलती है.
0: तो फिर वो जो मनुष्य जीवन मिलेगा इतने योनि से गुजरते हुए, मतलब सारे पाप भोगते हुए, तो वो मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए?
1: सुंदर होना चाहिए.
0: बट दैट्स नॉट ट्रू. अगर आज जो हम इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, ये क्या वो सारे पाप भोगने के बाद जो पुण्य का जीवन मिला है वो ऐसा वाला जीवन है? अगर वो जीवन होता तो वो मनुष्य जीवन कितना वैल्यूबल होना चाहिए. आज मनुष्य तो अपने जीवन से इतना परेशान है कि वो अपना ही आपघात करने का सोचता है.
1: सुसाइड्स का इतनी ज्यादा, इनफैक्ट देखा जाए तो इतना ज्यादा, मनुष्य जीवन सबसे सस्ता जीवन माना जाने लगा.
0: एब्सोल्युटली. तो ये वो जीवन है जो इतनी योनियों में गुजरने के बाद आज ये मिला है. तो यही जो हमने कहा ना कहीं ज्ञान तो है लेकिन उसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन. तो शिव बाबा हमें बताते हैं कि मनुष्य आत्मा और पशु आत्मा वो भी आत्मा ही है, लेकिन आत्मा में वेरिएशन है, वो बीज अलग है, ये बीज अलग है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल? इंटेलेक्ट. वी आर अ हायर डेवलप्ड, और वी आर सपोज टू बी अ हायर डेवलप्ड इंटेलेक्ट. एंड एनिमल इंटेलेक्ट इज अ लोअर इंटेलेक्ट. अब अगर ट्रांसफर हो जाते हैं, पहली बात तो हो नहीं सकता क्योंकि बीज क्या करेगा. एक पौधा है, वो बीज निकाल कर कितनी बार भी आप बोएंगे, चीकू का बीज है वो वही वाला फल निकलेगा. हम कहें हम ये वाला बीज बो रहे हैं अब इसके अंदर से दूसरा फल निकलना चाहिए, नहीं, उसके अंदर जो नॉलेज है, उसके अंदर जो संस्कार है वो उसी के है. तो ये मनुष्य आत्मा है, बीज है, इसके अंदर वही मन बुद्धि संस्कार है. ये अगर दूसरा कॉस्ट्यूम ले ले किसी पशु का तो इंटेलेक्ट कैसे होगी? वो जाके चेंज तो नहीं हो सकती. या वो आत्मा अगर यहाँ आ जाए तो वो इंटेलेक्ट कैसे होगी? तो दोनों अलग अलग है बीज, इसमें इंटरचेंज नहीं हो सकता है. वो बीज अलग, वो हमेशा उसी योनि में जाएगी. और मनुष्य आत्मा ही, मतलब आत्मा वो है, उसको मनुष्य शरीर ही बार बार मिलेगा, लेकिन कर्मों अनुसार वो जीवन कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, वायुमंडल कैसा होगा. तो वो हम कह सकते हैं कि हम अलग अलग जीवन और अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशंस में जाएंगे, लेकिन योनि इंटरचेंज हो जाएगी वो नहीं होगा. आज मनुष्य योनि ही सबसे भोगना की योनि है. सबसे ज्यादा दुख शायद मनुष्य योनि को है. पशु योनि को इतने दुख नहीं है, ना इतनी फिजिकल बीमारियां हैं, ना इतनी मेंटल बीमारियां हैं, ना सुसाइड है. तो कहें कि सबसे ज्यादा जो भोगना की योनि है इस टाइम ये हमारी योनि है. तो इतने पाप करने के बाद, अगर हम कह रहे हैं इतने भोगने के बाद ये पुण्य का जीवन मिला, तो ये जीवन फिर कैसा होना
1: चाहिए? लेकिन एक बात और कही जाती है, आई जस्ट वॉन्ट दैट क्लैरिफिकेशन, कि अगर श्राप मिल जाए तो आप फिर पशु योनि में चले जाते हैं, ऐसा भी कुछ है? श्राप भी क्या है? क्या है श्राप और क्या?
0: श्राप और वरदान हम खुद ही तो अपने आप को देते हैं. अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये किसी ने आकर ऊपर से श्राप नहीं दिया. जैसे कहते हैं कि हिंसा अगर आप करते हैं किसी की तो आप हिंसक योनि में चले जाएंगे, ये श्राप मिलेगा. हिंसक योनि, लेट्स से अ टाइगर, आप हिंसक योनि में चले गए. अब अगर आप एक शेर बन जाते हैं तो उसको कोई भोगना नहीं होने वाली है कि मैं हिंसा. भोगना क्या है? हमने एक पाप किया, उसकी भोगना मतलब मुझे पश्चाताप होगा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है. उस पश्चाताप से मैं अपने आप को परिवर्तन करूंगा. लेकिन अगर मैं एक हिंसा की योनि में चले जाऊं, उसके लिए हिंसा करना तो नेचुरल है,
1: सहज है, वो तो उसका जीवन है.
0: इट्स नेचुरल संस्कार ऑफ अ टाइगर. वायलेंस इज अ नेचुरल संस्कार, उसको कोई भोगना नहीं होगी. तो भोगना अगर मुझे भोगनी है अपने ही पाप कर्म की, तो वो मुझे इसी मनुष्य तन में ही भोगना होता है,
1: क्योंकि मैं अपना जो नेचुरल मेरा जो संस्कार है उससे परे जा रहा हूँ.
0: उससे परे हम नहीं जा सकते. तो उसी मनुष्य तन में आकर, लेकिन परिस्थितियां बदल जाती हैं, शरीर बदल जाता है, मेरे साथ क्या क्या होता है, एनर्जी किस तरह की मिलती है, तो उसमें मेरा पाप और पुण्य का खाता सेटल होता है. तो जो मुझे भोगना है अच्छा या बुरा, वो मनुष्य योनि में ही आकर होता है.

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: सपोज एक स्टूडेंट है जिसका एक महीने के बाद एग्जाम्स हैं, वो आज बैठकर ना प्रिपरेशन करता है। ही इज प्लानिंग ऑल हिज लेसंस। जब प्लान करता है तो उसको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 10th चैप्टर इज वेरी वेरी टफ, तो कैसा प्रोग्रामिंग करेगा? हे भगवान, सारे के सारे क्वेश्चंस 9 चैप्टर में से आए, ओ गॉड लेट नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कम फ्रॉम द 10th चैप्टर, टक फर्स्ट प्रोग्रामिंग। और ये एक महीने तक ये स्टूडेंट क्या प्रोग्रामिंग देता है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल। एक महीने के बाद जैसे ये विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, as soon as he gets a question paper, he is least bit bothered. How many questions have come from 9 chapters? He is trying to look out whether there is a question from the 10th chapter or not. और बस उनके आंखों के सामने ये question from the 10th chapter दिखाई देता है। एक महीने से क्या programming कर रहा है? If there is any question from the 10th chapter, I'll be in trouble, I'll be in trouble, I'll be in trouble. Automatically he is in trouble. और इतना stressed up हो जाता है, सारा पसीने पसीने छूटने लगते हैं, आंखों के सामने ब्लैकआउट हो जाता है, और जो 9 चैप्टर में से पढ़ा वो धीरे धीरे इवैपोरेट होकर उड़ने लगता है। Why? Because it's the way we have programmed ourselves. Thoughts are the software. एक और उदाहरण देता हूं। जिस कॉलेज में पढ़ाता था तो वहां पे जो स्टूडेंट्स है, राइट फ्रॉम 8:30 to 3:30, यू नो, हम प्रोफेसर्स लेक्चरर्स बम्बार्ड आवर स्टूडेंट्स विद सो मच ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। 3:30 बजे तक बच्चे इतने थक जाते थे कि कुछ पूछो मत, दे सो डैम टायर्ड। किसी तरह वो अपना बैग बैगेज उठाता है, समहाउ ही कम्स आउट, और वो अपना घर देखता है 100 meters अवे। 100 meters सीम्स टू हिम एज 100 kilometers बिकॉज ही सो टायर्ड। और उस समय ये विद्यार्थी देखता है एक कुत्ता बहुत तेज से उसको काटने के लिए आ रहा है, क्या करेगा? नहीं, मैं तो बहुत थक गया हूं ना, कहेगा? नो, he will run at the fastest of fast speed, if not the 100 meters world record, lekin 100 meters indian record to usko todna hi tha. What I'm trying to communicate is, aisa nahi hai ki uske paas energy nahi tha, energy tha, but he kept on programming, I'm tired. Automatically the body manifested itself in the same way. Jaise usne us kutte ko dekha to kya kiya, ek switch off kiya, dusra switch on kiya, he had energy and he could run at the fastest of fast speed. जैसे ही घर में पहुंचा, द फर्स्ट थिंग दैट इट डज इट, स्विच ऑन द टेलीविजन। राइट देयर फ्रॉम 7 o'clock टू लेट 10 o'clock ही इज देयर इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। 10 बजे वो रियलाइज करता है, ओ माय गॉड, टुमारो मुझे इतने सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं। और 10 बजे वो लिखना आरंभ करता है, सोते सोते 12 बज जाते हैं। 6 बजे का अलार्म रखता है और उसका मन में यही विचार आता कि मैं कैसे उठ पाऊंगा। और जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता है, 10 मिनट सोता हूं। और 10 मिनट का कितना, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। एवरी डे ही इज देयर इन द कैंपस लेट एंड ही हैज टू हियर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द प्रोफेसर्स। एक महीने के बाद द क्रेजी प्रोफेसर, द सेम प्रोफेसर स्वामीनाथन, एंटर्स द क्लास एंड सेज टू द स्टूडेंट, हे स्टूडेंट्स, लिसन टू माई अनाउंसमेंट वेरी केयरफुली, टुमारो वी आर ऑल गोइंग टू अ ट्रिप टू खंडाला, प्लीज मेक इट श्योर दैट टुमारो यू आर रीचिंग द कैंपस शार्प 7 AM. As usual, television till 10 o'clock, he's there in front of television. Suddenly at 10 o'clock, he realizes, my God, tomorrow trip to Khandala. Mujhe bahut practice karni hogi, kya kya karna hoga. Aur 10 baje wo practice karna aaram karta hai. Har din wo 12 baje sota hai, lekin us din wo 1 baje so raha hai. He has to reach the campus 7 a.m. Every day he keeps the alarm at 6 o'clock. That day he keeps the alarm at 4 o'clock. Hardly 3 hours of sleep. Lekin 4 बजे का अलार्म रखता है, लेकिन 3 बजे भी उठेगा, 3:15 बजे भी उठेगा, 3:30 बजे भी उठेगा। एंड बिफोर द अलार्म कैन रिंग, दिस जेंटलमैन इज सो फ्रेश। इट्स अ वे वी प्रोग्राम आवरसेल्व्स। और सारा दिन ही इज देयर इन खंडाला एंजॉयिंग हिमसेल्फ, प्लेइंग इन द घाट्स, एंजॉयिंग विद हिज फ्रेंड्स। ही हैड हार्डली हैड 3 to 3.5 hours ऑफ स्लीप, बट नो फॉर्म ऑफ टायर्डनेस। इट इज द वे वी प्रोग्राम आवरसेल्व्स। और ऐसा नहीं है कि हम छोटे या स्टूडेंट्स ही प्रोग्राम करते हैं, हम बड़े भी बहुत अक्सर करके प्रोग्रामिंग कर देते हैं, सेल्फ प्रोग्रामिंग। इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोग्रामिंग दैट वी डू।
2: रेडियो मधुबन।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का दिन यादगार बनाते हैं। फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, 2 अक्टूबर विशेष दिन है जो अपने आप में एक इतिहास लेकर हमारे बीच में आता है। और 2 अक्टूबर को हम लोग उस महान हस्ती को याद करते हैं। और आज विशेष, जैसे कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जयंती के दिन को मनाया जाता है पूरे विश्व में। इसके साथ ही विश्व आवास दिवस भी आज है और वन्य जीव सप्ताह जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलता है। तो ये पूरा जो है एक फेस्टिवल का पूरा सप्ताह चलेगा जिसमें हम सभी लोग मिलकर पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस को समृद्ध कर सकते हैं या अहिंसा जो है वो इसको अपने संकल्पों में, अपने विचारों में लाकर हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन अपने लाइफ का दे सकते हैं। तो वही आज के दिन जैसे लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और बहुत सारे ऐसे महान लोगों का जन्मदिन है जिनके नाम सुनकर भी हमें बेहद खुशी होती है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज का दिन हम महात्मा गांधी के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड कुछ खूबसूरत गाने भी आपको सुनाएंगे। चलिए सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में बातें करते हैं। और ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है ने। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु अपने अहिंसक विरोध के सिद्धांतों के लिए मशहूर हुए। और मोहनदास करमचंद गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक विशेष राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता बने। साबरमती आश्रम से उनका अटूट रिश्ता था। इस आश्रम में महात्मा गांधी आजीवन जुड़े रहे और उन्हें साबरमती का संत भी कहा जाता है। तो आइए आज के इस खूबसूरत दिन को साबरमती के संत इसी गीत से शुरू करते हैं ताकि आपको भी सारी चीज़ें याद आ जाए। और जितना हम उन महापुरुषों को याद करेंगे उतना ही हमारा जीवन जो है बेहतर बेहतर बनता जाता है। तो साबरमती के संत ये गीत आपको सुनाते हैं और आप भी अगर कुछ महात्मा गांधी जी से सुनी हुई बातें या उनके जीवन से जुड़ी हुई बातें वो अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। और मैं चाहूँगा कि आप उनके जीवन से जुड़ी हुई खूबसूरत यादें हमारे साथ साझा कर सकते हैं 94 1415 1415 इस नंबर पर। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बड़ा ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, संत साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। तो आइए आगे बढ़ते हैं और महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा। आप भी 1415 1415 इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। माता पिता कट्टर हिंदू थे। उनके पिता का नाम करमचंद और मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था, जो करमचंद गांधी जी की चौथी पत्नी थी। मोहनदास अपने पिता की चौथी पत्नी की अंतिम संतान थे। उनके पिता करमचंद काबा गांधी पहले ब्रिटिश शासन के तहत पश्चिम भारत के गुजरात राज्य में एक छोटी सी रियासत की राजधानी पोरबंदर के दीवान थे और बाद में क्रमशः राजकोट, काठियावाड़ और वंकानेर में दीवान रहे। करमचंद गांधी ने बहुत अधिक औपचारिक शिक्षा तो प्राप्त नहीं की थी, लेकिन वह एक कुशल प्रशासक थे और उन्हें उनकी राजकुमारों और उनकी दुखी प्रजा तथा सत्तासीन कट्टर ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारियों के बीच अपना रास्ता निकालना आता था। पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी थे। इस पुस्तक को सत्य के प्रयोग के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से अपनी मातृभाषा गुजराती में लिखी और ये गांधी जी की आत्मकथा के रूप में प्रसिद्ध है। इस पुस्तक का अनुवाद महादेव देसाई ने अंग्रेजी में किया था। गांधी जी ने इस किताब में अपने जन्म से लेकर 1921 तक की घटनाओं का जिक्र किया। बाद में इन सारी घटनाओं को गांधी जी के अखबार नवजीवन में 1925 से 29 तक के बीच प्रकाशित भी किया गया। तो 1887 में मोहनदास ने जैसे तैसे मुंबई यूनिवर्सिटी की मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और भावनगर स्थित रामदास कॉलेज में दाखिला ले लिया। अचानक गुजराती से अंग्रेजी भाषा में जाने से उन्हें व्याख्यानों को समझने में कुछ दिक्कतें होने लगी। इस बीच उनके परिवार में उनके भविष्य को लेकर चर्चा चल रही थी। अगर निर्णय उन पर छोड़ जाता तो वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वैष्णव परिवार में चीरफाड़ के खिलाफ पूर्वग्रह के अलावा ये भी स्पष्ट था कि यदि उन्हें गुजरात के किसी राजघराने में उच्च पद प्राप्त करने की पारिवारिक परंपरा निभानी है तो उन्हें बैरिस्टर बनना पड़ेगा। इसका सीधा अर्थ था इंग्लैंड यात्रा और गांधी जी ने, जिनका रामदास कॉलेज में खास मन नहीं लगा रहा, और मन नहीं लगने का कारण वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनके युवा मन में इंग्लैंड की छवि, दार्शनिकों और कवियों की भूमि, संपूर्ण सभ्यता का केंद्र के रूप में थी। और सितंबर 1888 में वो पत्नी के जहाज पर सवार हुए, पानी के जहाज पर, और वहाँ पर उन्होंने अपनी पानी के जहाज से निकल पहुँचे और पहुँचने के 10 दिन बाद वो लंदन के 4 कानून महाविद्यालय से एक इनर टेंपल में दाखिल हो गए। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और सुंदर गीत आपको सुनाते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और पति थे पावन सीताराम, इस गीत को आप सुन रहे थे जो गांधी जी का अति प्रिय भजन में से एक था। तो चलिए, बात कर रहे थे हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में, और फिर बैरिस्टर बनने के लिए वो लंदन पहुंच गए, और फिर वहाँ पर उनकी पढ़ाई पूरी हो गई कानून की, और फिर इस तरह से इनर टेम्पल में दाखिला होकर वो पढ़ाई करने लगे। और बाद के समय में अफ्रीका में गांधी जी का जो है कैसे संबंध रहे, डरबन न्यायालय में यूरोपीय मैजिस्ट्रेट ने उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा था, उन्होंने इनकार कर दिया और न्यायालय से बाहर चले गए। कुछ दिनों के बाद प्रिटोरिया जाते समय उन्हें रेलवे के प्रथम श्रेणी के डब्बे से बाहर फेंक दिया गया। उन्होंने स्टेशन पर ठिठुरते हुए रात बिताई। यात्रा के अगले चरण में उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी के चालक से पिटना पड़ा, क्योंकि यूरोपीय यात्री को जगह देकर पायदान पर यात्रा करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। और अंततः सिर्फ यूरोपीय लोगों के लिए सुरक्षित होटलों में उनके जाने पर रोक लगा दी गई। नाटल में भारतीय व्यापारियों और श्रमिकों के लिए ये अपना अपमान दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया। जो नया था वो गांधी का अनुभव न होकर उनकी प्रतिक्रिया थी। अब तक वह हट धार्मिकता और उग्रता के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब उन्हें अनपेक्षित अपमानों से गुजरना पड़ा तो उनमें कुछ बदलाव आया। और फिर इस तरह से सत्याग्रह और इन सभी चीज़ों का उनके जीवन में प्रवेश होना शुरू हुआ। 1900 में ट्रांसवाल सरकार ने दक्षिण अफ्रीका की भारतीय जनता के पंजीकरण के लिए विशेष रूप से अपमानजनक अध्यादेश जारी किया। भारतीयों ने सितंबर 1906 में रोसनबर्ग में गांधी जी के नेतृत्व में एक विरोध जनसभा का आयोजन किया, और इस आदेश अध्यादेश के उल्लंघन तथा इसके परिणाम स्वरूप दंड भुगतने की शपथ ली। इस प्रकार सत्याग्रह का जन्म हुआ, जो वेदना पहुंचाने के बजाय उन्हें झेलने, विषेदहीन प्रतिरोध करने और बिना हिंसा के उससे लड़ने की नई तकनीक बन गई। और इस तरह से सत्याग्रह का शुरुआत हुआ, और धार्मिक खोज भी महात्मा गांधी के जीवन में कैसे आया उसके बारे में आगे बढ़ते हैं, आगे सुनेंगे। लेकिन अभी आपको ले चलता हूं मैं एक और सुंदर गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर नई किरण। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, 8:39 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ और बातें हो रही महात्मा गांधी जी की जीवन से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। अब जैसे कि सत्याग्रह का जो है उनके जीवन में एक बहुत बड़ा आंदोलन करना या फिर किसी भी चीज़ के विरोध में अहिंसक स्वरूप में प्रदर्शन चलाना, ये उनका जीवन का एक अंग अभी बन गया। और इसी के साथ अगर मैं कहूँ तो धार्मिक जीवन की भी उनकी जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ें उनके जीवन में रही है। गांधी जी की धार्मिक खोज भी उनकी माता से शुरू हो गई। जब वो पोरबंदर तथा राजकोट स्थित घर के प्रभाव से बचपन से ही शुरू कुछ चीज़ें उनके सामने आई थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर इसका काफ़ी प्रभाव उनके जीवन में दिखाई देने लगा। वो ईसाई धर्म पर टॉलस्टॉय के लिखे कुछ चीज़ों को देखकर सुनकर अच्छा लगा उन्हें। उन्होंने फिर कुरान के अनुवाद का अध्ययन भी किया और हिंदू अभिलेखों तथा दर्शनों में डुबकियाँ लगाई और सापेक्षिक कर्म के अध्ययन, विद्वानों के साथ बातचीत और धर्मशास्त्री कृतियों के निजी अध्ययन से वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी धर्म सत्य हैं और फिर भी हर एक धर्म अपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी उनकी व्याख्या स्तरहीन बुद्धि संकीर्ण हृदय से की गई है और अक्सर जो है उससे कहीं ना कहीं दुख ही उपजा है। भागवत गीता, जिसका गांधी जी ने पहली बार इंग्लैंड में अध्ययन किया था, उनका आध्यात्मिक शब्दकोश बन गया और संभव था उनके जीवन पर इसी का सबसे ज़्यादा प्रभाव बना। गीता में उल्लेखित संस्कृत के दो शब्द ने उन्हें सबसे ज़्यादा आकर्षित किया तथा एक था वो अपरिग्रह त्याग, जिसका अर्थ होता है, और भगवान को अपने आध्यात्मिक जीवन को बाधित करने वाली भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए और उसे धन संपत्ति के बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। दूसरा शब्द है समभाव, समान भाव, जिसने उन्हें दुख या सुख, जीत या हार सब में अडिग रहना तथा सफलता की आशा या असफलता के भाग भय के बिना काम करना सिखाया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है। मूल रचना 1909 में गुजराती में थी। लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसे गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में लिखा था। ये इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, जिसे भारत में अंग्रेजों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया था कि इससे राजद्रोह घोषित सामग्री है। इस पर गांधी जी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी लिखकर बताया जा सके कि इसकी सामग्री राजद्रोहात्मक नहीं है। इसीलिए 21 सितंबर 1938 को इससे प्रतिबंध हटा लिया गया। हिंद स्वराज का हिंदी और संस्कृत साहित्य कई भाषाओं में फिर बाद में उपलब्ध भी हो गए। तो ये थी कुछ खास बातें महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई जो खास थी, मैंने आपसे शेयर किया। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और गीत मैं आपको सुनाता हूँ और आशा करूँगा कि आपको ये सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं अपनी आत्मचेतना की तरफ आपका मन झुका होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी भावनाएं, विचार हमारे साथ शेयर करें और अपनी बातें रखें। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे होंगे और वेल्दी होंगे। आइए आज के दिन को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर। और 2 अक्टूबर अपने आप में एक अनूठा इतिहास लेकर हमारे बीच में आता ही है और हम महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें, आध्यात्मिक, धार्मिक और आंदोलन, सत्याग्रही और अपने करियर के बारे में हमने आपसे शेयर किया। तो अब आइए आगे बढ़ते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बातें करते हैं। इनका भी जन्म आज ही के दिन 1904 को हुआ। एक बहुत ही पॉपुलर भारतीय राजनेता, महान स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। वे एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को न सिर्फ सैन्य गौरव का तोहफा दिया बल्कि हरित क्रांति और औद्योगिकरण की राह भी दिखाई। शास्त्री जी किसानों को जहां देश का अन्नदाता मानते थे, वही देश की सीमा प्रहरियों के प्रति भी उनके मन में बहुत ज़्यादा अगाध प्रेम था, जिसके चलते उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो अगर बात करें आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर जी का जन्म, मुगल सराय उत्तर प्रदेश में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ। इनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे और अंततः सब उन्हें मुंशी जी कहा करते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक यानी क्लर्क की नौकरी कर ली। लाल बहादुर की माँ का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण लाल बहादुर को परिवार वाले बड़े प्यार से नन्हे कहकर बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने का हुआ तब दुर्भाग्य से पिता का निधन हो गया। उसकी मां राम दुलारी अपने पिता हजारीलाल के घर मिर्जापुर चली गई और वहां कुछ कुछ समय बिताना, उनके साथ नाना भी नहीं रहे। कुछ समय के बाद बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उसकी मां का बहुत सहयोग किया। नैनिहाल में रहते हुए उसने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विश्वविद्यालय से परीक्षाएं पास की। काशी विश्वविद्यालय से शास्त्री जी जो है शास्त्री की उपाधि ले ली। उसके बाद प्रबुद्ध बालक के जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा लिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्यायवाची ही बन गया और यहाँ से शुरू हुई भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन के एक कार्यकर्ता लाल बहादुर थोड़े समय 1921 के लिए जेल भी गए। रिहा होने पर उन्होंने एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ, जो महात्मा गांधी काशी विद्यालय में अध्ययन किया और शास्त्री की उपाधि पाई। डिग्री पाने के बाद वह गांधी जी के अनुयायी के रूप में फिर राजनीति में लौटे। कई बार जेल गए और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त प्रांत जो अब उत्तर प्रदेश है, कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली पद ग्रहण किए और 1937 से लेकर 46 तक वो इस प्रांत की विधायक के रूप में निर्वाचित भी हुए और 1928 में उनका विवाह को गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुई। ललिता जी से उनके 6 संतानें हुई, 4 पुत्र हरि, कृष्ण, अनिल, सुनील और अशोक, 2 पुत्रियां कुसुम व सुमन। उनके 4 पुत्रों में से 2 अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री अभी भी है, शेष 2 दिवंगत हो चुके हैं। नेहरू जी से उनकी मुलाकात 1929 में इलाहाबाद आने के बाद श्री टंडन जी के साथ भारत सेवक संघ के इलाहाबाद इकाई सचिव के रूप में काम किया। यही उनकी नज़दीकियाँ नेहरू जी से बढ़ गई। इसके बाद वे उनका कद निरंतर बढ़ता गया और इसके परिणाम स्वरूप मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के तौर पर उनका शामिल होना था। इस पद पर 1951 तक वो बने रहे। उनका नारा था मारो नहीं मारो, मरो नहीं मारो। ये एक ऐसा नारा था उस समय, मरो नहीं मारो का नारा करो या मरो का ही एक अलग रूप था। गांधीवादी सोच के चलते महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। ये नारा उसी रात दिया गया था जिस रात भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ। और यही ना इसी नारे का असर था कि संपूर्ण देश में क्रांति की प्रचंड लहर फैल गई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ इसे अगर एक हिंसक नारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 1942 में दिशा दे दिया गया था, जो कि बहुत ही चतुराईपूर्ण रूप से करो या मरो का ही एक अन्य रूप था तथा समझने में अत्यधिक सरल था। सैकड़ों वर्षों में दिल में रोष दबाए हुई बैठी जनता में ये नारा आग की तरह फैल गया था। एक तरफ गांधीवादी विचारधारा अहिंसा के रास्ते पर चलकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन से ब्रिटिश सरकार से आज़ादी के लिए गुहार कर रही थी, परंतु अंग्रेजों ने शायद इस अवम का डर समझ लिया था और इसी कारण साफ अर्थों में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियाँ हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना आवश्यक था। पश्चात स्थिति को भांपते हुए शास्त्री जी ने चतुराई पूर्वक मरो नहीं मारो का नारा दिया, जो एक क्रांति जैसा साबित हुआ और धीरे धीरे एक आक्रोश भी बना और अंग्रेजों का जो शासन है वो ढूलने भी लगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बातें हो रही थी। 1961 में गृह मंत्री के प्रभावशाली पद पर नियुक्त होने के बाद एक कुशल मध्यस्थ के रूप में इनको प्रतिष्ठा मिली और धीरे धीरे 3 साल बाद जब नेहरू जी बीमार पड़ने लगे तो विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया और फिर नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत की आर्थिक समस्याओं से प्रभावशाली ढंग से ना निपटा पाने का कारण शास्त्री जी की आलोचना हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के विवाद प्रांत पर पड़ोसी पाकिस्तान के साथ वैमानस भड़कने पर 1965 में उनके द्वारा दिखाई गई दृढ़ता के लिए उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली और फिर ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति याकूब खान के साथ युद्ध करने की ताशकंद घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद

0: समस्या को बेहद सरल तरीके से हल करने का और किसानों को अन्नदाता मानने वाले, देश की सीमा परियों के प्रति उनका अपार प्रेम इस समस्या का हल निकाल दिया। जय जवान जय किसान के उद्घोष के साथ देश को आगे बढ़ाया, तो इस तरह से ये उन्होंने काम किया। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में आगे बढ़ते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ समाचारों की तरफ, उसके बाद फिर बातें करेंगे और आज वृद्ध अवस्था से वृद्धाश्रम तक का एक सुंदर कार्यक्रम आपके लिए पेश करेंगे। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अबीब जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार हैं। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजय घाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके उपरांत श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
2: मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। देश भर की 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इन ग्राम सभाओं में आम नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ बैठकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अपने गांवों के विकास की प्राथमिकताओं को तय करेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: गुजरात में इस अवसर पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने खादी और पॉली वस्त्र के उत्पादन पर 30% विशेष बाजार प्रोत्साहन की घोषणा की है।
3: यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के संकल्प को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रोत्साहन सहायता का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को अधिकृत खादी बिक्री केंद्रों पर छूट के रूप में मिलेगा। आगामी त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में विशेष खादी प्रदर्शनी सह बिक्री मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाएं आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन

0: सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। मंत्रालय ने बताया कि ब्यूरो ने सुरक्षा मंजूरी के तरीके को आसान बना दिया है। अब सुरक्षा मंजूरी किसी विशिष्ट वर्ग या प्रक्रिया पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि विमानन संस्थाओं की 9 पहचानी की श्रेणियों पर लागू होगी। मंत्रालय ने बताया कि ये सुधार इसलिए भी आवश्यक हैं क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट को कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मित मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIR News हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और सेवा के निरंतर संकल्प से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है ऐसा ही एक उदाहरण, जिसमें इस सोच को पंबन पुल के जरिए धरातल पर उतारा गया।
2: रामेश्वरम में नया बना पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसका उद्घाटन पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
3: द न्यू पंबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड इज बीइंग कनेक्टेड बाय अ 21st century engineering wonder. For many decades, there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel.
2: पुराना ऐतिहासिक पंबन पुल श्रीलंका के साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए बनाया गया था। 1870 के दशक में शुरू हुए इस पुल का निर्माण लगभग 2 किलोमीटर तक फैला था, जिसमें 143 पिलर थे और इसे 1914 में चालू किया गया था। नए पुल के वर्टिकल लिफ्ट में 72.5 मीटर का सेंट्रल स्पैन है, जो समुद्र में जहाजों के गुजरने के लिए 17 से 22 मीटर ऊपर उठ सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में मदुरे डिवीजन के रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पुल के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए 3000 टन से ज्यादा लोहे का इस्तेमाल किया गया था। IIT मद्रास और बॉम्बे के विशेषज्ञों ने नवंबर 2024 में इसके डिजाइन की जांच की थी। इस पुल से अरब सागर का शानदार नजारा भी दिखता है। खाड़ी के ऊपर बना यह सबसे लंबा पुल 1988 तक रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग था। पुराना पंबन पुल उन बड़े चक्रवातों से भी बच गया था जिन्होंने धनुषकोडी को नष्ट कर दिया था। चेन्नई से जॉय रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री चौहान पोंडा में एक कार्यक्रम में किसानों और आम नागरिकों से संवाद करेंगे।
4: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा में गोवा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत करेंगे। इस पहल के तहत गोवा में उत्पादित कृषि उपज की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने गोवा के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से गोवा फ्रेश ब्रांड विकसित किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य भर के किसानों और महिलाओं को केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, किसानों के कल्याण, ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और वहां समीक्षा बैठक करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास से पूरा किया जाना चाहिए। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही।
5: सरकार ने योजना ऐसी बनाई है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक नया इकोसिस्टम बना जिसके द्वारा जो सीबीजी प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सहायता मिलेगी 2 करोड़ की। क्रेडिट गारंटी भी है एमएसएमई के लिए और अगर आप महिला एंटरप्राइज है आपका तो उसकी 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ की गारंटी होगी।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से युद्ध समाप्त करने का मुद्दा उठाते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि भले ही भारत का रुख इस मामले में तटस्थ है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के जरिए शीघ्र शांति स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोत की भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। इस पदक के साथ ही भारत अब तक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 14 टीमों के कुल 57 मैच खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
6: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई के विमान में भारतीय पायलट स्मित मच्छार के अदम्य साहस की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने शौर्य गाथा शीर्षक से दिया है कॉकपिट में जानलेवा हमले के बावजूद नहीं टूटा हौसला, भारतीय पायलट स्मित मच्छार की सर्वत्र सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 9/11 जैसी साजिश नाकाम की। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है भारतीय पायलट स्मित को पूरी दुनिया ने किया सलाम, जनसत्ता के अनुसार फ्लाई दुबई विमान गिराने के प्रयास की जांच शुरू। दैनिक जागरण का शीर्षक है परीक्षा तंत्र में बदलाव जरूरी, यूपीएससी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, सुभाष चंद्र बोस ने संस्कृत में दी थी सिविल सेवा परीक्षा। अमर उजाला के अनुसार मोदी ने कहा अब सरकार माई बाप नहीं, नागरिक देवो भव। पंजाब केसरी ने वित्त मंत्रालय का बयान दिया है वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बनी भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरी तिमाही में 7.3% वृद्धि का अनुमान, जीएसटी संग्रह 2,03,000 करोड़ रुपए के पार, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 7 माह के उच्च स्तर पर। लोकसत्ता की सुर्खी है महानदी विवाद पर दिल्ली में बड़ा मंथन, समाधान की राह में बनी सहमति, गृह मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक। राजस्थान पत्रिका ने तरंग शक्ति 2026 शीर्षक दे दिया है तेजस संग उड़ान, फ्रांसीसी मेजर जनरल बोले याद आया मिराज 2000। जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस के एयरक्रू ने साझा किए ऑपरेशनल अनुभव, रफाल की हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया भी देखी। एशियाई खेलों पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है ग्रीको रोमन कुश्ती में 64 साल बाद रजत पदक, कभी दूध बेचते थे पानीपत के सिवाच, आज चांदी से चमके। सेलिंग में प्रिंस और मनु ने जीता रजत, बाढ़ में पिता को खोया, अब पानी पर ही रचा इतिहास। पत्र के अनुसार हॉकी में पाकिस्तान को हराकर भारत की नजरें गोल्ड पर, क्रिकेट में पाक से होगा फाइनल मुकाबला।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मित के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बड़े बुजुर्ग की उंगलियों में कोई ताकत तो न थी, मगर जब मेरा सर झुका तो सर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। तो दोस्तों, ये अदृश्य दौलत जो दुआओं की होती है और वो हमारे साथ साथ पूरी जिंदगी चलती है, हमारा कवच बनकर। तो साथियों, आज यहाँ हम बात कर रहे हैं अपने घर के बड़े सदस्यों की, यानी कि बड़े बुजुर्गों को लेकर। तो जहाँ घरों में बुजुर्गों को अपनी छत्र छाया के रूप में माना जाता था, वहीं आज उनको बोझ समझा जाता है तथा साथ ही साथ वे दुर्व्यवहार के शिकार अपनों के द्वारा ही हो रही हैं।

जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने बुजुर्गों के बारे में जो बातें सुनी तो उसमें आप भी अपने घरों में देखते हैं, और अगर घर में नहीं देखते हैं तो बहुत सारी घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, और आप शायद टीवी पर भी जरूर देखते होंगे। तो यहाँ आपको एक और मैं बात बताती चलूँ, जैसे अभी रमेश जी ने बताया कि बुजुर्गों को घर की फाउंडेशन, परिवार की फाउंडेशन माना जाता है, लेकिन आजकल उनके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वो आजकल की आपाधापी वाले समय में जिस तरीके से बुजुर्गों का घर में तिरस्कार हो रहा है तो वास्तव में एक चिंतनीय विषय है। इसी बात पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, मत करना नजरअंदाज माँ बाप की तकलीफों को ए मेरे प्यारे, मत करना नजरअंदाज माँ बाप की तकलीफों को ए मेरे प्यारे, जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। तो दोस्तों, आजकल एक तो छोटे छोटे घरों की समस्या है, साथ ही साथ हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही जॉब पर जाना, तो ऐसे में बुजुर्ग बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। रमेश जी, आप बताइए इसके बारे में क्या कहेंगे।

जी हाँ, लेकिन एक बात मैं यहाँ और कहूंगी कि जैसे मान लीजिए कोई हस्बैंड जॉब करता है लेकिन वाइफ उसकी घर पर रहती है, ऐसा ही नहीं होता कि सारी वाइफ जॉब ही करती हैं। तो जब हाँ, तो वो अपने सास ससुर को साथ रखना कोई बोझ नहीं है, क्योंकि यह आपकी एक जिम्मेवारी होती है और आप उनकी पुत्रवधू होती हैं। और साथ ही साथ ये सोचें कि आपके पति को इनके माँ बाप ने तो इस लाइक बनाया है ना, और अपना पता नहीं कितना सुख चैन खोकर, तो ऐसे में जो हमारा फर्ज बनता है कि अपने रिश्तों की गरिमाओं को बनाए रखें और उनको सम्मान और आदर दें।

जी हाँ, तो चलिए जैसे आपने अभी ये रमेश जी ने बताया तो आपको सुनवाते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

जी बंटवारा करते हैं माँ बाप का।

नहीं, लेकिन रमेश जी कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि रख सकते हैं साथ में, लेकिन इसके बाद भी वो रखना नहीं चाहते। आप बुजुर्ग ऐसे होते हैं, वो इस कंडीशन में नहीं होते, तो उनको एक्सेप्टेंस के सिवा ना कुछ और उनके सामने रास्ता नहीं होता है। तो जो आप हमें सुन रहे हैं, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप में से कोई इस तरीके के अपने पेरेंट्स को रखते हैं तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि इस उम्र में उनको अलग रखना बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि उनके साथ रहें, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। साथ ही साथ अभी आपने ये भी देखा होगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जैसे होता है, तो क्या होता है कि वहाँ लोगों की ज़िंदगी ना बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि टाइमिंग्स बहुत फ़र्क होते हैं और सभी लोग जॉब करते होते हैं, बच्चे भी स्कूल से बाहर चले जाते, स्कूल के लिए बाहर जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि रमेश जी, जैसे मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, तो मैंने बहुत सारी उसमें ऐसा देखा है, केयर कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते। अपने बच्चे के लिए नौकर रख लेंगे लेकिन पेरेंट्स को वो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस पेरेंट्स के साथ करते जरूर हैं, तो उनकी दुआओं से तो वंचित रहता ही है ऐसे लोग। और साथ ही साथ क्या होता है कि बुजुर्गों का जैसे ना फैशन चल पड़ा है, हालांकि वहाँ कोई सस्ता नहीं होता है, मतलब मिनिमम जो मैंने सुना है और देखा है 20,000 से स्टार्टिंग होती है। आप ये समझिए, अपने एक पेरेंट के लिए आप 20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो अगर आप यही पैसे बचाकर उनको अपने साथ रखें तो फैमिली कितनी खुशगवार होगी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी ऑफ कोर्स जी जी अपनी

वो बात तो देखिए हमेशा से होती है, क्योंकि जैसे हम जो हमारे पेरेंट्स थे वो हमसे डिफरेंट थे, हम उनसे डिफरेंट थे, और हम आज डिफरेंट तो हमारे बच्चे हमसे डिफरेंट थे, तो ये डिफरेंस तो हमेशा से ही रहा ही है। पीढ़ियों के बीच का जो अंतर जैसे हम कहते हैं उसको तो वो एक सा तो कभी रहा ही नहीं है। तो लेकिन इसके बाद भी ये देखा है कि जैसे बुजुर्ग होते हैं तो मतलब बच्चे जो होती हैं उनको शाम को नाइट आउट्स के लिए भी जाना होता है, होटल्स में जाना होता है, सब कुछ करना होता है। तो ऐसे मैंने देखा है, जैसे मैं ये गवर्नमेंट कॉलोनी में रहा करती थी तो जो क्या बोलते हैं सर्वेंट से खाना बनवा दिया कि आप इनके लिए हम बना कर जा रहे हैं, और तब तक वो लोग बाहर जाते हैं, घर में बुजुर्गों को इस तरीके से रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी जैसे उनसे बात होती थी तो मन तो उनका भी होता है ना जाने के लिए, लेकिन वो उनके साथ एक्चुअली फिट नहीं हो पाते हैं, और वो ऐसे में होता क्या है रिजेक्टेड पर्सन फैमिली से फील करते हैं, और ये बच्चे ही खुद ऐसे देखेंगे कि नहीं हमें तो उनको लेकर ही नहीं आना है, तो ऑड वन आउट जिसे हम कहते हैं। तो कम से कम पेरेंट्स का तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना जो हमने देखा है। तो जो हमें सुन रहे हैं अगर इस बात को अप्लाई करेंगे तो मैं समझती हूँ वृद्धाश्रम में जाने वाले लोगों की कुछ संख्या में तो कमी

0: सोच पर आई के बाद जी आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जॉब नहीं हो रहा। तो
1: जी जी

history. Of course. जी हाँ साथी, एक बात और बताते चलें कि ये तो प्रकृति का सिद्धांत है कि हमारा शरीर हमेशा जवान नहीं रहेगा, इसको वृद्धावस्था में तो आना ही होता है और इसके साथ साथ बीमारी भी आती है, तो अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। वे हमारे माँ बाप होते हैं, मगर आजकल जिस प्रकार अपने माँ बाप को बच्चे घरों से निकाल कर वृद्धाश्रम में भेज देते हैं वो तो बहुत शर्मनाक बात है। क्या आजकल स्वार्थ इतना हावी हो गया है कि हम अपने माँ बाप को पैसे देकर दूसरों के हवाले कर देते हैं। और रमेश जी, मैं आपको यहाँ एक और बात बताती चलूँ जो मैंने काफ़ी समय से देखा है कि एक धर्म विशेष वालों में, मैं नाम तो नहीं लूँगी, मगर उनके बुजुर्ग कभी वृद्धाश्रम में जाते ही नहीं है, वृद्धाश्रम है ही नहीं वहाँ बिल्कुल भी। हाँ, साथ में ही रखते हैं वो लोग, चाहे जगह कितनी छोटी है। और देखा है मैंने कि घरों में पर्सनली जाकर देखा है, जैसे एक चारपाई है, नीचे बिछा के सो जाएंगे, साइड में सो जाएंगे, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों को कभी बाहर नहीं भेजते हैं। मतलब वृद्धाश्रम तो है ही नहीं उनके कल्चर में। और राजस्थान में एक जगह गई थी मैं, तो मैंने वहाँ देखा कि काफ़ी सारा मैंने घूमा वहाँ, घरों में जाकर देखा बुजुर्ग अपने घरों में अपने परिवार के साथ बहुत ही सम्मान से बहुत खुश रहते हैं, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुस्कुराते रहो।

0: करें, किसी भी तरह स्थिति में वृद्धाश्रम मत देखिएगा। तो आइए शांति और हस जो खुशी है वो
1: जी। एक बात मैं आपको और सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, इसलिए कि एक कहीं ना कहीं इसमें एक लड़की का रोल जरूर होता है। वो इसलिए कि जैसे मैंने भी देखा सुना है और शायद आपने भी बात देखी हो सुनी होगी कि जो लड़की अपने सास ससुर को तो एक बार को एडजस्ट नहीं करेगी, लेकिन अपनी भाभी से वही चाहेगी कि उसके पेरेंट्स बहुत खुशी में रहें। तो कहीं ना कहीं जो स्वार्थ की भावना होती है ना, तो वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है अच्छी नहीं होती। जैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए सोचती हैं, तो जो आपके जो पति के माँ बाप हैं उनके लिए भी तो आप वही भावना फील करें ना। तो आप एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं। आप बताइए इस बात से कहाँ तक एग्री करते हैं? जी अच्छा, एक बात और कि क्या उनकी संतानों ने कभी सोचा है कि जिस माँ बाप को हमने वृद्ध आश्रम भेजा है वो हमें कितना याद करते हैं? वो कभी वो सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इतनी बिजी रहते हैं वो लोग, तो उन्होंने बस पैसा देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे ऐसा करते हैं, सभी ऐसे नहीं होते हैं। और ये काम तो उनके पोती पोते भी करते हैं। जैसे हम आपने देखा होगा, जैसे मैं दिल्ली के पार्कों में देखती हूँ या उसमें शाम के समय में, मतलब हाँ, बल्कि जो दादा दादी छोटे बच्चों को घुमाने लाते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात हो जाती है ये, मतलब जी पता, जब छोटे होते हैं तो उनके दादा दादी उनको घुमाने के लिए लाते हैं, और जब दादा दादी बूढ़े हो जाते हैं तो आपने देखा होगा पार्क में बच्चे उनको घुमाने के लिए लेकर आते हैं। तो ये देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उंगली पकड़ी होती है ना, वो रिश्ते को थामने वाली बात होती है। बिल्कुल

दूर हो जाती है। बिल्कुल जैसे रमेश जी, अभी आपने देखा होगा मेरी फ्रेंड आई थी अभी स्टूडियो में रिसेंटली, वो आई थी, दोनों पोतियां, वो उसी के साथ रहती हैं, उसी के साथ सोती हैं, है ना, और बड़ा खुश रहती हैं कि उसको छोड़ती नहीं है कभी भी वो। तो एक प्यार और एक सम्मान की भावना जो होती है ना वो, तो ये सारी बातें हैं। साथ ही एक बात और ये है कि कुछ बुजुर्गों के लिए वरदान की तरह होते हैं वृद्धाश्रम, क्योंकि कहीं ना कहीं घर का खराब वातावरण उनको तोड़ देता है और वह वहाँ से दूर जो अपने फ्रेंड्स होते हैं यानी वृद्धाश्रम में उनके साथ रहते हैं। मेरे घर के सामने ही एक वृद्धाश्रम है, एक बार मैंने वहाँ विजिट किया तो आपको देखकर लगता नहीं था कि अपने घर में मतलब नहीं है, इतने स्मार्ट वहाँ के बुजुर्ग और हंसते खेलते और खाने में भी हाथ बटा रहे हैं और गेम्स वगैरह ही वो लोग खेलते हैं। तो वहाँ देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनके ऊपर कोई बोझ है, बड़े खुश थे वहाँ। तो वृद्धाश्रम में ऐसा नहीं है कि हर कोई जना बहुत परेशान ही रहता है। आप इस बारे में क्या बात करते हैं?

क्योंकि रमेश जी मैंने अपने घर में भी देखा है, मैंने इस चीज को तो जिया है अपने पापा के, जब मैं घर में थी तो मतलब बहुत अच्छा लगता है एक आपको कहीं कहीं जब हम संयुक्त परिवार में रहते तो बहुत खुशी से मिलते हैं। हाँ जी बहुत खुशी होती है और संयुक्त परिवार में रहने की तो बात ही कुछ अलग होती है, बहुत मजा आता है क्योंकि मैं तो रही हूँ और यहाँ भी और अपने ससुराल में भी मैं संयुक्त परिवार में रही हूँ तो बहुत खुशी मिलती है। बल्कि अकेला रहना नहीं, अब एक मजबूरी है, चलो घर से बाहर निकल आते हैं, जॉब है, वो एक मजबूरी वाली बात हो जाती है, लेकिन आज भी मुझे सबके साथ ही रहना बहुत पसंद है। ये बात ठीक है, एडजस्टमेंट तो होते हैं आपको, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तब भी एडजस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं, लेकिन यही एडजस्टमेंट जब हम अपने परिवार वालों के साथ करते हैं तो परिवार की नींव मजबूत होती है और हम रिश्तों को बहुत मजबूत करते हैं।

आज का दिन दो महान विभूतियों की याद दिलाता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, और लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने सादगी, ईमानदारी और देश सेवा को अपने जीवन का आधार बनाया। तो आइए आज के इस खास दिन पर उनके आदर्शों को याद करते हुए अपने आशियाना की खूबसूरत शुरुआत करते हैं। सत्य की राह पर चले, अहिंसा को अपनाए, शास्त्री जी की सादगी से जीवन को सजाए, दो महान आत्माओं को दिल से करे नमन, दो महान आत्माओं को दिल से करे नमन, देश प्रेम और अच्छे कर्मों से रोशन हो हर मन, देश प्रेम और अच्छे कर्मों से रोशन हो हर मन। तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। शास्त्री जी के पास देश की सबसे बड़ी शक्ति और संसाधन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कभी भी देश के पैसे या सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए नहीं होने दिया। कैसे, जरा विचार करेंगे? और जी हाँ, बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय भी देने वाली हूँ। किस पर, वो आप आशियाना सुनेंगे तब जानेंगे, क्योंकि सस्पेंस रहेगा। अभी इसकी सीजन शुरू होने जा रही है, इतना सा हिंट मैं दे सकती हूँ, ठीक है? फिर खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो व्यंजन भला कैसे भूल सकते, भाई श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में हम क्या क्या बनाते थोड़ा याद कर लीजिए। उन्हीं में से एक रेसिपी आपको सिखाने वाली हूँ और आज का टंग ट्विस्टर बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका आशना कार्यक्रम में। आज का सुंदर सा विचार है, शास्त्री जी के पास देश की सबसे बड़ी शक्ति और संसाधन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कभी भी देश के पैसे या सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए नहीं होने दिया। कैसे, तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। देखिए, वैसे तो शास्त्री जी अपनी सादगी, ईमानदारी और उच्च नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इसी दिन पूरे देश में महात्मा गांधी की जयंती भी आज ही के दिन मनाई जाती है। तो यहाँ पर मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, एक घटना याद आ रही जो आपके समक्ष रखना चाहूँगी। ये घटना उस समय की है जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें सरकार की तरफ से एक आधिकारिक गाड़ी इम्पाला शेवरले मिली हुई थी। एक दिन उनके बेटे सुनील शास्त्री किसी काम से उस सरकारी गाड़ी को लेकर बाहर चले गए और काम खत्म करके वापिस आ गए। जब शास्त्री जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर को बुलाया और पूछा कि गाड़ी आज कितने किलोमीटर चली है। ड्राइवर ने उत्तर दिया, जी साहब, आज गाड़ी 14 किलोमीटर चली है। शास्त्री जी ने उसी समय ड्राइवर को निर्देश दिया, सुनील ने आज इस गाड़ी का इस्तेमाल अपने निजी काम के लिए किया है, इसलिए तुम लोग डायरी में लिखो कि 14 किलोमीटर का सफर निजी काम के लिए तय किया गया था और इसके कितने जितने भी पैसे बनते हैं उतने पैसे मेरी निजी सैलरी में, मेरी निजी तनख्वाह से काट करके सरकारी खाते में जमा करवा दो। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, शास्त्री जी के पास देश की सबसे बड़ी शक्ति और संसाधन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कभी भी देश के पैसे या सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए नहीं होने दिया। उनका यही ईमानदार और सादगी भरा व्यक्तित्व उन्हें आज भी हर भारतीय के दिल में अमर बनाए रहता है। तो ऐसी महान विभूति को पुनः हम नमन करते हैं और आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर साइरा मैयर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। जी हाँ, मैंने कहा था कि ऐसी चीज़ सिखाने जा रही हूँ जिसकी सीजन बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। तो मूली, मूली की सीजन अब शुरू हो जाएगी क्योंकि सर्दी का मौसम बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। तो मूली से कौन सी बीमारी ठीक करेंगे जानेंगे। देखिए, मंदाग्नि, अरुचि, अफारा, पुरानी कब्ज, उधर के विकारों के निराकरण के लिए, इन सब के लिए भोजन के साथ मूली कच्ची या अचार, चटनी, सब्जी बना करके सेवन करना चाहिए मूली का। ठीक है, इसका अचार भी बना सकते हैं, परोठा भी बनाकर खा सकते हैं, इसकी सब्जी भी खा सकते हैं। इससे मंदाग्नि, अरुचि, अफारा, पुरानी कब्ज ठीक हो जाएगी। आइए, अब बहुत ही सुंदर आपको उपाय बताने जा रही हूँ। और भी अगर पथरी की समस्या है तो मूली के पत्ते खाइएगा और मूली का रस भी पी सकते हैं, नियमित पीजिएगा, इससे पथरी गल करके बाहर आ जाएगी। तो मूली के पत्ते खाने से या मूली का रस कई मास तक नियमित पीते रहने से पथरी गल करके बाहर निकल जाती है। अगर बवासीर की समस्या है तो क्या करेंगे, बवासीर की समस्या है तो कच्ची मूली खाइएगा, इससे बवासीर से खून गिरना बंद हो जाएगा। और मूली के 100 ग्राम रस में 8 ग्राम देसी घी मिलाकर कुछ दिनों तक सुबह शाम रोज पीजिएगा। ठीक है, फिर मूली काटकर नमक लगा ओस में रात को सुरक्षित रख दीजिए, इसे सुबह निराहार खाइएगा। सोच के उपरांत गुदा को मूली के पानी से धोने से भी बवासीर ठीक हो जाता है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर उपाय है, मूली कैसे फ़ायदा करती और भी जानेंगे। अगर पीलिया है तो क्या करेंगे, पीलिया है तो बहुत ही सुंदर उपाय आपको देने जा रही हूँ। छोटे पत्तों सहित ताज़ा कच्ची मूली सुबह सुबह खाली पेट नियमित खाइएगा, इससे कुछ ही दिनों में पीलिया ठीक हो जाएगा। तो क्या करेंगे, छोटे पत्तों सहित ताज़ा कच्ची मूली के पत्ते आप सुबह ही सुबह, मतलब पत्ते नहीं, कच्ची मूली खाइएगा सुबह ही सुबह खाली पेट। ठीक है, इससे बहुत जल्दी पीलिया ठीक हो जाएगा। अगर गले में सूजन है, मूली के गर्म पानी में नमक डाल करके गरारा करिएगा, इससे गले की सूजन भी ठीक हो जाएगी। मूली के गर्म पानी में नमक डाल करके घरारा करने से सूजन ठीक हो जाती है। और लास्ट उपाय भी बहुत ही सुंदर है, अगर बिच्छू ने काटा हो तो दंशित स्थान पर नमक लगे मूली के टुकड़े रखिएगा, इससे वेदना शांत हो जाएगी। जहाँ पर भी बिच्छू ने काटा है उस स्थान पर नमक लगाकर मूली के टुकड़े रख दीजिए, इससे वेदना शांत हो जाएगी। तो ये सारे ही उपाय बहुत ही सुंदर है और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। अब आइए, आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ेंगे। आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति, सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बन भारत की पहचान। ये आपको 3 से अधिक बार नहीं सुनाना है और कम से कम 2 बार तो आपको बोलना ही है। पुनः दोहरा रही हूं, गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति, सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। तो ये आज का टंग ट्विस्टर है, सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज का टंग ट्विस्टर सुना सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है, तो आइए फिर से सुन लेते हैं एक गीत, उसके बाद पुनः रूबरू होते हैं। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आज हम बहुत ही धूमधाम से महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती दिन मना रहे हैं। इन दोनों ही उत्सव की पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सत्य की राह दिखाई, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, बापू ने भारत को प्रेम का दीप जलाया, न हथियार उठाया न किसी से बैर किया, सत्य और शांति से देश को मजबूत किया। गांधी जी का संदेश आज भी यही पुकारे, सत्य अहिंसा के दीप से जीवन अपना संवारे, सत्य अहिंसा के दीप से जीवन अपना संवारे। पुनः आप सभी को गांधी जयंती के ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आइए अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। कैसे हम भी अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बना सकते हैं, किस तरह हम अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार देंगे कि उनका भी जीवन सुंदर और श्रेष्ठ बनेगा। तो आज इन दोनों महान विभूतियों से हम इनके गुणों को धारण करने की कोशिश करेंगे। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शांति, सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। तो बहुत ही सुंदर आज का टंग ट्विस्टर है। आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, और टंग ट्विस्टर भी सुना सकते हैं। तीन से ज्यादा बार नहीं बोलना है, दो से कम बार नहीं सुनाना है। आप जरूर जुड़िएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु, मेरे को लगता है कि अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए गया जी गए हुए हैं क्या? चलिए, अच्छी बात है। जैसे भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और श्राद्ध पक्ष है तो करना भी चाहिए, है ना। 12 महीने में यही दिन आते हैं कि हम इस तरह तर्पण कर सकते हैं, और अपने पूर्वजों के साथ अगर किसी भी समय बुरा कुछ व्यवहार किया हो तो भी क्षमा याचना भी कर सकते हैं, और उनको खुश और संतुष्ट रखने के लिए इस तरह तर्पण भी करना चाहिए। लेकिन जो नहीं गए हैं गया जी, जो अपने अपने घर में ही है, वो जरूर जुड़िएगा भाई। रेडियो मधुबन के बहुत सारे श्रोता बंधु है, एक नहीं दो नहीं अनेक है। चलिए, जुड़ चुके हैं हमारे श्रोता बंधु, तो बात करेंगे। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
1: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। बैठे हैं, बात कर रहे हैं आपसे, और अभी तो मैं अहमदाबाद हूँ, तो अहमदाबाद आए सुबह में।
0: अच्छा अच्छा,
1: अहमदाबाद में बैठा हूँ बेटी के साथ आपसे।
0: अच्छा जी जी जी,
1: हमारा एक आसान है, हम जहाँ भी जाते हैं हम रेडियो सुन पाते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे जो रेडियो सुनते हैं ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम कहीं भी जाते हैं तो रेडियो सुन पाते हैं। लेकिन पहले तो क्या था कि हम रेडियो साथ में नहीं ले जा सकते, या ले जा सकते तो कहीं पकड़ता नहीं पकड़ता।
0: सही बात है,
1: मोबाइल में तो इंटरनेट पे तो हम कहीं भी जाए देश के कोने में तो हम रेडियो सुन पाते।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ये हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है।
0: जी
1: चलो, आज तो बहुत अच्छा दिन है हमारे गांधी जी का, और हमारे शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, तो दोनों महान विभूतियों को हम सलाम करते हैं, और देश के लिए जो किया है वो ऐसा तो कैसे हम बोल सकते हैं। दीदी देखो, हम गांधी जी हमारे कोई व्यक्ति हथियार नहीं लिया, कोई भी किसी के झगड़ा नहीं किया है, फिर भी देश को इतनी आसान से देश को विजय किया है
0: जी,
1: और एक अच्छे हमारे देश को महान बनाया है, सत्य की राह पर चले हैं, कभी झूठ नहीं बोले हैं, क्योंकि कहते ना कि किसी सत्य बोलना भी हो तो सत्य को भी हमेशा सत्य की विजय ही होती, पहले हो या बाद, लेकिन सत्य की तो जय होती
0: जी।
1: लेकिन झूठ नहीं बोलना, कहते एक झूठ सौ झूठ बोलवाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो झूठ नहीं बोलना है, जैसे गांधी जी के पर चले, तो हम भी विषय पे आता है कि हम भी बच्चों को बस ऐसा ही बनाना है दीदी, बच्चों को पहले ऐसा शिक्षा देना कि कभी झूठ नहीं बोलना है
0: जी।
1: और जैसे हमारे महान विभूति ने जो गांधी जी लालू हमारे कई सारे महान तो हमारे गए हैं, तो इसी राह पर चलना है। आज देखो कई सारे ऐसे बच्चे कि आज उल्टा राह पर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं नशे पे जा रहे हैं
0: जी,
1: तो ऐसे बच्चे सीखने, जैसे हमको बच्चों को ऐसे राह देनी, सीख देनी कि अच्छे नेक पर चलना, कभी झूठ नहीं बोलना, सच्चाई के साथ देना, सच्चाई से चलना और वो सब एक दूसरे के काम करना, ये तो हमारे साथ जी ने बताया है।
0: तो जी जी।
1: बच्चों को तो हम एक ही बात करेंगे, बच्चों को साल अच्छा संस्कार देंगे, बच्चों को अच्छा टैलेंट देंगे कि वो आगे जाके अच्छा नेक इंसान बन पाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मैं तुम से सुनाता हूँ दीदी।
0: हाँ जी हाँ जी सुनाइए सुनाइए।
1: शास्त्री जी और गांधी जी और बनवाया है। तो एक बार क्या बोल दीजिए शायद मैंने।
0: हाँ जी मैं सुना देती हूँ। ठीक है। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शांति, सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। जी आवाज आवाज आपकी स्पष्ट नहीं पहुंच रही है।
1: जी मैं जरा बाहर निकलता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम घर में रहता है।
0: अच्छा अच्छा
1: अब आ रही है आपकी मेरी आवाज।
0: हाँ जी आ रही है आ रही है।
1: चलो अच्छा मैं बताता हूँ। सत्य शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, क्रांति शास्त्री गांधी बने ऐसा गांधी जी
0: चलिए बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई, आपके लिए ढेर सारी तालियां। बाकी सब बढ़िया। चलिए ये थे सुरेश भाई जोटाना से, बहुत ही सुंदर आपने भी बात रखी है और टंग ट्विस्टर भी बोल के सुनाया है। अब आप क्या सोच रहे हैं, आप भी जुड़िएगा और टंग ट्विस्टर जरूर सुनाइएगा। आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है भाई, दो दो महान विभूतियों का जन्मदिन है, कैसे भूल सकते हैं उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनके जीवन के इतनी सुंदर यात्रा, उनका साहस, उनका पराक्रम, उनका परोपकार, अहिंसा का मार्ग, सत्य की राह, कैसे भूल सकते हैं हम उन महान विभूतियों से कम एक दो गुण भी हम अगर अपने जीवन में धारण करें ना तो भी हमारा जीवन सवर जाएगा। हेलो
2: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी, कैसे हो?
0: हाँ जी ओम शांति नमस्कार, हम अच्छे हैं, आप कैसे हो सुभाष भाई?
2: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आपको रेडियो परिवार और सभी छोटे भाई बहनों को, दोस्तों को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार। और विचे विचार सुरेश भाई जी की बातें, आपकी बातें, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और महात्मा गांधी जी और पूर्व पीएम शास्त्री जी की जयंती पर मेरा भी शत नमन। और बहुत ही अच्छी बातें हो चुकी है, आगे भी होगी। तो थोड़े में मैं बोलता हूँ, देखो एक पॉइंट जो आपने बोला है शादी और सत्य, तो बचपन से बच्चों के ऊपर ये दो सत्य और सादगी के ऊपर संस्कार हमें अगर उनको सिखा दिया, लाद लिया, उनके अंदर तक वो संस्कार चले गए तो आगे उनका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि बचपन में माता पिता, शिक्षक, दोस्तों, महान पुरुषों द्वारा जो संस्कार हमारे ऊपर लादे जाते, जिससे शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास होता है और यही विकास आगे जीवन भर हमें काम आता है, क्योंकि ये बचपन के ही संस्कार हम भूलते नहीं, ये हृदय में छप जाते हैं। वैसा ही गांधी जी और शास्त्री जी के ऊपर भी उनके माता पिता टीचर गुरु और जो भी उनके ऊपर संस्कार थे बचपन से, उनका बचपन देखो हम उनका आदर्श रखे, उनके आदर्श के पालना के ऊपर ही हमारा सभी का विकास चल रहा है। तो धन्यवाद, सभी को नमस्कार, शुक्रिया, ओम शांति।
0: बहुत बहुत आभार सुभाष भाई। और आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे? हेलो, चलिए, ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से। आपने भी अपनी बात को अच्छी तरह रखी है, बहुत ही सुंदर विषय है। आज हम देखे इन दोनों महान विभूतियों का जन्मदिन मना रहे हैं, हर किसी का तो नहीं मनाते हैं ना, कितने ही गए इस दुनिया से, कितने ही आए हैं, तो सभी का नहीं मनाते हैं। लेकिन इन खास लोगों का क्यों मनाते हैं, जिनको याद करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो महान कर्म करके गए हैं इस दुनिया से। जाना सभी को है, आप हम सभी जाएंगे, लेकिन जाना कैसे है ये हमें सोचना है, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, जो लाख जतन करो फिर भी आनी ही है, तो उसको हम टाल नहीं सकते। लेकिन हम अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बना सकते हैं, जिसके जरिए आने वाले समय में हम इस दुनिया में नहीं भी रहे तो भी याद किया जाए। तो इन दोनों महान विभूतियों ने ऐसे काम किए हैं। शास्त्री जी का तो मैंने उदाहरण दिया ही था कि देखिए कैसे अपने निजी खर्च में इतनी ऊंची पोस्ट प्रधानमंत्री जी की, और उसके बावजूद भी एक रुपया भी सरकारी खर्च हो जाता है, अगर निजी काम में सरकारी पैसा लग जाता है, तो कैसे उन्होंने गाड़ी का पेट्रोल का किराया भी खुद की जेब में से दिया। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार, ओम शांति।
0: हाँ जी, नमस्ते दयाराम जी, कैसे हो आप?
3: मैं बहुत अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है सभी बहनों की, भाइयों की, और भी हमारे रेडियो मधुबन के आरजे भाई बहनों की जी। और मैं आज रेडियो मधुबन सुन रहा हूँ, क्लियर आवाज आ रही है। और सबसे पहले तो हमारे जो महान पुरुष हुए, जिन्होंने अपनी इतनी मेहनत करके अपना ऊंचा नाम कमाया, आज हमारे देश को दिशा दी है, उन महान पुरुषों को मेरा सत सत नमन, उनको सलाम, और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राम राम सारकम।
0: बिल्कुल, आपको भी।
3: और दीदी का,
0: हाँ जी,
3: आज
0: आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आज का विषय यही है, इन दोनों महान विभूतियों का हम जयंती दिवस मना रहे हैं, हम कैसे अपने जीवन में इनके गुणों को धारण करेंगे, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार देंगे।
3: जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे जो महान पुरुष गांधी जी थे, तो हमेशा अहिंसा और सत्य की राह पर चलने वाले, तो उसके जो सत्य की जो मार्ग है, जो सत्य की हम राह पर चलेंगे, अपने बच्चों को ऐसे अच्छे संस्कार सिखाएंगे, और तो हमारे बच्चे की जिंदगी अच्छी सुधरेगी और भी अच्छा काम कर पाएंगे, और भी एक अच्छे बन के अपना भी नाम ऊंचा करेंगे। और हमारे शास्त्री जी तो इतने बड़े शास्त्री जी जो विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, और आज तनु महान पुरुषों का नाम आज पूरे वर्ल्ड में भी लिया जा रहा है। आज इनकी जो प्रेरणा लेकर दूसरे भी देश भी आगे बढ़ रही है, वो भी सराहना कर रही है, उन्होंने अच्छा काम किया, सत्य की राह चले और मार्गदर्शन दिया, पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया, ऐसे अच्छा काम करेंगे हम, जैसे झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत सारी है उनसे अच्छा कार्य करते रहेंगे तो हमेशा ठीक है। और आज का दीदी सॉन्ग कुछ तो सुनाऊं?
0: हाँ जी जरूर सुनाइए।
3: गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शांति और शास्त्री जी की शान बने, गांधी जी और शास्त्री जी का संदेश बने भारत की पहचान। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शांति, शास्त्री जी शान, गांधी जी शास्त्री जी का संदेश बने भारत की महान पहचान।
0: क्या बात है दयाराम जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार।
3: मैं वैसे तो रेडियो मधुबन में तो सुनता हूँ दीदी, मेरा थोड़ा मोबाइल खराब हो गया, जुड़पा नहीं रहा कार्यक्रम में, तो आज मुझे मेरा मोबाइल जुड़ रहा हूँ, आज मुझे रेडियो मधुबन भी क्लियर सुनाई दे रहा है। मेरे सभी मेरे प्यारे मित्र है जो सुन रहे हैं, मेरे सुरेश भाई, कंचन भाई और बहुत सारे हमारे रेडियो परिवार हमारे भाई, हम सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, ओम शांति।
0: बहुत बहुत आभार दयाराम जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे दयाराम जी रामपुरा से, बहुत ही सुंदर आपने विषय को भी स्पष्ट किया है, तो टंग ट्विस्टर भी बोल के सुनाया है। आप भी जुड़ सकते हैं और इसी तरह आप भी आज के विषय में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। हेलो, और आज का टंग ट्विस्टर भी बोल के सुना सकते हैं, परंतु पहले लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद इसी विषय को कंटिन्यू रखेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

सादगी थी जीवन में, विचारों में महानता थी। सादगी थी जीवन में, विचारों में महानता थी। देश के प्रति समर्पण ही उनकी पहचान थी। जय जवान जय किसान का दिया उन्होंने नारा, जय जवान जय किसान का दिया उन्होंने नारा। मेहनत और हिम्मत से देश को मिला सहारा। शास्त्री जी का जीवन हमें यही सिखाता है, सच्चा नेतृत्व वही जो देश के काम आता है, सच्चा नेतृत्व वही जो देश के काम आता है। पुनः आप सभी को शास्त्री जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही अच्छा है, जिसको भी दोहरा रही हूँ। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति। पहले मैं बोल रही थी शांति, लेकिन शक्ति आप सुना सकते हैं। सत्य की शक्ति, सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। ये टंग ट्विस्टर आपको 3 से अधिक बार नहीं बोलना है, 2 से कम बार नहीं सुनाना है। देखते हैं कौन जुड़ते हैं और आज का टंग ट्विस्टर बोल के सुनाते हैं, आज के विषय में अपनी राय व्यक्त करते हैं। तो आप जरूर जुड़िएगा और अपनी बात को जरूर रखिएगा। आज इन दो महान विभूतियों का जन्मदिन एक साथ में है। बहुत कम संजोग ऐसे होते हैं जो बरोबर के होते हैं और उनका एक ही दिन जन्म हुआ होता है। भले वर्ष अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डेट ही मतलब डेट एक हो, बहुत आश्चर्य की बात होती है ना। तो ऐसे ही महान विभूतियां हमारे देश में जन्मे थे, गांधी जी और शास्त्री जी, जिनका हम जितना उनको नमन करें, जितनी उनकी महिमा करें उतनी कम है। क्योंकि देखो, दोनों के कर्म बहुत ही अच्छे थे, दोनों ने ही देश के लिए बहुत कुछ किया। कहाँ स्वतंत्रता के आंदोलन में गांधी जी ने अहिंसा के पथ पर चल करके सहयोग दिया, तो कहाँ शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन करके भी साधारण जीवन को जिया। यह भी बहुत बड़ी प्रेरणा है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। अगर हम लेना चाहें तो लोगों को छोटा सा पद पोजीशन मिलता नहीं कि न जाने वो अपने आप को क्या समझ बैठते हैं। अभी चुनाव हुए थे ना राजस्थान में, 2 दिन पहले मेरी तो एक रिश्तेदार का फोन आया, बोले बहन जी हमने इतना सहयोग दिया पार्षद बनने के लिए, इतना सहयोग दिया, रात दिन लगे रहे कि कैसे भी करके हमारे ये रिश्तेदार है जो पार्षद बन जाए, और पार्षद क्या बन गए। 10 बार फोन किया, एक भी बार नहीं उठाया, और उन्होंने अच्छी सी पार्टी भी दी तो हमको नहीं बुलाया। और नहीं बने थे तब तक 10 चक्कर घर के काटते थे कि बहन जी आपका बहुत कॉन्टेक्ट है, आप हमें ज़रूर हेल्प करना। और बोले कि मैंने 50 वोट दिलवाए और आज वो नदारद, कोई मतलब फ़ोन नहीं उठाना, उनके प्रोग्राम में नहीं बुलाना। मतलब एक पार्षद के पद पर भी अगर हम इस तरह करेंगे तो क्या होगा, आप ही सोचिए। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कितने सादगी, कितने उनके जीवन के सिंपलता की आज भी हमें प्रेरणा देती है। और देश के सहयोग में, देश से वो इतना प्यार करते थे कि 1 रुपया भी वेस्ट नहीं जाने देते थे। तभी तो उन्होंने अपने बेटे का जब 14 किलोमीटर निजी कार्य के लिए गाड़ी चला कर लेके गए, तो उन्होंने अपनी तनख्वाह में से कटवाए पैसे। बाकी तो समझ सकते हैं आप, खुद के पैसे तो नहीं जाएगा गवर्नमेंट का, ऊपर से दादागिरी बताएंगे कि अरे हम तो इस पद पर है, कौन होते आप। सभी का अलग अलग नजरिया, इसलिए सबको याद नहीं करते हैं, याद उन्हीं को करते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया होता है। क्या बात है, आज आप ये जयंती मनाने में व्यस्त हो गए क्या, या फिर बस तौबा कर ली? कल फिर क्या है वो आप सभी को पता है, तो आपको जुड़ना तो पड़ेगा ना। हम तो इंतज़ार करते हैं, सब परिवार के सदस्य है तो एक बार ज़रूर बातचीत हो जाए, तो बहुत ही सुंदर विषय है। हम तो यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि प्यारे श्रोता बंधु, ऐसी महान विभूतियों का जब हम ये दिन मनाते हैं तो खाली मना करके भूल जाना ये कोई बात नहीं हुई। जो भी दिन हम मनाए, अच्छे अच्छे महान विभूतियों का जो भी दिन आता है,
तो कम से कम ज्यादा नहीं तो उनके एक गुण को ही हम अपने जीवन में उतारे। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, मौन में ज्यादा रहते थे, ज्यादा आवाज में नहीं जाते थे, वो सत्य की राह पर चलने वाले थे। तो बहुत सारे गुण हैं, उनमें से एक गुण तो ले ही सकते हैं कि चलो हम सप्ताह में एक बार मौन रहेंगे, या महीने में एक बार मौन रहेंगे, या फिर हम झूठ नहीं बोलेंगे, या फिर अहिंसा के मार्ग में चलेंगे। कोई भी एक गुण तो हम ले ही सकते हैं। शास्त्री जी देखे पूरे ही एग्जाम्पल है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके जीवन से हमको खटकती हो, बिल्कुल ही नहीं। सादा जीवन, उच्च विचार, यही है शास्त्री जी की शान। तो सादगी में भी काफ़ी कुछ दे गए हैं। तो आज हम इन महान विभूतियों को इसलिए तो याद कर रहे हैं, तो इनके गुणों को अपने अंदर धारण करें। एक एक गुण दोनों के ले लेते हैं तो भी हमारा जीवन सवर जाएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधु, और आने वाली पीढ़ी को भी इन्हीं से अवगत कराए। आजकल तो फोन का जमाना हो गया है, माता पिता भी फोन लेकर के बैठेंगे, बच्चे भी फोन लेकर के बैठेंगे। अब फोन में कोई प्रेरणादायी कहानियां तो वो सुन नहीं रहे, तो क्या होगा, क्या वो अपने जीवन में उतारेंगे। इसलिए इनको मोबाइल से दूर रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप ऐसे एंजॉय करते हुए बैठिए और कहिए आ जाओ बच्चों, आज बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं, कि आप सुनते ही भाव विभोर हो जाएंगे। और ऐसे अंदाज से कहिए कि बच्चे एकदम दौड़े आए कि अरे वाह वाह क्या बात है, आज मम्मा कौन सी कहानी सुना रहे, आज पापा कौन सी कहानी सुना रहे, क्या कहने जा रहे, चलो सुनते हैं। और इंटरेस्ट से सुनाइए इन महान विभूतियों के बहुत सारे जीवन की घटनाएं हैं, तो आप उनको सुनाइए तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, अंदर से प्रेरणा भी मिलेगी, देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और इन महान विभूतियों को भी वो पहचानेंगे। नहीं तो कौन गांधी जी हमें क्या पता, कौन शास्त्री जी हमें क्या पता। हाँ किताबों में है, आया था पाठ, हमने पढ़ लिया, हो गई बात खत्म, ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। वैसे तो स्कूलों में भी इन दिनों को खास बहुत ही अच्छी तरह मनाते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता का, बड़ों का भी फर्ज बनता है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन दिखाए। इसलिए ऐसे नहीं कि खाली जयंती दिन है तो ही हम कहानी सुनाएंगे, जब हम पहले से कहानियां सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें इनको सुनाते हैं, और जब ये खास दिन आता है तो बच्चे और भी उत्सुक हो जाते हैं, अरे पापा आप वो कहानी सुनाते उन्हीं का दिन है ना, आज गांधी बापू का दिन है, अरे वाह मैं ये करूँगी वो करूँगी, कितने संकल्प आ जाते हैं कि बहुत अच्छे थे वो। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात करेंगे तो कहेंगे अरे वाह भाई गांधी जी तो बहुत अच्छे थे, शास्त्री जी तो बहुत अच्छे थे, ऐसे वो देश के सेवा में सहयोग देते थे, देश की उन्नति में सहयोग करते थे। आप अपने फ्रेंड्स के सामने भी बात करोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि अरे वाह कितना नॉलेज है इनको।

0: प्रेरणा की बात है, इसलिए प्रेरणा स्रोत कोई भी बन सकते हैं। बाकी तो ठीक है, फोन दे दिया बच्चों को, मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, न तो उनका मानसिक विकास होगा और ना ही आंतरिक उन्नति हो पाएगी। क्योंकि मोबाइल लेकर बैठने से क्या होता है, देखा भूला, फिर कुछ गलत बातें हैं तो वो बुद्धि में बैठ गई। आजकल देख रहे हैं ना, आए दिन क्या क्या सूचनाएं सुनने को मिलती है कि उसने उसमें से नकल की और ऐसे पिता को मार दिया, ऐसे फलाने को मार दिया। छोटे छोटे बच्चे भी अभी तो क्रिमिनल होते जा रहे हैं, जो न्यूज आती है सुनते हैं उसके अनुसार। तो कहाँ जा रहे हमारे बच्चे, कहाँ जा रहे हमारे शिक्षा और संस्कार। इसलिए आपको एक बहाना चाहिए, तो ये बहाना है कि चलो बच्चों आज से अच्छी शुरुआत करते हैं। आज किसका दिन है, आज इन दो महान विभूतियों का दिन है, तो चलो आज मोबाइल नहीं, आज मैं आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाता हूँ, रोज सुनाऊंगा, आज से शुरुआत करते हैं। बच्चे भी बैठेंगे तो कहते हैं ना, शुभ शुरुआत अच्छे दिन से कर लीजिए, अच्छा दिन रोज का है, फिर भी आज खास दिन है तो आप अच्छी शुरुआत करिएगा। और चलो हो गया सो हो गया, देख लिया जितना देखना था, फोन देख लिया और जितना बच्चों को जो करना था कर लिया, लेकिन आज से अभी से नियम थोड़ा सा चेंज करिए घर के भी। और भाई फोन तो किसी को मिलेगा नहीं। और आइए हम बात करते हैं उन महान विभूतियों की जिनका आज हम क्यों याद करते हैं। तो बच्चे भी बड़े खुश हो जाएंगे, उनके बाल मन पर तो जो छाप छोड़ेंगे वो छाप जमी रहेगी, मोबाइल की छाप छोड़ेंगे तो मोबाइल की छाप जमेगी। इन महान विभूतियों के जो अच्छे गुणों की बात करेंगे, इनके अच्छे कर्मों की बात करेंगे तो वो छाप जमेगी। अब हमें देखना है कि हमें अपने बच्चों के दिलों में कौन सी छाप छोड़नी है। ठीक है, और आइए अब आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर है, गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। यह आज का टंग ट्विस्टर है। सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। हेलो हेलो, नमस्ते, आप जो भी बोल रहे हैं आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
1: अभी आई?
0: हाँ जी,
1: अभी आई क्या?
0: हाँ आई आई।
1: क्या बात है? जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि, जय श्री हरि। और सुनाइए कैसे हैं आप?
1: मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और कैसे हो आप?
0: बस अच्छे हैं हम, आप सुनाइए।
1: ठीक है, सही है गाड़ी।
0: अच्छा,
1: और इसका खुशनुमा जीवन का क्या है?
0: बस विषय समाप्ति की ओर है, दो मिनट है आपके पास। आज हम गांधी जयंती, शास्त्री जयंती मना रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे बच्चों को शिक्षा संस्कार देंगे, कैसे फोन से दूर करेंगे?
1: देखिए, फोन से दूर तो ऐसी बात है कि लोग क्या करते हैं कि आजकल क्या है कि छोटा बच्चा होता है ना तो रोता है ना, तो फोन हाथ में दे देते हैं कि चुप रह जाएगा। एक घर सभी तरह में ये हो रहा है। आप स्टार्टिंग से बच्चों को ये आदत मत दीजिए। आप उस समय आज वो दूर ही रहेंगे। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा हर माँ बाप बच्चों के करीब रहने की, और अच्छी अच्छी कहानियां कविता सुनाने की है
0: जी।
1: क्या
0: आज का टंग ट्विस्टर है?
1: नहीं, टंग ट्विस्टर नहीं, चलो ठीक
0: है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और आइए यहाँ पर एक अल्पविराम लेकर के लौटते हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन। आज हम गांधी जी पर बात कर रहे हैं। गांधी जी पर 1982 में बनी एक फिल्म जिसमें बेन किंग्सले ने गांधी का रोल किया है। ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार भी इस फिल्म ने जीता है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिएगा। आज आपको बहुत ही सुंदर व्यंजन में, जैसे अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो श्राद्ध पक्ष में क्या बनाया जाता है भाई, मीठी चीज़ें ज़रूर बनती है और वो भी दूध की चीज़ तो ज़रूर बनती है। उसमें हम अक्सर खीर बनाते हैं, रबड़ी बनाते हैं, मालपुआ बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, ये चीज़ें तो अक्सर बनती रहती है ना। दही बड़े बनाते हैं, ये चीज़ें तो बनती रहती है। लेकिन आज मैं आपको सिखाने जाऊंगी मक्कई की खीर, ठीक है। कल आपने डोडा पाक सीखा, आज आपको सिखाते हैं मक्कई की खीर। लेकिन उसके पहले दयाराम जी लाखनी से आपने टंग ट्विस्टर बोल के भेजा है, तो उनके द्वारा हम टंग ट्विस्टर सुनेंगे।
1: गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शांति सादगी की शान, शास्त्री जी गांधी जी का संदेश बने भारत की महान पहचान।
0: चलिए, दयाराम जी ने एक बार बोल के सुनाया है, इनके लिए ढेर सारी तालियां बजा रहे हैं। दयाराम जी बहुत बहुत आभार, लेकिन आपको दो बार तो बोलना ही था, खैर कोई बात नहीं, एक बार भी कोशिश की अच्छी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अलका जी कप्पासन से आपने भी बोल के सुनाया है, तो देखते हैं उनके द्वारा भी सुनते हैं।
2: गांधी जी का सत्य शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान।
0: क्या बात है, अलका जी के लिए भी ढेर बहुत बहुत आभार। अलका जी आपने दो बार बोल के सुनाया है, तीसरी बार भी बोल रखा है, लेकिन हमने दो बार सुना दिया है, चलिए बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर आपने सुना है इनके द्वारा, और इस तरह आप भी वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, अगर आप जुड़ नहीं पाते तो वॉइस मैसेज भेज दीजिए। और अब खीर बना लेते हैं फटाफट। तो आप क्या करेंगे, मक्कई, वही सॉफ्ट वाली मक्कई लीजिएगा, है ना, एकदम ताज़ा, एकदम सॉफ्ट दाने वाले मक्कई आपको लेनी है। फिर आप लीजिएगा ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, और फिर आप लीजिएगा शक्कर, ठीक है, दूध, मक्कई, थोड़ा सा घी, ड्राई फ्रूट्स, शक्कर और इलायची पाउडर, ये हो गई सामग्री। अब बनाने का तरीका भी आपको सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो हमने मक्कई ली है, छिलके निकाल दीजिए, छिलके निकाल करके इन दानों को भले कद्दूकस करिए, भले इन दानों को निकालिए, निकाल करके यही दरदरा पीस लीजिए, ठीक है। और कढ़ाई रखिए गैस पर, हल्का सा घी डाल करके अब आप ये जो दरदरा पीसा हुआ मक्कई है ना, ये आप डालिए और धीमी आंच पर अच्छी तरह इसको सेकिए। हल्का सा कलर चेंज हो जाए, आप समझ लीजिए कि ये मक्कई सीख गई है। अब इसमें आप दूध डाल दीजिए, ठीक है, दूध डाल करके अब इसको आप हिलाते जाइए, खीर बनेगी, ठीक है। और अच्छी तरह 10-15 मिनट तक इसको बनाइएगा, और जब आपको लगे कि खीर हमारी तैयार हो चुकी है तो आप शक्कर डाल दीजिएगा। शक्कर डालने के बाद भी 2-3 उबाले लेने हैं, उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए, ड्राई फ्रूट की कतरन डाल दीजिएगा और इलायची पाउडर ऊपर से बुरका दीजिए, तो ये बन गई मक्कई की खीर, जिसको दूध पाक भी कहते हैं। तो फिर से दोहरा रही हूँ विधि, ध्यान दीजिएगा। मक्कई को या तो कद्दूकस करिए या फिर मक्कई के दाने निकाल करके मिक्सर में दरदरा पीस लीजिए। अब आप रखिए कढ़ाई या भगोना गैस पर, घी डालिए और घी गर्म हो जाए तो आप ये दरदरी पीसी हुई मकई आप डाल दीजिएगा और चम्मच से अच्छी तरह हिलाते रहिए धीमी आंच पर। जब ये हल्के से कलर चेंज हो जाए समझ लीजिए कि ये सिक चुका है आपका। उसके बाद अब आप दूध डाल दीजिएगा, केसर चाहे तो केसर का एक दो धागा भी साथ ही साथ दूध के डाल दीजिएगा, उबलने दीजिए। अब अच्छी तरह खीर बनने दीजिए। जब आपको लगे कि हाँ अब खीर अच्छी तरह तैयार हो चुकी है तो आप गैस बंद कर दीजिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और ऊपर से इलायची पाउडर डाल दीजिए। शक्कर तो पहले ही डाल दे देनी है, ठीक है। शक्कर डाल करके जब आपको लगे कि खीर तैयार हो चुकी है तो सबसे पहले शक्कर ही डालनी है। शक्कर गल करके उसके पानी की मात्रा खत्म हो जाए उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, गैस बंद कर दीजिए, फिर इलायची पाउडर बुरका दीजिए। तो ये बन गई मक्के की खीर। तो आप अपने पूर्वजों के श्राद्ध में मक्के की खीर भी आप खिला सकते हैं। जो मेहमान आपके घर पर आ रहे हैं उनको गौ ग्रास निकाल सकते हैं सब। तो पहले अपने इष्ट देव को भोग लगाइएगा, उसके बाद आपको जो करना हो करिएगा। तो इस तरह मक्के की खीर बनाई जाती है। आइए अब फिर से आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति, सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। यह आज का टंग ट्विस्टर है। सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन का है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। और फिर से सुनते एक गीत तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी व माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा के साथ हो गया था। उनके 4 बेटे हरिलाल, मनीलाल, रामदास व देवदास। महात्मा गांधी एक नाम, सादा जीवन, उच्च विचार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के इस पावन अवसर पर हम केवल गांधी जी और शास्त्री जी को ही याद नहीं करें, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लेवे। सत्य की राह पर चले, अहिंसा को अपनाए, मेहनत का सम्मान करे और अपने देश को आगे बढ़ाए। इन्हीं महान विभूतियों को शत शत नमन के साथ अब मैं आप सभी से विदा लूंगी। आज का कार्यक्रम तो आपने सुना ही है, काफ़ी अच्छा रहा है, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और उसके भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, उन्हें आप आजमा सकते हैं। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो रेसिपी में जो आपको मक्के की खीर बनाना सिखाई है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं दोहरा रही हूँ। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति, सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति, सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति, सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। तो मैं खुद के लिए पहले तालियां बजाना चाहूंगी, फिर हमारे श्रोता बंधु जुड़े हैं सुरेश भाई जोटाना से, आपने टंग ट्विस्टर बोल के सुनाया है। दयाराम जी रामपुरा से, आपने टंग ट्विस्टर बोल के सुनाया है। और अलका जी कप्पासन से, आपने भी टंग ट्विस्टर बोल के सुनाया, इसके लिए आप सभी विषय में जुड़े हैं। सुरेश भाई चौटाना से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, दयाराम जी रामपुरा से, पुणे, आप सभी के लिए आज का मीठा मोती है। मन के संकल्पों को बीच बीच में रोकने का अभ्यास कर लीजिए तो थकावट नहीं होगी। और अब मैं आपको प्यारी सी कविता सुनाऊंगी। इन दोनों महान विभूतियों पर आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। जाते जाते आप सभी से यही कहना चाहूंगी, आप सभी के जीवन में सत्य, शांति और सद्भाव बना रहे। और कल आप सभी को पता है, कल मिलेंगे अंताक्षरी कार्यक्रम में, और कल की थीम रहेगी पुराने पिक्चर के गीत। आप सभी तैयार रहिएगा, आज ही तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है? और कल मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। सत्य अहिंसा का दीप जलाकर गांधी जी ने राह दिखाई, बिना किसी हथियार के उन्होंने आजादी की अलग जगाई। सादगी जिनकी पहचान बनी, सच्चाई जिनका श्रृंगार, राष्ट्रपिता के आदर्शों से रोशन हुआ हिंदुस्तान हमारा। जय जवान जय किसान का नारा जिसने देश को दिया, सादगी और कर्मठता से भारत को गौरव दिया। गांधी जी का सत्य अहिंसा, शास्त्री जी का कर्म महान, इन दोनों के आदर्शों से सदा बढ़े अपना हिंदुस्तान, इन दोनों के आदर्शों से सदा बढ़े अपना हिंदुस्तान।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है, कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, जब हम बचपन में किसी से पूछते हैं, बच्चों से, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, शायद कोई ऐसा होता होगा, बड़े होके मुझे सन्यास बनना है, या फिर मुझे ऐसा जीवन जीना है जिसे देश के लिए मैं सेवा करूं, या फिर मैं ऐसा जीवन जीऊं जो सारे विश्व के लिए मेरा जीवन का कोई मकसद हो। लेकिन जीवन में चलते चलते उतार चढ़ाव आता है और हम कई बातें ऐसे सीखते हैं, फिर अनायास ही हमारा लक्ष्य जीवन का कब बदल जाता है हमें भी पता नहीं चलता। जिस दिन उस लक्ष्य को हम समझ जाते हैं और उस मंजिल पे पहुँचने के लिए जो यात्रा होती है वो कभी सुकून वाला होता है तो कभी बहुत सारी रियलाइजेशंस की बातें होती हैं, कठिनाइयों से भी गुजरता है। जीवन कभी एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का जीवन अलग अलग होता है। लेकिन आज जो हमारा कार्यक्रम जीना इसी का नाम है, आज की जो हमारे मेहमान हैं या आज की हमारे जो योगी हैं, उनका जीवन कैसा रहा और वो ऐसा योगी जीवन जीने के लिए क्यों चुना, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ है राजयोगी आदरणीय शरद भाई जी। आप मूलतः कटक उड़ीसा से हैं और वर्तमान समय में आप शांतिवन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कटक से राजस्थान की यात्रा और एक बाल्यकाल में अध्यात्म को चुन करके एक ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के लिए जो निर्णय लिया है, ये सफर कैसा रहा और इस सफर में आपने क्या सीखा है, आइए जानते हैं। उसके लिए हम स्वागत करते हैं आदरणीय शरद भाई जी को आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम में। नमस्कार भाई जी।
1: नमस्कार।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: भाई जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, आप वर्तमान समय में तो शांतिवन ब्रह्म कुमारीज हेडक्वार्टर्स में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो जीवन की शुरुआत है, जहाँ पे आपने जन्म लिया है, उस जीवन के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका जन्म किस परिवार में रहा, क्या माहौल रहा आपके बचपन का और आपके परिवार का, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: हम एक्चुअली एक गांव के रहने वाले है और जिस माहौल में हम पले बढ़े, बड़े हुए, माहौल उस समय इतना अच्छा नहीं था जैसे आज समाज में हर जगह शिक्षा की बातें हैं, कला प्रदर्शन की बातें हैं, वो नहीं थी। फिर भी माताजी पिताजी के जो तत्वावधान, जो पालना थी, वो पालना हमको बहुत आकर्षक माने जाते, क्योंकि हम घर और स्कूल के सिवाय और कुछ नहीं जानते थे।
0: ये कौन से गांव की बात कर रहे हैं?
1: ये हमारा जन्म स्थान जो ब्रह्मपुरा गांव है
0: जी,
1: वहाँ की बात है। कटक,
0: ब्रह्मपुरा कटक डिस्ट्रिक्ट में।
1: हाँ जी, हाँ, कटक डिस्ट्रिक्ट। तो उस माहौल में हम सिर्फ इतना जानते थे, स्कूल और हमारा घर, उसके सिवाय हम दुनिया के बारे में कुछ इतना नहीं जानते थे।
0: ये कौन से सन की बात रही होगी? जो
1: ये जो है 89, माना बाबा का ज्ञान प्राप्त होने का पहले की बात,
0: 89 से पहले की बात।
1: तो पिताजी जितना पढ़े हुए थे, घर की अवस्था जितना थी, खाने पीने का घर का हो जाता था, बाकी इनकम और एजुकेशन का जो बातें थी, हमारे लिए इतना आसान नहीं था। यहाँ तक कि हम 10th तक चप्पल भी पाँव में नहीं पहना था। जब हमारा 10th का एग्जाम हुआ, घर से हम 25 किलोमीटर दूर किसी हाई स्कूल में हमारा एग्जाम हुआ, तब हमने एक चप्पल पहनने का मार्जिन हमको मिला था। उसके बाद हम, ये जो बात है 84 की बात, 10th हम जब क्या दिया, फिर 85 में हमारा कॉलेज हुआ। तो कॉलेज में हमारा जो पास तो नहीं हुआ, मतलब एक सब्जेक्ट हमारा ज्यादा कमजोर था, इंग्लिश, उसके कारण हमको फेल होना पड़ा। नेक्स्ट टाइम हम फिर एग्जाम देके पास किया।
0: आप कितने भाई बहन थे?
1: हम भाई 3 हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ,
0: कोई बहन नहीं।
1: बहन नहीं, तो इसीलिए बाबा ने इतना सा बहन दिया है। तो फिर उस समय जब हम एग्जाम दिया था प्लस टू का, उस समय बाबा का परिचय मिला। भुवनेश्वर से भाई बहने सब आए थे हमारे गांव में, और उन्होंने जो चित्र प्रदर्शनी लगाए थे उसको हमने जाके देखा, सुना, बहुत अच्छा लगा। उसमें से एक चित्र था जो 4 स्तंभ का चित्र है, तो उसमें उन्होंने बताया ब्रह्मचर्य सुधर्ण
0: राज्यों की आधार।
1: हाँ, तो उसमें ये लगा कि 4 स्तंभ को अगर हमारा जीवन में हम मजबूत करें, उनको उन्होंने जो समझाया था, तो आप एक देवता बन जाए। हमारा बुद्धि में ये आया, देवता बनने की बात तो अलग है, कम से कम एक अच्छा इंसान बन जाए, ये हमारा बुद्धि में। तो फिर रात्रि का उनका प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपको एक्स्ट्रा जानने के लिए मॉर्निंग में हमारा जो सेशन होगा उसमें आपको आना पड़ेगा। फिर आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र साप्ताहिक का कोर्स हुआ।
0: तो उस कोर्स में आप अकेले गए थे?
1: नहीं, वहाँ उस कोर्स में हम 150 करीब भाई बहन गए थे। उसमें
0: आपकी परिवार से आप अकेले थे?
1: हमारा परिवार से हम अकेले थे। तो उसमें से 75 लोग क्लास किया, शुरू किया। लेकिन कठिनाई ये थी उस समय कि खान पान के ऊपर जो उनका सिस्टम था कि राजयोग अभ्यास करने के बाद प्याज लहसुन ये सब चीज को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक टारगेट दिया था, आप सुबह शाम मेडिटेशन करो। ये नहीं सोचो कि हम मच्छी वगैरह सब खाते हैं वो कैसे होगा क्या, उसके बारे में आप सोचो नहीं। आप सोचो कैसे करके हम दोनों टाइम में राजयोग अभ्यास करें। राजयोग अभ्यास करते करते करते आपको अच्छा फीलिंग्स होगा और उस फीलिंग्स के आधार पर ये सारे चीजें आपसे दूर हो जाएंगे, संग दोष और ये खान पान। क्योंकि हमारा उस समय पान सिगरेट मद जो शराबी वगैरह ये हमारा अभ्यास में नहीं था, क्योंकि घर की थोड़ा पिताजी की स्ट्रिक्ट, चाय तक पिया नहीं था हमने और आज तक हम चाय नहीं पीते।
0: अच्छा
1: जी। क्योंकि एक बार पिताजी के पास हम गया था चाय पीने के लिए, कुछ मेहमान आए हुए थे तो कटोरी लेके चला गया। पिताजी हमको मुरमुरा थोड़ा थमा दिया, चाय की बात जब आया, तुम जब इनकम करेगा तब चाय पिएगा।
0: अच्छा।
1: तब से आज तक हमने चाय पिया नहीं। तो ये हमारा बुद्धि में था नहीं कि हमने ज्ञान में चलेंगे, बाकी इच्छा था, सत्संग करना जीवन में अच्छा है। तो ये चीज हमको बहुत आकर्षित किया, तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं, जैसे चलता है आज ही चलने दो और धीरे धीरे धीरे धीरे वो छोड़ के चले जाए। तो फिर हम बोला ठीक है, हम क्यों इतना मेहनत कर, जब वो अपने आप छोड़ के जाएंगे हमें कोई मेहनत करना जरूरी नहीं। लेकिन तब
0: मतलब
1: से
0: हमारी कमी कमजोरी अपने आप चले जाए।
1: अब हाँ, हमारा कमी कमजोरी अपने आप चले जाए।
0: तो फिर परिवार में पता था कि आप राजयोग मेडिटेशन सीख रहे हैं?
1: परिवार में पता यहाँ तक था दीदी कि पिताजी को लोगों ने ये बता दिया कि इस संस्था में जो जाता है वो मैरिज नहीं करता है।
0: अच्छा।
1: तो ये पिताजी को तब पता चला और पहला दिन कोर्स में हमने घर पे बता दिया कि आज से मच्छी वगैरह जो होता है मैं नहीं खाऊंगा। सेकेंड दिन का कोर्स में जब आया फिर माताजी को बोल दिया कि ये प्याज लहसुन मेरे लिए नहीं करने, अलग से कुछ भून लेना मैं खा लूं। तो उस समय पिताजी को माताजी ने बोले ये क्या दो चार दिन से बोलता है मैं प्याज लहसुन कुछ नहीं खाऊंगा। तो पिताजी उनको ये बोले ये ओम शांति कुछ सत्संग हो रहा है, गाँव के कुछ लोग जा रहे है, ये वहाँ जाता है सुनने में आया, तो वो लोग जब चले जाएंगे फिर उनका नेचुरल जैसे चलता था ऐसे चलेगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये
0: जाने वाले
1: और इस लाइन में पक्का हो जाएंगे। लेकिन माताजी का एक था आशीर्वाद कि वो चाहती थी मेरा कोई एक संतान अगर इस मार्ग में जा रहा है तो ये हमारा भाग्य की बात है। जो लौकिक में सुना करते हैं कि अगर अपना लड़का या अपना परिवार में कोई साधु संन्यासी बनता है तो ये पूर्व भाग्य की ही बात है। ये जो विश्वास था घर पे गांव पे भी आज तक है
0: जी।
1: हर कोई घर से या परिवार से साधु संन्यासी बनना इतना आसान नहीं है। फिर हमारा ये सिलसिला चलता रहा। गांव में जो 75 लोग आ रहे थे रेगुलर क्लास करने के लिए, जो भाई निमित था उनका ट्रांसफर हो गया। फिशरी डिपार्टमेंट का अच्छा एक भाई मैंने गांव का था, ट्रांसफर होने के बाद धीरे धीरे जो दायित्व लेकर के कर रहे थे तो धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन हमने जो 5-6 महीना रेगुलर क्लास किया था तुरंत जो बंद हुआ हमको बहुत कष्ट हुआ, उतना कष्ट हुआ कि इसके लिए हमारे पास अभी शब्द नहीं है। फिर गांव से 8 किलोमीटर दूर एक गांव था तुलसीपुर, तो वहां फिर जाने के लिए हम सोच, तब हमारे पास सिर्फ साइकिल था, कॉलेज वाला साइकिल।
0: मतलब जब 89 में आपको इस राजयोग मेडिटेशन का परिचय मिला उस समय आपकी क्या उम्र रही?
1: 23।
0: अच्छा।
1: 12वीं में था, उसके बाद एक जो एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद हमने बाबा का परिचय प्राप्त, मतलब ये है 89 की। तो फिर जो साइकिल था उसको लेकर के हम गाँव से रोज 8 किलोमीटर दूर जो गीता पाठशाला हमारे था, रात को भोजन करने के बाद फिर हम चले जाते थे, रात को वहाँ रुकना, फिर अमृत वेला वहाँ करके मुरली क्लास करके फिर गांव में आना। ये सिलसिला हमारा 89 से लेकर 91 तक चला। फिर 91 में मधुबन से एक न्यूज गया कि 91 का जो ब्रह्मा बाबा का जनवरी मास में जो होता है योग तपस्या, 91 में जो तपस्या मास चला, तो यहाँ से मैसेज गया था कि दादियों ने जो बाबा के साथ 14 साल तपस्या किया था, अगर इस महीने में हम लोगों वो तपस्या करते हैं तो 14 साल का जो बाबा का बच्चों को जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त ईश्वरीय प्राप्ति जो होगा आपको वो मिलेगा। तो पिताजी को बोल के फिर हमने उसी गीता पाठशाला में एक महीने तक वहाँ रहा था और योग भक्ति का प्रैक्टिस हमने वहाँ किया था, तुलसीपुर गांव। फिर पिताजी से जब हमने छुट्टी लिया, पिताजी बोले कि तुमने यहाँ गांव में क्लास करता था, सत्संग करता था, अभी यहाँ से फिर दूर 8 किलोमीटर दूर कौन इतना सत्संग से क्या प्राप्ति होता है जो तुम वहाँ जाते हो, और फिर अभी बोलते हो कि वहाँ मुझे एक महीना रहना है, फिर आगे का क्या। मैंने बोला आगे का क्या तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, बाकी आपका छुट्टी हो तो एक महीना जाके थोड़ा योग तपस्या अभ्यास करेंगे, फिर आगे का जब होगा तो आपको बताऊंगा।
0: पढ़ाई की प्रेशर नहीं थी, अभी तो 12वीं किया है, अभी आप ये सब कर
1: तो
0: रहे हो।
1: बुद्धि में यही था कि बहने भाई लोग जो सफेद ड्रेस में गांव गांव गली गली में सेवा कर रहे, मैंने उसमें ये आकर्षण था मैं जाकर लोगों को सत्संग सुनाऊंगा, ये बुद्धि में था। फिर ये लोगों ने बताया कि कुछ दिनों के बाद संसार विनाश हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: मैंने 2000 उनका टारगेट था कि जो अपना गांव में से बोलते हैं ना अलग अलग दर्शन वाले, अलग अलग जो कुछ भविष्य ज्ञानताकारी जो जानकारी वाले बोलते हैं, उसी हिसाब से बुद्धि में था कि 2000 अगर विनाश हो जाएगा कुछ पुण्य कर ले तो काम आएगा, इसी हिसाब से हम चल पड़े। तो पिताजी बोले ठीक है, फिर हमने वहाँ एक महीना जनवरी मास का पूरा कंप्लीट किया था। तो उस समय में भुवनेश्वर में दादी प्रकाशवाणी को आना था जनवरी 26 को, तो सभी ने बोले हमारा भट्टी चल रहा है और वो भट्टी को कैसे ब्रेक करके हम चले, लेकिन हमारा बुद्धि में था कि दादी बड़े मुश्किल से राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं, कभी चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए दादी का दर्शन हम कर ले। तो उस गीता पाठशाला से 4-5 भाई हम फिर आए थे भुवनेश्वर दादी से मिलने, तो वहाँ के आकर्षण और बहुत था कि देखो दादियों ने कैसे कैसे कहाँ से कहाँ कहाँ से कहाँ, जब यज्ञ का हिस्ट्री थोड़ा बहुत मालूम हुआ फिर ये चीज और गहरा होता गया। फिर वहाँ से आकर फिर जैसे योग भट्टी चालू था ऐसे किया, बाकी वहाँ से एक नया चीज हमको आभास हुआ, हमारे गांव से एक भाई जिसका फैमिली टोटल आके भुवनेश्वर में रह रहे हैं और टोटल फैमिली उनका ज्ञान में चल रहे, तो उस भाई के साथ जब हमारा परिचय हुआ और वो योग कैसे करते है, अनुभव कैसे होना है, हमारा ब्राह्मण जीवन कैसे होना चाहिए और कुमार जीवन और लौकिक जीवन में क्या अंतर है, वो डिटेल से उन्होंने बताया कि हम नए नए थे और उन्होंने जितना भी बताया हमें बिल्कुल कुछ मालूम नहीं था। फिर उन्होंने ये सारा पूछने के बाद क्वेश्चन किया कि आप ज्ञान में क्यों चला, क्या कारण है जो आप ज्ञान में चलते हो। फिर मेरे को एक शक लगा क्योंकि ये लोग बोलते थे कि ज्ञान में चलो, जब नहीं चलते थे तब बोले कि ज्ञान में चलो तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। फिर जब
0: ये किसने बोला ज्ञान में चलो,
1: जो भाई जो गांव का था जिन्होंने भुवनेश्वर में पिताजी के साथ रहा करते थे, टोटल फैमिली उनका था भुवनेश्वर में, उनका पिताजी भुवनेश्वर में कहीं नौकरी करते थे, तो ये भाई बहन सब ज्ञान में चलते थे। और वो भाई जब ये पूछा मिला भाई साहब आप लोग तो बोलते हो ज्ञान में चलो, फिर ज्ञान में चलने के बाद बोलते हो ज्ञान में क्यों चला, इसका क्या
0: अर्थ है।
1: अर्थ है
0: जी,
1: नहीं फिर भी कुछ तो मन में आया होगा तो आपने ज्ञान में चला। मैंने इतने उनको थोड़ा रुक के बोला कि देखो सभी बोलते हैं मैंने दुनिया 2000 को विनाश हो जाएगा, तो विनाश होने के पहले कुछ पुण्य कर दे ताकि कुछ काम में आएगा। फिर उन्होंने पलट के फिर दूसरा क्वेश्चन किया, तो अगर 2000 को विनाश नहीं हुआ तो ज्ञान छोड़ दोगे, तो हमारे मन में एक धक्का आया, अगर ज्ञान इतना दिन चलने के बाद छोड़ देंगे कैसे। तो उन्होंने बोले आपका उत्तर ही बोलता है कि 2000 तक चलेंगे, उसके बाद गारंटी कुछ नहीं, तो ये तो फिर आपको ज्ञान में चलने नहीं देगा। उनका कहना था कि ज्ञान माने 2000 को विनाश नहीं होगा तो ज्ञान छोड़ दोगे, इसी हिसाब से हमने बोला कि नहीं। फिर हमने बोला कि नहीं, अब जब इतना दिन चल पड़े हैं तो फिर आगे चल पड़ेंगे ना, ये पूरा निश्चय नहीं हुआ। उन्होंने पूरा ऐसे कहा कि तुम्हारा
0: ज्ञान की तर्क वितर्क की बातें की।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी।
1: तो फिर उन्होंने बताया कि आपका बुद्धि में ये रहना चाहिए और आज से रखो कि विनाश कब होगा उसका कोई मूल ये नहीं है, उद्देश्य नहीं है, जब विनाश होगा होगा, तो मुझे बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है,
0: परमात्मा का हाथ नहीं
1: छोड़ना है, तो ये बुद्धि में रखो तो आपका विपरीत परिस्थिति में कभी कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है,
0: लेकिन समर्पित होने का संकल्प कैसे लिया।
1: फिर समर्पित की बात जब आई, वो भाई की ये जो बात हुआ, फिर उनसे थोड़ा दोस्ती जैसा हो गया एकदम नजदीक, और ये फीलिंग हुआ कि हमारा एरिया का भाई है, तो उनसे फिर नजदीक होकर के ज्ञान की कुछ बातें हुआ, फिर माउंट आबू की बातें हुई, फिर हम वहाँ रह सकते नहीं रह सकते ये सारी बातें, क्योंकि सेंटर की इच्छा नहीं थी और हेडक्वार्टर में रहने का अगर चांस मिलता है तो आगे बढ़े। और उस समय हमारे एरिया का एक भाई था जो दिल्ली में रहा करते, तब हम उसको देखा नहीं था। तो ये बुद्धि में आया, जब वो भाई दिल्ली में रह सकता है तो हम क्यों नहीं। फिर भाई जी से उसी समय बात कर लिया कि मेरा इच्छा है माउंट आबू में जाके परमानेंट सेवा कर। फिर वो भाई ने अच्छा नोट किया था, क्योंकि हम जब यहाँ घर से जाते थे 8 किलोमीटर दूर, वहाँ जाकर स्नान करके अमूर्ति वेला करना, फिर मुरली पढ़ना। और दीदी आज तक हमने जब से ज्ञान में चले, जो बीच में जो बंद हुआ था वो भाई के कारण, उसके अलावा हमारा आज तक यज्ञ में जब से है मुरली एक भी दिन मिस नहीं हुआ है। ताने क्यों, मुरली के समय में हमारा सारे काम बंद करके हम सीधा चले जाते मुरली क्लास में। यही हमारे पास एक ही ताकत है, बाकी तो परिवार संगठन भाई बहन की आशीर्वाद ऐसे हम अभी तक चल रहे।
0: तो समर्पित का संकल्प कैसे आया और मधुबन कैसे पहुंचे?
1: फिर वो जो भाई से हमने मिला था, वो भाई को हमने बोला कि घर पे हम 3 भाई है, मैं सबसे बड़ा हूँ, और घर का जो जमीन है लौकी खेती बाड़ी, वो साल के लिए हमारा खाना पीना हो जाता है, तो इसीलिए हमारे ऊपर कोई इतना बड़ा
0: जिम्मेवारी
1: नहीं है। तो ये भरोसे से भाई से हमने बात किया। वो भाई ने हमको भरोसा दिलाया कि ठीक है हम दादी से बात करते। फिर दादी से बात करके उन्होंने मैसेज दिया, दादी ने उनको बोला था कि भाई वो कहीं गांव का रहता है, ज्ञान योग कैसे करता है नहीं करता मैं नहीं जानता, संगठन में कैसे चलेगा, किसका संस्कार कैसे, ये संस्कार मिला के चल पाएगा नहीं पाएगा वो मैं नहीं जानता, जब तुम्हारा भरोसा है तुम्हारे भरोसे ऊपर मैं राजी होता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वो भाई को बुलाओ ओम निवास, ये वो मेरे सामने ज्ञान योग करेगा, संगठन में रहेगा, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि ये कैसे ज्ञान में चल सक या नहीं चल सक। फिर एक भाई के पास मैं रहा, उन्होंने सेटिंग किया, 1 महीना दादी के सामने ज्ञान योग सेवा जो मिलता था सेंटर का वो सेवा करने के बाद, उस समय शांतिवन का कंस्ट्रक्शन चलता था, तो महेंद्र भाई आज है नहीं, तो उन्होंने दादी को मैसेज दिया कि हमको 2 भाई चाहिए। वो भी उसमें हमारी नाम नहीं था, जो भाई दिल्ली गया था वो भाई, वो जिसको चुनेगा दूसरा भाई। तो वो भाई ने भेजा मेरे को गांव कि वो भाई को बुला के लाना कि वो माउंट आबू आए। तो वो भाई को जब हमने मिला और उन्होंने लौकिक में बाबा का प्रचार प्रसार, बाबा का सेवा करूंगा, इस हिसाब से मैं अभी मधुबन नहीं आ सकता, ये दादी को आप बताएं। फिर उस समय हमारे पास जितना बुद्धि था उसी हिसाब से उनको समझाया कि भाई मधुबन जैसा स्थान नहीं मिलता है, अगर ऑफर मिलता है, और आप तो दिल्ली में कुछ दिन रहा फिर वहाँ क्या दिक्कत है। लेकिन उनका एक जिद्दी था कि लोकल में हमारा बाबा का सेवा करें, ये तो उनका विचार था। फिर हमने चुपचाप आ गए, लेकिन ये ठान के आए कि अब वो भाई नहीं जा रहा है, उसके साथ जो दूसरा भाई जाना था वो भी नहीं जा रहा है, तो इसलिए हमारा नंबर पक्का है। तो उस हिसाब से हमने दादी को मैसेज दिया, और वो मैसेज देने के बाद फिर हमारे पास उस समय कुछ नहीं था, टिकट दादी करवाई, फिर ड्रेस भी कुछ नहीं था, ड्रेस भी बनवाए, टिकट भी बनवाए, हमको गाड़ी में छोड़े। तो इसी हिसाब से हमने मई 25 मेरा जन्मदिन था, मई 25 को ट्रेन में बैठा वहां से, और यहाँ 27 को पहुंचा। फिर पहुंचने के बाद हमको सेवा मिली कंस्ट्रक्शन में सुपरविजन की, और इतना धूप होता था उस समय
0: शांतिवन का
1: कंस्ट्रक्शन महेंद्र भाई के अंडर में, बड़े मधुकर जो आज कारपेंटर में है, रमेश भाई कंस्ट्रक्शन के, उनके साथ हमको सेवा मिला।
0: मगर आप तो सिर्फ 12वीं पढ़े थे।
1: जी जी जी, कंस्ट्रक्शन का इतना कोई कुछ ज्ञान नहीं, बाकी सेवा करे जो सेवा मिलेगा वो करेंगे, उसी हिसाब से हमको वहाँ यहाँ शांतिवन में सेवा मिला, और सेवा में लग गए। इस तरीके से शांतिवन पहुँचना आसान हुआ, और वहाँ 96 तक हम जो सेवा किया कंस्ट्रक्शन में, तो बुद्धि में उस समय ये आया था, हम नहीं जानते थे कि प्याड ऑफिस में एक फाइट बनता है, ये होता है वो होता है, हमारा बुद्धि में नहीं था। हमारा बुद्धि में ये था कि हम समर्पित हो गए, बाकी ये जो फाइल बनाना ये चीज हमको
0: नहीं पता।
1: तो फिर जब ये पता चला कि इसे फाइल बनता है और वह रजिस्टर वगैरह बनता है, फिर हमने ये डिसीजन कर लिया जब तक हमारा फाइल नहीं बनता तब तक हमको घर जाना नहीं है।
0: अच्छा,
1: 91 से लेकर के 96 तक हम घर नहीं गए थे, 96 के बाद हमारा जो यहाँ के हिसाब से जो फाइल बनना था बनना, हमारा नंबर आया, उसके बाद हम घर गए।
0: अच्छा, बीच में आप जो बोल रहे थे कि संन्यास मतलब ऐसे भिखारी वाला संन्यास नहीं बनना है, तो वो बात कहाँ से आई?
1: क्योंकि हमने देखा प्रैक्टिकल में जितने साधु संत महात्मा हमने देखा है, गेरुआ वस्त्र धारण करके गांव में आके लोगों को भिक्षा दे ही करके जो मांगते थे,
0: भिक्षा लेते,
1: हाँ ये हमको कष्ट होता था, क्योंकि जो भी हमने जिन जिन को देखा है एजुकेटेड पर्सन देखा है, लेकिन ऐसे मांगते हैं, कई लोग बोलते थे उनको कि आप इतने हट्टे कट्टे हो, आप मांग के क्यों खाते हो, सन्यासी बन गया ठीक है, लेकिन मांग के खाना ये कौन सी सन्यासी की, और जब लोगों से मांग के खाते हो तो सन्यासी किसी बात की रहा, पिताजी माताजी को छोड़ा यहाँ आकर के मांग के खाते हो, ये चीज हमको बड़ा अकड़ता था कि ये सन्यासी हमको फिर पसंद नहीं।
0: तो जब आपको समर्पित होने का ख्याल आया, लेकिन आपको ये क्लैरिटी थी कि आपको सन्यास बनना मतलब भिखारी वाली सन्यास नहीं बनना है, भिक्षा लेने वाली सन्यास नहीं बनना है, तो आपको समय क्लैरिटी थी कि मैं जब ईश्वरी विश्वविद्यालय में समर्पित होऊंगा तो मेरा एक रॉयल लाइफ होगा और मुझे इस तरीके से भिक्षा लेने की जरूरत नहीं।
1: तो बुद्धि में ये था, जो बहने भुवनेश्वर से आए हुए थे वो लोगों जो खाना खाते थे और भुवनेश्वर सेंटर में रहते थे वो कहीं नहीं जाते थे, बाबा का भंडारी से जो मिलता था, जैसे पालना मिलती थी उसी हिसाब से वो चलते थे, भाई जब वो चल रहे हम क्यों नहीं चल सकते, ये बुद्धि में पक्का था, क्योंकि ज्ञान को समझाना और खुद समझना, लोगों तक उस बात को प्रैक्टिकल रखते थे वो लोग, ऐसे कोई प्रश्न नहीं जिस प्रश्न का उनके पास उत्तर नहीं था, तो हमने उस चीज से ज्यादा प्रभावित हुए। पर लोगों ने जो पूछा था कोर्स करने के समय, हर चीज के ऊपर उनका क्वेश्चन था, क्रॉस क्वेश्चन,
0: उनके पास जवाब थी,
1: उनका पास वो जवाब। दूसरा आकर्षण था, जब हमारा गांव में कोर्स चला उसमें इंजीनियर प्रोफेसर ये सब थे, किंतु लौकिक में हमने नहीं देखा था जो साधु संत महात्मा और जो लोग सत्संग करते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग कभी सत्संग करते हुए हमने नहीं देखा, सत्संग कराने के लिए भी ऐसे एजुकेटेड पर्सन नहीं देखा था, वो चीज थोड़ा हमको और आकर्षित किया कि इस ज्ञान में जरूर कुछ है, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर थे, होम डिपार्टमेंट का बड़ा ऑफिसर था, एक बड़ा इंजीनियर भाई था जो हमको कोर्स कराया था, तो हमने देखा मतलब

0: इस ज्ञान मार्ग में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों ये पढ़ाई पढ़ते हैं, और जब इतने पढ़े लिखे लोगों इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो जरूर इसमें कुछ अंधविश्वास की बात नहीं होगा। तब वो लोग, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो ऊट पटांग क्वेश्चन करते हैं, गांव वाले भी इतना क्वेश्चन नहीं कर सकते जितना क्वेश्चन वो लोग। ऐसे गांव में था कोर्स के समय, सभी लोगों ने हर चीज को माना, लेकिन सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष है उस चीज को कोई नहीं माना। फिर जो कोर्स करने वाले भाई थे, हम उनसे डायरेक्ट पूछा, मतलब भाई साहब एक बात पूछो, कोई बात नहीं पूछ। फिर हमने पूछा था उनको कि ये लोग सभी बात को मानते हैं, आत्मा को माना, परमात्मा को माना, सृष्टि चक्र में जब सृष्टि चक्र की समय सीमा 5000 वर्ष कहा गया वो नहीं माना। फिर उन्होंने एक लॉजिक दिया कि देखो हम 10 किलोमीटर रास्ता जब तय करते तो उस रास्ते में जब हम 90% सिग्नल देते कि ये चीज है, लास्ट सिग्नल को अगर कोई मानता नहीं है और हम कहते हैं कि लास्ट सिग्नल यही होगा, अगर वो नहीं मानते 90% चीज को उन्होंने स्वीकार किया है तो फिर ये जरूर 100% सत्य है। अगर वो लोग नहीं मानते तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो बाबा जाने और हो जाए। फिर हमारा बुद्धि में ये हो गया कि ये लोग कुछ बोले या ना बोले इसमें कोई मतलब नहीं। फिर दूसरी बात, जब 6 महीने वो लोग ज्ञान में रेगुलर सुने और उसके बाद सिर्फ खान पान के कारण चले गए, प्याज लहसुन नहीं खाना है, माछ मंदिर ये नहीं करना है, फिर मैंने बोला ये लोगों का निश्चय नहीं है।
1: जब आप समर्पित होने के लिए आए और ये सारी बातें, तब तक फिर आपके परिवार मान गई थी आपकी इस तरह?
0: परिवार वाले माने थे कुछ, बाकी कुछ नहीं माने थे, क्योंकि उनको जब बोला गया पब्लिक से कि संस्था में जो जाते हैं मैरिज नहीं करते, और घर पे घर का बड़ा होने के कारण साहस से कोई पूछ नहीं पाते थे। फिर एक दिन हमारा बुआ जो होगा तो उन्होंने पूछा कि ऐसे से बात हम सुन रहे हैं, मिनोला ऐसे कोई बात नहीं, अगर वहाँ मैरिज का कोई सिस्टम नहीं है फिर वहाँ वो सत्संग करने हम जाएंगे, तो उनको ये जवाब हमने दिया था। तो अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और घर पे उसमें भी हम एडजस्ट करके रह रहे हैं। अच्छा, जो बंदे को हम लाएंगे घर पे उसका खाना पीना रहना ये सारी सिस्टम करेंगे, फिर नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, इनकम सोर्स कुछ होगा, उसके बाद सोचेंगे कि मैरिज करना है नहीं। फिर उनके बुद्धि में क्या है, नहीं नहीं हमारा लड़का ठीक समझा है, अभी पढ़ता है, नौकरी या चाकरी जो भी बिजनेस करेगा उसके बाद मकान उसके लिए बना के फिर मैरिज कर, मतलब फिर उन्होंने ये छुट्टी दिया, बेटा तुम जिस रास्ते में जाते हो वो रेगुलर जाओ।
1: फिर खान पान का भी छूट मिल गया।
0: हाँ, फिर क्योंकि उन्होंने ये समझा कि हमारा लड़का ज्ञान ठीक समझा है,
1: ठीक समझा,
0: क्योंकि नौकरी करेगा।
1: फिर भले वो फॉलो नहीं करते हैं, वो सेंटर नहीं जाते, लेकिन आपको छुट्टी मिल गई।
0: छुट्टी मिल,
1: बहुत अच्छा। सो भाई जी, वर्तमान समय में आप क्या करते हैं संस्था में?
0: संस्था में यहाँ जितने भाई बहन हम लोग रहते हैं, दुनिया के हिसाब से हम लोगों सभी अपने अपने जो सेवा स्थान मिला है, जैसे हमको पीने का पानी का सेवा मिला है वहाँ हम सेवा दे रहे, उसके साथ जब पब्लिक में कभी सेवा का चांस मिलता है वो करते हैं। बाकी ड्रिंकिंग वाटर सेवा में हमको 10-12 घंटा से ज्यादा समय हो जाता है।
1: मतलब इतने बड़े कैंपस में जो मिनरल ड्रिंकिंग वाटर की आवश्यकता होती है
0: उस सेवा में हम अपना समय
1: जगह जगह पे उस समय पे उपलब्ध रहे, वाटर मशीन चलाओ, क्लीनिंग करो, क्लीनिंग वाटर करो। को और मशीन का मेंटेनेंस, ये सारी चीजें आप संभालते हैं
0: जी।
1: बहुत अच्छा है भाई जी। आपको जीवन में कब ये महसूस हुआ कि इसे जीना कहते हैं या जीना इसी का नाम है? वो क्या पल था, क्या मोड़ था वो?
0: ये तो हमने इतना नहीं सोचा, बाकी ये सोचा कि जैसे कोर्स के समय जो भाई बोला था ये चीज अगर आपके जीवन में आ जाएगा आप एक देवता बन जाओगे, तो हमारा लक्ष्य वहाँ था कि हम देवता बनने की बात छोड़ो, एक अच्छा इंसान बन जाएंगे, ये हमारा बुद्धि में था। तो ये था जब हम कोर्स करने के पहले जो मैसेज था कि अच्छा इंसान बन जाएंगे समाज के अंदर। आज समाज में ये देखा जाता है कि लोगों कितना एजुकेशन लिया हुआ हो, कितना भी पढ़ाई किया हो, लेकिन चरित्र नाम का चीज उनके पास नहीं है। जैसे सर्टिफिकेट मिलने के बाद कैरेक्टर इज गुड लिखा जाता है, लेकिन आज के समय अगर उनको पूछा जाए कि कैरेक्टर क्या है तो उसका जवाब नहीं दे सकते, और उसका जवाब सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जितने भाई बहन है वो लोग उसका जवाब दे सकते, तो ये चीज ज्यादा हमको प्रभाव
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आज आप अपने अमूल्य समय लेकर के आए और हम सभी को आपकी जीवन के उन चंद पलों से अनुभव कराया कि बाल्यकाल में हमारे मन में जो चीजें होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की दिशा बनाती है। भले उस समय हम ये सोचते हैं कि हम बड़े होकर के इंजीनियर बने क्या बने, लेकिन मूलभूत जो हमारी संवेदनशीलता या भावनाएं जो होती है वो हमारी जीवन की दिशा बनाती है।
0: जी, थैंक यू।
1: धन्यवाद भाई जी। तो दोस्तों, ये था आज के इस योगी की कहानी, जीना इसी का नाम है। इस कार्यक्रम में आप हमेशा जीवन के उन पलों को या फिर हर एक के जीवन के कुछ नया दृश्यों को आप सुनते हैं, और ये प्रेरणा लेने की हम कोशिश करते रहते हैं कि क्यों हमें इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है और आध्यात्मिकता से हमारे जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन या हमारे जीवन में शक्ति का प्रदान होता है। दोस्तों, यहीं पे हम विराम लेते हैं और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए योगी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: सृष्टि

0: शक्तिशाधिके शरण्यै त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वशार्थि हरे देवी नारायणी नमस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टकं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। नमस्ते।
1: अभी बजे हैं दोपहर के 12। एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। थोड़ा सा जगदीश भाई साहब के बारे में भी हम जानेंगे। आज दीदी उर्मिला जी हमारे मध्य हैं। आप एक लेखिका हैं, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और इसके साथ साथ आप एक चिंतक हैं और आप एक साधक तो है ही हैं, और आपने अनेक जीवन को मार्गदर्शन दिया है परिवर्तन करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को एक लाइफ कोच भी आप हैं। तो आइए दीदी का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत।

0: बाल्यकाल से ही उनको भगवान से बहुत अधिक प्रेम था। उनका जन्म मुल्तान शहर में हुआ था, कॉलेज के अच्छे पढ़ाकू स्टूडेंट्स में थे और उस समय कुछ कुछ सोशल एक्टिविटीज में पढ़ते पढ़ते भी भाग लेते थे, क्योंकि आतम भाई के जो बड़े भाई लक्ष्मण भाई थे वो उनके साथ उसी कॉलेज में पढ़ते थे, तो उनके बारे में उन्होंने कई बातें आंखों देखी बताई हैं। और वो कराची गए थे, उन्हें कुछ इंट्यूशन हुआ था कि भगवान धरती पे आया है और वो कराची में आया है, लेकिन जब वो कराची में उन्हें ढूंढने गए तब तक ये पूरा कारमा माउंट आबू में शिफ्ट हो चुका था। लोगों ने उन्हें बताया था कि हाँ यहाँ कुछ सफेद कपड़े वाले लोग रहते थे, लेकिन एक तो माइनॉरिटी थी और एक बाहर की पब्लिक रिलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, तो लोग कोई बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण नहीं दे पाए थे। उसके बाद पार्टीशन के बाद वो भी दिल्ली में आ गए। दिल्ली के पास ही सोनीपत है, वहाँ पे एक हॉस्टल था जिसमें वो हॉस्टल के वार्डन भी थे और लेक्चरर भी थे, हिंदी इंग्लिश उर्दू कई भाषाओं के वो बहुत ही ज्ञाता थे और जितने भी भारतीय शास्त्र वो सब उन्होंने पढ़े थे
1: जी।
0: तो उनको वास्तव में ये परिचय ऐसे मिला कि दिल्ली में एक थियोसोफिकल सोसाइटी थी, उसने ब्रह्मा कुमारी बहनों को भाषण के लिए इनवाइट किया था। उस समय 52 में एक छोटी सी जगह बनी थी जहाँ पे कुछ बहनें रहती थी और जानकी दादी और एक दो बहनें उस थियोसोफिकल सोसाइटी में भाषण करने गई थी। ये भी वो भाषण सुनने के लिए बैठे हुए थे
1: जी।
0: और जब उन्होंने इनका भाषण सुना तो इनको लगा कि हाँ यहाँ मुझे कुछ मिल सकता है, तो ये बहनों के पीछे पीछे सेंटर पे गई और बहनों ने इन्हें अगले दिन आने का समय दिया। तो सोनीपत से दिल्ली जाना ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात थी। सोनीपत से सुबह सुबह एक ट्रेन निकलती थी, उसमें जाना और कोर्स करके वापस अपनी ड्यूटी पे भी पहुंचना। उस समय ट्रेनें इतनी ज्यादा नहीं चलती थी और फिर स्टेशन से पैदल आश्रम तक जाना, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ किया। एक बार का अनुभव है कि थोड़े से लेट हो गए तो आखिरी का जो गार्ड का डब्बा होता उसमें चढ़ गए। गार्ड ने सोचा कि ये यंग लड़का शायद सोनीपत से भाग के दिल्ली में फिल्म देखने जा रहा है
1: जी।
0: तो उसको रोका, उसने कहा मैं फिल्म नहीं देखने जा रहा हूँ, आज निराकार भगवान धरती पे आके ब्रह्मा के मुख से जो बोल के गए हैं वो महावाक्य मुझे सुनने, पता नहीं उन्होंने क्या बोल दिया होगा और मैं वंचित रह जाऊं। तो गार्ड को भी दया आ गई, उसको बैठने दिया, उसको सीट दी और फिर वो सीधे सेंटर पे गए, वहां से फटाफट सुन करके फिर सोनीपत अपनी ड्यूटी पे आए। तो इस तरह से शुरू का लाइफ बहुत ही संघर्ष का रहा। फिर इन्होंने अपने कार्य से रिजाइन कर दिया, ये कुछ अपने कॉलेज की जो मैगजीन थी उसमें लिखते थे, उसके एडिटर थे, उससे भी रिजाइन कर दिया। बाद में जब इनसे आर्टिकल मांगा गया तो इन्होंने कहा कि ये हाथ अब भगवान के लिए समर्पित हो चुके हैं, इसलिए अभी ये किसी और के लिए कुछ भी नहीं लिख सकते। शुरू में दिल्ली की जो हमारी ब्रांच थी वो बहुत छोटी थी और उस ब्रांच में एक दो कमरे ही थे, गुलजार दादी रहती थी, बाकी दादियां रहती थी। ये तो उस हॉल में बैठते थे जहाँ पे क्लास होती थी, सारा दिन बैठे बैठे लिखते थे और जब इनका मन करता था कि मैं पांव लंबे करूं तो पांव कैसे लंबे करूं, यहाँ तो देवियां रहती, जिन देवियों की हम पूजा करते हैं पांव लंबे करें तो उनका डिस्ट्रिगार्ड हो जाए। बहनों का बहुत रिकार्ड था और इन्होंने अपनी अलमारी ऐसी बनाई थी जो फ्रूट की पेटी होती है
1: जी,
0: वो पेटी के ऊपर पेटी रख करके वो अलमारी बन गई। वो रफ पेटियां नहीं होती फ्रूट की, अमरूद की, सेब की, वो लकड़ी की आती है। हाँ, तो उनमें अपनी किताबें रखते थे। गर्मी के दिन होते थे, बहनों को बहुत गर्मी लगती थी, एसी नहीं, कूलर नहीं, शायद पंखा रहा होगा, तो बहुत दूर एक बर्फ की फैक्ट्री थी, वहां से सिर पे बर्फ की सिल्ली रख के लेके आते थे ताकि बहने ठंडा पानी पी सके
1: जी।
0: तो बाबा ने भी कहा था कि ये बच्चा बेगरी पार्ट में समर्पित हुआ तो इस बच्चे की तो महिमा परमापार है। कई बार बाबा कहते थे ये मेरे से भी आगे है। और होता क्या था कि बाबा कहते थे कि बच्ची शिवरात्रि आ रही है तो तुमको ये वाली बुक छपवानी है। अब बुक छपवाने के केवल दो दिन है, उसमें वो बुक तैयार करनी, उसकी रीडिंग करनी, फाइनल करना, बाबा को दिखानी, उसमें समय चला जाता था, एक दिन बचता था, उसमें वो दिल्ली के

0: प्रेस में जाते थे कि मेरी ये बुक छापो अर्जेंट है, तो वो दिल्ली वाले कहते थे जगदीश भाई अर्जेंट तो कभी कभी होता है, आप तो जो भी काम लेके आते हो कहते हो अर्जेंट है। वो कहते थे मैं क्या करूँ, ऊपर वाले का काम है, मेरी कोई वश की बात नहीं है। और उन दिनों साइकिल नहीं, स्कूटर नहीं, तो कृष्णा जहाँ वो रहते थे शक्ति नगर, वहां से पैदल प्रेस में जाते थे, कोई भोजन का टिफिन नहीं, जेब में भुगड़े होते थे, बाहर कोई पेड़ है उसके नीचे बैठ के भुगड़े खा लिए, पानी पी लिया, और जब तक वो छपेगा नहीं तब तक वापस नहीं आएंगे, क्योंकि बीच में कोई मिस्टेक है तो इतनी दूर से फिर करेक्शन करना, तो वो पूरी छपाई करा के और फिर सिर पे ही रख करके वापस लेके आते थे
1: जी।
0: तो आत्म भाई कहते हैं कि जगदीश भाई चलते थे और हम उनके पीछे दौड़ते थे
1: जी।
0: क्योंकि लंबी टांगे थी और चाल बहुत तेज थी, तो बहुत मेहनत की शुरू में, और फिर आते ही लिटरेचर पैक कराना, सेंटरों पे भेजना। अगर कोई बांधेली बहन है तो उस बहन के लिए सारे प्रबंध करना, बांधेली माता है, कई लोगों ने कई बार इनकी पिटाई करने कोशिश की, बहुत कुछ हुआ, कितनी सैकड़ों बार ये मरते मरते बचा, लेकिन ये बाबा के कार्य से कभी भी पीछे नहीं हटा। बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, तो पूरा टाइम उसी में चला जाए
1: जी, तो फिर कभी सुनेंगे। और आज जिस गाने के बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो वो गाना है ये सफर, और ये फिल्म 1942 ए लव स्टोरी से है, लिरिक जावेद अख्तर साहब और शिवाजी चट्टोपाध्याय जी इसमें परफॉर्म उन्होंने किया है। तो आइए सीधा हम चलते हैं उन लाइनों की ओर, दीदी से पूछते हैं। दीदी कहते हैं कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, तो आप इस लाइन्स को कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे?
0: असल में ना उम्मीदी की लाइन है, लेकिन इनमें भी उम्मीद छिपी हुई है। वो राइटर कहता है कि गम की शाम लंबी है मगर शाम ही तो है
1: जी,
0: क्योंकि शाम के बाद सवेरा तो आना ही है, तो हो ही नहीं सकता कि शाम हमेशा चलती रहे, आज तक नहीं चली है। और ना उम्मीद नहीं है, दिल नाकाम ही तो है। मान लीजिए हम किसी काम में नाकाम हो गए
1: जी,
0: नाकामी बड़ी बात नहीं है, नाकामी तो सबको मिलती है, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए
1: जी।
0: जैसे किसी व्यक्ति का एक बहुत बड़ा मकान था, दुकान थी, तो वो शहर में गया और पीछे से शॉर्ट सर्किट हुआ, मकान भी जल गया, दुकान भी जल गई, वापस लौटा तो वहाँ राख का ढेर मिला जहाँ सुबह मकान दुकान थी। बहुत सारे लोग आए उसे सहानुभूति देने, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तेरा सब कुछ जल गया, तो उसको अच्छा नहीं लगा कि लोग मुझे सहानुभूति दें। उसने एक कलाकार को कहा कि एक सुंदर सा बोर्ड बनाओ, बोर्ड पे क्या लिखूं? तो उसने कहा इस पे लिखो कि होम इज बर्नड, शॉप इज बर्नड, बट होप इज नॉट बर्नड। तो असल में जो उम्मीद है
1: जी,
0: जो हमारी होप है, वो नहीं जलनी चाहिए, बाकी सब कुछ जल जाए नो प्रॉब्लम, क्योंकि उम्मीद के सहारे हम दोबारा खड़े हो सकते हैं। मैं जब भूकंप आया था गुजरात में 2001 में
1: जी,
0: तो जो राहत शिविर लगे थे भुज में, कच्छ में, वो एरिया ज्यादा अफेक्टेड था, वहां पे गई थी तो हमने देखा कि एक तंबू में तंबू को लगा दिए थे गवर्नमेंट ने, घर तो बिल्कुल जमीन दोज हो गए थे, 10-10 मंजिली, 5-5 मंजिली बिल्डिंग, वहां पे मलबे का ढेर पड़ा था
1: जी।
0: तो वो जो तंबू लगाए थे, जिनको हम शिविर बोलते हैं टेम्परेरी, वो कपड़े का ऐसा होता है स्लोप वाला, और उसके अंदर ऐसे झुके जाना होता है, पूरे के पूरे परिवार उसके अंदर, वहीं पे थोड़ा बहुत खाना बनाते हैं, वहीं पे रहते हैं जब तक कि उनके लिए कोई प्रबंध हो। तो मैं एक फैमिली से मिली, उनका जवान बेटा चला गया था
1: जी,
0: बहू थी और बहू के दो बच्चे और बूढ़ा ससुर, चार लोग थे उस तंबू में। तो मैंने उनको पूछा कि आपका घर चला गया और अभी पता नहीं बनने में कितना समय लगेगा, तो उसने बहुत सुंदर बात कही, उसने कहा बहन जी हम तो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, समुद्र की एक झाल आती है हमारा घर ले जाती है, और समुद्र की दूसरी झाल आती है तब तक हमारा नया घर बन जाता है, तो आप जब अगली बार आओगे ना तो मैं बहुत सुंदर मकान में देखोगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तंबू में रहते हुए भी इनके चेहरे पे खुशहाली है, मायूसी नहीं है, जवान लड़का चला गया फिर भी होप बाकी है। और सचमुच मैं अगले साल उस एरिया में फिर गई, मेरा कोई प्रोग्राम था, तो मुझे उन बहनों ने कहा कि देखो यहाँ आपने मलबे का ढेर देखा था ना, अब आप देखो यहाँ कितने सुंदर मकान बन गए। बल्कि पहले जो सिटी बनी थी वो हाफ हजार्ड थी, अनप्लैंड थी, कोई घर इधर है, गली टेढ़ी है, भिड़ी गली है, चौड़ी गली है, अब ये मकान, अब ये शहर प्लैंड रीति से बना है, तो आप देखो गलियां चौड़ी चौड़ी है, सब एक सीध में मकान। तो सब कुछ एक साल के अंदर फिर बन गया। इसलिए दुनिया में नाकामियां भी हैं, लेकिन कभी भी होप खोनी नहीं चाहिए
1: जी। लेकिन कई बार देखा जाता है कि बार बार नाकाम होते हैं लोग, तो वो उम्मीद छोड़ देते हैं और पूछते हैं कि कब तक उम्मीद रखे।
0: देखिए, उम्मीद की कोई डेट नहीं होती है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि उम्मीद रखो जी जाएगा। पहले उसको आईसीयू में ले जाते हैं, वेंटिलेटर पे रखते हैं, आखिरी तक उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, छोड़ नहीं देते। जीवन भी ऐसे ही है, इसकी ट्रीटमेंट आखिरी तक करनी चाहिए। वो एक बहुत पुरानी स्टोरी हमने बचपन में सुनी थी कि एक राजा युद्ध हार गया था, जंगल में उदास बैठा था, तो उसने वहाँ जंगल में ही देखा कि एक स्पाइडर, एक मकड़ी
1: जी,
0: और वहाँ कोई पुराना खंडर का मकान है, तो उस खंडर में दीवार पे चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है। 16 बार चढ़ी, 16 बार गिरी और 17वीं बार चढ़ गई। तो राजा ने उस स्पाइडर से प्रेरणा ली कि कोई बात नहीं, मैं भी युद्ध हार गया, फिर से अपनी सेना इकट्ठी करूंगा और फिर से अभियान चलाऊंगा, मैं भी जीतूंगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, अगर ये 16वीं बार जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता, है तो छोटा सा जीव है, तो मैं तो एक मानव हूँ, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ, मैं भी जीत सकता। तो उसको ताकत मिली और उसने अपना अभियान चलाया और वो जीत गया
1: जी। जी, चाहे वो आपकी संस्कारों के क्षेत्र में हो, चाहे स्थूल में हो,
0: चाहे वो आपका किसी ने राज्य जीत लिया, चाहे आप कोई नौकरी चाहते हैं उसमें फेल हो रही हैं बार बार, चाहे आप अपनी किसी बुराई को जीतना चाहते हैं, वो बुराई फिर अड़के खड़ी हो जाती है, आपको जीतने नहीं देती है, लेकिन जीत आपकी ही होगी, क्योंकि बुराई में कोई जान नहीं होती है, आप में तो जान है, आप तो जीवित हैं, आपके पास तो एक विल पावर, बुराई में कोई विल पावर नहीं होती है। और चाहे वो आपका बिजनेस सेटअप नहीं हो रहा है, चाहे आपकी कोई जमीन है वो आपको अच्छी उपज नहीं दे रही है, चाहे आपका कोई और सपना है, कोई भी किसी भी प्रकार का, तो किसी भी क्षेत्र का हो, आप अपने सपने को बनाए रखिए। लेकिन कहते हैं सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वही होते हैं जो जागृत आंखों से देखे जाते हैं। तो जागृत आंखों से आपने जो भी सपना देखा है वो केवल सपना नहीं, उसको प्रैक्टिकल धरातल पे उतारने के लिए मेहनत भी कीजिए
1: जी।
0: ऐसे नहीं कि विजुअलाइज कर रहे हैं, हाँ मैं विदेश चला गया, मैं पढ़ गया, मुझे बड़ी सी डिग्री मिल गई, मैं वापस आ गया, केवल सपना नहीं, प्रैक्टिकल में आपको उसको साकार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा। सपना वो नहीं जो आपको सुला दे, सपना वो जो आपकी नींद फिटा दे
1: जी। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप सपने देखें और अपने संस्कार अगर परिवर्तन नहीं भी हो रहे तो अलग अलग तरीके से ट्राई करिए, सहन शक्ति हो या फिर कोई भी प्रकार से शक्ति या वैल्यूज को आप अपनाना चाहते हैं, और जितने कहा कि उम्मीद रखना है तो अंत तक कोशिश करना है। तो आइए इस गाने को सुनते हैं हम, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप हमें 9414151415 पर मैसेज करके बता सकते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। दीदी उर्मिला जी आज हमारे मध्य हैं, ज्ञानामृत पत्रिका के संपादिका हैं आप और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, तो उनसे आप सवाल कर सकते हैं, जरूर आपको जवाब मिलेगा। आइए लेते हैं यहाँ पर ब्रेक।

0: अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है।
1: क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए।
0: त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
0: 9414152250
1: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल।
2: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। और हम आज बात कर रहे हैं, ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। और हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं दीदी उर्मिला जी। दीदी आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है।
3: थैंक यू
2: जी। दीदी जैसे हम गाना सुन रहे थे तो इसमें कठिन सफर के बारे में बात हो रही थी और लेकिन उदास नहीं होने के लिए यहाँ गीतकार कह रहे हैं, तो आपसे पूछना चाहेंगे कि गम की जो शाम होता है, यहाँ पे कहा गया लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, लेकिन वो जो शाम है वो बहुत कठिन लगता है और जो उस शाम में गुजारा करता है उस शाम को देखता है ना वही महसूस कर पाता है शायद। तो क्या इस दुनिया में दर्द बांटने वाला कोई है जो हमें बिना जज किए दर्द बांटता हो, सुनता हो हमारी कहानी?
3: देखिए ये दुनिया गम से भरी पड़ी है
2: जी।
3: पहले तो व्यक्ति का जो अपना जीवन है वो भी गम से भरा पड़ा है। कहीं गरीबी है, कहीं बीमारी है, कुछ भी है। और फिर सामाजिक जीवन में भी बहुत गम है
2: जी।
3: कई तरह के लोक लाज, कई तरह की कुरीतियाँ, कई तरह की रीति रस्में व्यक्ति को जकड़ के रखती हैं
2: जी।
3: कोई भी क्षेत्र लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र ले लीजिए, समाज सेवा का क्षेत्र ले लीजिए, हर एक में व्यक्ति के सामने गम आता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो गम है वो व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। जो गम है, दुख है, कष्ट की घड़ियां हैं वो उसको समझदार बनाती हैं, अनुभवी बनाती हैं और जिंदगी को सही दृष्टिकोण से देखने का तरीका सिखाती हैं। जैसे एक अभिज्ञान शकुंतलम नाम का नाटक है कालिदास का लिखा हुआ, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। तो दुष्यंत जब शकुंतला के आश्रम पे यानी के कण्व ऋषि के आश्रम पे जाता है तो वहाँ फूलों को देखता है, लताओं को देखता है, पेड़ों को देखता है। तो वो कहता है कि मेरे बगीचे में भी फूल है, लताएं, लेकिन वो मालियों के द्वारा सुरक्षित, इसलिए उनमें ना तो इतनी खुशबू और ना इतनी ब्यूटी है
2: जी।
3: और ये जो अपने आप उग रही है और अपने आप बढ़ रही है इनमें एक नेचुरल खुशबू और नेचुरल ब्यूटी है। तो ये आंधी तूफान धूप सब कुछ सहन करती है, लेकिन जो मेरे बगीचे में है वो तो आंधी तूफान और उनसे बची हुई है। तो देखने में ये आता है कि जो प्रकृति के संरक्षण में पलता है वो व्यक्ति ज्यादा अनुभवी और समझदार बनता है। वैसे भी हम देखते हैं कि जितने भी महान लोग हुए, आप भारत या विदेश के महान लोगों की अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो उनमें से अधिकतर का बचपन अभावों में या कठिनाइयों में गुजरा है। कोई गिनती के लोग हैं, जैसे कोई महात्मा बुद्ध है, चलो राजकुमार था, महावीर जैन बचपन में राजकुमार था, कुछ गिनती के लोग हैं। अदरवाइज तो कष्टों को सहन करते हुए वो लोग बड़े हुए और फिर उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया
2: जी।
3: जो लोग, जो गमला छाया में रखा जाता है वो ज्यादा वृद्धि को नहीं पाता। तो एक तो हम ये बात सोच लें कि जो कष्ट आया है वो हमें कुछ देने आया है। एक कहावत है कि चेंज योर चैलेंजेज इनटू अपॉर्चुनिटीज। वो लोग अपनी चुनौतियों को ही अपनी एक तरह से अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं, अपने लिए सुअवसर बना लेते हैं। तो अब देखिए भारत की आजादी का संघर्ष कितना कड़ा था
2: जी।
3: कितने लोगों ने कष्ट सहे, मारी खाई, अपना धन दौलत लुटाया, जेलों में रहे, कई लोग तो जेलों में ही मर गए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनको क्या मिला, उनको बहुत कुछ मिला
2: जी।
3: एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो देश पे शहीद हो गए अगले जन्म में वो देश में फिर आएंगे और फिर से वो देश में कोई ऊंचा स्टेटस प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनका किया हुआ त्याग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आत्मा अविनाशी है
2: जी।
3: अविनाशी आत्मा को इस जन्म में अगर नहीं मिल पाया, छोटा जीवन था, तो अगले जन्म में मिलेगा। और अगर किसी ने धोखे से इस जन्म में अधिक ले भी लिया तो अगले जन्म में उसका माइनस हो जाए। इसलिए एक तो हम गम से डरे नहीं। अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें जज किए बिना हमें अपनापन दे दे? तो दो ही ऐसे लोग हैं जो हमें जज नहीं करते हैं, अनकंडीशनल लव देने वाले, एक परमात्मा और एक प्रकृति
2: जी।
3: और आज हम देखते हैं कि व्यक्ति का इन दोनों से कनेक्शन कट है, ना तो वो परमात्मा के लिए समय निकालता और ना वो प्रकृति के सानिध्य में जाता है
2: जी।
3: इसलिए उसे कोई राहत दे, कोई सोलेस दे, कोई उसके गम को बटाए, वो चीज नहीं हो पा रही है। क्योंकि ले दे के वो फिर मनुष्य के पास जाके खड़ा होता है कि भाई तू मेरा गम बटा ले, तू मुझे सहयोग दे दे। लेकिन मनुष्य से तो उसने धोखा खा ही लिया ना, एक से धोखा खाया फिर दूसरे के बाजू में जाके खड़ा हो गया, वो भी मनुष्य है। वो प्रकृति के सानिध्य में जाए। आप प्रकृति को देखिए, आप पेड़ को देखिए, नदी को देखिए, हवा को देखिए, निरंतर दे रही है हमें, इनसे हम कुछ ना कुछ सीखे। पेड़ का जन्म होता है, पेड़ को देखो, उसका जो घेरा है वो कितना होगा? वो छोटा घेरा है, इतने उसने जमीन घेर रखी है, घेरा मतलब इतनी जमीन घेर रखी है, और ज्यादा जगह वो लेता नहीं है, या तो ऊपर फैलता है और या फिर जमीन के नीचे फैलता है। किसी व्यक्ति को परेशानी पैदा नहीं करता कि भाई वो बहुत सारी जगह

0: घेर ले। अब वो जब ऊपर फैलता है तो उसके पत्ते भी सेवा करते हैं, डाली भी सेवा करते हैं, उसका फल भी सेवा करता है, फूल भी सेवा करता है, और सबसे अधिक वो ऑक्सीजन देता है
1: जी,
0: देता ही देता है। अंत में जब वो गिरता है तो भी किसी ना किसी का चूल्हा जलाता है या किसी की छत बनवा देता है, लेकिन उसका एक अंग भी व्यर्थ नहीं। तो इसलिए मनुष्य को प्रकृति से सीखना चाहिए, मनुष्य को परमात्मा का भी सानिध्य करना चाहिए। परमात्मा गुप्त है लेकिन सबके सुनता है, और वो किसी को देता है कहते उसकी लाठी की आवाज नहीं होती, और किसी को देता है तो शोर मचा के नहीं देता है, बिना शोर मचाए गुप्त चुप उसकी अंतरात्मा में ऐसा कुछ भर देता है कि उस व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देता है। इसलिए इन दोनों से जुड़िए।
1: तो दोनों से जुड़ने की क्या माध्यम है?
0: प्रकृति तो देखिए हमारे चारों ओर है ही। आप कुछ समय निकालिए, बगीचे में जाके बैठिए, खेतों में जाके बैठिए, नदी किनारे जाके बैठिए, नदी नहीं है तो तालाब के किनारे जाके बैठिए, और वहां चिंतन कीजिए, एक एक चीज को ध्यान से देखिए कि ये जो जल है इसमें क्या क्या खूबियां हैं, ये सबको जीवन देता है, और जल जो है वो कितना हम कहेंगे कि निष्पक्ष है। आप वो जल एक गरीब की झोपड़ी पे भी गिरता है, राजा के महल पे भी गिरता है
1: जी,
0: और उसमें कितनी एडजस्टिंग पावर है, कटोरी में डालो कटोरी जैसा, नली में डालो नली जैसा, बोतल में डालो बोतल जैसा। कभी ये नहीं कहता कि नहीं जी ये छोटी जगह मैं नहीं समा सकता, ये बड़ी जगह मैं नहीं समा सकता, हर जगह एडजस्ट हो जाता है
1: जी।
0: तो व्यक्ति को पानी को देख देख के कितने गुण सीखने चाहिए, इधर से नल में से पानी निकालो, इधर से निकालो, ऊपर से तल उसका समतल मिले, झगड़ा नहीं है कि नहीं इधर से तू चला गया, मैं ऊंचा, इधर वाला ऊंचा हो जाए, टिल्ला बन जाए, इधर से खिसक गया, नहीं वो फिर एक समान है। तो कहते हैं वैसे भी जल से पतला क्या, तो जल में बहुत गुण है। प्रकृति की हर चीज को देखिए आप, धरती को देखिए, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, और कटु वचन संत सहे, और से सहे न जाए। धरती को कितना भी खोद लो सहन कर लेती है, पेड़ों को कितना भी काट लो फिर नए पत्ते दे देते हैं, फिर से नया सब कुछ हो जाता है, और कड़वे वचन केवल संत व्यक्ति सहन कर सकता है, सबसे सहन नहीं होते हैं। तो जब आप इनके नजदीक बैठोगे आप में सेंट की क्वालिटी जाएगी, ये अपने आप में सेंट, पेड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा संत है
1: जी, बिल्कुल
0: तपस्वी है
1: जी, इसलिए बड़े बड़े जो तपस्वी हैं उनको पीपल के पेड़ के नीचे और पेड़ के नीचे बैठ के साधना करते हुए दिखाते हैं जी। और परमात्मा से कैसे जुड़े?
0: परमात्मा इन आंखों से तो दिखने वाली चीज सत्ता है नहीं, क्योंकि ये आंखें वास्तव में परमात्मा को देखने के लिए बनी ही नहीं, ये भौतिक आंखें भौतिक जगत को देख पाती है, परमात्मा को हमें देखने के लिए चाहिए तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र जिसे हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, और जिसे हम अलौकिक नेत्र कहते हैं, बुद्धि का नेत्र कहते हैं, मन का नेत्र भी कहते हैं। तो वो तो हमारे पास है ही, उस मन के नेत्र से तो देखो हम क्या क्या देख लेते हैं, यहाँ बैठे अमेरिका को देख सकते हैं, लंदन को देख सकते हैं, बैठे आबू रोड में दिल्ली को देख सकते हैं
1: जी।
0: तो ऐसे नहीं कि कोई नेट से देख सकते, मान लीजिए हमारा कोई मित्र बॉम्बे में रहता है तो हमारी मन की आंख वहां पहुंच जाती है
1: जी,
0: नेट के बिना ही। तो भगवान भी हमारा परम मित्र है, पर वो रहता कहाँ है, हम हमेशा उंगली का इशारा ऊपर की तरफ करते हैं, ऊपर वाला जाए
1: जी।
0: तो इस दुनिया से पार एक बहुत सुंदर दुनिया है लाल सुनहरे काश की, वहां वो परम सत्ता जिसको हम कहते हैं डिवाइन लाइट माइट, यूनिक लाइट जिसे हम कहते हैं शाश्वत सत्ता, परम सत्ता, दिव्य सत्ता, अलौकिक सत्ता, सनातन सत्ता, कई नाम है उसके
1: जी।
0: तो वो एक प्रकाश रूप में वहां पे मौजूद है, तो हम अपने मन को वहां ले जा सकते हैं, उसे बातें कर सकते हैं बहुत मीठी मीठी कि प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, जो आपके गुण है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप कितने निष्पक्ष हैं, कितने दयालु हैं, आप सब कुछ करते हैं फिर भी अपने आप को छिपा के रखते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ मैं आप जैसा बनूं, क्योंकि आपकी क्वालिटीज मेरे जीवन में आएंगी तो मैं ताकतवर बन जाऊंगा
1: जी।
0: जितने गुण और क्वालिटीज आएंगे उतने हम ताकतवर बनेंगे, गुण और क्वालिटीज नहीं होंगे तो हम कमजोर बनेंगे
1: जी।
0: तो ताकतवर व्यक्ति ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, गम की रात को खेल की तरह से बिता सकता है, मुसीबतों से खेलते हम जैसे खेलते खिलौने। तो हमें मुसीबतें भी ऐसे ही लगती हैं जैसे हम खिलौने से खेल रहे हैं,
1: जिनके
0: हमारे में ताकत, तो वो ताकत परमात्मा की याद से मिलती है। और उसका जो अनकंडीशनल लव है तो वो भी हमें ताकत देता है
1: जी,
0: क्योंकि कोई हमें जज नहीं कर रहा, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तुमने ये गलती कर दी, तुमने ये कर दी, वो कहता है तुम जो हो जैसे हो मेरे हो
1: जी,
0: आई एक्सेप्ट, और मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। जैसे एक माँ लंगड़े बच्चे को भी प्यार करती है, अंधे बच्चे को भी प्यार करती है, अगर कोई बॉडी लीडी और डिफेक्ट है उसको भी प्यार करती है, जज थोड़े करती है कि नहीं तुम अंधे हो, तुम काम के नहीं हो, तुम लंगड़े हो, तुम काम के नहीं, बल्कि और ज्यादा प्रेम देती है। तो परमात्मा पिता भी हम बच्चे अगर कहीं किसी चीज में कम है तो हमें अधिक प्रेम दे करके उस कमी को पूरा करते हैं, इसलिए वो प्रेम के सागर कहे जाते हैं। आप किसी मनुष्य को प्रेम का सागर नहीं कह सकते।
1: जी बिल्कुल, तो परमात्मा से जरूर जुड़े, और दीदी ने जैसे कहा कि असीमित शक्तियाँ प्राप्त करेंगे तो गम के अंधेरे को भी आप पार कर सकते हैं, और प्रकृति में वो हीलिंग पावर है, प्रकृति से बहुत कुछ सीखने का है, तो आप प्रकृति से भी जुड़ सकते हैं, और ये दोनों ही केवल हमारे दर्द बांट सकते हैं। दीदी कहते हैं कि भगवान के घर जो है वो देर है लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है कि ये सितम की रात है ढलने को, है अंधेरा गम का पिघलने को, जरा देर इसमें लगे अगर ना उदास हो मेरे हम सफर। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, लेकिन कई बार पूरी जिंदगी कट जाती है लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलता। क्या कोई तरीका है गम में भी खुशी से जिया जाए, जैसे आपने कहा कि
0: हम तो कहते हैं कि
1: जरूरी है।
0: भगवान के घर में ना देर है और ना अंधेर है,
1: दोनों ही नहीं,
0: दोनों ही नहीं
1: जी।
0: होता क्या है कि हमारा धैर्य बहुत छोटा है, अपने धैर्य को अगर हम बढ़ाएं
1: जी
0: तो हमें लगेगा कि हमारा काम चुटकियों में हो गया। जब हम कोई भी बीज बोते हैं तो उसके लिए धैर्य तो रखना पड़ता है, आज बीज बोया और सुबह हमें फल मिल जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं। मान लीजिए हमने एक अच्छा कर्म किया है तो उस कर्म को फलीभूत होने में कुछ तो समय लगेगा ना, तुरंत तो नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए परिस्थितियां बनती हैं, वातावरण बनता है, उसके लिए अनुकूल लोग चाहिए, तब हमें उस कर्म का रिवार्ड मिलता। अभी आजकल देखिए ना, हमारी जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने पद्म पुरस्कार लोगों को बांटी
1: जी,
0: तो क्या वो पुरस्कार एक दिन के प्रयास से मिले, किन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी और अब अंत में वो जब 80-90 साल की हो गई तब उन्हें पद्म पुरस्कार के लिए बुलाया गया है
1: जी,
0: और उन्होंने वो पद्म पुरस्कार की कामना भी नहीं की थी
1: जी,
0: वो तो अपना काम किए जा रहे थे। इसलिए हम ये ना सोचें कि मैंने इतना किया तो मुझे इसका फल कब मिलेगा। असल में अच्छा कर्म ही अपने आप में फल, क्योंकि जब हम एक अच्छा कर्म करते हैं तो हमें तुरंत खुशी की प्राप्ति होती है, हमारा वही पद्म पुरस्कार, सबसे पहला पुरस्कार तो वो है। बाद में अगर हमें कोई रिकॉग्नाइज करता और हमें पुरस्कार देता है तो चलो वो सेकेंडरी बात, मिले ना मिले, मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, लेकिन हम जो कर रहे हैं करते वक्त जो इंद्रिय सुख मिलता है, करते वक्त जो आत्मा को संतुष्टि मिलती है, भीतर से जो आत्मा गुनगुनाती है कि मैंने एक अच्छा कर्म किया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, ये भीतर से जो आवाज निकलती है वही हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार। और अच्छे काम करने वाले को अच्छा फल भी मिलता है और बुरे को बुरे का फल भी मिलता है। शेक्सपियर ने एक बहुत अच्छा नाटक लिखा है वीनस का सौदागर, द मर्चेंट ऑफ वीनस, वीनस एक नगरी का नाम है और उसका एक सौदागर है, तो उसमें दो पात्र दिखाए हैं, एक का नाम है एंटोनियो, एक का नाम है शाइलाक
1: जी।
0: तो जो एंटोनियो है वो बहुत अच्छा व्यक्ति है और जो शाइलाक है वो ऐसा व्यक्ति है कि लोगों को कर्ज देता है, पैसे उसके पास बहुत है, और जब लोग उसका कर्जा टाइम पे नहीं चुकाते तो किसी की जमीन ले लेता है, किसी का घर ले लेता है और गरीब लोगों को बहुत सताता है
1: जी।
0: तो इधर एंटोनियो कहता है तुम उससे मत लो कर्ज, मेरे से ले लो, मैं कम ब्याज पे कर्ज दूंगा और टाइम पे नहीं चुका पाओगे तो भी मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। तो शाइलाक इससे जलता है कि इसने मेरा धंधा ही बिगाड़ दिया, ये बीच में कहां से आ गया। तो एक बार क्या होता है कि एंटोनियो का एक दोस्त बेसिनियो, उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, वो कहता भाई मुझे कुछ तो पैसे उधार दे दे, वो कहता है इस टाइम तो मेरा सारा पैसा बिजनेस में लग गया है, हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मैं शाइलाक से उधार लेके तुमको दे देता हूँ। कहता हूँ बहुत खराब आदमी, उधार मत लो। कहता नहीं, तुम्हारी जरूरत जरूर पूरी करूंगा मैं। तो शाइलाक के पास जाता, वो सोचता अच्छी मछली फंसी,
1: जी
0: तो कितना पैसा चाहिए, वो पैसा उसको जितनी जरूरत है दे देता। अच्छा कितना ब्याज लोगे, कहता है देखो मुझे ब्याज ब्याज की कोई आवश्यकता नहीं है। कहता नहीं फिर भी ब्याज तो लेना ही चाहिए, तुम इतना उधार दे रहे हो। बोला ठीक है अगर तुम टाइम पे नहीं चुका पाओगे तो मैं तुम्हारे शरीर से 1 पाउंड मांस ले लूंगा, बस बाकी मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए।
1: जी
0: तो एंटोनियो कहता कोई बात नहीं है ले लेना, लेकिन ये पैसा तो मुझे चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त की मुझे मदद करनी है। तो वो पैसे लेके चला जाता है और उसके बहुत सारे जहाज विदेश में गए हुए
1: जी,
0: और वो जहाज लौटने ही वाले हैं कि अचानक उसको खबर मिलती है सारे जहाज डूब गए। अब देखो अच्छे आदमी के साथ, कहते हैं ना अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है, अब अच्छे के साथ ही बुरा हुआ, उसके ही सारे जहाज डूबे। और जैसे ही शाइलाक को ये समाचार मिलता है वो बहुत खुश हो जाता है कि अच्छा हुआ जहाज डूब गए, अब ये टाइम पे पैसे नहीं लौट आएगा और मैं इसका मांस काटूंगा ये मर जाएगा
1: जी,
0: मर जाएगा तो फिर मेरा धंधा अच्छे से चलेगा। तो निश्चित दिन आ जाता है, वो पैसे मांगता है, पैसे वो दे नहीं पाता है
1: जी,
0: और वो तैयार हो जाता है। बहुत लोग आते हैं गांव के शहर के उसको समझाने, तो इतना क्रूर काम मत कर। कहते हैं नहीं देखो मैंने जो शर्त लगाई है मैं वो पूरी करूंगा कुछ भी हो जाए
1: जी।
0: तो वो लोग कचहरी में पहुंच जाते हैं और जज के सामने ही वो फैसला होता है। उस जमाने में इसी तरह से बातें होती थी, इधर एंटोनियो खड़ा इधर चाकू लेकर के शाइलॉक खड़ा हुआ
1: जी।
0: और जैसे ही वो उसका मांस काटने के लिए एकदम उसके नजदीक पहुंचता है, इतनी देर में 2 लोग आते हैं काला कोट पहने एक जज और उसके साथ एक कलर
1: जी।
0: और वो कहते हैं ठहरो, तो वो रुक जाता है। वो कहता है ठीक है इस मामले में अभी 1 दलील बाकी है। जज कहता है मैं आया हूँ वो दलील देने, मुझे भी पता पड़ा कि यहाँ मुकदमा चल रहा है। तो वो कहता है कि देखो तुमने लिखा हुआ है कि मैं इसके शरीर से 1 पाउंड मांस काट लूंगा
1: जी,
0: लेकिन मांस काटो आपको छुट्टी है पर खून का एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि खून गिरेगा
1: जी।
0: अगर खून गिरा तो फिर देखो हम आपको कड़ी सजा देंगे
1: जी,
0: और आपकी पूरी संपत्ति हम हड़प कर लेंगे। तो चलो काटो काटो। अब वो पीछे हटता है, कहता नहीं मैं नहीं काटूंगा। उसको कहते नहीं काटो मांस काटो। तो वो कहता नहीं मुझे माफ कर दो मैं नहीं काट सकता क्योंकि मांस कटने से पहले ही खून निकल आएगा और पहले वो पकड़ा जाएगा
1: जी।
0: तो फिर उससे वायदा कराते हैं कि तू गरीबों के साथ अन्याय करना बंद कर, ये सब करना बंद कर। तो असल में वो जो जज आई थी वो थी फीमेल, वो उसका जो दोस्त बसीनियो था उसकी पत्नी थी
1: जी,
0: और वो ही अपनी एक फ्रेंड को लेकर के और वेश बदल करके और कोर्ट में हाजिर हुई थी। उसको जब पता पड़ा कि मुकदमा ऐसे ऐसे चल रहा है, तो बुराई कितना भी जोर लगा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन उसको हारना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार का ये जो रंगमंच है, ये जो ड्रामा है, ये न्यायकारी है, कल्याणकारी और बिल्कुल एक्यूरेट है। ये सुखांत है, दुखांत नहीं है। इसमें कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि फाइनल जीत बुराई की होगी, किसी भी प्लॉट या बाई प्लॉट, बड़ी स्टोरी या छोटी स्टोरी या मेन स्टोरी, कहीं भी बुराई जीत नहीं सकती। हाँ जो अच्छाई है उसको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा, वो राइट बात, लेकिन अंतिम जीत अच्छाई की होगी, अंतिम जीत सच्चाई की होगी, ये फाइनल
1: जी। बिल्कुल, तो अंतिम जीत सच्चाई की होगी, ये उम्मीद के साथ हम हर विघ्न को पार कर सकते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कुछ लाइंस इस प्रकार से हैं कि नहीं रहने वाली है मुश्किलें, कि है अगले मोड़ पे मंजिलें, मेरी बात का तू यकीन कर, ना उदास हो मेरे हम सफ़र। जिसे आपने वो एग्जांपल दी उससे भी ये हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये अगले मोड़ पर ही मंजिल हमें मिल रहा है, ये एहसास कैसे हो सकता है?
0: एक्चुअली जब व्यक्ति हिम्मत से पांव उठाता है ना
1: जी,
0: तो उसको ऊंचाई भी लिफ्ट लगती है
1: जी,
0: और जब वो बिना हिम्मत के पांव उठाता है तो उसे लिफ्ट में बैठना भी पहाड़ चढ़ना लगता है
1: जी।
0: सारी कहानी हिम्मत की है, हिम्मत मर्दा मददे खुदा। तो आप अपनी हिम्मत को ना छोड़ें, कुछ भी हो जाए। हिम्मतवान व्यक्ति को लगता है कि बस अभी आया कि आया, बस अभी आया कि आया, मेरा जो मकसद है वो पूरा हुआ कि हुआ, ये हिम्मतवान को लगता है। हिम्मत जिसमें नहीं होती उसको लगता है कितनी देर हो गई चलते, कितनी देर हो गई मेहनत करते, कितनी देर हो गई पुरुषार्थ करते, अभी तो कुछ मिला ही नहीं। और अगर उसे कुछ मिल भी जाएगा तो उसका बहुत अच्छा सदुपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई प्लानिंग नहीं, उसको केवल चीज को अचीव करने की हबस है
1: जी,
0: उसका सदुपयोग करने की प्लानिंग नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत से बढ़ रहा है वो साथ साथ प्लानिंग भी करता जाता है कि मुझे वो अचीव होगी तो मैं उसको किस तरह से अच्छे कार्य में लगाऊंगा या किस तरह से सबके कल्याण में लगाऊंगा। तो इसलिए अगले मोड़ पे ही मंजिल है, आपका हर कदम आप यही समझो कि मंजिल को ही प्राप्त कर रहा है, आप उसे खाली वार मत समझो, आपके हर वार में कोई ना कोई अचीवमेंट अचीवमेंट मान के चली। मंजिल वो नहीं होती जो फाइनल मिलती है, रास्ते में आपको जो कुछ मिला वो भी मंजिल के हिस्से, तो उनको भी आप मंजिल के हिस्से की तरह स्वीकार कीजिए।
1: जी बिल्कुल, और कहते हैं कि कभी ढूंढ लेगा ये कारवा वो नई जमीन है आसमा, जिसे ढूंढती है तेरी नजर, ना उदास हो मेरे हम सफर।
0: नई जमीन और नया आसमा
1: जी,
0: हम सब चाहते हैं, हमारा भी एक कारवा है
1: जी,
0: हम भी चल रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें नई जमीन मिले, नया आसमान मिले। असल में जमीन तो यही रहेगी, क्योंकि और कोई जमीन है ही नहीं, आसमान तो यही रहेगा, लेकिन जब हमारे विचार नए बन जाते तो हमें सब कुछ नया लगता है। इसलिए हम अपने विचारों में नयापन लाएं, विचारों में नवीनता लाएं। विचारों में नवीनता का अर्थ क्या है, जैसे किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो आपका पास्ट है उस पास्ट को जब आप याद करो तो इस तरह से याद करो कि मैं अपने पास्ट से बहुत संतुष्ट हूँ
1: जी,
0: और पास्ट की झोली में से कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई पॉजिटिविटी उठा लो
1: जी।
0: पास्ट की झोली में तो एक लंबा पीरियड है, बहुत कुछ पड़ा है उसकी झोली में, आपको वो सब नहीं देखना है, आपको उसमें से केवल पॉजिटिविटी, केवल प्रेरणाएं और केवल ऑप्टिमिज्म वाली बातें उठानी
1: जी,
0: पास्ट। और फिर आपको कहना है कि मेरा पास्ट बहुत अच्छा था, बहुत गुड था, तो पास्ट को मुस्कुरा के पास कीजिए
1: जी।
0: अब दूसरा है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट तो वास्तव में है ही एक गिफ्ट, प्रेजेंट गिफ्ट को भी कहते हैं ना, तो प्रेजेंट एक गिफ्ट है, इसको गिफ्ट मानो। जो मोमेंट मेरे हाथ में है ये मेरे लिए गिफ्ट, मैं इसका मैक्सिमम सदुपयोग करूँ
1: जी,
0: अपने लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए। इसको यूं ही गवा ना दो, सो करके, खा करके, सोना खाना ये सब गवाना है
1: जी,
0: इसका सदुपयोग करो। और तीसरा है फ्यूचर, तो जिसका पास्ट मुस्कुरा हट देता है, जिसका प्रेजेंट एक गिफ्ट के रूप में है, उसका फ्यूचर बेटर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि फ्यूचर का महल वर्तमान की नींव पे खड़ा होता है
1: जी।
0: और अगर हमारी वर्तमान की नींव सॉलिड मजबूत है तो फ्यूचर का महल बहुत सुनहरा बनेगा ही बनेगा
1: जी।
0: आप प्रेजेंट को सफल कीजिए, फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा
1: जी। तो जब जब भी मान लीजिए कोई परिस्थिति आए तो हमारे लाइफ में मुश्किलों को पार करने के लिए क्या अफर्मेशंस होना चाहिए, पॉजिटिव विचार होनी चाहिए?
0: हमको यही सोचना है कि ये एक मेरी परीक्षा है, मुझे अगली क्लास में ले जाएगी, ये एक तूफान है जो मुझे तोहफा देगा, और ये जो समस्या आई है ये कोई नया समाधान दे करके जाएगी और मुझे अनुभवी बनाएगी
1: जी।
0: मैं इससे कुछ ना कुछ सीखूंगा, और जब वो समस्या चली जाए उसके बाद आप एक कॉपी पेन लेकर के लिखो कि इस समस्या ने आपको क्या क्या दिया, तो आप पाएंगे कि उसने आपको बहुत कुछ सिखाया
1: जी।
0: जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया और आपने उस धोखे को सहन कर लिया, आपका नुकसान हो गया 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, अब आपने धोखे को सहन कर लिया और आपने अपने मन को मायूस नहीं होने दिया, कोई बात नहीं है, चलो 50,000 का नुकसान हो गया, अब कोई ऐसा भी मौका आएगा कि मुझे 50,000 का फायदा भी हो जाएगा, हानि लाभ तो चलता ही रहता है, लेकिन उस धोखे से क्या फायदा हुआ? नंबर एक, आप आदमी को परखना सीखे
1: जी।
0: नंबर दो, आप आदमी पे तुरंत आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे तो वो जो अंधविश्वास उसके प्रति आप जागरूक हो गए। नंबर तीन, परिस्थिति को सहन करने की आप में ताकत बढ़ी। और नंबर चार, आपने अपनी आशावादिता नहीं खोई, आप में ऑप्टिमिज्म बढ़ा कि कोई बात नहीं है, धोखा हो गया तो कभी ना कभी मेरे साथ मुझे प्रॉफिट भी हो जाएगा। संसार में सब कुछ चलता है, आंधी तूफान भी आता है, उसके बाद शांति भी हो जाती है, तो कितने सारे फायदे हो गए
1: जी।
0: हर तूफान आपको कुछ ना कुछ तोहफा दे के जाता है
1: जी। तो हर तूफान कोई ना कोई तोहफा दे करके जाता है, वो क्या तोहफा मिला वो आप चिंतन करें, उसके बारे में सोच विचार करके आगे बढ़ते रहिए। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं। और यहाँ पर हमारे सुभाष भाई, इन्होंने मैसेज किया है, उनको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला दीदी को भी उन्होंने नमस्ते और ओम शांति कहा है, और भ्राता जगदीश जी के बारे में जो उन्होंने सुना उनको भी अच्छा लगा। तो यहीं पर हम रुकना चाहेंगे। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत।
1: तो दोस्तों अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।

0: सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकाती कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पर नरेंद्र कौशिक जी हैं जो प्रोफेसर हैं और जर्नलिज्म के डीन हैं अपने कॉलेज में, जयपुर से आप बिलोंग करते हैं, जयपुर से ही आप जुड़े हमारे साथ में। डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। नमस्ते। और इसके साथ में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रेनू चावला जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप महिला होकर विशेष कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी देख रहे हैं, तो ये बहुत ही यूनिक चीज आप कर रहे हैं। इसके साथ में हाल ही में आपने जो नवरात्र का जो फेस्टिवल था उसमें एक बहुत ही सुंदर इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें आपने लीड रोल किया और वो भी एक रावण का रोल आपने प्ले किया है, तो ये भी आपकी अपनी एक अलग क्वालिटी है। तो बहुत बहुत स्वागत है रेणु जी आपका भी आज के इस प्रोग्राम।
1: धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद, ओम शांति।

0: किस्टन है, मैं उसका डीन हूँ और मैं सिनेमा पढ़ाता हूँ और इनफैक्ट 20-25 साल मैं पत्रकार रहा हूँ और उसमें भी पत्रकारिता में भी सबसे पहले मैंने सिनेमा के जर्नलिस्ट के तौर पे स्टार्ट किया था और
1: जी।
0: इनफैक्ट उस समय मैं कॉलम लिखता था एक पैट्रियट करके एक न्यूज़पेपर होता था, बहुत पुरानी बात है, 90s की बात है, पैट्रियट न्यूज़पेपर होता था दिल्ली में, तो उसमें मैं सिनेमा का कॉलम लिखता था और सिनेमा में मतलब हमेशा से मेरा इंटरेस्ट रहा है, हमेशा से प्यार रहा है सिनेमा से मेरे को।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: नरेंद्र जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, धन्यवाद, शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए, थैंक यू सो मच। आइए मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा रेनू जी से। रेनू जी बहुत बहुत स्वागत है, और मैं चाहूंगा आप भी अपने बारे में बताइए, हमें अच्छा लगेगा। जी
2: मेरा नाम रेणु चावला है, सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हूँ, संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, रियल एस्टेट का काम करती हूँ, टूलेट सर्विस का काम करती हूँ, तो थोड़ा बहुत शौक है, कुछ ना कुछ एक इच्छा रहती है कि कुछ अच्छा कर पाए, और ये सब सिर्फ अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करें और उसमें किसी को दिखाने के लिए या फोटोज डालने के लिए, इंसान जो भी करता है अपने मन की तसल्ली के लिए। और इस तरह से बस जी यही मेरा परिचय है, मैं जीरकपुर पंजाब में रहती हूँ।
1: जी, चलिए रेणु जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए। और मैं चाहूंगा कि हाल ही में जो सोशल एक्टिविटी, सोशल वर्क आप कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए हमें किस तरह के सोशल वर्क आप कर रहे हैं वहां पर जीरकपुर में।
2: जी मैं एक्चुअली ये बताना चाहूंगी कि एक संस्था है सोशल अम्ब्रेला फाउंडेशन दिल्ली से हमारी,
1: जी जी जी
2: उसमें हम लोग स्लम की बच्चियों को मेंस्ट्रुएशन अवेयरनेस पे जागृत करते हैं कि साफ सफाई में किस तरह से रहना है। इसके अलावा प्लांटेशन का काम है, बाल भवन में जाने का, अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ समय बिताने का, कि उनकी आंखों की नमी को देख के ऐसे लगता है इनका कुछ दर्द बांट पाए तो अच्छा लगेगा। इस तरह की कुछ
1: जी
2: एक्टिविटीज, प्लांटेशन की, ब्लड डोनेशन की। और जीरकपुर और पंचकुला से मैं बेसिकली एक्चुअली नहीं हूँ भाई जी,
1: अच्छा,
2: मुझे यहाँ मुझे मुझे यहाँ आए 5 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन इस शहर में आके मुझे, इस शहर ने मुझे काम दिया, इस शहर ने मुझे पहचान दी, सम्मान दिया, प्यार दिया और पैसा दिया, तो जीने के लिए अगर इतना कुछ मिल जाए तो और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती।
1: चलिए बहुत
2: ईश्वर
1: अच्छी
2: की
1: बात
2: कृपा के
1: आपने,
2: बिना तो, ईश्वर की कृपा के बिना तो हमें कुछ भी तो नहीं मिल पाता ना,
1: सही बात
2: हमारे
1: है,
2: जैसे
1: सही बात।
2: इंसान को अगर इतना कुछ मिल जाए नए शहर में आके 5 वर्षों में, 5 वर्ष ही हुए हमें यहाँ, मेरी बेटी सिविल सर्विसेज की कोचिंग लेने आई थी, तब नहीं सोचा था कि हम यहाँ आ जाएंगे, उसके बाद छोटी बेटी का एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ में हो गया, तो ऐसे लगा चलो परिवार इकट्ठा रहेगा, वो बहाने बनते चले गए और हम लोगों को यहाँ ये चीजें मेरी किस्मत में जो थी, मेरे सौभाग्य में था, मुझे खींच के ले आए।
1: बिल्कुल
2: उसके बाद हमारी
1: बिल्कुल
2: मुलाकात एक ऐसी, यहाँ महिला है एकता नागपाल जी
1: जी
2: जीरकपुर
1: जी
2: से, वो अपने आप में एक संस्था है, उनकी एक संस्था है जड़ों से जुड़ो, लेकिन वो अपने आप में एक संस्था है महिला, और उन्होंने एक ऐसा
1: अच्छा,
2: इतिहास रच दिया महिलाओं से रामलीला करवा के, कि
1: हाँ
2: उसमें भगवान राम की कृपा हुई और मुझे रावण का रोल मिला, उन्होंने मुझे, हाँ, और जब वो मतलब कुछ इस तरह से डेयरिंग काम शुरू से थे बचपन से, लेकिन जब वो रोल देखा तो लोगों ने कहा कि गलती से महिला बन गई, तो हमने कहा नहीं औरत ये भी कर नहीं औरत ये भी कर सकती है। तो थैंक्स
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
2: टू ऑलमाइटी, बहुत अच्छा,
1: जी
2: ठीक है,
1: जी
2: जीवन है, चीजें ऊपर नीचे भी रहती हैं, करीब से देखा है जीवन को और यही है जी, और जो आप पूछें तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ।
1: चलिए बहुत अच्छी बात, आप हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। आइए मैं फिर से आपसे जोड़ना चाहूंगा खास डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी से। कौशिक जी, मैं चाहूंगा कि आपका जैसे शुरुआती दौर जो जर्नलिज्म का रहा, वो कहाँ से कैसे शुरू हुआ, वो एक स्टोरी जरूर हमें बताइए।
0: जी मैं तो एक्चुअल में गवर्नमेंट सर्वेंट होता था और मेरे को 89 में मैंने सीएजी ऑफिस ज्वाइन किया था, सीएजी का इनफेक्ट एजी ऑफिस, एजी यूपी इलाहाबाद, तो तो वहां पे ज्वाइन किया।

0: था और 7 साल मैंने वहां पे काम किया। लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे लगता था उस समय भी कि मेरे को पत्रकार बनना चाहिए, और मैं न्यूज़पेपर के ऑफिस जाता था, न्यूज़पेपर्स के लिए लिखता था। और इनफैक्ट वो कहते हैं ना, जिसको जो बनना होता है वो बनता है, वो बन के रहता है। तो फिर क्या हुआ, 91 में मैं दिल्ली आया था, 91 में, हाँ 91 में दिल्ली आया था और सीएजी ऑफिस में था डेपुटेशन पे। तो यहाँ पे जब था तो मैंने जर्नलिज्म का कोर्स भी किया, पीजी डिप्लोमा किया YMCA से, और भी बहुत सारी चीजें की, स्टेनोग्राफी भी सीखने की कोशिश की क्योंकि जर्नलिस्ट बनना था। और उस समय बहुत टफ पीरियड था वो, क्योंकि सारा दिन नौकरी करता था और रात में फिर जर्नलिज्म का कोर्स करने जाता था, या फिर दिन में नौकरी करता था और लंच के टाइम में स्टेनोग्राफी सीखने जाता था। तो थोड़ा टफ था, बट लेकिन जब आप किसी चीज के बारे में, वो कहते हैं ना, शाहरुख बाबा कहते हैं कि किसी चीज को जब आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको मिलाने में जुट जाती है। तो एक्चुअल में वो शाहरुख नहीं कहते हैं उसको, वो गौतम द बुद्धा का पुराना डायलॉग है, जिसमें जब गौतम बुद्ध साहब का, बुद्ध जी का निर्माण हुआ था, गौतम द बुद्धा का, तो उन्होंने बोला था, जब आप दुनिया का भला करने चलते हो या दुनिया के बारे में जब आप अच्छा सोचते हो तो सारी कायनात आपके साथ में होती है। तो ये बाद में फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा इन्होंने उसको वो किया, अमेंड किया, और फिर वो शाहरुख खान का डायलॉग हो गया। तो उस जी तो उस समय थोड़ा टफ था, वो समय बहुत टफ था। इनफैक्ट रात रात पहुंचता था मैं 11 बजे 12 बजे गांव में जाता था। इनफैक्ट अभी भी मैं कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जब मैं गांव में जाता था, अब हमारा गांव उस पे था, इस पे नेशनल हाईवे 1 पे था, और जब गांव में पहुंचता था तो 12 साढ़े 12 बज जाते थे, कभी कभी 1 बज जाता था, 2 बज जाता था। तो वो गांव के, और गांव मतलब हमारा मान लीजिए स्टार्ट होता है 1 पॉइंट से, और मेरा घर था दूसरे पॉइंट पे, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल दूसरे पॉइंट पे गांव के। और वो जितने कुत्ते होते थे, हर एक गली से कोई 10 आते थे, कहीं से 15 आते थे, कहीं से 20 आते थे, और जब तक मैं अपनी गली में मुड़ता था तो ये 40-50 हो जाते थे। और रोज मेरे को लगता है इनको भी पता था कि अभी आएगा, रात में आएगा और उसको छोड़ने जाना है। तो जब मैं अपनी गली में मुड़ जाता था, फिर ये अपने अपने रास्ते चले जाते थे। तो रोज का ये रूटीन था कि ये मेरे को छोड़ने आते थे और मैं जाता था। और उस समय मुश्किल था, चीजें बहुत मुश्किल थी, लेकिन काम बहुत अच्छा हुआ। जितना भी मैंने काम किया, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करता था मैं, और सिनेमा भी लिखता था इन्वेस्टिगेटिव। मेरे को आज भी याद है, मैंने एक स्टोरी की थी जेब कतरों पे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी वो कहानी, और वो जेब कतरों में मैंने कुछ भी उसमें छोड़ा नहीं था। जेब कतरों के बारे में उस समय मेरे को पूरा नॉलेज होता था, ये कैसे जेब काटते हैं, इनका किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन क्या क्या होता है, वो सारी की कहानियां लोगों ने खूब कराई मेरे से उस समय। पायनियर ने भी बहुत कराई, ड्रग्स वाली कहानियां, या फिर चिल्ड्रन होम में चला जाता था मैं, और पॉकेट में अपना रिकॉर्डर लेके और उनको रिकॉर्ड करके लाता था। और उस समय बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत मेहनत करता था, और क्योंकि मुझे जर्नलिस्ट बनना था। और फिर 96 में फिर वापस मैं इलाहाबाद चला गया था, लेकिन मेरा मन नहीं था वो सरकारी जॉब करने का। ऑडिटर था मैं और 6 डिस्ट्रिक्ट का ऑडिट करता था, अभी भी याद है मेरे को डिस्ट्रिक्ट्स के नाम, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, ये सारे डिस्ट्रिक्ट होते थे जिनका ऑडिट मैं करता था। और लेकिन अब जिसको पत्रकार बनना है वो ऑडिट क्यों करेगा, मुझे समझ में नहीं आता था तू यहाँ कहाँ कैसे आ गया। तो वो 96 में, आज भी मेरे को याद है, हमारा जो स्वतंत्रता दिवस आता है वो 15 अगस्त को आता है, लेकिन वो मेरा 14 अगस्त को आया था, क्योंकि 14 अगस्त को या 13 अगस्त को शायद, जिस दिन मैंने रिजाइन किया था सरकारी नौकरी से, और फिर 15 अगस्त को शायद मैं वापस आया था और 16 अगस्त को ज्वाइन कर लिया था वो न्यूज़पेपर।
1: जी
0: तो बड़ा ही एक्साइटिंग रहा, एंड किस्मत वाला हूँ कि
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जो चाहता था वो बना।
1: चलिए डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी, बहुत ही रोचक आपकी कहानी है, और मैं चाहूंगा कि कुछ रोचक और भी बातें हैं जो जर्नलिज्म के क्षेत्र में, फिर आपने जब फिल्म के लिए लिखना शुरू कर दिया, फिल्म के बारे में लिखना शुरू कर दिया, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं थोड़ी देर में सुनना चाहूंगा आपसे। और अभी फिर से रेणु जी से बात करेंगे। रेणु जी, मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में सबसे बड़ा रोचक जो घटना है, तो आप किस को मानते हैं, वो थोड़ा सा बताइए हमें।
2: देखिए, रोचक घटना जीवन है, 50 वर्ष
1: जीवन,
2: की
1: हाँ जी, तो बिल्कुल
2: आयु तक तो बहुत कुछ रोचक चीजें हो जाती हैं, जो हम चाहते हैं वो भी, जो नहीं चाहते वो भी। और मेरा ये मानना है कि हर एक की अपनी एक कहानी है, हर एक का अपना
1: बिल्कुल
2: एक दर्द है, हर कोई अपनी कहानी में हीरो है। ईश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं, हमें किसी मकसद के लिए यहाँ भेजा है।
1: बिल्कुल
2: जैसे
1: बिल्कुल
2: वो अभी कह रहे थे कि अच्छा कार्य करने के लिए जब हम निकलते हैं तो स्वाभाविक है बहुत से उस तरह के लोग मिलने हैं ना। श्री राम जी घर से चले से थे तो वो सुग्रीव, बाली, हनुमान जी और प्रभु, वो सब ऐसे ही तो नहीं मिले थे। वो एक
1: बिल्कुल
2: मिशन था, तो उस मिशन को पूरा करने के लिए जहां जहां जिस जिस की आवश्यकता रही वो उनको भी मिले, हमें भी मिलते हैं। मेरा ये मानना है कि मतलब खुल के मदद करो सबकी, खुल के मदद देता है ईश्वर, जरूर भेजता है
1: बिल्कुल
2: किसी ना किसी, जहां हम संकोच करते हैं ना किसी की भी मदद करने के लिए। और मदद, भाई जी, मेरा ये मानना है कि सिर्फ पैसों से मदद नहीं होती, पैसों की आवश्यकता हर कार्य के लिए नहीं होती है। हम अगर किसी का हौसला मतलब हिम्मत दे सकते हैं, उसके लिए हमें पैसों की कहाँ आवश्यकता है। लोग सोचते हैं हर कार्य के लिए हमें पैसा चाहिए, मदद के लिए पैसा चाहिए, नहीं। हम किसी का हौसला बन जाए, उसे दो लफ्ज हिम्मत के कह दें कि कूद जा, मैं हूं ना, आ तो सही,
1: बिल्कुल
2: तो वो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। रोचक तो बहुत कुछ हुआ जीवन में, बड़े करीब से देखा जीवन को, दुख दर्द, खुशियां, प्यार, मतलब बिछड़ना, मिलना, जुदाई, इतना कुछ हुआ। वो मतलब मैं बता दूं कि शाहरुख इज माई फेवरेट हीरो। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब शाहरुख की बात की गई, है ना। तो जिंदगी को जिंदा
1: चलिए
2: दिली से जिए, भूल जाएं हम के जिन्होंने हमारा दिल दुखाया, क्योंकि हम ईश्वर से
1: अभी
2: एक ही चीज मांगते हैं, भगवान हमें माफ करना हमारी गलतियों के लिए, सच में हम बोलते हैं ना। तो जब हम ईश्वर से क्षमा की उम्मीद करते हैं, वो तभी होगा जब हम किसी को क्षमा करेंगे। हमारे साथ जो हुआ कोई बात नहीं, वो हमारा भाग्य, जाने दो, कर गया सो कर गया। हमारे से ना, हमारे हाथ से किसी का गलत ना हो, और सच में नहीं होता जब हम ऐसा सोच के चलते हैं। अच्छे बनना कोई मतलब इतना इतना वो नहीं है बड़ा कार्य, प्रयास करने हैं हमें छोटे छोटे, और एक दिन वो बड़ा प्रयास कामयाब हो जाता है। हमारी सोच, जिस दिन हम बदल गए, हमारी रूटीन, हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स बदल गई, उस दिन यू टर्न आता है हमारी लाइफ में। यू टर्न तब आएगा जब दिशा बदलेगी और साथ में दिशाएं बदलेगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि बड़ा आसान है, जितना हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जितना साफ दिल के रहेंगे, उतनी चीजें अच्छी होती चली जाएंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल चलिए रेणु जी, काफी अच्छी बात है आपने बताया कि जीवन में जिंदा दिली बहुत जरूरी है, और उतार चढ़ाव आना जाना रोज रहता ही है, ये
2: पार्ट ऑफ
1: जीवन
2: लाइफ,
1: का एक है, पार्ट ऑफ
2: हिस्सा
1: लाइफ है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए हमें, तो वो हमारा लाइफ बहुत अच्छा हो जाता। तो आइए अब मैं हमारे डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी और आपके लिए एक छोटा सा गीत जो है हमारे हिमाचल से प्रधारे आर्टिस्ट संतोष जी जो है, आप दोनों के स्वागत में एक छोटा गीत पेश करेंगे। जी संतोष जी स्वागत है, और मैं चाहूंगा कि एक सुंदर सा मुखड़ा अंतरा जो है हमारे दोनों मेहमानों के लिए आप डेडिकेट करें।
3: ठीक है।

0: शांति।
1: वाह, क्या बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच संतोष जी, बहुत ही प्यारा संगीत के साथ आपने हमारे मेहमानों का स्वागत किया। अब मैं डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी से चाहूंगा कि कुछ रोचक बातें, आपकी मुलाकात जो है बड़े बड़े कलाकार, पुराने समय के अच्छे कलाकारों से आपने रूबरू होने का मौका मिला, उनका इंटरव्यू किया आपने, तो मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी जो बातें हैं जो सबको सुनने में भी अच्छा लगे सुनाइए हमें, स्वागत है।
2: जी एक्चुअली मैं आपको बता रहा था ना, मैंने जब स्टार्ट किया था 93 के आसपास स्टार्ट किया था, हिंदुस्तान टाइम से स्टार्ट किया था, और उस समय भी सिनेमा पे ही लिखता था मैं। कभी कोई कोई ब्लैक मार्केटिंग पे वो कराते थे, स्टोरी कराते थे कि ब्लैक मार्केटिंग वाला लेके आओ। आपको याद होगा उस समय ब्लैक मार्केटिंग होती थी, आजकल नहीं होती है। उस
1: जी जी
2: समय
1: जी
2: जब जब टिकटें बिकती थी तो क्या
1: हाँ,
2: कहते थे,
1: ब्लैक में
2: दस का
1: बहुत
2: 50, 10 का 50 क्या? हाँ, तो वो 10 रुपए की 50 रुपए की टिकट बेचते थे, 10 रुपए वाली। तो
1: जल्दी
2: वो उस समय, और उस समय और भी कई सारी चीजें हुई थी। जब यश चोपड़ा जी आए थे 90s में, ये 90s में उनको डर फिल्म आई थी उनकी, वो शाहरुख
1: जी
2: खान
1: जी
2: सनी
1: जी
2: देओल वाली, और उस समय उनको अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था। और मैं इंटरव्यू करने के लिए गया था उनका अशोका होटल में, और यश चोपड़ा जी बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, और खासकर उनका जो रोमांटिक जो सिनेमा बनाते थे वो तो कुछ अलग ही था उनका। तो उस समय मुझे मौका मिला एक तो उनका इंटरव्यू करने का, और उस समय खैर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई थी। उमेश मेहरा से मुलाकात हुई थी, अगर आपको याद हो। मेहरा जो होते थे वो फिल्में बनाते थे रशियन कोलैबोरेशन में, बहुत सारी फिल्में बनाते थे वो, जैसे सोनी महिवाल आई थी एक, वो मेहरा की थी, FC मेहरा जो होते थे वो उमेश मेहरा साहब के बाप थे, और उमेश मेहरा ने बहुत सारी फिल्में बनाई बाद में, फिर रशियन कोलैबोरेशन से, जिसमें बड़ी सारी फिल्मों में मिथुन होते थे। और आपको याद होगा एक फिल्म आई थी, उसकी अक्षय कुमार वाली, अक्षय कुमार की फिल्म थी, और उसमें मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी,
1: अच्छा
2: वो हम है लल्लू जी कुछ ऐसा उनका वो एक गाना भी था उसमें। वो एक्चुअल में सबसे बड़ा खिलाड़ी या पता नहीं क्या नाम था उसका, शायद यही नाम था।
1: हाँ,
2: और
1: सबसे बड़ा
2: वो
1: खिलाड़ी।
2: जी, और एक्चुअल में वो फिल्म बनने वाली थी, आपको याद हो, एक वेद प्रकाश शर्मा होते थे, तीन तेलंगे, और पता नहीं वो कितनी सारी किताबें लिखते थे, वो मेरठ के रहने वाले थे।
1: अच्छा
2: तो एक एक बार ये हुआ, हम उमेश मेहरा जी से मिलने जा रहे थे, तो अब मेरे साथ में वेद प्रकाश शर्मा जी भी हो रही है, और हम दोनों इकट्ठे उनसे मिलने गए, और वो फिल्म बन रही थी उस समय सबसे बड़ा खिलाड़ी। वो उन्हीं के, वेद प्रकाश शर्मा जी के उपन्यास पे आधारित थी। तो उस समय और भी बड़ी सारी चीजें थी जिन चीजों में मेरा इंटरेस्ट था। जैसे मेरे को अभी भी याद है, मैं हर शाम को सरकारी नौकरी के बाद में फिर शाम को वहां जाता था चांदनी चौक, और वहां पे एक मैगजीन मिलती थी ट्रेड गाइड। अपने तरण आदर्श का नाम सुना होगा, जो आजकल सिनेमा पे बहुत सारा ट्वीट करते हैं, और वो उनकी मैगजीन थी। तो वो मैगजीन लेने जाता था, और लोग मेरे को बोलते थे आप इतना कैसे जानते हो सिनेमा के बारे में, आप क्या बॉम्बे रहते हो क्या? अब मुझे उनको क्या पता कि मैंने बॉम्बे कभी विजिट भी नहीं किया था तब तक और तो हाँ, लेकिन सिनेमा में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था इनफैक्ट। और वही चीज थी जिसने मेरे को सस्टेन किया। लेकिन फिर हुआ क्या, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी बहुत करता था मैं, और इनफैक्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग तब भी करता था जब सरकारी नौकरी में होता था, शाम को न्यूज़पेपर के ऑफिस जाता था। और मेरी बॉस उस समय कहती थी अभी आएगा तो गटर फाइटर आएगा और देखना फ्रंट पेज देखे जाएगा 3 घंटे में, 3 घंटे में फ्रंट पेज देखे जाएगा। और मैं करता था ये काम।
1: जी
2: और उसी की वजह से अब लोगों को लगा दुम तो तुम लेता है, कुछ आता है मुझे तक, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो वो अंग्रेजी में ऐसा नोज फॉर न्यूज कहते हैं उसको, तो नोज फॉर न्यूज था मेरा, और वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में मेरे को डाल दिया गया। और फिर बढ़ता रहा आगे, आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ता रहा। बीच बीच में लेकिन कभी अगर मौका मिल जाता था सिनेमा का तो छोड़ता नहीं था सिनेमा का, क्योंकि सिनेमा तो मेरा पहला प्यार है। फिर आपको बताया भी था मैंने कि बचपन में मैंने सिनेमा देखा था, और उसी दिन मुझे लगा था नहीं यार ये चीज तो, ये तो अलग ही है, ये तो लगता है इसके लिए मैं बना हूं और मेरे लिए ये बनी है। तो वो बात थी सिनेमा की। तो बीच बीच में कभी कभी मौका मिल जाता था, कभी ऐश्वर्या से मिलने का मौका मिला, कभी अभिषेक से मिलने का मौका मिला, कभी फिर जैकी श्रॉफ से मिलने का मौका मिला। जैकी श्रॉफ का इंटरव्यू भी किया। ये दूसरी बात है कि वो इंटरव्यू कहीं पब्लिश ही नहीं हुआ, क्योंकि वो मैंने इसलिए किया ही नहीं था किसी के लिए, एक्चुअल में किसी से बात करके ही नहीं किया था कि इंटरव्यू कर रहा हूँ, या अपने न्यूज़पेपर में वो इंटरव्यू देता। शत्रुघ्न सिन्हा से बहुत मुलाकात होती थी क्योंकि बॉम्बे का न्यूज़पेपर था, और शत्रुघ्न सिन्हा चाहते थे कि मैं उनके बारे में लिखूं, और वो मेरे को बताते थे। लेकिन मैं समझता था उस समय भी कि ये शत्रुघ्न सिन्हा जहां जाएंगे वहीं पे रायता फैलाएंगे, तो क्योंकि मैं समझ गया था उस समय। और वो क्योंकि वो एक्चुअल में वो जिस भी पार्टी में होते थे उस पार्टी की खूब धुलाई करते थे, और फिर मेरे को कहते थे कौशिक जी आप अपनी तरफ से लिख दीजिएगा। अब मुझे लगता था यार मैं अपनी तरफ से क्या लिख दूं इसमें, धुलाई आपने की, धुलाई आपने की। अच्छा आप चाह रहे हो कि मैं अपने नाम से लिख दूं कि मैं धुलाई करूं, ऐसे थोड़े होता है। तो मुझे उस समय भी पता था, मैं अपने दोस्तों को बताता भी था भाई ये जिधर जाएगा ये वहां पे भी रायता फैलाएगा। वो कांग्रेस में आ गए, अब तो खैर आजकल तो मेरे से बात नहीं करते, उस समय तो कॉल बैक भी करते थे। राजबब्बर से कभी कभी मुलाकात होती थी, राजबब्बर बात करते थे, और इनफैक्ट राजबब्बर से भी बहुत पुराना वो है ताल्लुकात है। मतलब मैं जानता था कि राजबब्बर इनफैक्ट जब समाजवादी पार्टी छोड़ के आए थे तब वहां पे कह रहे थे कि गुंडों की पार्टी है, उस समय बोल रहे थे वहां पे प्रेस क्लब में। तो मैंने पूछा था भाई इतने साल क्यों लगे इतना पता करने में, आपको तो 15 साल हो गए, 15 साल में आपको पता चला, क्योंकि और आपके भी बैकग्राउंड तो इतना अच्छा तो नहीं है। तो हाँ उस समय जर्नलिस्ट का तो अलग ही वो होता है। और फिर वो राजेश खन्ना वाला किस्सा तो मैंने आपको बताया ही था कि राजेश खन्ना से मुलाकात हुई थी, और राजेश खन्ना चाहते थे कि मैं उनका कुछ पॉजिटिव स्टोरी करूं, और अच्छी मुलाकात थी। इनफैक्ट आज भी मेरे को याद है उनकी वो लैंड लेडी होती थी मिसेस मिसेस यादव, कर्नल यादव का मकान था, वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, और ये कर्नल यादव और उनका फैमिली फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। तो वहां पे जब मैं गया था तो इनफैक्ट मेरे को वहां 3 बजे बुलाया था राजेश खन्ना ने, और मैं पहुंच गया वहां पे 12 बजे, क्योंकि मैं साउथ दिल्ली गया हुआ था। मैंने सोचा चल यार 2-4 घंटे और एक्स्ट्रा बिता लेंगे उनके साथ में। तो मैं बार बार बेल बजा रहा था, तो बड़ी देर तक बेल बजाता रहा। फिर वो ऊपर से वो मिसिज यादव बाहर आई और मुझे कहती हूँ बेटा नए हो? मैंने कहा हाँ आंटी जी नया तो हूँ। बोली जानते नहीं हो राजेश को? मैंने कहा नहीं जानता हूँ। बोले अभी ढोल बजाओ, ढोल से भी नहीं उठेंगे, अभी कुछ भी बजाओ नहीं उठेंगे। क्योंकि उनका क्या था, वो ड्रिंक बहुत उस तरह से करते थे, सुबह सुबह ड्रिंक करना शुरू करते थे। मेरे को लगता है अकेले रहते थे क्योंकि फैमिली बहुत ज्यादा, वाइफ जो है अलग रहती थी कभी से, और यहाँ पे दिल्ली में तो बिल्कुल ही अकेले थे। और होता है मतलब अपनी अपनी किस्मत है। तो यहाँ पे ड्रिंक करना सुबह सुबह शुरू करते थे, 11 बजे को शुरू किया, लंच करते नहीं थे वो कभी भी, और 3 बजे तक इतना ड्रिंक करते थे। इनफैक्ट जब 11 बजे शुरू किया या 10 बजे शुरू कर दिया, और 12 बजे तक मतलब निडाल उडाल होके गिर जाते थे। और फिर वो मिसिज यादव भी बता रही थी 3 बजे उठेगा बेटा एग्जैक्ट, और एक्चुअली यही हुआ। 3 मैं उसके बाहर में उसके दीवार पे बैठा रहा, उनके वो जंगल के पास में मकान था, और मतलब वो ग्रीन एरिया था वो सारा, उसकी दीवार पे बैठा रहा और 3 बजे उसने सही सही 3 बजे दरवाजा खोला और फिर मुझे उसने बहुत सारी बातें बताई कि एक बड़ा सुपरस्टार था वो जैसे बातें करते थे कौशिक जी, एक इतना बड़ा सुपरस्टार आया था और फिर वो खुद गाना गा के सुनाने लगे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ऐसे सुना है उन्होंने। और इनफेक्ट मेरे को आज भी याद है, वो टेलीफोन के पास खड़े हुए थे मेरे को करके दिखा रहे थे, तो मुझे लगा यार ये आदमी थोड़ा ना पगला है। तो किस वजह से लगा, क्योंकि मैंने उनको कभी उनका सुपरस्टार नाम देखा नहीं था, मैं उस समय पैदा हुआ था जब वो सुपरस्टार थे, बड़े सुपरस्टार थे। मुझे लगा बहुत फेंकता है, अमिताभ बच्चन को भी नहीं मानता, अमिताभ बच्चन इतने सालों तक सुपरस्टार रहे। लेकिन फिर बाद में पता चला जब उनकी डेथ हो गई, मुझे किसी ने बोला ऑबिचुरी लिखो, तब मुझे लगा, मेरे दोस्त ने भी कहा भाई वो काका तो बहुत बड़ा सुपरस्टार था रे, मैंने कहा हाँ यार मुझे नहीं पता था इस बात का। तब मेरे को किसी ने ओबिचुरी लिखने को बोला और मैंने अपनी गली के बारे में सोचना शुरू किया, मेरी गली में 7 या 8 राजेश थे और फिर मैंने एक एक खंगालना शुरू किया, भाई ये राजेश 67 में पैदा हुआ जब आराधना आई, ये राजेश 68 में पैदा हुआ जब 2 रास्ते आई, ये वो जो 17 फिल्में उनकी जो सुपर हिट हुई थी उस समय, लगातार सीरीज थी वो जुबली हिट थी और सारी, तो इतने बड़े सुपरस्टार थे वो एक्चुअल में। और मैंने शायद आपको उस दिन भी बताया था कि राजस्थान, इनफैक्ट अमिताभ बच्चन उनको गोड कहते हैं, आपको अगर याद हो तो अभी भी गोड कहते हैं। वो कहते हैं कि जब हम आनंद शूट कर रहे थे तो ऋषिकेश मुखर्जी जो है, ऋषिकेश दा, वो सुबह सुबह 8 बजे बुलाते थे शूटिंग के लिए और बोला 8 बजे से 8:15 हो जाते थे तो बहुत डांटते थे, बहुत झुंझलाते थे। बोला लेकिन गॉड जो है 2 बजे आता था क्योंकि वो ड्रिंक वगैरह करके आता था उस समय भी, और बोला 2 बजे आता था और लेकिन ऋषिकेश दा कभी उसको कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वो ऐसा शॉट देता था, एक ही शॉट के साथ लोट पेट हो जाते थे कि भाई इतना बढ़िया शॉट दिया, और उसके बाद में फिर किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और वो अमिताभ बच्चन ये भी कहते हैं कि उस समय जब शूट करते थे हम 2 बजे तक, बोला एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं आता था वहां पे, कोई परिंदा भी नहीं आता था, मतलब ये समझिए आदमी की तो दूर की बात है। और बोला जैसे ही गोड आता था तो पीछे से 20,000 लड़कियां भी आती थी और उसकी वो इम्पाला होती थी, वाइट इम्पाला, बोला उसको किस कर करके और शाम को वो रेड होती थी, ये हालत होती थी। तो इतना बड़ा सुपरस्टार, खैर मुझे नहीं पता था, बाद में बेचारा कॉल भी करता था मेरे को, मेरे घर पे भी कॉल करता था, मैंने वाइफ को बोला हुआ था, वो किसी राजेश का फोन आए तो उसको बोला मैं नहीं हूँ इधर, तो मेरे को लगता था यार भूत चापलूस से भूत वो करता है, बट मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा स्टार है। और मुझे भी कभी कभी रिग्रेट होता है, नहीं दोस्ती तो रखनी चाहिए, और कोई अगर आपको दोस्ती की ऑफर करता है तो मुझे नहीं लगता आपको ना कहनी चाहिए, क्योंकि ये सब तो देखो जो भी कमी है आप में, ऐसा नहीं कि हमारे में कमी नहीं है, सब में कमियां होती है, लेकिन आपको कोई ऑफर करता है फ्रेंडशिप का हैंड ऑफर करता है आपको, तो आई डोंट थिंक यू शुड से नो, तो वो है। और हाँ तो यही हुआ, और भी बहुत सारे एक्टर से मुलाकात भी हुई और बात भी हुई, जैसे धर्म जी से बात हुई, जब 2004 की बात है, धर्म जी ने वो पार्टी ज्वाइन की थी बीजेपी, और मुझे उसी समय किसी ने बोल दिया था भाई इसके बस का नहीं है ये पॉलिटिक्स, भाई दुनिया भर की आपको झूठ बोलनी पड़ती है, और धर्म जी तो ठहरे वल्नरेबल, उस तरह के जो झूठे आदमी है नहीं। तो एक्चुअल में मुझे उस समय पता चला था कि उनको बोला गया था कि आप सीकर से लड़िए, सीकर से इलेक्शन लड़िए, तो उन्होंने क्या कहा, भाई नहीं सीकर से तो मेरे भाई साहब लड़ते हैं, आपको याद होगा बलराम जाखड़ जो होते थे वो होते पंजाब के थे, अभी उसका बेटा है ना सुनील जाखड़, वहां पे सनी देओल ले रहा था पिछली बारी, उन्हीं के फादर थे, वो लोकसभा के स्पीकर थे, बड़े लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस के और बड़े सालों जीते थे वहां से। तो बीजेपी वालों को इनको लगा, प्रमोद महाजन वगैरह को, यार इसका भाई कैसे हो गया, वो मान लिया पंजाब का है लेकिन ये वहां पे सिनेमा में, वो वहां पे पंजाब में, वो पॉलिटिक्स, तो धर्म बाद में पता चला, वो ज्यादा धर्म जी से जब पूछा गया कि आपका भाई कैसे, बोला एक दिन एयरपोर्ट पे मिला था और उन्होंने मेरे को गले लगा के कहा धर्म तू मेरा छोटा भाई आज से। तो वो इतने सच्चे आदमी हैं, इतने अच्छे आदमी हैं कि अगर आप उनको बोल दो कि धर्म जी आप तो मतलब आप तो मेरे पापा जैसे हैं, आप तो मेरे भाई जैसे हैं, तो वो मान लेते हैं उस चीज को। वो उस तरह के झूठे नहीं है, झूठे नहीं है। और इनफेक्ट उस समय मतलब मुझे बताया गया था, वो लीडर जिससे उन्होंने बोला था, तो बोला, वो हंस रहे थे, बोला यार ये कैसा आदमी, ये पॉलिटिक्स में कैसे स्टैंड करेगा, कैसे रुकेगा, यहाँ हम लोग तो जो है ना किसी से गले लगते हैं तो पीछे चाकू रखते हैं, बोला पीछे जब गले लगेंगे तो पीछे इसके कमर मारूंगा गोप। तो बोला और ये किस तरह का आदमी जो मतलब सीधा सच्चा बेचारा बहुत अच्छा आदमी, तो वो पॉलिटिक्स के लिए बना नहीं था। और इनफेक्ट मैंने उनसे जब बात की थी, वो शायद उसी रात की बात है जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, और मेरे को उदय तारा नैयर कोई एक फिल्म जर्नलिस्ट होती थी, अभी बड़ी जर्नलिस्ट है, मेरे साथ में काम करती थी उस समय, तो उन्होंने मेरे को नंबर दिया था। लेकिन उन्होंने मेरे को बोला भी था, नरेन डोंट कॉल हिम अप आफ्टर 7 o'clock, क्योंकि वो 7 बजे के बाद में फिर वो संभालने लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि वो धर्म जी खुद भी कहते हैं कि मैं थोड़ा टिका लेता था उसके बाद में, वो ऐसे ही कहते हैं, मैं टिका लेता था और फिर वो मेरे को पता ही नहीं रहता था क्या बोल रहा हूँ क्या हो रहा है। तो उस दिन, लेकिन जर्नलिस्ट का आपको पता है, जर्नलिस्ट का जो दिन जो है ना वो शाम को शुरू होता है, क्योंकि उस समय कहानियों के लिए लड़ना पड़ता है, उसकी जद्दोजहद होती है। तो उनको फोन किया मैंने 7:45 के आसपास, याद है मेरे को, और वो मेरे को लगता है टिका टिका लिए थे उस समय, खूब सारे टिकाए हुए थे, और वो क्योंकि जिस तरह से बात कर रहे थे, वो मुझे लगता है उस दिन सानेवाल भी जा रहे थे, क्योंकि वो बार बार मेरे को बोल रहे थे आपने क्या नाम बताया था, मैंने कहा मैंने बताया था नरेंद्र कौशिक, हाँ तो कौशिक जी, और फिर वो कहते थे, फिर वो बार बार एक एक डायलॉग बहुत मार रहे थे उस दिन, कौशिक जी माँ तो आखिर माँ होती है, हर एक डायलॉग में ऐसे मार रहे थे, मुझे लगता है उनको माँ बहुत याद आ रही थी अपनी, और वो बहुत भले आदमी है, एक्चुअली में ड्रिंक किया होगा और अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तो और वो माँ से बहुत क्लोज थे उनके, अपनी माँ के, आपको याद होगा वो एक्चुअल में जब सिनेमा जगत में आए थे पहली बारी तो भी उनके अपनी माँ की वजह से आए थे, वो कहते हैं कि मैं एक्टर बनना चाहता था और माँ को बोलता था माँ मेरे को बनना है, वो पुराने वाले फोटो देखना कभी आप उनके, वो जो
1: जी
2: वहां पे जान मोहम्मद के वहां पे वो फोटो शूट करने गए थे वहां पे, वो उसी में सानेवाल में, और बोला फिर माँ से मैं बहुत कहता था, माँ ने फिर बोला तू अर्जी भेज धर्म, अर्जी भेज, और बोला मैंने लिखा और फिर वो फिल्म फेयर ने मुझे सेलेक्ट किया और फिर वहां से उनका शुरुआत हुई थी। तो वो उस तरह के आदमी हैं जो बहुत केयर करते हैं जिसके साथ में होते हैं और जिससे रिलेटेड होते हैं, इनफेक्ट जिससे रिलेटेड नहीं होते उनकी भी केयर करते हैं, तो झूठे आदमी नहीं है। और बहुत अच्छा लगा उस समय उनसे बात करके, क्योंकि एक सच्चे आदमी से बात करूं, और आपको वो वाकया भी बताता हूँ क्यों मैंने बात की थी, मेरे को
1: जी
2: पता चला था वो एक फिल्म कर रहे थे मालिका शेरावत के साथ में,
1: जी
2: याद है ना आपको मालिका शेरावत, मालिका
1: जी
2: शेरावत के साथ में फिल्म कर रहे थे, और उस फिल्म के बारे में ये खबर आई थी कि धर्मेंद्र थे उसमें और मालिका शेरावत थी, कि धर्मेंद्र ने उनको ये बोला मालिका शेरावत को कि बच्चे बेटा अब तू मेरी उसमें आ गई है, मेरी उसमें आ गई है, तो कभी भी तेरे को जरूरत हो तो मेरे को फोन करना, मेरे को बता देना बेटा। तो वो क्योंकि मैंने बोला ना भले आदमी है, सच्चे आदमी है, झूठे नहीं है, तो मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा धर्म जी आपने ऐसा बोला क्या बालिका को, बोला हाँ जी बिल्कुल बोला, अपनी बच्ची है, ऐसे बोल रहे थे और फिर मेरे को बोल रहे थे, हाँ अपनी बच्ची है भाई, अपने वहां से आई है, हरियाणा से आई है, पंजाब से आई है, तो इतना तो अपना फर्ज बनता है ना कि हम उनका उसका ध्यान रखें। तो वो इस तरह की चीजें बहुत सारी हुई, और फिर तो खैर सिनेमा में तो क्या बताऊं आपको, फिर तो मैंने थाई एक्ट्रेसेस से भी बात की, आपको याद है, और थाई एक्ट्रेसेस एक्चुअल में इसमें काम करती है, बॉलीवुड में काम कर चुकी है दो थाई एक्ट्रेसेस, और क्योंकि बॉलीवुड सॉरी अमिताभ बच्चन इस पे गुस्सा करेंगे मेरे से कि मैं बॉलीवुड बोल रहा था, क्योंकि वो बॉलीवुड लाइक नहीं करते हैं हिंदी सिनेमा में, क्योंकि हिंदी सिनेमा में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत बहुत जगह के आर्टिस्ट हैं आपके, शायद ही कोई देश हो जिसका आर्टिस्ट ना हो आज, चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे जो भी देश हो, सारे देशों के आर्टिस्ट हैं वहाँ पे। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम सबको सबको एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारी पुरानी वो है, पुरानी संस्कृति है कि दूसरे लोगों को हम एक्सेप्ट करते हैं, गले लगाते हैं और उनको अपना बनाते हैं।
1: जी जी, चलिए कौशिक जी, बहुत ही अच्छा रोमांटिक बना, खास जो रोमांचक जो चीजें हैं वो आपने सुना है, रोचक बातें फिल्मी दुनिया की, अपने अनुभवों को साझा किया, अच्छा लगा हमें, थैंक यू सो मच। रेनू जी, जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें आप।
0: भाई जी, मैसेज एक नहीं, मैसेज मैं दो देना चाहूंगी। पहला संदेश ये कि जितना हो सके पानी को बचाया जाए हमारे इस देश में, मतलब दूध, लस्सी, दही ये तो पड़ोस से आ जाती थी, आज हमें पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। हम नहीं, मतलब अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या करके जा रहे हैं, क्या बचा के जा रहे हैं? लोग पाइप लगा के गाड़ियां धो देते हैं, लोग पाइप लगा के कोठियों के बाहर रैंप धो देते हैं, तो हम अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत नुकसान कर रहे हैं हम लोग अपना को, बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। पानी को बचा लिया जाए, इंसानियत को बचा लिया जाए, मेरा एक तो ये संदेश है। कम से कम हर वर्ष अपनी जन्म वर्षगांठ पे एक पेड़ अवश्य, कहीं छोटा सा पौधा कहीं भी लगा दिया जाए। प्रकृति का कुछ कर्ज उतरा, सफाई की, स्वच्छता की बात करते हैं हम लोग, कहते हैं विदेश बहुत सुंदर है, ऊपर से देखो, जहाज से देखो, जाते हैं लोग स्पेशल घूमने, हम अपने देश की, बड़ा सुंदर है मेरा देश, नहीं मैं बात करती देश की, नहीं मैं बात करती शहरों की, नहीं हम बात करते अपनी सोसाइटी, अपने घरों के आसपास की स्वच्छता की बात तो कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कम से कम उतना एक तो सुंदर, उतनी जगह को तो सुंदर और स्वच्छ रख सकते हैं या नहीं? बस यही मेरा संदेश है, जहां तक हो सके मदद करें लोगों की, पानी को बचाएं, इंसानियत को बचाएं, एक वृक्ष लगाएं, 21 गायत्री जाप करके डेली हवन कर लें और फिर देख।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया, धन्यवाद। चलिए नरेंद्र जी, आप भी जाते जाते एक कोट क्या करना चाहेंगे लोगों के लिए, आपको सारी दुनिया सुन रही है।
2: क्या कहना चाहेंगे, क्या
1: कहना, एक मैसेज
2: संदेश? संदेश तो बड़े लोग देते हैं, मेरे पास तो कोई संदेश नहीं है, मेरा तो कहना सिर्फ इतना है कि आपका जो मन करे वो करिए, जो मन करे वो करिए, और क्योंकि वो करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी डबल होगी, क्योंकि आप जब एंजॉय करते हैं किसी चीज को, जैसे मान लो आप अगर कम्युनिकेशन ही एंजॉय करते हैं तो आप बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर होते हैं।
0: बिल्कुल,
2: जब आप जो भी चीज एंजॉय करते हैं, आपको जो बनना है अपने दिल से पूछिए पहले, अगर आपका दिल कहता है कि आपको आपको तो हीरो बनना है, या आपका दिल कहता है कि आपको पॉलिटिक्स में जाना है, तो वही करिए, किसी की मत सुनिए, अपने दिल की जरूर सुनिए। लेकिन जी,
1: बहुत बहुत सुंदर। चलिए जाते जाते मैं फिर से संतोष जी को बोलूंगा कि दो लाइनें जरूर सुनाइए हमारे मेहमानों को।
3: जी अवश्य। आदमी मुसाफिर है।

0: Om Shanti.
1: Oh, Maria, thank you so much. बहुत ही प्यारा संगीत सुनाने के लिए हमारे लिए। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने सिनेमा और अपने जीवन के जो अनुभव है वो साझा करने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि जब बातें सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपके दिलो दिमाग में उसका असर भी होता है। तो जो चीजें आपको अच्छी लगती हो, जिससे कहीं प्रेरणा मिलता हो, और जो संदेश रेणु जी ने दिया जल और पेड़ लगाने का, जल बचाने का, पेड़ लगाने का संदेश आपको मिला है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अगर हम नई पीढ़ियों को सुखी देखना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से करना है। जितना जरूरत है उतना करें, और जहाँ जरूरत नहीं है वहां पर इन चीजों को बचा के रखें और पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं। और इसके साथ में नरेंद्र जी ने भी बहुत ही अच्छा संदेश दिया आपको कि जो आपका मन करता है वो जरूर करें आप, ताकि उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाती है। तो अपने मन को भी सशक्त बनाए, सुंदर बनाए, अच्छे काम के लिए प्रेरित करें और फिर उसमें खुश रहिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। आज के लिए बस इतना ही। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, कहानियों के सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की लघु कथा, पापा तुम मत बदलना, जिसे लिखा है डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी जी ने ग्वालियर से। आइए शुरू करते हैं। पापा, आज अपने घर से बहुत दूर आ गई हूं। घर क्या, अपने शहर, अपने प्रदेश, यहां तक कि अपने देश से भी दूर सात समंदर पार आ गई हूं। आपको एयरपोर्ट पर मुड़ मुड़ कर देखती रही और जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, आंखों में रोका हुआ दरिया बह निकला। बचपन में जब छोटी थी, मुझे यही कहते थे कि एक दिन मेरी बिटिया सात समंदर पार जाएगी और बड़ा नाम रोशन करेगी। यही सुनते सुनते कब बड़ी हो गई और माइक्रोसॉफ्ट जैसी एमएनसी के ऊंचे ओहदे पर जा बैठी, पता ही नहीं चला। हाँ, अब पता नहीं अपनी भारत भूमि पर लौटूंगी, कब लौटूंगी, कुछ नहीं पता। पापा, मुझे मालूम है, मुझे पल पल बड़ा करने में और मेरी महत्वाकांक्षा को साथ साथ बड़ा करने में आप खुद को भूल गए। मम्मी आपको हर समय यही टोकती, अरे आप पागल हो गए हैं क्या? राजा जनक भी अपनी जानकी को अपने घर पर नहीं रख पाए थे, फिर हम तो साधारण जनता हैं। उसे ससुराल जाना है, ये दुनिया का शाश्वत सत्य है, ये निभाना ही होगा। पर पापा, आपका तत्काल उत्तर होता, अरे आखिर जानकी को मिला ही क्या शादी करके? 14 साल पति के साथ वनवास, फिर सीताहरण, और फिर जब सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो अग्नि परीक्षा, उसके बाद भी राजधर्म पालन के लिए फिर से सीता का त्याग, और उतने में भी शांति नहीं मिली तो फिर धरती मैया की शरण। ना भैया ना, मेरी बेटी स्वयं सिद्धा बनेगी, जो इसके गुणों का पारखी होगा वहीं जाएगी मेरी बेटी। काश काश हर बेटी की किस्मत में आपके जैसे पापा होते, तब सही अर्थों में अच्छे दिन आते, सबके साथ सबका विकास फलीभूत हो पाता। पापा, आप मेरे पापा हो, शायद सबके पास भी होते होंगे, लेकिन मैं पूरे गर्व से आज कह सकती हूं कि मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। अब मुझे भी पापा की रानी को सबसे अच्छी बिटिया साबित करना है। पापा की औपचारिकता से ऊपर उठकर आज आप नहीं, तुम का संबोधन देते हुए यही कहना चाहती हूं, पापा तुम जैसे हो वैसे ही रहना, पापा तुम कभी मत बदलना, कभी मत बदलना। बस इतनी सी ही है ये लघु कथा। आई एम डैम श्योर आपको बहुत पसंद आई होगी और इसे तीर की तरह दिल में उतर गई होगी। आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रतिभा त्रिवेदी जी की लिखी लघु कथा, पापा तुम मत बदलना। वैसे पापा बदलते भी नहीं है ना। वेल, आप भी अपने किस्से, अपने अनुभव, अपनी कहानियां साझा कर सकते हैं ना। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपकी टिप्पणियां, आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और शेयर कीजिएगा अपने अपनों के साथ, ताकि संवेदनाओं का प्रवाह बना रहे। मैं अमित आपसे इजाजत लेता हूं इस वादे के साथ कि अगले पड़ाव पर नई कहानी लेकर के फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

0: नमस्ते दोस्तों, चलो जल्दी से मिलते हैं पोंगाराम चाचा से, उनके घर चल के। अरे नहीं नहीं, उनके घर में कोई दावत नहीं है। आप सब यही सोच रहे हैं ना कि अगर दावत नहीं है तो फिर हम पोंगाराम चाचा के घर क्यों जा रहे हैं, है ना? चलो मैं आपको बताता हूँ, हम पोंगाराम चाचा के घर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ अपनी मीना भी आने वाली है बेला को कहानी की किताब लौटाने।
1: पिताजी, मैंने अपना निबंध लिख लिया, देखिए।
2: वो सब ठीक है बेला बेटी, पहले तुम ये तरबूज चक्कर देखो, बहुत मीठा है।
1: मेरा निबंध तो सुन लीजिए।
2: निबंध भी सुन लूंगा बेटी, इतनी क्या जल्दी है।
1: पिताजी, आप मेरी कोई भी बात नहीं मानते। हमारे आंगन में जो गड्ढा है उसमें आज सुबह ही मेरा पैर फंस गया था, कम से कम उस गड्ढे को तो ढक दीजिए ना।
2: सब हो जाएगा बेटी, पहले ये तरबूज खा लूं।
0: लो भाई, बेला तो उदास होके घर के अंदर चली गई और मीना बेला को आवाज लगाते हुए वहाँ पहुँच गई।
3: बेला दीदी, बेला दीदी।
2: अरे मीना बेटी, संभल के गड्ढे से बचकर चलना। अरे मीना, तुम ठीक तो हो ना बेटी?
1: हाँ चाचा, ठीक हूँ, लेकिन ये गड्ढा
4: देखा पिताजी? मैंने कहा था ना कि हमें इस गड्ढे को ढक देना चाहिए।
2: वो मैं
3: कोई बात नहीं बेला दीदी, बस हल्की सी चोट लगी है।
4: लेकिन तुम्हारे पैर से तो खून निकल रहा है, मैं अभी मलहम लेकर आती हूँ।
2: बेला बिटिया ने ठीक ही कहा मीना, मुझे खाने पीने के साथ साथ जरूरी कामों पर भी ध्यान देना चाहिए।
3: गलती मेरी है चाचा जी, मुझे देख के चलना चाहिए था।
2: नहीं मीना,

0: पत्नी मेरी है, अब मैंने ठान लिया है आज जब तक मैं कोई तीन भले काम नहीं कर लेता मैं खाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगा।
1: ये लो मीना मलहम, इसे अपने घाव पर लगा लो।
2: जी बेला दीदी। अरे मैं तो भूल ही गई थी, ये लीजिए आपकी कहानियों की किताब। अब मैं चलती हूँ, नमस्ते चाचा जी।
0: नहीं मीना बेटी, आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा अपनी साइकिल पे। आओ मैं तुम्हें बिठाता हूँ। ये मैंने तुम्हें बिठाया साइकिल पे और ये मैं बैठा। हाँ अब ठीक है, चले बेटी।
2: जी चाचा।
0: ये मैंने शुरू किया साइकिल चलाना। वो क्या है ना मीना, मैंने काफी समय से साइकिल नहीं चलाई ना, इसलिए थोड़ी ज्यादा मेहनत लग रही है।
2: पर चाचा आप तो।
0: हाँ मैं जल्दी तुम्हें तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा बेटी।
2: चाचा जी मेरे घर तो हम तभी पहुंचेंगे जब साइकिल स्टैंड से उतरेगी।
0: ओह मैं तो साइकिल को स्टैंड से उतारना ही भूल गया। ये मैंने साइकिल उतारी स्टैंड से नीचे। चलो अब चलते हैं।
3: अभी पोंगाराम चाचा और मीना थोड़ी दूरी पहुंचे थे कि उन्हें एक झाड़ी के पीछे कुछ दिखा।
0: अरे वो देखो मीना, वो लाल लाल चीज क्या है?
2: चाचा ये तो दीपू की कमीज है।
0: कहीं उसे चोट तो नहीं लगी? लगता है आज का दिन ही खराब है। तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। दीपू बेटा।
4: पकड़ लिया। दीपू अगर पोंगाराम चाचा तुझे आवाज ना देते तो मैं तुझे कभी ना पकड़ पाता।
5: क्या चाचा आपने मुझे आउट करा दिया।
0: ओहो ये तो मुझसे फिर एक गलती हो गई। तुम लोग खेलो भाई, मैं चलता हूँ।
3: मीना और पोंगाराम चाचा साइकिल पर सवार होके आगे बढ़ने लगे। तभी मीना को कुछ और नजर आया।
2: चाचा वो देखिए, गीता दीदी के घर के दरवाजे से धुआं निकल रहा है।
0: अरे हाँ मीना, कहीं वहाँ आग तो नहीं लगी? मुझे कुछ करना पड़ेगा, तुम यहीं रुको मैं अभी आया।
3: पोंगाराम चाचा ने झटपट पड़ोस के घर से एक बाल्टी में पानी भरा और गीता के घर का दरवाजा खोल के सारा पानी अंदर फेंक दिया।
4: चाचा
0: लो, एक तो मैंने धुआं देखकर तुम्हारे घर को जलने से बचाया और तुम हो कि
4: जलने से। चाचा वो धुआं तो चूल्हे का था।
0: चूल्हे का?
4: हाँ क्योंकि मैं खाना पका रही थी, अब आपके पानी डालने से सारा खाना भी खराब हो गया।
0: ओहो एक और गड़बड़ कर दी मैंने।
2: गीता दीदी महक इतनी जोर से क्यों खांस रही है?
5: मीना जब भी मैं खाना बनाती हूँ महक खांसने लगती है।
0: तो फिर तुम्हें खाना बनाते समय महक को रसोई में लाना ही नहीं चाहिए। गीता 9-10 महीने की छोटी सी बच्ची है और वैसे भी धुआं लगने से इस उम्र के बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है।
4: चाचा मैं तो सिर्फ महक को अपने पास रखना चाहती थी।
0: सो तो ठीक है बेटी, लेकिन तुम महक को ऐसी जगह रखो जहाँ उसे धुआं भी ना लगे और तुम उसे देख भी सको।
2: देख भी सको, रोटी सेक भी सको। गीता दीदी माँ भी खाना पकाते समय रानी को दूसरे कमरे में रखती है ताकि चूल्हे के धुएं से उसे खांसी ना हो।
4: आप दोनों ठीक कह रहे हैं, अब मैंने सोच लिया है, अब से जब भी खाना बनाऊंगी महक को दूसरे कमरे में ही रखूंगी ताकि उसे चूल्हे के धुएं से कभी कोई तकलीफ ना हो।
0: और मैंने भी सोच लिया है गीता बिटिया कि आज दोपहर का खाना तुम मेरे घर पर ही खाओगी।
4: लेकिन चाचा चाची तो खाना बना भी चुकी होंगी।
0: अरे बेटी तुम्हारी चाची को मेरी खुराक का पता है। खाना कम नहीं पड़ेगा। मैं पहले मीना को घर छोड़ाता हूँ फिर तुम्हें और महक को लेता चलूंगा, क्यों गीता बिटिया?
4: जी चाचा।
0: चलो मीना।
2: चाचा, गीता दीदी को खाने पर बुलाकर आपने एक और भला काम किया है।
0: सो तो है मीना, लेकिन मैं अभी भी कुछ नहीं खा सकता।
2: खा सकते हो चाचा।
0: लेकिन मैंने तो अभी सिर्फ दो ही भले काम।
2: दो नहीं चाचा, तीन। देखिए, मुझे घर छोड़ा, गीता दीदी को खाने पे बुलाया, और तीसरा, गीता दीदी को ये बताया कि वो महक को चूल्हे के पास ना बैठाया करे। हो गए ना तीन भले काम।
6: तीन भले काम, चाचा को आया आराम।
3: देखा दोस्तों, कितनी जरूरी बात पता चली आज। छोटे बच्चों को सांस की तकलीफ से बचाने के लिए उन्हें हमेशा चूल्हे के धुएं से दूर रखना चाहिए। इसलिए चूल्हे के पास खिड़की का होना बहुत जरूरी है। ना लगेगा धुआं, ना होगा बच्चा बीमार। चलो अब देखते हैं मीना और मिट्टू क्या कर रहे हैं।
2: मुन्ना मुन्नी कभी ना हो खांसने पर मजबूर।
6: याद रहे है रखना उनको धुएं से बहुत दूर।
3: वाह, क्या मजा आया इस कविता को सुनकर। चलो अब गाने का मजा भी ले लिया जाए।

0: गाना सुनकर सचमुच मजा आ गया। क्यों दोस्तों, अब चलते हैं मीना की क्लास में।
1: क्या कहा, क्यों?
0: अरे भाई खेलना नहीं है। जल्दी से चलो, देखें आज बहन जी कौन सा खेल खिलाने वाली है।
2: बच्चों आज हम खेलेंगे पहचानो कौन। मैं तुम्हें एक मशहूर व्यक्ति के बारे में 3 चीजें बताऊंगी और तुम्हें ये बताना है कि मैं किस मशहूर व्यक्ति की बात कर रही हूँ। तो तैयार?
3: जी बहन जी।
2: तो पहली बात सुनो, गांधी जी के साथ मिलकर सत्याग्रह को बढ़ावा देने से पहले ये देशभक्त नेता एक वकील थे।
4: पहले वकील थे, बाद में गांधी जी के साथ, मतलब वो स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, है ना बहन जी?
2: ठीक कहा मीना। अब दूसरी बात, इन महान नेता को सरदार के नाम से भी जाना जाता था।
4: सरदार के नाम से जाना जाता था, वकील रह चुके थे और इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा भी लिया। बहन जी मतलब वो गांधी जी के खास दोस्त रहे होंगे।
2: शाबाश गोलू, लगता है बहुत जल्द सही जवाब मिलने वाला है। और तो और, इनके साहस और आत्मविश्वास के लिए इन्हें पूरे देश में लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था।
5: समझ गया बहन जी, इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
2: शाबाश कृष्णा, बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों इस खेल में मजा आया ना?
3: बहुत मजा।
0: भाई मजा तो हमें भी आया, क्यों दोस्तों? तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
6: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: EIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 16वां पाठ, कौन करेगा यह काम, पृष्ठ 146। क्या तुमने अपने आसपास ऐसे दृश्य देखे हैं जैसे बहुत बड़े कूड़े के टीले में घुसकर उसकी सफाई करना, या जैसे सड़क पर बने पुल की सफाई करना, जैसे सड़क पर बने सीवर में घुसकर वहां की सफाई करना, स्लम की पतली गलियों में घुसकर वहां की सफाई करना? लोगों को ऐसे काम क्यों करने पड़ते हैं? पृष्ठ 148। हमारे साथियों ने कुछ सफाई कामगारों से बातचीत की। ये हैं उस बातचीत के कुछ हिस्से। प्रश्न, आप कब से यह काम कर रही हैं? करीबन 20 साल से, जब से पढ़ाई खत्म हुई है। आप आगे क्यों नहीं पढ़ी? कुछ और काम मिल जाता? पढ़ने के लिए पैसे चाहिए? वैसे भी पढ़कर हमारे कई लोग ऐसा ही काम करते हैं। मतलब? उत्तर था, बाप दादाओं से, उनसे भी पहले से हमारे समाज के ज्यादातर लोग यह काम कर रहे हैं। डिग्री लेकर भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती तो यही काम कर रहे हैं। प्रश्न, ऐसा क्यों? उत्तर मिला, ऐसा ही है। हमारे पूरे शहर में यह काम करने वाले सभी लोग हमारे ही समाज के हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। यह अंश स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से लिया गया है। लिखो, जो लोग तुम्हारे घर और स्कूल के आसपास की सफाई करते हैं उनसे बातचीत करो और लिखो वे कब से यह काम कर रहे हैं, वे कहां तक पढ़े हैं, क्या उन्होंने और कोई काम ढूंढने की कोशिश की, क्या उनके परिवार के बड़े बूढ़े भी यही काम करते थे, उनको इस काम में क्या परेशानियां आती हैं। पृष्ठ 149। यहां एक चित्र दिया गया है। चित्र में काम करते हुए लोग दिखाए गए हैं, जैसे गाय का दूध दुहना, एक दुकान पर सब्जी बेचना, ट्रैफिक पुलिसमैन, बाहर सब्जी बेचना, बच्चे की देखभाल करना, बाग के माली का काम, स्कूल में पढ़ना, स्कूल में पढ़ाना, स्कूल का चौकीदार, कूड़ा उठाने वाले ट्रक में बैठकर सड़क का कूड़ा उठाने का काम, बस में स्कूल जाना, बस ड्राइवर का काम, सड़क की सफाई, ठेले पर सब्जी बेचना, बर्तन धोना, घर का काम करना, दफ्तर में बैठकर कंप्यूटर पर काम करना।

पेंटिंग करना, ठेले पर सामान ढोना, कूड़े में से सामान बीनना, दुकान पर काम करना, घर का खाना पकाना, मकान बनाने के लिए मजदूरी करना, सब्जी बेचना। अब आपके लिए काम। इस चित्र में जिन कामों को दिखाया गया है उनमें से कोई पांच काम तुम्हें करने हों तो तुम कौन कौन से काम चुनोगे और क्यों? इनमें से कौन से काम तुम नहीं चुनोगे और क्यों? पृष्ठ 150। चर्चा करो, तुम्हारी समझ में किस तरह के काम करना लोग पसंद नहीं करते और क्यों? फिर इस तरह के काम कौन करता है? ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें करना कोई भी पसंद नहीं करता? कल्पना करो, अगर कोई भी यह काम ना करे तो क्या होगा? यदि एक हफ्ते तक कोई भी तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ ना करे तो क्या होगा? कचरा साफ करने के कुछ अलग तरीके, जैसे मशीन या और कोई तरीका सोचो जिससे लोगों को नापसंद काम ना करना पड़े। अपने सोचे गए तरीके के चित्र बनाकर दिखाओ। यहाँ बच्चों के बनाए कुछ चित्र दिए गए हैं जिनमें बच्चों ने दिखाया है कि मशीनें अपने आप कूड़ा साफ कर रही हैं। क्या ऐसे हालात बदलने की कोशिश किसी ने की है? हाँ, कोशिश तो कई लोगों ने की, आज भी करते हैं, पर बदलाव लाना आसान नहीं। ऐसे लोगों में से एक थे महात्मा गांधी। गांधी जी के बहुत करीब के साथी थे महादेव भाई देसाई, जिनका बेटा है नारायण। नारायण का बचपन गांधी आश्रम में गुजरा था। यह किस्सा उन्हीं की किताब से लिया गया है। पृष्ठ 151। पुरानी यादें। नारायण, यानी जिसे प्यार से बावला कहते थे, जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थीं, जिनमें संडास की गंदगी गिरती थी। फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथ से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था, पर गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियां ले जाने का यह काम सभी को करना पड़ता था, फिर वह कोई भी क्यों ना हो। नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के वर्धा शहर के पास एक गांव में रहने गए। यह गांव था तो वर्धा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी महादेव देसाई और उनके साथी संडास की सफाई का काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी संडास की तरफ से एक आदमी लोटा लेकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो बोला, उस तरफ ज्यादा गंदगी है, वहां सफाई करो। यह देख बावला को बहुत हैरानी हुई और गुस्सा भी आया। उसने सोचा, गांव वाले तो यह समझ रहे हैं कि यह काम उनका नहीं बल्कि गांधी जी और उनके साथियों का ही है, यह बात तो ठीक नहीं है। उसने गांधी जी से यह पूछा तो वे बोले, छुआछूत का भेदभाव छोटी सी बात नहीं है, उसे मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। नारायण यह जानता था कि ऐसे काम करने वाले लोगों को अछूत माना जाता है, पर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उनके बदले अगर हम खुद यह काम करें तो हालात कैसे बदलेंगे। उसने पूछा, अगर गांव वाले नहीं सुधरे तो क्या फायदा? उन्हें तो आदत हो गई है कि उनका गंदा काम कोई और ही करे। गांधी जी बोले, क्यों, इससे सफाई करने वालों को फायदा नहीं होता? क्या उन्हें सीख नहीं मिलती?
कोई काम सीखना एक कला सीखने जैसा ही है, सफाई का काम भी। छोटा नारायण फिर भी नहीं माना। वह फिर से बोल पड़ा, पर सीख तो उनको भी मिलनी चाहिए जो गंदगी करते हैं और खुद साफ नहीं करते। गांधी जी और नारायण की बहस तो चलती रही, फिर भी आगे चलकर नारायण भाई ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ा। यह अंश नारायण भाई देसाई ने लिखा था। इस अंश को संत चरण रज सेविता सहज नामक किताब से लिया गया है। बताओ, गांधी जी ने भी खुद और अपने साथियों के साथ सफाई का काम करना क्यों शुरू किया होगा? तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम ऐसे किन्हीं लोगों को जानते हो जो आसपास के लोगों की कठिनाइयों को आसान करने की कोशिश करते हैं? पता करो। गांधी जी के आश्रम में आने वाले नए मेहमानों को भी इस काम को सीखना पड़ता था। अगर तुम इन मेहमानों में से होते तो तुम क्या करते? पृष्ठ 152। तुम्हारे घर में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? टॉयलेट घर के अंदर है या बाहर? टॉयलेट कौन साफ करता है? गांव में गंदी संडास की तरफ से लोटा लेकर आ रहे आदमी ने महादेव भाई के साथ कैसा बर्ताव किया और क्यों? जो लोग टॉयलेट और नालियों वगैरह की सफाई का काम करते हैं, उनसे आम लोगों का किस तरह का बर्ताव होता है, लिखकर समझाओ। नारायण और बाबा साहब के बचपन की बात तो अब कई साल पुरानी है, क्या आज हालात बदल गए हैं? ऐसा भी एक बचपन। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 7 साल का भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा काम है, नन्हे भीम ने सोचा। आगे चलकर यही भीमराव यानी बाबा साहब अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। स्कूल में एक बातचीत, आज का सच। हेतल बोला, मैं हेतल हूँ, यह मीना है, हम तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं। प्रश्न, स्कूल में पढ़ाई के अलावा तुम क्या क्या करते हो? मीना बोली, हम ग्राउंड साफ करते हैं। प्रश्न था, सब बच्चे? हेतल बोला, नहीं, सब बच्चे नहीं करते। मीना बोली, हमें संडास भी साफ करने पड़ते हैं, सबको दिन बांट दिए गए हैं। मैं सोमवार को करती हूँ, यह मंगल, यह बुध को, ऐसे। हमारे समाज के सभी बच्चे करते हैं। हेतल बोला, 20 बाल्टी पानी ढोकर यहाँ डालना पड़ता है, झाड़ू लगाना पड़ता है। प्रश्न था, तुम ही क्यों करते हो, सब बच्चे क्यों नहीं करते? हेतल बोला, हमको ही करना पड़ता है, नहीं किया तो मार पड़ती है। यह अंश स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से लिया गया है। पृष्ठ 153। बताओ, तुम्हारे स्कूल की सफाई कौन करता है? क्या क्या साफ करना पड़ता है? क्या तुम्हारे जैसे बच्चे इसमें मदद करते हैं? अगर हाँ तो किस तरह की? अगर मदद नहीं करते तो क्यों नहीं करते? क्या सभी बच्चे
सभी तरह के काम करते हैं? काम करने के लिए क्या क्लास की पढ़ाई छूट जाती है? क्या लड़के और लड़कियां एक ही तरह के काम करते हैं? घर में तुम किस तरह के काम करते हो? क्या लड़के लड़कियों और मर्द औरतों के किए जाने वाले कामों में समानता है? क्या तुम इसमें कुछ बदलाव लाना चाहोगे? चर्चा करो। क्या समाज में लोगों द्वारा किए जाने वाले सभी कामों को एक ही तरह से देखा जाता है? अगर नहीं तो क्यों? क्या बदलाव होना जरूरी है? गांधी जी के पसंदीदा भजनों में से एक भजन का छोटा सा हिस्सा हम दे रहे हैं। यह भजन गुजराती भाषा में है। अपने आसपास के लोगों की मदद लेकर इस भजन का मतलब पता करो और इसके बारे में सोचो। भजन है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे, पर दुखे अपमान सहे जे मन अभिमान ना आने रे। हम क्या समझे? गांधी जी समझते थे कि हम सभी को हर तरह का काम करना सीखना चाहिए। इस बारे में तुम्हें क्या लगता है? अगर ऐसा हो तो क्या क्या बदल सकता है? तुम्हारे घर में कुछ बदलाव आ सकते हैं? कौन करेगा?

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम है इतना इंटरेस्टिंग कि आप भी सुनेंगे तो अपने बचपन में चले जाएंगे, और जो बच्चे हैं उन्हें तो बहुत ही मजा आएगा क्योंकि आपके फ्रेंड्स ही आपसे बात करने वाले हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम का नाम ही है बच्चों की दुनिया। तो हमारे साथ सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले पूछ लेते हैं कि स्टूडियो में कौन कौन है। तो आप लोग एक एक करके आपका नाम और आपकी क्लास बता दीजिए हमारे सुनने वाले दोस्तों को।
1: मेरा नाम दीपक है, मैं प्लस वन क्लास में पढ़ता हूँ।
2: मेरा नाम अनमोल है, मैं सेवन्थ क्लास में पढ़ता हूँ।
3: मेरा नाम विवेक है, मैं नाइन्थ क्लास में पढ़ता हूँ।
4: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास फाइव में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम राघव है, मैं क्लास सिक्स में पढ़ता हूँ।
6: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास सेवन्थ में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास टेंथ में हूँ।
8: मेरा नाम रोहानी है, मैं क्लास एट में हूँ।
0: ओके, तो हमारे साथ में छोटे बच्चे भी हैं और थोड़े बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन हैं तो सभी बच्चे। अब बहुत सारी बातें अलग अलग टॉपिक्स पे हम करते हैं, तो आज कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है जिस पे हम बात करेंगे। तो अच्छा, आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है, कोई भी बता सकते?
5: रेड।
0: ओके।
5: ब्लू।
9: ब्लैक।
0: ओके।
10: पिंक।
11: सोचना पड़ेगा।
0: ठीक है, ओके। क्योंकि किसी किसी का बहुत सारे फेवरेट्स होते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाता है ना। आप लोग का कौन सा है?
7: दीदी सारे ही अच्छे हैं,
0: कोई फेवरेट नहीं है?
7: पिंक।
0: पिंक, ओके।
12: दीदी मुझे ब्लैक के अलावा सारे कलर पसंद है।
0: ब्लैक के अलावा सारे पसंद है,
13: ब्लू और पिंक।
0: ओके, अच्छा लड़कों को पिंक कलर नहीं पसंद होता क्या? नहीं पसंद होता?
14: नहीं।
0: किसी को भी नहीं होता?
14: नहीं।
0: क्यों, पिंक अच्छा नहीं होता?
15: थोड़ा सा
0: गर्लिश लगता है ना। राघव को क्या लगता है? राघव तो पिंक भी पहने आज।
16: नहीं, वो पिंक नहीं है।
0: पिंक नहीं है,
17: मजेंटा है ना।
0: कौन सा कलर है फिर ये?
16: वो पता नहीं, पिंक तो वो होता है मेरा, थोड़ा डार्क उससे।
0: अच्छा,
18: तो पिंक ना,
0: पर्पल जैसा है। पिंक नहीं है? पिंक नहीं पहन सकते क्या लड़के?
16: नहीं।
0: नहीं, क्यों?
7: पहनते हैं दीदी,
0: पहनते हैं।
18: हम पहनते हैं ना?
9: पहनते हैं, लेकिन
5: हम नहीं पहनते।
0: आप नहीं पहनते?
8: दीदी मेरी क्लास में एक लड़का है, उसको पसंद है पिंक कलर।
0: किसी किसी को मतलब हो सकता है? नहीं
16: तो चिढ़ाएंगे।
0: पहनता ही नहीं हूँ। ओके, आपकी क्लास में जो लड़का पिंक पसंद है उसे कोई कुछ बोलता है?
8: नहीं, कोई नहीं बोलता, सब इक्वली हमारी क्लास में।
0: कोई नहीं बोलता?
8: नहीं, लड़के को भी ब्लू पसंद होता है, लड़कों को भी पिंक पसंद होता है।
0: ओके, तो लड़कियाँ ब्लू पहन सकती हैं क्या?
16: पहन
0: सकती है, मतलब लड़कियां सब कलर पहन सकती हैं, बट लड़के नहीं पहन सकते सारे कलर।
5: लड़की को तो अच्छा लगता है सब।
0: हाँ, लेकिन लड़कों पे क्यों नहीं अच्छा लगता फिर सब कुछ?
9: अच्छा तो लगता है, लेकिन
5: दोस्त मजाक नहीं उड़ाते।
0: अच्छा, दोस्त मजाक उड़ाते, अगर दोस्त मजाक ना उड़ाए तो
9: फिर
5: पहनेंगे,
0: फिर पहन सकते हैं ना। डिफरेंस तो नहीं है ना, कलर तो सबके ही होते हैं। ओके, ठीक है। तो अच्छा, आप लोग को क्या लगता है कि जब बाहर के काम करने होते हैं ज्यादातर, जैसे बैंक का काम, अच्छा बैंक के बारे में किसी को पता है, किसी को नॉलेज है बैंक के काम कैसे करते हैं?
9: मुझे
0: है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा, आपको पता है कुछ? नहीं भी पता है तो बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो बच्चे

0: अच्छे हो आप लोग, है ना?
1: थोड़ा बहुत पता है।
0: थोड़ा बहुत पता है आप लोगों को,
2: बैंक में पैसे नहीं
0: ये पता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल।
3: लॉकर्स होते हैं,
4: लॉकर्स होते हैं, उनमें वैसे देखा जाओ तो जनरल होते हैं और क्लर्क होते हैं, जिसमें हम उनके पास जाते हैं और लॉकर्स के वैसे जैसे हम पैसे निकालने हो उनके पास जाते हैं, फिर उसमें काफी तरह के चेक्स होते हैं, 7 तरह के चेक्स होते हैं ज्यादातर।
0: ओके,
1: अगर हमको कैश एक्सचेंज कराना हो वो भी बैंक में होता है, कैश एक्सचेंज हो जाता है
4: कैश, वो फटे नोट होते हैं।
0: ओके,
1: अगर हमको कैश एक्सचेंज कराना हो वो भी बैंक में होता है, कैश एक्सचेंज हो जाता है
4: कैश, वो फटे नोट होते हैं उनको हम एक्सचेंज करा सकते हैं उनसे बस।
0: ओके ठीक है, और आप लोगों को कुछ पता है बैंक के बारे में कुछ?
5: दीदी मुझे एटीएम से पैसे निकालने आते हैं और दूसरों को भी निकाल के देती हूँ जिनको जरूरत होती है।
0: वेरी गुड,
1: तो मुझे भी आते हैं।
0: आपको भी आते हैं?
1: जब समर वेकेशन और विंटर वेकेशन होती है मैं तब चंडीगढ़ जाता हूँ अपने मामू के पास, मामू मेरे बैंक में जॉब करते हैं इसलिए उनके साथ जाता हूँ मैं बैंक में कभी कभी।
0: ओके अच्छा, तो आपको क्या लगता है बैंक के काम करना लड़कों का काम होता है कि लड़कियों का काम होता है?
1: नहीं, जैसे वहाँ पे तो दोनों होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं लड़के भी होते हैं,
0: दोनों का
1: होता है,
0: कोई डिफरेंस नहीं है। क्या लगता है आप लोगों को?
2: दोनों कर सकते हैं।
0: पर दोनों करते हैं क्या?
2: हाँ, करते हैं।
0: जमाने में
6: सब दोनों बराबर है। पहले के टाइम पे होता था कि हाँ लड़कियाँ बाहर काम करने निकलेंगे, पर अब तो सारी इक्वल है।
1: अब तो लड़कियाँ क्रिकेट भी खेलते हैं।
0: लड़कियाँ क्रिकेट भी खेलती हैं अभी तो।
1: पहले सोचा जाता था क्रिकेट सिर्फ लड़कों का गेम है, अगर इनके चोट लग जाएगी लड़कियों के तो ज्यादा लगेगी, ज्यादा चोट लगेगी। अभी तो ज्यादा लड़कियाँ भी खेलती हैं क्रिकेट।
0: आपको क्या लगता है?
2: दोनों ही बराबर है,
1: जबकि ज्यादा चोट लगेगी। अभी तो ज्यादा लड़कियाँ भी खेलती हैं क्रिकेट।
0: आपको क्या लगता है?
2: दोनों ही बराबर है,
1: जबकि आरसीबी को सबसे पहले गर्ल्स टीम ने आईपीएल ट्रॉफी जिताई है,
0: लड़कियों की टीम पहले जीती है।
4: और जो कि हमारी इंडिया टीम है लड़कियों की, उन्होंने भी हमारे देश के लिए पहले ही ट्रॉफी खेली है।
0: बात तो सही है। आप लोग को क्या लगता है भाई, आप लोग सीखोगे बैंक के काम करना कि नहीं सीखोगे बड़े होकर?
6: सीखेंगे दीदी।
0: सीखोगे? करोगे? बोरिंग तो नहीं लगेगा वहाँ जाके सब ऐसे?
1: मुझे तो खुद कॉमर्स करनी है, मुझे आई एम इंटरेस्टेड।
0: और आप लोग लड़कियों को क्या लगता है, इंटरेस्टेड है? बोरिंग तो नहीं लगता?
5: नहीं।
0: ओके okay. अच्छा खाना बनाना किस किस को आता है यहाँ पे?
1: मुझे आता है।
0: सबको आता है। अरे बाप रे,
4: कुछ भी करा सकती हूँ
6: दीदी। मेरे को बनाना तो आता है पर खाना पसंद है।
0: खाना ज्यादा पसंद है? अच्छा ओके okay.
5: खाना खाना और बनाना दोनों ही
0: पसंद है। अच्छा ओके okay.
5: खाना खाना और बनाना दोनों ही पसंद है।
0: अच्छा सबसे अच्छा आप लोग क्या बनाते हो, एक एक चीज बताओ।
4: मैगी।
1: Okay. मैं सबसे अच्छा पास्ता या फिर सैंडविच बना लेता हूँ।
0: ओके वाह,
4: मैगी।
1: ओके, मैं सबसे अच्छा पास्ता या फिर सैंडविच बना लेता हूँ।
0: ओके वाह,
4: मैं सबसे अच्छा पनीर।
0: अच्छा आप
5: तो... पास्ता।
0: ओके मैगी पास्ता और
2: सब्जी, कोई भी तरह की सब्जी,
0: कोई भी सब्जी,
6: सैंडविच।
2: कल हमको पनीर टिक्का खिलाना।
0: ओके अच्छा, जैसे आप लोग बड़े हो के अच्छा क्या बनना चाहते हो?
2: बैंक मैनेजर।
0: बैंक मैनेजर ओके।
4: क्रिकेटर।
0: क्रिकेटर दैट्स ग्रेट, बैंक मैनेजर भी बहुत अच्छा है।
1: मैं भी बैंक में जॉब करना चाहता हूँ।
0: क्यों बैंक में करना चाहते हो?
1: क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बैंक में जाना, मैं अपने मामू के साथ जाता हूँ, उनकी जॉब देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है।
0: ग्रेट।
5: डॉक्टर।
2: बड़े होके सोचूंगा, अभी टेंशन क्यों लेनी है।
0: ओके ठीक है।
5: डॉक्टर।
6: आईपीएस ऑफिसर।
5: आईएएस।
0: ओके तो आपको लगता है ऐसा कोई काम है जैसे बॉक्सिंग या ऐसा कोई काम लगता है जो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं?
1: नहीं, लड़कियां भी बॉक्सिंग करती है, हरियाणा की काफी लड़कियां हैं जो बॉक्सर हैं।
0: करती है ना,
1: रेसलिंग करती है। विनेश फोगाट, गोल्ड मेडल दिया उन्होंने अपने देश को।
6: हमारे रनिंग भी करती लड़की।
2: और दीदी अगर बॉक्सिंग के मैदान में नहीं जाना हो तो घर पे भी वो तकियों से बॉक्सिंग कर सकती
1: है। तकियों से या फिर अपने छोटे भाई से बॉक्सिंग कर सकती है।
6: बॉक्सिंग तो दीदी भाई बहनों के साथ होती है।
0: भाई बहनों बॉक्सिंग करते हैं एक दूसरे के साथ?
1: मेरी छोटी बहन है वो मुझे पीटती है।
0: छोटी बहन मारती है?
1: मेरी छोटी बहन है वो मुझे मारती है, अभी तक वो सिर्फ 5 साल की होगी।
0: हाँ
1: मेरे को मारती है वो बहुत।
2: मेरी बहन जब पिटाई करती है मार देती है, बहुत पीटती है मुझे।
0: आपको मारती है? वो भी छोटी है।
2: हाँ जी।
0: अच्छा
6: राघव और मेरी बहुत अजीबो तरीके से लड़ाई होती है, मतलब कोई बात नहीं होगी तो भी हाँ आजा लड़ ले आजा।
1: जब होती है ना इतनी वाहियात लड़ाई होती है ना, फिर जो उसके हाथ में पिल्लो आ गया वो पिल्लो मार देगी, मेरे मुक्का मार देगी, कुछ भी कर देगी।
0: फिर आप नहीं करते कुछ?
1: वो छोटी है, उसको मैं इसलिए नहीं कुछ कहता ना।
0: छोटी 5 साल की है ना, बहुत छोटी
1: अभी तो, बहुत छोटी
4: हमारे तो बस।
1: मैं तो वेट कर रहा हूँ थोड़ा बड़ी हो जाए फिर देखेंगे।
0: अच्छा फिर बराबरी से मुकाबला होगा।

0: मेरे तो बस चांटे ही पहते हैं,
1: चांटे पहनते हैं।
2: ये अपनी बहन को पीटता चांटे चांटे।
1: बहन बड़ी है कि छोटी है?
2: बड़ी है।
1: अच्छा,
0: ये कि मैंने हमारे
2: हर घर में ऐसा होता है, अगर कोई छोटा हो तो वो अपने से बड़ों को पीटता है। अब मेरी छोटी बहन है, वो मुझे पीटती है, हम उसको यही सोच के छोड़ते हैं कि अभी वो छोटी है। ये छोटा है, ये अपनी बहन को मारेगा तो वो भी यही सोचती है कि
1: ये छोटा है अभी। और राघव, राघव तो छोटा है घर में।
3: दीदी मेरे को तो कोई नहीं सोचता।
4: दीदी हमारे घर में सब इक्वालिटी है, उसको मार पड़ेगी तो मेरे को भी पड़ेगी, उसको डांट पड़ेगी तो मुझे।
2: हाँ ये बात सही है, शरारत चाहे कोई भी करे लेकिन मार दोनों को पड़ेगी।
1: दोनों को पड़ती है,
4: थोड़ी सी ज्यादा
0: बराबर है। मेरे घर में तो ऐसा,
3: दीदी शरारत करती है, मैं आराम से ऐसे लेटा हो तो मुझे मम्मी आकर डांट जाए, क्या कर रहा था इतनी देर से।
2: जब कभी कभी मेरी बहन मुझको मारती है तो मेरे को ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मैं उसको कुछ बोल देता हूँ, फिर भी मम्मा से मुझे ही मार पड़ती है, क्योंकि तू तो बड़ा था।
3: मेरी बहन तो भी छोटी है। अगर मम्मा ने मेरी बहन को मारा तो पापा यही ट्राई करेंगे कि मेरी मम्मा मुझे भी मारे।
1: मतलब एक जना नहीं पिटना चाहिए,
2: आग लगा देते हैं अभी दोनों
1: के भी। हाँ, आप कुछ बोल रहे हो?
5: मेरा भाई भी मुझसे झगड़ा करता है, वो कुछ ज्यादा ही करता है।
1: ज्यादा करता है,
5: मुझसे बड़ा है 13 साल का,
1: तब भी लड़ाई करता है। फिर आप कुछ नहीं कहते?
5: मैं भी मारती हूँ, वो और जोर से मारते।
1: और रूहानी?
6: दीदी मैं तो मेरे भैया को मारती हूँ तो बोलते हिंसा कर रही है। बोलती हूँ बार बार ऐसा क्यों बोलते? हाँ मेरे को पसंद है हिंसा, आई लव हिंसा।
3: दीदी मैं 3 बार WWE जीता हूँ
1: शिवांशी से। वाह,
4: ये तो पूछा दीदी कितनी बार हारा है।
2: हारा कितनी बार?
3: 2 बार।
2: आपको पूरी लाइफ टाइम याद रहेगा ना, ऐसा बुरा हारा है?
3: नहीं,
1: बुरा नहीं हारा ना,
3: बस लास्ट टाइम पे इसने मेरा।
4: दीदी अगर भाई बहनों की लड़ाई पे मतलब बोलने लगे तो एपिसोड
1: पूरा ही खत्म हो जाएगा,
4: 1 घंटे का बनेगा फिर तो।
1: बहुत लड़ाई होती है भाई बहनों में तो। ठीक है चलो। अच्छा तो आप लोगों को लगता है कि इक्वालिटी तो होती है ना, तो जैसे आप लोग बड़े हो जाओगे तो बाहर के तो आप लोग करोगे जो करोगे है ना, घर पे भी, लेकिन रोज खाना बनना होता है, रोज सब कुछ होना होता है। रोज खाना कौन बनाएगा, क्या लगता है?
2: मैं।
3: दीदी मैं।
1: ओके
2: मैं को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी बना लूंगा, मेरी मम्मा भी बना लेंगे क्या? कोई
1: बना दोगे?
2: वैसे मेरी मम्मा मुझे ऐसे बनाने नहीं देंगे।
1: नहीं मम्मा बनाने के, और मान लो मम्मा के लिए आपको बनाना हो तो
2: फिर मैं बना दूंगा, मुझे नो प्रॉब्लम।
1: रोज?
2: यस।
3: मैं तो बाहर से ही ऑर्डर करूंगा।
1: बाहर से ऑर्डर करोगे?
7: मम्मा के लिए जो बने होते हैं वो भी बना देते।
1: बर्तन भी करते हो?
2: हम तो कर देते हैं, हमारे मम्मा कभी बीमार होते हैं हम फिर भी घर का काम कर देते हैं,
1: सफाई झाड़ू सब।
2: सब झाड़ू सफाई डस्टिंग सब।
3: मम्मा अगर कहीं वॉकिंग करने भी गए हो ना, फिर भी जब मैं घर पे होता हूँ तब सफाई सफाई कर देता हूँ।
1: अरे वाह। और आप?
4: दीदी ये बात राघव को भी सीखनी चाहिए, कुछ भी नहीं करता।
1: कुछ नहीं करता, कुछ तो करता
3: हूँ। करता हूँ, देखते नहीं है तो मेरी क्या गलती?
1: चुपके से कर देता है राघव है ना,
4: चुपके से भी ऐसा करता है कि बाद में कोई काम करने लायक ही नहीं।
3: दीदी झूठ बोल रही है।
1: अच्छा आप लोग?
2: दीदी सच बोल रही है।
1: क्या आप लोग घर का काम करते हो?
5: हाँ अभी भी करते और आगे भी जाके करेंगे।
1: रोज करोगे?
5: हाँ।
1: ओके
6: दीदी मैं भी रोज घर का काम करूंगी और खाना भी बनाऊंगी अलग अलग।
3: दीदी ये बात शिवांशी को सिखा दो। दीदी जब भी बर्तन धोना चाहिए टीवी इधर से दिखाने सुनूंगी, फिर मैं सिर पे ऐसे खड़ी रहेगी अगर मैं नहीं दूँ, फिर छीन के अंदर चली जाएगी, फिर अंदर से गेट भी बंद कर देगी, मैं अंदर आके ले भी नहीं सकता।
4: सिर्फ 5 मिनट तक रुकते होते हैं, हाँ, अगर सामने वाला दे रहा है तो ले लेंगे, नहीं तो।
3: दीदी मेरे को 5 मिनट का नाम बोल के 1 घंटा पूरा गाना सुनती है।
1: अच्छा चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये लड़ाइयां भी आपको ना बड़ी याद आएंगी पता है, बड़े हो जाओगे तो। अभी अच्छा ये बताओ, कभी किसी ने आपको ऐसा कहा है या आपने किसी को कहा है या सुना है कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे
2: हैं? नहीं हम ऐसे करते ही नहीं है, रोते ही नहीं कभी,
1: कभी नहीं रोते
3: नहीं।
1: क्या बात कर रहे हो?
3: किसी को कल की बात बताता हूँ। कल ना
2: कल की बात बहुत इंटरेस्टिंग है।
3: डायमंड हॉल के पीछे गेम चल रही थी, तो उधर बड़े बच्चे भी थे छोटे बच्चे भी थे, तो उधर मैं जब हम गए तब कोई भी नहीं था, 5 बजे बुलाया था और 5 बजे पहुंच गए थे, कोई नहीं था, ये दोनों मेरे साथ थे, तो फिर इन्होंने मुझे छोड़ दिया, तो फिर एक्चुअली मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही थी तो वो रनिंग करवा रहे थे, फिर मैंने उनको बोला मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, फिर मैंने इनको ढूंढा, फिर ये नहीं मिले, फिर मैं उधर मोहिनी वन में चले गया रूम में, उधर देखा उधर भी कोई नहीं, फिर मैं फिर से आया इधर, फिर देखा तो फिर वो गेम खिला रहे थे, फिर मैं चले गया, फिर मैं गेम खेला, 8 बजे आया, फिर पता क्या हुआ, फिर मैंने

0: रोते रोते पूरा घुमा, कोई दिखाई नहीं मुझे. फिर बच्चों ने बोला कि जहां पर आपका रूम है उधर चले जाओ, उधर वो अपने आप आ जाएंगे. और ये लोग बॉलीवुड स्टूडियो में गए घूम रहे थे. और फिर
1: ये बेचारा रो रहा था घर पे.
2: हाँ, आप लोग मिल नहीं रहे थे ना उसको कितनी देर तक?
1: इसने हमको बताया मैं तीन बार अपने रूम में गया रोता रहता.
0: मुझे दो नंबर याद थे, मम्मा का और पापा का. जो पापा का नंबर था वो दो तीन पहले ही चेंज हो गया था. और मम्मा का परसों फोन टूट गया था, जिसकी वजह से मुझे कोई अब चांस भी नहीं था जिससे मैं फोन कर सकूं.
2: तब तो बड़ी मुश्किल हो गई, काफी देर लग गई ना. फिर कैसे मिले, ये लोग मिल गए थे?
0: फिर मैं रूम में चले, फिर मैं नीचे रिसेप्शन पे बैठ गया. फिर थोड़ी देर बाद, फिर पहले तो मैंने बहुत देखा नहीं आया. फिर मैंने बोला शिव बाबा आप ही मिला दो मुझे. पांच छह मिनट के बाद मासी आ गए.
2: अरे वाह, चलो फिर आप चुप हो गए ना. फिर
1: कल वहाँ पे बाबा की मूवी भी आधी छोड़ के आए, इसी के चक्कर में कहीं रो ना रहा हो घर पे. हमें दीदी ने बोला कि देख लेते हैं मूवी, नहीं रोएगा वो बड़ा है. घर आके पता चला ये तो फूट फूट के रो रहा था.
2: वो मिल नहीं रहा था ना, नंबर भी नहीं था उसके पास.
3: नंबर पर उसको जाते हैं
1: हमारा रूम तो हमारा खुला था सारा.
0: मुझे ये टेंशन पड़ी हुई थी कि फिर ये लोग इतनी लेट आएंगे तब तक.
2: होता है कभी कभी, होता है भाई, अकेले छूट जाते हैं तो होता है.
0: घूमते रहेंगे उधर, ढूंढते रहेंगे, आएंगे नहीं रूम में.
2: हो जाता है भाई, अकेले हो जाते हैं तब तो होता है. तो अच्छा, कौन कौन यहाँ पे रोता है कभी कभी? जैसे तो उसने तो अपना बताया.
1: मैं कौन कौन जब जाता था छोटा होता बहुत रोया.
2: अभी नहीं रोते?
1: अभी नहीं रोते.
2: आप लोग?
4: मेरा भाई मुझे अगर मारता है तब मैं रोती भी हूँ और उसको मारती भी हूँ.
5: मेरा भाई मेरे को जोर से मारता है, अगर मैं रो जाती हूँ तो फिर बाद में मेरे को इतना गुस्सा आता है उसको भी रुला देती हूँ मैं.
0: मुझे अगर कोई भी मारता है मैं रोता नहीं हूँ, मतलब रोना आता ही नहीं है.
1: इसको मारने पर रोना नहीं आता, वैसे ही रो पड़ता है बिना बात के.
2: मारने पे नहीं आता, किसी और बात पे. सबको अलग अलग बात पे आता है ना,
1: है ना? सबका अलग नहीं.
2: राघव रोता है कि नहीं रोता? राघव कभी बताओ, सच सच बताओ. है
6: कभी कभी,
2: कभी कभी है ना? किस बात पे रोते हो?
6: दीदी इसने मेरी इधर नीड की हड्डी में इतनी जोर से लांग मारी, अब बोलो मेरे को इतना दर्द हुआ, मेरी कमर पूरी एक दिन के लिए ऐसे हो गई थी.
2: ओहो, और शिवांशी को रोना आता है?
7: दीदी वैसे तो जब लगभग लड़ाई होती सब तो रोने के बजाय हंसना.
6: दीदी झूठ बोल रही है, बाथरूम में जाके रोती है, आधे घंटे बाद आती है.
2: अच्छा वो बता रही, कोई बात नहीं.
7: कई बार जैसे कहीं ज्यादा ही चोट लग जाए कि हाँ खेलते खेलते तब थोड़ा रोना आता.
8: दीदी ये तो बात बात पर भी रोने की एक्टिंग करती है.
2: आपको?
8: और दीदी मैं तो भैया के साथ खेलती हूँ तो भैया ही एक्टिंग करते है रोने की.
3: एक बार
2: रोए थे
3: 2023 में, इंडिया का मैच था, वर्ल्ड कप था,
2: हार गया था ना फाइनल में.
3: फाइनल में
2: बहुत लोग रोए थे उस दिन. तो
1: मैं ऐसे गेम के पीछे कभी नहीं रोया.
2: गेम के पीछे नहीं,
1: वो हमारे देश का लक है.
2: मतलब
1: बैड लक होता है कभी गुड.
3: क्या चक्कर है उसको मालूम है, जिसने कुछ ऐसा करना हो उसके तो दिल में बीतती है ना, इसलिए
2: पता चलता है. लेकिन मतलब किसी ने कभी ऐसे नहीं बोला ना कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, या ऐसा लगता है आपको लड़कों को रोना नहीं चाहिए या अच्छा नहीं लगता लड़के रोते हैं? ऐसा है कि रो सकते हैं?
6: रो सकते हैं,
2: रो सकते
6: दर्द होता है
0: वो. अभी ये लोग भी मुझे कल से चढ़ा रहे हैं.
2: क्या
0: रो रहा था
1: कल से?
0: कल से चढ़ा रहे हैं, रो रहा था. इतना बड़ा हो गया, रो रहा था.
2: तो क्या हुआ, रो सकते हैं ना? बड़े भी, बड़े लोग नहीं रो सकते
1: भाई? तो अभी रो ले चाहे, कोई बात नहीं.
2: नहीं बड़े लोग रो सकते कि नहीं रो सकते?
5: दीदी मम्मी पापा रो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं रो सकते?
2: कोई भी रो सकता है.
3: पापा भी रोते
5: हैं. हाँ रोते हैं ना.
0: कब रोते हैं?
2: कभी कभी बुरा लगता है तो
1: रोते हैं.
3: झगड़ा हो जाता है तब.
2: कभी कभी उनको बुरा लग सकता है.
1: दादी की डेथ हुई थी, फिर मैंने अपने पापा को फर्स्ट टाइम रोते देखा था. उसके बाद कभी
5: नहीं रोते ही
0: ना. मम्मा तो जब हमसे गुस्सा होते हैं ना, मतलब जब हम बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे मम्मा तब रोते हैं. और पापा को भी जब दादी की डेथ हुई थी तभी रोते हुए देखा था.
2: पापा को कभी और उसके अलावा रोते नहीं देखा?
1: नहीं
2: कभी भी नहीं. आप लोगों ने? आपने
3: देखा भैया की डेथ हुई
2: तब? जब बहुत कोई बड़ी घटना ऐसे होती है तब
1: ऐसे रोते.
2: पापा को रोते हुए देखा है किसी ने?
7: नहीं दीदी
2: कभी भी नहीं.
1: नहीं
2: कभी भी नहीं
0: तो हाथ को उठा रही है जब नहीं.
5: अरे मुझे कुछ
2: तो नहीं देखा भी बोल सकते हैं ना कि नहीं देखा.
7: मेरे पापा को तो मैंने हमेशा हंसते हुए देखा है, कैसी बात भी हंसते रहेंगे.
2: ओके
1: मेरे पर भी पूरे दिन घर में अगर शाम को आते हैं ड्यूटी से तो सबको हंसाते हैं,
2: हंसते रहते हैं. आप क्या बोल रहे हो?
5: मेरी मम्मी तो रोती नहीं है पर एक लगा देती है, शांत हो जाते हैं.
2: शांत हो जाते हैं मम्मी. अच्छा पापा की बात कर रहे हैं, पापा को रोते देखा है?
5: नहीं पापा तो नहीं, पापा तो और ही प्यार करते हैं.
2: कभी रोते नहीं है पापा ना?

0: के क्या लगता है पापा लोग क्यों नहीं रोते?
1: मेरी मम्मी तो बहुत नाटक करती है रोने का,
0: एक्टिंग करते हैं रोने का, रोती थी लेकिन रियल में।
2: दीदी पिछले जन्म में एक्टर होंगे।
0: हाँ अच्छा, मम्मी को रोते देखा है किसी ने?
1: हाँ जी
3: बहुत बार।
0: नहीं
1: मम्मी तो ऐसे नाटक करती है, असलियत में नहीं रोती।
2: नहीं मम्मी को तो नहीं देखा।
4: मम्मी तो कभी नहीं रोती।
1: मेरी मम्मी रोती तो है, नाटक में मेरे को पता चल जाता है क्योंकि आंसू तो नहीं निकलते।
0: अच्छा बिना आंसू के भी तो रो सकते हैं?
1: नहीं दीदी, पर पानी लगा देते हैं यहाँ पे और बोलते मैं तो रो रही हूँ।
0: ऐसा ऐसा हाँ। क्यों लेकिन
1: हम चुप होने के?
0: हाँ ये
4: दीदी बताया ना, शिवांशी ने पिछले जन्म में एक्टर होंगे।
0: आप लोगों ने देखा है मम्मी को रोते हुए?
1: नहीं मैंने नहीं देखा।
2: कभी कभी झगड़ा हो जाए तो थोड़े हाँ। रो लेते हैं। पापा तो खुशी रहते हैं, मम्मी है बस।
0: मम्मी कभी कभी रोते, कभी कभी या
2: कभी कभी वो भी साल में एक दो बार रोते
0: थे, ज्यादा नहीं ना। अच्छा मम्मी को रोते हुए देखना ज्यादा अजीब लगता है कि पापा को रोते हुए?
1: पापा को,
2: मम्मा को। मम्मा अलग अलग स्टाइल से रोते हैं,
0: अलग अलग
2: कभी कभी
4: अजीब नहीं लगता, खुद को ऐसे बुरा लगता है कि हमारे पापा रो रहे हैं।
0: हाँ मतलब किसको देख के ज्यादा बुरा लगता है, मम्मी को
1: पापा को पापा को
2: मम्मा को?
0: किसको रोता देख ज्यादा बुरा लगेगा अगर मान लो मम्मी या पापा?
2: पापा तो रोएंगे ही नहीं तो फिर
0: बुरा कैसे
4: लगे? ऐसा लगता है जब हम रोते हैं हमें पापा चुप कराते हैं, पापा रोएंगे तो उनको हम ही चुप कराएंगे।
2: पापा रोते नहीं है, चुप कब करवाओगे?
0: हाँ रोते ही नहीं है ना, लेकिन रोएंगे अगर अगर चुप करा सकते हैं हम बच्चे को, नहीं रोए तो भी अच्छा है, रोए तो भी कोई बुरी बात नहीं है रोने से तो, है ना। आप लोगों को किसको देख के ज्यादा बुरा लगेगा, मम्मी को या पापा को रोते हुए देख?
1: कोई रोता ही नहीं है,
2: गाली वाली रहे।
0: ये भी अच्छी बात है, रोना भी अच्छी बात है, नहीं रोना भी अच्छी बात है, है ना। कभी हर्ट तो सबको होता है, कभी ना कभी कुछ बुरा सबको लग सकता है।
1: दीदी मैं रोता फिर भी नहीं हूँ।
0: रोते फिर भी नहीं हूँ, क्यों नहीं रोते?
1: पता नहीं।
0: चलो ठीक है, तो मतलब हमेशा खुश रहता है राघव, है ना? लग रहा है। ओके अच्छा, तो आप लोगों ने बताया कि सब इक्वालिटी है अभी तो, है ना, तो कोई मतलब लड़कों को रोने के लिए या किसी भी चीज के लिए चिढ़ाया तो नहीं जाता ना?
1: नहीं
0: कभी नहीं है, कभी
4: चिढ़ाया जाता है, जैसे अब ये रोने लग गया था इसको हम कल से चिढ़ा रहे हैं कि एक बार फिर से रो दे चिढ़के।
0: वो तो दोस्तों को थोड़ा थोड़ा ऐसे मस्ती करते हैं ना। हाँ
1: दीदी, शिवांशी ने जब मैं छोटा था तो मेरी शर्ट में कॉकरोच डाल दिया था।
0: कॉकरोच डाल दिया था? अरे बाप रे। ओके अच्छा, क्या लगता है आपको लड़के ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं?
1: दीदी मैं बस एक साल का था।
0: ओहो तो आपको तो कैसे याद है फिर?
1: मम्मी ने बताया था।
4: ये बात झूठ लग रही है,
1: मम्मी ने बताया था। दीदी झूठ ये बोल रही है, मम्मी ने मेरे को बताया था।
0: अच्छा अभी तो नहीं डालती ना कॉकरोच, है ना?
2: कॉकरोच इसको दिख जाए ना तो घर के बाहर।
0: नहीं नहीं अभी नहीं डालती शिवांशी,
2: कॉकरोच तो किरण
1: मेरी दीदी फिर ना ऐसे कॉकरोच कॉकरोच शर्ट के अंदर हाथ डाल देती है,
0: लेकिन ऐसे रियल में नहीं होता ना। क्या बोल रहे हो?
1: मेरी मम्मी जी, मैंने एक दिन उनको देख लिया था ऐसे रो रही थी, मैंने देख लिया था ऐसे हाथ खोल के देख लिया था, मेरे देख रही थी।
0: हाँ
1: मैंने देख लिया था, नाटक कर रही थी।
0: आपने देख लिया तो फिर चुप हो गई मम्मी?
1: नहीं फिर नाटक करने लगी और मैंने बोतल में छेदा तो वो पानी गिरा दिया, बोला लो अब रो।
0: अच्छा मतलब आपको चुप कराने के लिए?
1: सच में लगा रो रही है।
0: सच में लगा रो रही है, कभी कभी सच में रोते हैं, कभी कभी कुछ बुरा लग जाता है तो होता है, बड़े लोगों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता।
1: पर हमारे सामने तो आज तक सच में नहीं रोए।
0: कभी कभी बच्चों के सामने नहीं रोते हैं और कभी कभी नहीं भी रोते हैं ना, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं सब लोग अपने दुख, कोई हर कोई रो के नहीं करता, हर कोई बिना रोए नहीं करता, सबके अपने अपने तरीके हैं। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है, लड़के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग होती हैं?
2: ये तो आप मम्मा पापा को ही देख के देख लो, पापा नहीं रोते मम्मा रोते हैं, इधर से ही देख लो कौन स्ट्रांग होता है ज्यादा।
0: ओके और आप लोग क्या लगता
4: है? उनके हार्ट स्ट्रांग होते हैं पापा के, लेकिन लड़कियां भी किसी से कम थोड़े हैं,
0: लेकिन हार्ट ज्यादा स्ट्रांग होते हैं ना पापा लोग के। ओके गर्ल्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं?
4: नहीं बॉयज
0: ज्यादा स्ट्रांग होते हैं।
1: नहीं दीदी गर्ल्स ही होते स्ट्रांग,
4: गर्ल्स होती है।
0: क्यों लेकिन आप लोगों को क्यों लगता है बॉयज ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और आप लोगों को क्यों लगता है कि गर्ल्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं?
2: जो गर्ल्स होते हैं वो बात पर जल्दी रोने लग जाते हैं।
0: क्यों लगता है आपको कि लड़के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं?
2: क्योंकि जब भी कोई बात होती है लड़के जल्दी रोने लग पड़ती है, इसीलिए
0: लड़कियां जल्दी रोने लगती हैं।
4: मुझे ऐसा नहीं है कि

0: लगता है कि लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, जैसे उन्होंने बोला पहले कि लड़कियां ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए मैं नहीं बोला, क्योंकि मैं तो एक लड़का हूँ, ऑब्वियसली लड़कों
1: इसलिए बोलना पड़ेगा। नहीं, दोनों भी बोल सकते हो,
0: लड़कों को नीचे थोड़ा गिनने देंगे।
1: देख, दोनों भी बोल सकते हो, आपकी दोनों इक्वल होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो।
2: वैसे जल्दी से लड़के रोने लग पड़ती है,
1: लड़कियां जल्दी रोने लगती हैं,
3: ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियां हमेशा नहीं रोती,
1: हमेशा नहीं रोती ना,
3: जब लड़ने का टाइम आता ना तब लड़ती भी है,
1: लड़ती भी है,
2: कोई भी बात हो जाए तो जल्दी रोती
0: है। सही बात है,
2: अभी अभी इनको थोड़ा सा सुना दो, अभी रोने लग पड़ेंगी।
0: लड़कियों में एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा होता है,
1: एटीट्यूड ज्यादा होता है।
0: हमारे स्कूल में एक लड़की थी, उसका नाम नंदिनी था, तो वो मेरे से एक क्लास आगे पढ़ती थी। जब भी उसको टीचर्स ने कुछ बोल देना ना, तो टीचर से गुस्से हो जाती थी। अगर उनकी क्लास लग रही, वो साइड वाले रूम में जाके बैठ जाती थी। उनकी क्लास में नहीं आती थी,
1: टीचर से ही नाराज,
0: टीचर से ही नाराज।
3: दीदी, कुछ कुछ लड़कियां होती हैं ऐसी जो बात बात पे अपना,
0: कुछ कुछ होती हैं, कुछ कुछ के लिए हम सभी को तो नहीं बोल सकते।
1: नन्नी के अलावा और कितनी सारी लड़कियां भी होती हैं ना,
3: पर हमारे जैसी नहीं रहती।
4: दीदी, लड़के थोड़ी कोई कम होते हैं, वो भी तो ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं।
5: दीदी, मैं तो नाटक करती हूँ, फिर मेरे को इतना गुस्सा आता है, मैं सच में डांटती हूँ, रोते हैं। जैसे मैंने मेरे भाई के भी दोस्तों को रुलाया है,
1: भाई के दोस्तों को भी रुला दिया है, अरे बाप रे।
6: दीदी, हम टीचर्स के सामने एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं।
0: ये बस टीचर्स ने अगर कुछ बोल दिया तो चुप रहते हैं।
1: एक करके
0: टीचर्स ने कुछ बोल दिया तो अपना चुप रहते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, बड़े हैं ना,
1: बड़े हैं
0: हमारे। सही
6: दीदी, दीदी लड़कियां हैं ना, मैम को प्लीज प्लीज बोल के माफ करवा देती है गलतियां।
2: अक्सर ज्यादा देखा जाओ तो जो टीचर होते हैं ना, वो अक्सर ना ज्यादा जो लड़के उनको पीटते हैं।
0: लड़कियों को इसी वक्त माफ कर देते हैं।
3: लड़कियां सारा काम करती हैं, कई बार कुछ छूट जाए काम तो वो माफ कर देती है फिर।
4: दीदी, लड़के तो ऐसे ही बैठे रहते हैं बेंचों पे।
0: नहीं, कुछ लड़के होते हैं जो पढ़ते भी हैं।
6: मम, इनकी तरह टाइम वेस्ट करके स्टिकर थोड़ी बनाएंगे।
1: क्यों स्टिकर नहीं लगाते लड़के?
6: पेपर पे ड्रॉ करते रहते हैं और फिर उस पर टेप चिपका के कलर कुलर भर के करते रहते हैं, नोटबुक में लगाते रहते हैं।
1: लड़के नहीं करते ऐसा? बिल्कुल नहीं
0: करते हैं, कुछ लड़के होते हैं जो करते हैं,
1: बहुत
0: पसंद होता है।
6: कौन लगाते
0: हैं? क्यों नहीं लगाते भाई, कुछ ऑयल पेस्ट करते भी है।
1: हाँ, बोलो बोलो रूहानी, बोलो।
7: दीदी, जो शाही लड़कियाँ होती है वो बहुत ज्यादा होती है और ब्रेव लड़कियाँ बहुत कम होती है, इसलिए लड़कों को सिर्फ शाही लड़कियाँ ही दिखाई देती है। और हम आर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा पैशन है, उसमें हम गुड है, इसलिए हम करते हैं, क्योंकि लड़कों को आता नहीं है वो करना।
6: क्यों नहीं आता? आर्ट की बात नहीं कर रहा, मतलब पेंटिंग पुंटिंग की बात नहीं कर रहा, पर जो टाइम वेस्ट करते हैं वो चीज अलग है।
1: ओके,
0: आर्ट तो बहुत अच्छी चीज है। सौरभ जोशी जो आज के समय में ब्लॉगर है, वो भी पहले आर्टिस्ट ही थे, आर्ट करते थे, पोर्ट्रेट्स बनाते थे वो।
1: अमीक्षा,
4: हम लोग तो स्टिकर्स बनाते हैं, इन लोगों की तरह थोड़ी हम पीछे मुड़ के बातें करेंगे हर लोगों से।
6: आज सही है, टाइम पास होता है,
0: पीछे मुड़ के क्या बातें,
6: मजा आता है, याद होती। दीदी, मैं बातें नहीं करता पीछे मुड़ के।
1: ओके,
2: हमारे आगे बैठे होते
5: हैं, हमारे क्लास में कोई सर आते हैं, वो चमन जी सर है, वो हिंदी पढ़ाते हैं, तो वो क्या है, किसी लड़के और लड़की दोनों साथ में झगड़ा हो गया तो वो सीधा लड़कों को ही मारेंगे जाके।
0: हाँ, गर्ल्स को छुएंगे भी नहीं, गर्ल्स को छोड़ देते हैं,
6: मैम ही मारती है लड़कियों को।
2: ऐसा क्यों, बराबर है ना, दोनों को पीट रहे।
1: लड़कों को ज्यादा पिटाई होती है?
2: बहुत ज्यादा।
6: मैम ही मारती है लड़कियों को, सर तो जब मार दे हल्का सा एक थप्पड़ मार दिया लड़कियां लग पड़ेंगी, फिर सर उनको मनाने में।
1: दीदी, तो लड़के क्यों नहीं रोते फिर, सर उनको भी वो कर दें, जैसे मान लो सर मार रहे हैं और लड़कियां रोने लगी तो चुप हो जाते हैं, तो लड़के भी रोने लगे अगर सर मार रहे हैं तो?
6: उनको तो मारो भी ना, फिर भी पहले ही रोने लग पड़ती है।
1: अच्छा, तो फिर माफ कर देते हैं।
6: दीदी,
1: एक मिनट, पहले लड़कियों की साइड भी सुन लो, बोलो।
3: दीदी, ऐसा नहीं है कि टीचर के सामने रोने लग जाते हैं? कोई रोते नहीं है, वो टीचर को पता है कि हाँ ये लड़की काम करने वाली है, नेक्स्ट टाइम पूरा करेगी, इसलिए छोड़ देते हैं।
1: हाँ, मतलब उसकी इमेज अच्छी है,
3: इमेज अच्छी बना रही
0: है। कई लड़कियां ऐसी होती है वो बिल्कुल ही नहीं करती, इतनी वो ढीठ हो जाती है, उनको रोज मार पड़ेगी, वो फिर भी काम नहीं करेंगी,
1: फिर भी रोएंगी।
0: अगर उन्होंने हम अभी नहीं करेंगे काम, जैसे अभी अप्रैल मई का सिलेबस चल रहा है, तो उनका अप्रैल का कंप्लीट है, मई का कंप्लीट नहीं है, तो वो अगर उन्होंने ठान लिया कि हम मई में अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, जो मई करेंगे समर वेकेशन में, तो वो ऐसे ही करती हैं,
1: जो ठान लिया वही करती हैं। अमीक्षा
6: दीदी, मैंने
1: एक बार, अमीक्षा बोलो।
4: अभी इन लोगों ने बोला कि है ना, लड़कियां लास्ट तक वो नहीं करती, तो हम लोग अगर पहले भी ना करें तो भी लास्ट तक हमारा सब कम्प्लीट हो जाता है।
1: राघव
6: दीदी, पहली बात, मुझे आज तक किसी भी टीचर ने मारा नहीं है। दूसरी बात, एक बार ना हमारी क्लास में
8: मतलब दो लड़कियां थी वो लिख रहे थे ये मैम पागल है, और वो मैम क्लास में बैठे थे और ना किसी ने जाके उनको वो दिखा दिया, फिर उन दोनों का ऐसे थप्पड़ मरे वो पूरा दिन रोती रहे.
1: लड़कियों की पिटाई हो गई यानी.
6: मैम मेरे पुराने स्कूल में दो लड़कियां थी, एक साथ थे वो, उनको इतना सुनाते थे जब भी क्लास में आते थे डांटते ही रहते थे, अगर कुछ भी हो तो उन पे ही बात लेके जाते थे, कितने मतलब बहुत बेइज्जती करते थे उनकी. और लड़कियों ने उन्होंने क्या किया, जब सर की ट्रांसफर हो रही थी वो इतना फूट फूट के रो रही थी.
1: अच्छा तब भी?
6: हाँ बहुत रो रही थी
1: जबकि उनको ही डांटते रहते थे. ओहो
7: दीदी मैं तो सोचती हूँ दोनों ही कमजोर है और दोनों ही स्ट्रांग है.
1: ओके ऐसा क्यों?
0: हाँ मैं भी इस बात के साथ एग्री हूँ,
7: क्योंकि कुछ लड़कियाँ होती है जो शाय होती है उनकी ये कमी होती है, कुछ लड़के होते हैं जो कुछ होते हैं जैसे क्लास में होते हैं कुछ बोलते नहीं है काम करते नहीं है इसलिए उनको डांट पड़ती है. वैसे दोनों भी वीक है और दोनों भी स्ट्रांग है क्योंकि लड़के भी बहुत काम करते हैं क्रिकेट में भी. और एक लड़की थी जिसने एवरेस्ट पर उसका पैर नहीं था तब भी वो चढ़ी थी.
1: बात तो सही है
5: दीदी. हमारे तो सर और मैम दोनों ही गर्ल्स को नहीं मारती, मैम तो है ना सीधा दोनों की गलती होगी तो बॉयज को ही मारेगी. मैम गर्ल्स को नहीं मारेगी क्योंकि मैं और मेरी तीन दोस्त है वो एक मैम की फेवरेट है तो अच्छा. वो सीधा बॉयज को मारती है
1: सीधे
2: बॉयज. तो ना इंसाफी हुई ना, कोई काम भी हो ना तो तब भी वो ना लड़कियों को ही कहते हैं.
1: जैसे
3: क्योंकि दीदी टीचर्स को पता होता है ना लड़कियां काम पूरा कर देंगी, लड़के
2: नहीं. अक्सर कोई भी स्कूल का काम हो वो लड़के क्योंकि कहते हैं स्कूल को कहते नहीं.
1: काम जैसे
2: कोई भी काम हो
6: जैसे अगर कुछ डेकोरेट करना हो क्योंकि लड़कियों से ज्यादा घुमा फिरा नहीं जाता ना, बैठी बैठी के काम करना होता है ना उनको.
0: ऐसी बात नहीं है वो घूम लेती हैं,
3: घुमा फिरा नहीं जाता है, लड़के ही बाहर के काम करती हैं
1: करते हैं.
0: नहीं सही बात है, ऐसा तो नहीं है लड़कियों से घुमा फिरा नहीं जाता, लेकिन लड़कियां जैसे
3: हो या लड़के हो
0: भाई अगर मैं लड़का हूँ लेकिन ऐसा थोड़ा है कि लड़कियों के साइड नहीं दूंगा.
3: लड़कियों की तरफ ले रहता हूं.
0: मेरी भी तो बहन है.
6: जाओ फिर उधर बैठ
0: जाओ. मतलब मैं अपनी बहन को ही बुरा बोलूंगा? नहीं बोलूंगा.
1: मैं बोलो बोलो आप जो बोलना चाहते
0: हैं. लड़के होते हैं कि कोई जैसे गेम्स खेलते रहते हैं ज्यादातर, लड़कियां होती है वो घर पे बैठ के कोई डेकोरेशन के आर्ट वगैरह करती हैं घर में लगाने के लिए. तो वो ऐसा नहीं है कि घूमती नहीं है, घूमती भी है क्योंकि मेरी बहन बहुत घूमती है. अगर एक बार जिद पे अड़ जाए कि मुझे नीचे लेके चलो तो उसको लेके ही जाना पड़ता है,
1: लेके ही जाना पड़ता है ना.
6: जैसे अब खड़े हो गया ऐसे घूमने लग जाए तो वो भी घूमना ही हो गया.
5: दीदी नहीं सुबह रोज 5 बजे से उठ के 6 बजे तक वॉकिंग भी तो करती है, जॉगिंग भी करती है.
6: हर लड़कियां नहीं करती
5: तो हर कोई कोई तो करता है ना, हर लड़कियों की बात नहीं करती.
1: सब एक जैसे तो नहीं हो सकते ना.
0: आजकल तो लड़कियां बॉयज से ज्यादा अपनी फिटनेस का ध्यान रख रही है. कई बॉयज होते हैं जो बॉडी बिल्डर प्रोफेशनल बनना चाहते हैं लेकिन जो लड़कियां वो ऐसे घर में भी करती है, ग्रीन टी पीती है, कॉफी पीती है सुबह ब्लैक, वॉकिंग करती है, योगा करती है, बहुत
1: बड़ी सारी चीजें करती है ना,
0: फिटनेस का ध्यान रखती है.
5: मेरी मैम तो हमसे काम करवाती है, बोतल भी भरवाती है, बोतल के पानी भरवा देती है.
1: हाँ मतलब बाहर जाके भी काम करती है,
6: फ्री होती है ना.
1: जो भी कर सकते हैं.
6: दोनों इक्वली होते हैं.
1: दोनों इक्वल होते हैं.
6: हाँ बस कईयों को लगता है कि ये बाहर वाला काम लड़के ही कर सकते हैं और ये अंदर वाला काम लड़की ही कर सकती है, बल्कि लड़कियाँ बाहर वाला काम भी कर सकते हैं.
1: ओके
6: पर कम करती है. अब पापा को अगर कोई सामान लेने को बोलते हैं दुकान से तो लड़कियों को ही बोलता, कोई लड़कियों को नहीं बोलता.
1: अच्छा ज्यादा बात किसकी सुनी जाती है
0: घर में?
6: लड़कियों की.
1: ओके
0: या फिर छोटे की?
6: छोटे
0: छोटा होगा
1: जो छोटा होगा उसकी.
0: हाँ, उसकी जो बड़ा होगा उसकी पिटाई होगी.
3: छोटे भाई बहन की सुनी जाती है.
1: अच्छा
6: छोटे भाई बहन की नहीं सुनी जाती.
1: छोटे भाई बहनों को लगता है छोटे भाई बहनों की नहीं सुनी जाती, बड़ों को लगता है बड़ों की नहीं सुनी जाती.
0: अगर सुनी किसकी जाती है?
6: जब घर में
0: दो भाई हैं तो उनमें छोटे की सुनी जाएगी. अगर भाई बहन है तो उसमें चाहे बहन बड़ी हो चाहे छोटी हो उसी की सुनी जाती है.
1: अच्छा अगर बहन है तो बहन की सुनी जाती है. क्या बोलना है रूहानी को?
7: दीदी मेरे घर में तो बुआ के लड़के जो मेरे भैया है ना वो घर में आते हैं तो मेरे प्रति सब बदल ही जाते हैं. दादी जी आती है, आ बेटा क्या खाएगा क्या खाएगा, तू हट यहां से.
1: आपको साइड कर दिया जाता है. कभी कभी आते होंगे ना वो, है ना?
5: दीदी उस टाइम हमारी कोई वैल्यू ही नहीं रहती.
6: दीदी ऐसे रास्ते से आप हट जाते हैं फिर. मैम वैसे इनकी कौन सी वैल्यू होती है?
3: होती है कोई
5: हमारी बहुत सारी वैल्यू
0: होती है भाई. मैं तो मानता हूँ लड़कियाँ और लड़के सेम है,
3: लड़की
0: कोई फर्क
1: नहीं. दोनों इक्वल है आपको ऐसा लगता है?
3: ये दोनों इक्वल है, लड़का और लड़की दोनों ही समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए.
6: दीदी दीदी अपन जूस की बोतल को भगवान मान सकते हैं, भगवान ने मतलब आधा इसमें भरा है आधा इसमें भरा है तो दोनों इक्वल है.
1: दोनों इक्वल है.
5: अगर है ना अगर लड़कियां नहीं होती ना तो मम्मी भी नहीं होती.
1: ओके हाँ. मम्मी भी तो लड़की है.
3: लड़की बिना संसार नहीं चल सकता,
6: लड़कियों में ना चलते
1: तो मतलब दोनों इम्पोर्टेंट है अपनी जगह, दोनों इम्पोर्टेंट है. अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है. मुझे लगता है कि हम इस कंक्लूजन पे तो पहुंचे हैं जो आप सबको लगता है कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, किसी को तो वीक नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि लड़कियां भी सब कुछ बन सकती हैं, लड़के भी सब कुछ बन सकते हैं. आप लोगों ने खुद ही बताया
0: बन सकते हैं,
1: है ना, कि सारे प्रोफेशन में दोनों ही जा सकते हैं.
0: हाँ जी.
1: है ना, कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नहीं जा सकते हैं? कोई कोई भी नहीं है.
0: हम अगर लड़कियों को बुरा बोले तो ऐसा नहीं हो सकता. हमारे होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के डीसी है जो, वो एक लड़की है, आशिका जैन.
3: आशिका जैन
1: बिल्कुल.
0: अब हमारे राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू एक लड़की है, बहुत
3: मेरे मन में भी है.
1: बिल्कुल
3: दीदी, जब अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, विंग कमांडर भी लेडी थी और जो कर्नल थी वो भी लेडी थी.
6: यस यस,
0: सही बात है. सिंदूर मिशन
1: ये भी सही बात है
5: दीदी. जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान में झगड़ा हुआ था तो लड़कियां भी पाकिस्तान में घुस घुस के हमला किया था पाकिस्तान में.
6: हाँ हाँ, वो तो किया था.
1: मतलब लड़कियां आर्मी में भी हैं.
0: लड़कियों को इसीलिए भेजा कि वो सिर्फ और सिर्फ मसला निपटा के, लड़कों को भेजते तो पाकिस्तान को ही निपटा देते.
3: लड़कियां भी निपटा सकती है पाकिस्तान.
0: हाँ, लड़कियां तरस खा जाती है, लड़के नहीं खाते ना.
6: किया है उन्होंने भी ऐसा.
1: ऐसा अच्छा लगता है आपको कि लड़कियां थोड़ी ज्यादा तरस खाती हैं या थोड़ा सा ज्यादा यू नो दया कर देती
0: हैं? हाँ, वो होता है लड़कियां
6: छोटे नहीं करते, पर अगर कोई बड़ा हो ना फिर बड़े करते हैं, छोटे नहीं करते.
1: छोटे नहीं,
6: लड़कियां नहीं करती, जैसे मम्मा हो गए, दादी हो गए, वो करते.
0: हाँ, वो ऐसे दया कर जाते हैं.
6: अच्छा, बहुत जल्दी हो जाते हैं.
1: ओके, तो आपको क्या लगता है दया ज्यादा कौन करता है, लड़के ज्यादा करते हैं या लड़कियां ज्यादा करती हैं?
3: लड़कियां करती हैं, बट देख के करते हैं कि सामने वाला कैसा है. अगर सामने वाला की मतलब इमेज अच्छी होगी हमारे सामने तो थोड़ी बहुत दया खा लेंगे, पर अगर
8: बस इमेज अच्छी होगी, अगर उसकी रियलिटी.
1: धीरे धीरे रुक जाओ, रुक जाओ, उसको पूरा बोलने दो.
3: अगर सामने वाला अनजान है, हमें उसकी रियलिटी पता नहीं है कैसे, तो थोड़ा दया खाने में सोचेंगे.
1: सोचना पड़ेगा. ओके.
7: हाँ दीदी, लड़कियां भी दया खाती है, लड़के भी खाते हैं कभी कभी, दोनों ही इक्वल है, सब कुछ ज्यादा नहीं.
1: ओके.
5: दीदी मेरा भाई भी झगड़ा खाता है, मैं तो सोचती हूँ मैं इसे बड़ा है छोड़ देती हूँ, पर वो मानता भी नहीं है.
1: तो और लड़के नहीं दया करते हैं?
6: करते हैं,
0: कर लेते हैं, पर बहुत कम
1: कम करते हैं, थोड़ा सा,
0: जैसे कोई ज्यादा ही वो उसको कर
1: जाता. सो मतलब लड़के भी करते हैं पर थोड़ा कम करते हैं जैसा आप बोल.
6: यस.
1: अच्छा, दया करना सॉफ्ट होना होता है या स्ट्रांग होना होता है?
0: जिनके हार्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं वही दया कर सकते हैं.
5: स्ट्रॉन्ग.
1: ओके चलो, मतलब ये तो हमको समझ में आ गया, जो भी आपने क्वालिटीज बताई वो भी स्ट्रॉन्ग बनाती हैं हमको, है ना, वीक नहीं बनाती, मतलब दया करना ये सब करना. चलो ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, जाते जाते हम यहाँ पे हम अपने एपिसोड को करेंगे क्लोज, क्योंकि बातें हो गई हैं बहुत सारी. तो बस जाते जाते आपको एक एक गुड क्वालिटी बतानी है जो लड़के और लड़कियों में दोनों में होती है. एक गुड क्वालिटी जो दोनों में होती है, क्या होता है दोनों में? कुछ सोचो. इतना सोचना पड़ गया.
6: लड़कों दोनों में होता है?
1: हाँ दोनों में, दोनों.
6: जैसे कि लड़के हैं वो भी लड़के के बराबर काम करती है. जैसे कोई भी काम हो, जैसे हमने बताया है कि क्रिकेट है, उसमें भी कोई लड़कियां आगे है और लड़के भी आगे,
1: दोनों.
0: तो एक यही गुण अच्छा लगता है लड़कियों का, क्योंकि आरसीबी को फर्स्ट टाइम जो ट्रॉफी आईपीएल ट्रॉफी जिताई है वो लड़कियों ने जिताई है,
1: विमेन टीम ने जिताई. तो खेलना अच्छा लगता है आपको?
0: बहुत अच्छा लगता है.
1: ओके, दोनों में क्या अच्छाई होती है या सेम क्या होता है दोनों में?
3: दोनों पैसे कमाने की क्षमता रखते हैं, मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, खुद के ऊपर डिपेंडेंट,
1: इंडिपेंडेंट रह सकते हैं दोनों. ओके
7: दीदी, दोनों में सेम एटीट्यूड होता है.
1: ओके, क्या सेम होता है?
5: दीदी अगर लड़के खेल सकते हैं तो उतना ही लड़कियां भी खेल सकती
1: हैं. बिल्कुल. और राघव को क्या लगता है? हैं, बस दोनों पिंक नहीं पहन सकते ना?
5: दीदी जैसे लड़के और लड़के एक ही होते, क्योंकि लड़कियां अगर भागते भागते थक सकती है तो लड़के भी थक सकते हैं.
1: हाँ ये भी सही बात है, लड़के भी थक सकते हैं, है, लड़कों को भी चोट लग सकती है.
6: थक सकते हैं
1: पर थकते नहीं है.
3: नहीं हैं दीदी, बस
1: लड़के थकते नहीं है कभी?
0: हाँ, बस थकते हैं, शो नहीं करते.
1: बस शो नहीं करते. क्यों शो नहीं करते?
5: इमेज के लिए.
6: इमेज के
0: लिए. उनको हमेशा ऐसा ही लगता रहता है अगर हमने शो किया तो लड़कियां हमें चिढ़ाएंगी कि तुम थक गए, हम नहीं थके, लड़कियां हमसे स्ट्रांग रह जाएंगी ऐसे.
1: अच्छा ऐसा, लड़कियां चिढ़ाती हैं फिर?
0: चिढ़ाती हैं, बस थक गए, यही तक का दम, आ जाओ और चलो फिर.
1: अच्छा और फिर लड़कियां थक जाती हैं तो आप नहीं चिढ़ाते?
0: फिर हम कहते हैं रोलो, बैठ के रोलो, और क्या भी कह सकते हो।
1: ओके, लेकिन सच में अच्छा ठीक है, दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, मतलब अगर नहीं चिढ़ाए कोई किसी को, मान लो कि ऐसी दुनिया हो जिसमें कोई किसी को नहीं चिढ़ाएगा, तो फिर थकना शो कर सकते हैं या नहीं?
2: कर सकते हैं,
1: ये तब भी नहीं
6: करना। उसके लिए थकना भी होना चाहिए।
0: हाँ, उसके लिए थकना भी चाहिए। लड़के इतना थकते नहीं है क्योंकि जब उनको रोज की वो प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि उनको हर वक्त खेलना है, हर वक्त बैठे भी रहना है, उनको पढ़ाई करनी है एक जगह बैठ कर।
1: लड़के इतना थकते नहीं है,
0: हाँ घूमते फिरते रहते हैं ना।
1: आपको क्या लगता है
3: दीदी, वो दिखा सकते नहीं, दिखाएंगे कि हम थके हैं, कुछ चिढ़ाने वाला तो है नहीं।
6: और दीदी
1: अगर कोई चिढ़ाने वाला नहीं है तो थकते हैं या नहीं थकते हैं? दिखा भी देती है लड़कियाँ, बट लड़के दिखाते नहीं है, थक भी जाते हैं लेकिन दिखाते नहीं है, नहीं ना। नहीं, थक तो भाई सभी जाते हैं क्योंकि फिजिकल स्टैमिना आपका सबका बहुत होता है, हालांकि उसमें भी खुद को मोटिवेट करके और हम है ना खुद को मोटिवेट कर लेते हैं तो और भी कर लेते हैं, पर थकान तो किसी को भी हो सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। चलो फिलहाल हम करते हैं अपने दोस्तों को गुड बाय।
8: दीदी
1: हाँ,
8: गुड बाय का मतलब हमेशा के लिए बाय करना होता है।
1: गुड बाय के लिए हमेशा के लिए बाय करना होता है भाई?
6: नहीं,
1: बाय मतलब गुड बाय, अच्छा वाला बाय, उसमें क्या प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, हम हमेशा के लिए नहीं करेंगे किसी को भी बाय, बस इस एपिसोड से हम लेते हैं इजाजत और अपने दोस्तों को करते हैं बाय बाय।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: हेलो, आप सुन रहे हैं धुआंधार बल्लेबाज शाहीन।
5: छोटी बड़ी बातें, इनमें छुपी है बच्चों के दिल की बात।

0: ये देखो, एल्मो ने शाहिन के लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार कर लिया, एकदम परफेक्ट।
1: वाह, ये गत्ते और रस्सियों से बनी गुड़िया तो दूर से ही चमक रही है,
0: है ना? ये एल्मो को बहुत बहुत पसंद है पापा। अगर आज एल्मो का बर्थडे होता तो एल्मो भी अपने लिए यही बनाता,
1: और शायद शाहिन को भी उतना ही पसंद आएगा। चलो जल्दी से तौफीक चाचा के यहाँ चलते हैं।
0: चलो ये। वाह, गुब्बारे! ओह शाहिन, एल्मो और पापा आ गए, और साथ में लाए शाहिन के लिए ये खास गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे शाहिन!
1: जन्मदिन की बधाइयां शाहिन।
2: थैंक यू एल्मो, थैंक यू लुई चाचा। इसमें होगा कोई खिलौना, है ना?
3: अरे अभी से अंदाजा कर लोगी तो गिफ्ट खोलने का मजा कैसा।
2: एल्मो मैं इसे खोलूं?
0: हाँ, शाहीन को सरप्राइज मिलने वाला है।
2: इतनी सुंदर गुड़िया, थैंक यू एल्मो, लुई चाचा। एल्मो मैं अभी आई।
1: चलो, जन्मदिन का गिफ्ट फ्लॉप तो नहीं हुआ।
3: भैया अब तो कुछ दिनों तक अब्बा अम्मा को भी अपनी बिटिया से मिलने के लिए वो क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा।
2: चलो एल्मो, अब गुड़िया मैच के लिए तैयार है।
0: ये टोपी और बैट, गुड़िया बैटिंग करेगी या बॉलिंग, हुँ?
2: दोनों।
0: चलो चलो।
3: वाह भाई, यहाँ हम सोच रहे थे कि शाहिन अपनी नई गुड़िया के बाल बनाएगी, मेकअप करेगी, और लगता है इसे भी अपनी तरह धुआंधार बल्लेबाज बनाएगी।
1: बच्चों को खेल खिलौनों में फर्क कहाँ दिखता है, बस जहाँ जैसे मन लग गया उसी चीज से खेलने लग जाते हैं।
3: वक्त भी तो ऐसे ही है मियाँ, जब हम इनकी उम्र के थे तो खेल के कायदे साफ होते थे, खिलौनों के लिए भी।
1: वही तो, लड़के दौड़ भाग करेंगे, घास मिट्टी में लोटपोट होंगे, और लड़कियाँ गुड़ियों के साथ घर घर खेलेंगी, क्यों?
3: बिल्कुल ऐसी सोच हुआ करती थी, मगर आज के जमाने में सोच बदल तो गई है भैया, ये तो मानना पड़ेगा, और बदलनी चाहिए भी। लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से पीछे ना आए, सही कह रहा हूँ, और ना कभी थी। पता नहीं उस जमाने में ऐसा आइडिया आया भी कैसे।
1: सही कह रहे हो,
3: अब लड़का हो या लड़की कुछ भी खेल सकते हैं अपनी अपनी पसंद से। अब शाहीन क्रिकेट भी खेलती है, और जितनी भी गुड़िया है ना सबको कुछ ना कुछ बना के रखती है।
1: मतलब?
3: मतलब कोई गुड़िया बल्लेबाज तो कोई गुड़िया डॉक्टर।
1: वाह, जैसे एल्मो को भी गुड़िया के साथ वो रसोई सेट वाले खेल पसंद है।
4: वैसे देखो तो अपने बचपन में हमें जैसा घर वालों ने मोहल्ले वालों ने बताया समझाया हमारी सोच वैसी हो गई।
1: हाँ बिल्कुल, और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि उस जमाने में जैसे तौर तरीके चल रहे थे बच्चों के खेल भी उसी हिसाब से तय किए जाते थे। जैसे मान लो लड़के ही पोस्टमैन बनेंगे क्योंकि दौड़ भाग वाले काम लड़कों को ही करना चाहिए,
3: और लड़कियों को घरेलू काम पर ध्यान देना चाहिए, दाल चढ़ाओ कपड़े तय करो। इसलिए लड़के गाड़ी या साइकिल वाले खिलौने से खेलेंगे और लड़कियां रसोई सेट से।
1: वही
3: पर लुई मियां सच पूछो तो हमारे दादा जान घर में सबसे माहिर बावर्ची थे, वो शौक से खाना बनाते थे और खाते भी थे।
1: हवलदार, बावर्ची और खान पान के कदरदान, ऑल इन वन दादा जान। क्यों?
3: बिल्कुल, अरे दादी हमारी हिसाब किताब में एक्सपर्ट थी, पर खाना बनाने का शौक हमने दादाजी से ही पाया है।
1: भाई तुम्हारी बात से अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया।
3: तो ये लो चाय और सुनाओ कहानी।
1: एक बार स्कूल में आधी छुट्टी के टाइम हम सब मैदान में खेलने निकले।
3: अच्छा।
1: सब के सब फुटबॉल में लग गए, पर मेरा एक दोस्त था अनिल, वो एक कोने में गया और बड़े मजे से छोटी छोटी टहनियां बटोरी, पत्ते इकट्ठे किए और मिनटों में एक मिट्टी का शानदार किला बना दिया।
3: वाह, अरे लगता है उसके हाथों में कोई जादू था, मैजिक।
1: अरे उस किले को देखकर हम में से कुछ लड़के लड़कियां बल्कि सभी इतने खुश हुए कि जाकर किले के इर्द गिर्द मजे से बागीचा भी बनाया, झंडी भी गाड़ दी। हाँ सचमुच सबको इतना मजा है। उफ, फिर बस पीटी सर ने फुर्र से सीटी बजाई और सिर्फ लड़कों को वापस फुटबॉल के पीछे दौड़ा दिया, बेचारे अनिल को भी।
3: सोचो अगर तुम्हारे बचपन के दोस्तों ने जो मिट्टी का किला बनाया था उसमें अगर गुड्डे गुड़िया का फुटबॉल मैच ही हो जाता, नहीं
1: कितना मजा आता।
3: भैया एक बात तो साफ है, तरह तरह के खेल खिलौने, तरह तरह के शौक, उसका लड़का या लड़की होने से कोई लेना देना नहीं होता है।
1: बिल्कुल नहीं। अब एल्मो भी तो अपनी मम्मी को ऑफिस जाते हुए देखता है और पापा को रसोई में, शायद इसलिए उसके खेलों में भी लड़के और लड़की हर तरह का काम कर सकते हैं। अब जब एल्मो भी अपने गुड्डे गुड़ियों की दावत रखता है, हमें भी मेहमान बनने में मजा आता है।
0: ये! पापा, पापा, तोफीक चाचा, शाहीन की नई गुड़िया ने ना ढेर सारे छक्के लगाए।
2: हाँ, और बन गई वुमन ऑफ द मैच।
3: बढ़िया है, लगता है गुड़िया ने इतनी जबरदस्त बैटिंग धुएंदार बल्लेबाज शाहीन से ही सीखी होगी।
2: हाँ बा, चलो एल्मो।
3: अरे तुम दोनों कहाँ चले, समोसे और केक का टाइम होने वाला है।
2: हाँ हाँ बा, पर पहले गुड़िया का घर बनाना है
0: और सजाना है। एल्मो भी अपने सारे गुड्डे गुड़िया यहाँ दावत पर बुलाएगा।
5: सेसेमी वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, यूबीएस ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का छठा पाठ, बूंद बूंद दरिया दरिया, पृष्ठ 51, बात पुरानी। यह है 650 साल पुराना घड़सी सर, सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल और न जाने क्या क्या था। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। मीलों तक फैले इस घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी लबालब भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी, पर आज घड़सी सर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है। पृष्ठ 52, अल बिरूनी की नजर से। 1000 से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल बिरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीजों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगें। चलो देखें कि अल बिरूनी उस समय के तालाबों के बारे में क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती। तो ये लिखा था अल बिरूनी ने। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरूनी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यहाँ एक डाक टिकट का चित्र है जो 1973 में छपा था, जब अल बिरूनी के जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। देखो और पता करो। अपने स्कूल के आसपास के इलाके को देखो। क्या वहाँ कच्चा मैदान, पक्की सीमेंट से बनी सड़कें, नालियाँ आदि हैं? इलाका किस तरह का है, जैसे ढलान वाला, पथरीला या किसी तरह का? तुम्हें क्या लगता है बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा? जैसे जमीन में, नालियों में, पाइपों में, गड्ढों में आदि। बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता। पृष्ठ 53। सोचो, ऐसे में भी यहाँ के ज्यादातर गांवों में पानी की कमी क्यों नहीं थी? लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जो जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते। यह एक सांझी यानी सबकी जरूरत थी, इसलिए इंतजाम में भी सभी जुड़े रहते, चाहे व्यापारी हों या मजदूर। तालाब में से कुछ पानी जमीन सोख लेती और इस तरह जमीन से आसपास के कुओं और बावड़ियों में भी पानी पहुंच जाता। आसपास की जमीन भी नम और उपजाऊ हो जाती। घर घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा करने का इंतजाम होता। यहाँ एक चित्र दिया गया है, उसे देखकर बताना है कि छत पर बरसने वाला पानी जमीन के नीचे बने टैंक में कैसे पहुंचेगा। तुमने क्या कभी बावड़ी देखी है? यहाँ एक बावड़ी का चित्र है। चित्र को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीढ़ियां जमीन के नीचे कई मंजिल तक जा रही हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। पुराने जमाने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफर करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसीलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियां बनाई गई थीं। पृष्ठ 54। पानी से जुड़े रिवाज। आज भी कहीं कहीं कई सौ साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। यहाँ उत्तराखंड का एक फोटो दिया गया है। पानी से जुड़े हैं कई रिवाज, त्योहार और जश्न। कई जगह तो आज भी बारिश से तालाब भरने की खुशी में आसपास मेले का माहौल हो जाता है। यह उत्तराखंड की एक दुल्हन है जो ब्याह के बाद नए गांव में आई है। वह झरने या तालाब पर जाकर सिर झुकाती है। आज शहरों में इस रिवाज का एक मजेदार रूप दिखता है। दुल्हन घर ही में किसी नल के पास जाकर पूजा करती है। पानी से ही तो जिंदगी जुड़ी है ना। पृष्ठ 55। क्या तुम्हारे यहाँ पानी के लिए कुछ खास बर्तन इस्तेमाल होते हैं? यहाँ देखो, इस सुंदर कुंडों वाले तांबे के बर्तन में पानी भरा जा रहा है। दूसरे चित्र में चमकदार पीला पीतल का घड़ा है। पानी भरने की जगह सुंदर मूर्तियां भी बनाई गई हैं। क्या तुमने कभी पानी की जगह पर कोई सुंदर इमारत बनी देखी है? कहाँ? पता करो, क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी बनी है? उसे देखने जाओ और पता भी करो। यह कितना पुराना है? किसने बनवाया होगा? इसके आसपास किस तरह की इमारत बनी है? पानी साफ है या नहीं? क्या इसकी सफाई होती है? यहाँ से कौन कौन पानी भरते हैं? क्या कभी यहाँ कोई त्योहार मनाया जाता है? पानी कहीं सूख तो नहीं गया? पृष्ठ 56। जरा सोचो, 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। चर्चा करो। पुनीता के मोहल्ले में दो पुराने कुएं हैं। उसकी दादी बताती हैं कि लगभग 15-20 साल पहले तक उनमें पानी था। क्या कुएं सूखने की कुछ वजह ये हो सकती हैं चर्चा करो। कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। क्या तुम कोई और वजह भी सुझा सकते हो? हाल की बात, आज लोग पानी का इंतजाम किस किस तरह से करते हैं? चर्चा करो। तुम्हारे यहाँ जिस तरह पानी आता है उस पर सही का निशान लगाओ। अगर किसी अलग तरीके से आता है तो अलग से कॉपी में लिखो। पृष्ठ 57। एक बच्चे ने कहा, हमारे मोहल्ले में दिन में दो बार जल बोर्ड का टैंकर आता है। पानी के लिए लंबी लाइन लगती है और रोज झगड़े होते हैं। एक बच्ची ने बोला, हम कुएं से पानी भरते हैं। पास के कुएं एक साल पहले सूख गए। अब काफी दूर चलकर जाना पड़ता है। कई कुओं पर तो जात के नाम पर पानी लेने भी नहीं देते। एक बच्ची बोली, मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं। एक बच्ची बोली, हमारे यहाँ तो दिन भर नल में पानी आता है। एक बच्चा बोला, मेरे यहाँ हैंड पंप लगा है, लेकिन उसका पानी काफी खारा है। पीने के लिए तो पानी खरीदना ही पड़ता है। एक और बच्चा बोला, हमने जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप लगाया है, कोई परेशानी नहीं। एक और बच्चा बोला, हमारे घर में बोरिंग के पाइप में मोटर लगी है, लेकिन बिजली ही नहीं होती तो क्या करें। एक बच्ची बोली, हम नहर से ही पानी भरते हैं। पृष्ठ 58। चर्चा करो। जिंदगी का हक तो सभी का है, फिर जीने के लिए या पीने भर के लिए पानी मिल जाए, क्या यह हक हर एक को मिल रहा है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तो खरीदकर ही पानी पीना पड़ता है? पृथ्वी पर तो पानी सभी का है, साझा है। कुछ लोग गहरा बोरिंग करके जमीन के नीचे से ज्यादा पानी खींच लेते हैं, यह कहां तक सही है? तुमने क्या ऐसा कहीं देखा है? कुछ लोगों को जल बोर्ड के पाइप में टुल्लू पंप क्यों लगाना पड़ रहा होगा? इससे दूसरे लोगों को क्या परेशानी हो रही होगी? तुम्हारा क्या कुछ ऐसा अनुभव है? पानी के बिल को देखकर बताओ, ये बिल कौन से दफ्तर से आया है? तुम्हारे यहाँ अगर बिल आता है तो कहाँ से आता है? इस बिल में दिल्ली जल बोर्ड के नीचे दिल्ली सरकार क्यों लिखा होता है? बिल किसके नाम से है? कितने महीनों के कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? क्या तुम्हारे यहाँ पानी के पैसे चुकाने पड़ते हैं? क्या तुम्हारे यहाँ अलग अलग इलाकों में पानी का रेट अलग है? बड़ों से पता करो। पृष्ठ 59। यह मुमकिन है। आज कई संस्थाएं पानी के इंतजाम में लगी हैं। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जमाने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनाते हैं। चलो देखें कि तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। यहाँ दड़की माई का चित्र है। ये है दड़की माई। राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता था। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं सूख जाते तो गांव छोड़ना पड़ता। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी है। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तुमने इस तरह की क्या कोई खबर पढ़ी है? लोगों ने मिलकर पानी की परेशानी को कैसे दूर किया? क्या किसी पुराने तालाब या बावड़ी को फिर ठीक करके इस्तेमाल किया? हम क्या समझे? पोस्टर बनाओ, पृथ्वी पर पानी सभी का है, साझा है। कुछ और ऐसे ही नारे सोचो और साथ ही चित्र भी बनाकर अपना एक सुंदर पोस्टर बनाओ। एक पानी का बिल लाओ, उसे देखकर बताओ ये बिल किस तारीख से किस तारीख तक का है, इस बिल के लिए कितने पैसे भरने पड़ेंगे। इसके अलावा बिल में और क्या क्या देख पा रहे हो, जैसे मरम्मत, टूट फूट आदि पर हुआ खर्च। बूंद बूंद दरिया दरिया। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक का ये 6वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 101.07.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं आज विशेष गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, वन जीव सप्ताह, विश्व आवास दिवस भी आज है। तो आइए, आज एक फेस्टिवल का सप्ताह है जिसे आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें तो जीवन का जो है काफ़ी महत्व बढ़ेगा। और इसके साथ में लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, तपन सिन्हा, अशोक पारेख, प्रीतम शिवाच, दादा लीला नाग, शंकर शेष, प्रजापति मिश्र, लवीना बोरगोहेन, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही राजा रवि वर्मा, राजकुमारी अमृत कौर, के कामराज, सी डी देशमुख, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम लोग विशेष गांधी जयंती की बातें करते हैं। और आज दोनों महान व्यक्तियों का जन्म दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू या महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और आज के इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वस्तुतः गांधी जी विश्व भर में अनेक अहिंसात्मक आंदोलन के लिए जाने जाते हैं और ये दिवस उनके प्रति वैश्विक स्तर पर सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। अहिंसा की नीति के जरिए विश्व भर में शांति के संदेश को बढ़ावा देने के महात्मा गांधी के योगदान को सराहने के लिए ही इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत द्वारा रखे गए प्रस्ताव का भरपूर समर्थन किया जाता है। महासभा के कुल 191 सदस्य देशों में से 140 से भी ज़्यादा देशों ने इस प्रस्ताव को विशेष रूप से सम्मानित किया और इनमें अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान जैसे भारत के पड़ोसी देशों के अलावा अफ्रीका और अमेरिका महाद्वीप के कई देशों में भी ये चीज़ें शामिल हैं। मौजूदा विश्व व्यवस्था में अहिंसा की सार्थकता को मानते हुए बिना वोटिंग के ही सर्वसहमति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था और 15 जून 2007 को महासभा द्वारा पारित संकल्प में कहा गया कि शिक्षा के माध्यम से जनता के बीच अहिंसा का व्यापक प्रसार किया जाएगा। संकल्प ये भी पुष्ट करता है कि अहिंसा के सिद्धांतों की सार्वभौमिक, प्रासंगिक एवं शांति, सहिष्णुता तथा संस्कृति को अहिंसा द्वारा सुरक्षित रखा जाए। तो आइए आज के इस दिन को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर। और गांधी जयंती के इस खूबसूरत दिन पर हम सभी अगर अपने मन में कुछ अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, अहिंसा की बातें अगर चिंतन मनन करके अपने जीवन में उसको समर्थन देते हैं तो जीवन हमारा दर्शन योग्य हो।

0: मैं हूँ वजाहत हबीबुल्ला और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के दिन को यादगार बनाते हैं और बड़ा अच्छा दिन है अक्टूबर, 2 अक्टूबर अपने आप में जो है कमाल की बातें याद दिलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जयंती के इस शुभ दिन को मनाया जाता है और आप सभी भी अच्छी तरह से इस दिन को मनाते ही होंगे। आइए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बातें आपसे शेयर करूँगा। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की अगर मैं बात करूँ तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म की तिथि है। महात्मा गांधी ने भारत के आज़ाद आंदोलन का नेतृत्व किया है और अहिंसा के दर्शन का प्रचार प्रसार किया। यह माना जाता है कि अहिंसा के दर्शन का विकास महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध रूसी लेखक लेव तलोस्ताय के साथ मिलकर किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित किया और दुनिया भर में यह आग्रह किया था कि वह शांति और अहिंसा के विचार पर अमल करे और महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाए। बस फिर ये विचार जो है आगे चला और सिद्धांतों के बिना राजनीति, परिश्रम के बिना संपत्ति, आत्मचेतना के बिना आनंद, चारित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, बलिदान के बिना पूजा, ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें

एक सामुदायिक ज्ञान जो है देता है, और गांधी जी के साथ सामाजिक बुराइयां गिनाई थी जो इस प्रकार से बताया गया है। तो ये सात मुख्य सिद्धांत है, इसको अगर हम अपने जीवन में अमल करते हैं तो जीवन का बाकी का काम जो है अपने आप हो जाता है। और इसमें से कुछ एक चीज़ का अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने मानस पटल पर इसका प्रचार प्रसार करते हुए अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा काम करता है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में मनाया जाता है। ये दिवस पहली बार 1986 में मनाया गया था और विश्व आवास दिवस का आयोजन केन्या की राजधानी नैरोबी में हुआ था। तो आइए वर्ल्ड हैबिटेट डे विश्व आवास दिवस के बारे में कुछ बातें थोड़ी देर में आपके लिए सुनाने वाला हूँ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं ढूंढे गांव से हूँ, आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। विश्व आवाज दिवस की बातें हम लोग कर रहे थे और आज के दिन विशेष रूप से मूल उपदेश यही है कि अधिकार की पहचान करने और उन्हें पर्याप्त आश्रय देने का है। इसके अलावा गरीबी को समाप्त करने और उसमें सुधार करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई के लिए प्रोत्साहन करना है। पहली बार ये दिवस वर्ष 1986 में आयोजित किया गया था और जबकि इस दिवस का मूल उद्देश्य आवास मेरा अधिकार है था। इस आयोजन का स्थल नैरोबी शहर था और इसके अलावा इस आयोजन में निम्नलिखित उद्देश्य भी रखे गए: बेघर के लिए आश्रय, हमारा पड़ोस, भविष्य के शहर, सुरक्षित शहर, शहरी शासन में महिला, शहरों के लिए पानी और स्वच्छता, शहरों के बिना मलिन बस्तियां। तो विभिन्न आवास दिवस का आयोजन विश्व के कई देशों में किया जाता है, जैसे भारत, चीन, पोलैंड, मैक्सिको, युगांडा, अंगोला और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कई देशों में इसे मनाया जाता है। दुनिया भर में इसका आयोजन किया जाता है ताकि विश्व भर में तीव्र नागरीकरण के बढ़ते हुए कारण और उनका निवारण, वातावरण पर प्रभाव और गरीबी निवारण में उनकी भूमिका का पता लग सके। जैसे अवार्ड समारोह का आयोजन होता है, ये पुरस्कार अति महत्वपूर्ण पुरस्कारों की सूची में शामिल है। हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कई विषयों का चुनाव किया जाता है। चुने गए विषय वस्तुतः आवास के लिए महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं और उसके विकास में अत्यंत जरूरी होते हैं। इन विषयों के चुनाव के पीछे मूल उद्देश्य विश्व भर में लोगों को आवास उपलब्ध कराना और उनका बेहतर विकास कराना होता है और सतत विकास की नीतियों को बढ़ावा देना भी होता है। विश्व आवास दिवस का मुख्य कुछ इस प्रकार से तत्व है: विश्व आवास दिवस एक वैश्विक अनुपालन है, न कि एक सार्वजनिक अवकाश है। हर साल यूएन हैबिटेट प्रति वर्ष के लिए निर्धारित थीम को प्रचार प्रसार करने का और आवास को बढ़ावा देने का संदर्भ में जागरूकता को बढ़ाने के लिए गतिविधियों का आयोजन करता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और मीडिया उसके सहयोगियों के रूप में कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र आवास दिवस में अंतर्गत विविध तथ्य शामिल होते हैं, जैसे सभी के लिए सुरक्षित और स्वस्थ रहने वाले पर्यावरण का विकास, विशेष रूप से बच्चों के लिए पर्याप्त और टिकाऊ परिवार और ऊर्जा, शहरी क्षेत्रों में हरियाली की स्थापना और पौधारोपण की व्यवस्था, शुद्ध और सुरक्षित पीने के पानी के साथ ही स्वच्छता, सांस लेने के लिए ताजा और प्रदूषण से रहित हवा, लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर, जुग्गे में रहने वाले लोगों में सुधार और शहरी योजना में वृद्धि और अस्पष्ट पदार्थ की पुनरावृत्ति सहित बेहतर कचरा प्रबंधन, इस विषय पर भी बातचीत होती है। तो ये थी कुछ खास बातें विश्व आवास दिवस के बारे में आपको पूरी जानकारी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप हमरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में। आइए इसके साथ ही आज वन्य जीव सप्ताह है जिसके बारे में हर साल 2 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर तक 2 से 8 अक्टूबर एक हफ्ता मनाया जाता है। केंद्र व राज्य सरकारें पर्यावरण कार्यकर्ताओं विशेषज्ञों और इनके द्वारा लोगों में वन्य जीव के रक्षण के प्रति जागरूकता में तेजी लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और भारत में विभिन्न प्रजातियों का विशाल भंडार है, इसलिए भी भारत में कई सम्मेलनों में जागरूकता कार्यक्रम और प्रकृति प्रेमियों के बीच सार्वजनिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में बच्चों के लिए वन जीवों से संबंधित निबंध लेखन चित्रकला संभाषण फिल्म स्क्रीनिंग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। वन्य जीवन प्रकृति की अमूल्य देन है। भविष्य में वन्य प्राणियों की समाप्ति की आशंका के कारण भारत में सबसे पहले 7 जुलाई 1955 को वन्य जीव वन प्राणी दिवस मनाया गया। ये भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से पूरे सप्ताह तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है और 1956 में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। भारत के संरक्षण कार्यक्रमों की अवस्थाओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत संगठन या एक मजबूत संस्थागत ढांचे की रचना की गई है। तो इसमें प्रत्येक वन्यजीव सप्ताह मनाने जाने के पीछे उद्देश्य यही है कि प्रत्येक समुदाय व परिवारों को प्रकृति से जोड़ना। दूसरा तत्व यह है कि मानव के अंदर संरक्षण की भावना पैदा करना। तीसरा, वन जीव व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूक रहना। इस अभियान की उद्देश्य यह है कि हमें हमेशा प्रत्येक वन्य प्राणी पशु पक्षियों और पौधों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ क्षेत्रों को अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी घोषित किया। सरकार ने अधिनियम के तहत सभी जंगली जानवरों और पक्षियों आदि के शिकार पर रोक लगाई। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान भी रखा गया। प्रकृति के अनुसार मानव पर्यावरण और वन्य जीव एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। मानव शरीर व मस्तिष्क को स्वस्थ रखने, शुद्ध ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पर्यावरण को शुद्ध व साफ सुथरा रखना बेहद ही जरूरी है। पर्यावरण से ही मानव का जीवन संभव है और पर्यावरण को शुद्ध व साफ सुथरा रखना तो वन्य जीवों की रक्षा करना सुरक्षा करना जरूरी है। अब ये महत्व क्यों है? क्योंकि इस हफ्ते में गंभीरता रूप से स्कूल के बच्चों को, युवाओं को, आम जनता को वन्य जीव के बारे में शिक्षित और जागरूक करने के लिए सरकार के काम करने में, नीतियों की डिजाइन करने में तथा आज के बदलाव परिवेश में वन्य जीव रक्षा के मुद्दों को समाधान करने के लिए मदद करना है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना गया है। ये प्रत्येक दिन को महत्व दी गई है जिसे हम किसी न किसी रूप में मानते हैं। तो आइए इसके साथ ही मैं भारत में स्थिति वन्य और वन्य जीवों को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत सरकार के तहत केंद्रीय मंत्रालय वन्य जीव रक्षण संबंधी नीतियों और नियोजन के संबंध में दिशा निर्देशन देने का कार्य करता है तथा राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी राज्य वन विभागों की होती है। तो वन्य जीवों से संबंधित वैधानिक पहलू है। वन्य जीव के रक्षण के लिए भारत में संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 2 नए अनुच्छेदन 58 वन और 51 को जोड़कर वन्य जीवों से संबंधित विषय की समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इस तरह के अलग अलग नीतियां कानून बनाई गई है और अपराध नियंत्रण ब्यूरो भी इसके लिए सेट किया गया है और भारतीय वन्य जीव संस्था भी इसके लिए कार्यरत है। 1982 में इसको विशेष रूप से इसकी स्थापना की गई और ये संस्थान केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक स्वशासी संस्थान है जिसे वन्य जीव रक्षण के क्षेत्र में ट्रेनिंग और अनुसंधान संस्था के रूप में भी मान्यता दी गई है। तो ये थी कुछ खास बातें वन्य जीव सप्ताह के बारे में आप सभी को। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपको सुनाते हैं। अभी आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं गीता चिकारा करनाल से। आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ओम शांति।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आप बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। जी हाँ, एक ऐसे व्यक्ति जिनके इतिहास में एक अलग अपनी कहानी बताता है। एक प्रसिद्ध भारतीय राजनेता, महान स्वतंत्रता सेनानी और जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वे एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में देश को न सिर्फ सैन्य गौरव का तोहफा दिया बल्कि हरित क्रांति और औद्योगिकरण की राह भी दिखाई। शास्त्री जी किसानों को जहां देश का अन्नदाता मानते थे, वही देश की सीमा प्रहरी के प्रति भी उनके मन में अगाध प्रेम था, जिसके चलते उन्हें जय जवान जय किसान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। इनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, अन्यथा अब उन्हें मुंशी जी ही कहते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक की नौकरी कर ली थी। लाल बहादुर की मां का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर ही बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने का हुआ तब दुर्भाग्य से पिता का देहांत हो गया। उनके मां राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गई। कुछ समय बाद उसके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उनके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उसकी माँ का बहुत सहयोग किया। नए निहाल में रहते हुए अपने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विश्वविद्यालय से हुई। काशी विद्यापीठ में शास्त्री जी की उपाधि मिलते ही प्रबुद्ध बालक ने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द लाल बहादुर शास्त्री के नाम का पर्याय ही बन गया। भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के एक कार्यकर्ता लाल बहादुर थोड़े समय के लिए जेल गए। रिहा होने पर उन्होंने एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ में अध्ययन किया और उसके बाद शास्त्री शास्त्रों की विद्वान की उपाधि पाई। उसके बाद वो गांधी के अनुयायी के रूप में फिर राजनीति में लौटे। कई बार जेल गए। संयुक्त प्रांत जो अब उत्तर प्रदेश है, पार्टी में प्रभावशाली पद ग्रहण किया और 1937 से 1946 में शास्त्री प्रांत की विधायकी में निर्वाचित हुए। उसके बाद उनका विवाह गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। ललिता जी से उनके 6 संतानें हुई, 4 पुत्र हरिकृष्ण, अनिल, सुनील और अशोक और 2 पुत्रियां कुसुम व सुमन। उनके 4 पुत्रों में से 2 अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री अभी भी है, शेष 2 नहीं रहे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और 1929 में लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद में श्री टंडन जी के साथ भारत सेवक संघ के इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम किया। यही नहीं, नज़दीकी नेहरू जी की भी मुलाकात और उनसे नज़दीकियाँ बढ़ी। इसके बाद से उनका कद निरंतर बढ़ता गया, जिसकी परिणाम स्वरूप नेहरू मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के तौर पर उनका शामिल होना था। इस पद पर वे 1951 तक बने रहे। तो ये थी कुछ खास बात है और आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक गीत की तरफ। उसके बाद आगे की कहानी सुनते हैं लाल बहादुर शास्त्री की, किस तरह से वो प्रधानमंत्री बने और क्या क्या काम किया। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: मैं हूँ वजाहत हबीबुल्ला और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए, बात कर रहे थे हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, और नेहरू जी से उनकी जब मुलाकात हुई 1929 में, तो फिर वो धीरे धीरे नेहरू जी के साथ काफ़ी काम करने लगे और फिर नेहरू मंत्रिमंडल में ही गृह मंत्री के तौर पर शामिल हो गए। और उन्होंने जब गृह मंत्री का ये पदभार संभाला तो एक नारा दिया, मरो नहीं मारो। मरो नहीं मारो का नारा करो या मरो का ही एक रूप था। गांधी जी की सोच के चलते महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था, करो या मरो, ये नारा उसी रात दिया गया था जिस रात भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था। इसी नारे का असर था कि संपूर्ण देश में क्रांति का प्रचंड आग फैल गया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ इसे एक हिंसक नारा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 1942 में नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक और नारा दे दिया, बस इसी का चतुराईपूर्ण रूप था, करो या मरो का। और समझने में अत्यंत सरल और सैकड़ों वर्षों में दिल के अंदर जो भारतीयों में रोष दबाए हुए बैठे थे, जनता में ये नारा आग की तरह फैल गया। एक तरफ गांधी विचारधारा अहिंसा के रास्ते चलकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन से ब्रिटिश सरकार से आज़ादी लिए जाने का रास्ता था, परंतु अंग्रेजों ने शायद इसे अवम का डर समझ लिया था। इसी कारण साफ अर्थों में अंग्रेजों की दमनकारी नीतियाँ तथा हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना आवश्यक था। उसके पश्चात स्थिति को भांपते हुए शास्त्री जी ने चतुराई पूर्वक मरो नहीं मारो का नारा दिया, जो एक क्रांति के जैसा साबित हुआ। और फिर मंत्री पद भी इनको मिल गया। उत्तर प्रदेश में शास्त्री जी को संसदीय सचिव के रूप में निर्वाचित किया गया और फिर ये गोविंद वल्लभ पंत के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहरवी और यातायात मंत्री बने। यातायात मंत्री के समय में उन्होंने प्रथम बार किसी महिला को समवा कंडक्टर के पद पर नियुक्त किया। प्रहरी विभाग के मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग आरंभ कराया और 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वह अखिल भारतीय कमेटी में महासचिव नियुक्त हुए और फिर 1952 में संसद के लिए निर्वाचित हुए और केंद्र रेल वे व परिवहन मंत्री बने। तो इस तरह से भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का सुअवसर भी इन्हें मिला। 1961 में गृह मंत्री के प्रभावशाली पद पर नियुक्त होने के बाद उन्हें कुशल माध्यम के रूप में प्रतिष्ठा मिली और 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू के बीमार पड़ने पर उन्हें बिना किसी विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया। और नेहरू की मृत्यु के बाद जून 1964 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत की आर्थिक समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपट पाने का कारण शास्त्री जी की आलोचना हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के विवाद प्रांत पर पड़ोसी पाकिस्तान के साथ वैमनस्य भड़कने पर 1965 में उनके द्वारा दिखाई गई दृढ़ता के लिए उन्हें बहुत लोकप्रियता भी मिली। ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति याकूब खान ने के साथ युद्ध करने की ताशकंद घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जय जवान जय किसान का नारा धोती कुर्ते में सिर पर टोपी लगाए गांव-गांव किसानों के बीच घूमकर हाथ को हवा में लहराते हुए जय जवान जय किसान का उद्घोषण करता हुआ, ये उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू। भले इस महान व्यक्ति का कद छोटा हो, लेकिन भारतीय इतिहास में उनका कद हमेशा बहुत ऊंचा रहेगा। तो ये थी कुछ खास बातें लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। उनके अंतिम समय की बात करें तो 1965 में पाकिस्तान हुकूमत ने कश्मीर घाटी को भारत से छीनने की योजना बनाई थी, लेकिन शास्त्री जी ने समझ लिया और पंजाब के रास्ते लाहौर में सेंध लगा पाकिस्तान को पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। इस हरकत से पाकिस्तान के विश्व स्तर पर बहुत निंदा हुई। पाक हुकूमत ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तत्काल सोवियत संघ से संपर्क करके आमंत्रण पर, जिसके चलते उन्हें शास्त्री जी को आमंत्रित किया 1966 में, और पाकिस्तान के साथ शांति समझौता करने के लिए ताशकंद गए। अब पाकिस्तान के सभी हिस्से लौटाने पर सहमत हो गए, जहां भारतीय सेना ने विजय का रूप तिरंगा झंडा गाड़ दिया था। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 11 जनवरी 1966 को हुआ एक शांति समझौता था। लेकिन इस समझौते के अनुसार ये तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, अपने झगड़े को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। ये समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री याकूब खां की लंबी चर्चा के वार्तालाप के उपरांत 11 जनवरी 1966 को ताशकंद रूस में हुआ। ताशकंद समझौते के बाद दिल का दौरा पड़ने से 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हो गया। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर आज तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट सामने नहीं लाई है। उनके परिजन समय समय पर उनकी मौत का सवाल उठाते रहे। ये देश के लिए एक शर्म का विषय है कि उसके इतने काबिल नेता की मौत का कारण आज तक साफ नहीं हो पाया। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता रहेगा। उन्हें वर्ष 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, सुनते रहे, मुस्कुराते रहे।

0: मैं ढूंढई गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे आपको बातें बताते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों की बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता है। 1959 और 1963 तक हिंदी फिल्मों की पहली अभिनेत्री, शीर्ष अभिनेत्री के रूप में रही। 60 के दशक में अपनी अभिनय प्रतिभा से सभी को अचंभित कर देने वाली अभिनेत्री आशा पारेख ने शम्मी कपूर, शशि कपूर, धर्मेंद्र देवानंद, अशोक कुमार, सुनील दत्त और राजेश खन्ना जैसे मंजे हुए कलाकारों के साथ काम किया। अपने लंबे फिल्मी करियर में आशा पारेख ने विभिन्न भूमिकाएं निभाई। संजीदा अभिनेत्री के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली आशा पारेख को शास्त्रीय नृत्य में भी दक्षता प्राप्त थी और उन्हें 30 सितंबर 2022 को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: हिंदी फिल्म जगत में इनका नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। चाहे नृत्य हो या अभिनय, इन दोनों ही कलाओं में पारंगत आशा पारेख।

आशा पारेख अपने माँ बाप की इकलौती संतान रही, इसलिए खूब लाड़ प्यार से पलके वो बड़ी हुई। बचपन से ही उनकी दिलचस्पी कथक नृत्य में आई और उन्होंने विधिवत तरीके से नृत्य सीखा। अपने स्कूल के दिनों में वो स्टेज पर परफॉर्म भी किया करती थीं, लेकिन मन में सपना था कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बनेंगी।

आशा पारेख का डॉक्टर बनने का सपना एक रोड एक्सीडेंट की वजह से खत्म हो गया। आशा जी जब स्कूल से वापस आ रही थी तो उन्होंने सड़क पर एक एक्सीडेंट देखा और चारों तरफ फैले खून ने आशा पारेख के मन में डर बैठा दिया और उन्होंने सोच लिया कि वह डॉक्टर तो नहीं बन सकती।

बतौर बाल कलाकार आशा पारेख स्टेज पर परफॉर्म किया करती थी। वहाँ पर लेजेंडरी फिल्म मेकर बिमल रॉय ने उन्हें देखा और कहा कि तुम मेरी फिल्म में काम करोगी। यूं तो नन्हे आशा पारेख का मन नहीं था, लेकिन चूंकि नृत्य से बहुत प्रेम था और बिमल रॉय की फिल्म में डांस का ही एक सीन था, आशा पारेख ने हाँ कर दी।

0: आशा पारेख के फिल्मी सफर का पहला पड़ाव था फिल्म गूंज उठी शहनाई, जिसके ऑडिशन के लिए उन्हें बुलाया गया। लेकिन शायद प्रोड्यूसर्स को लगता था कि आशा पारेख में स्टार वाली कोई बात नहीं है, इसलिए उन्हें इस फिल्म के लिए रिजेक्ट भी कर दिया गया।
1: दिल

जैसा कि हर सुपरस्टार के साथ होता है, पहले रिजेक्शन और फिर स्टारडम, आशा पारेख के साथ भी वैसा ही हुआ। शशाधर मुखर्जी, शम्मी कपूर, देवानंद जैसे कलाकारों के साथ आशा पारेख की कला में निखार आता गया।

आशा पारेख का नाम डायरेक्टर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन से कई बार जोड़ा गया और इस बात में भी कोई दोराय नहीं कि आशा पारेख ने नासिर हुसैन साहब के साथ ढेर सारी फिल्म्स भी करी।

फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े हीरोज के साथ आशा पारेख की अच्छी सफल जोड़ी बनी। चाहे वो शम्मी कपूर हो, देवानंद हो, धर्मेंद्र या फिर पहले सुपरस्टार राजेश

आशा पारेख जी ने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की। ऐसा माना जाता है कि आशा जी के दिल में किसी ने अपनी जगह बनाई जरूर थी, लेकिन वो बात शादी तक नहीं पहुंची।

अपने फिल्मी सफर को अलविदा कहने के बाद आशा पारेख ने टेलीविजन सीरियल्स बनाए और अपने बचपन का डॉक्टर बनने का सपना एक अलग ही अंदाज में पूरा किया जब उन्होंने मुंबई में आशा पारेख हॉस्पिटल की स्थापना की।

नमस्कार साथियों, ये थी कुछ खास बातें आशा पारेख के बारे में। आशा करूंगा उनकी कुछ फिल्में आपको याद हो गई होगी और उनकी कुछ बातें भी आपने सुनी होगी। आशा पारेख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दादा साहेब फलके पुरस्कार लिया है। गुजरात में जन्मे बेहतरीन अदाकार आशा पारेख को भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा दादा साहेब फलके पुरस्कार 30 सितंबर 2022 को मिला और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 79 वर्ष आशा पारेख को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया। आप सुनाए हैं रिन्यूमोदन 107.8 FM। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। तो एक जाते जाते सुंदर विचार, रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान है। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच। युवाओं के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से स्पोर्ट्स में इंडिया बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत कमाल कर रहा है, और स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड बनती जा रही है जिसपे न जाने कितने सारे करियर्स भी बनाए जा सकते हैं। सिर्फ हॉबी तक नहीं सीमित है वो। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब ये कहानी जो है वो थोड़ी पलट चुकी है, क्योंकि खेल में जो हमारे खिलाड़ी हैं वो इतना आगे जा रहे हैं। और इस वक्त अगर मैं बात करूं, यानी कि 2 अक्टूबर है आज, और आज इस वक्त चल रहा है हॉकी का टूर्नामेंट, एशियन गेम्स का फाइनल विमेन हॉकी का टूर्नामेंट चल रहा है। तो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर आप ऑन कर लीजिए अपने टीवी को और कमेंट्री तो देख ही लीजिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि भारत की जो बेटियां हैं वो कमाल कर रही हैं। चाइना के साथ इस वक्त मैच चल रहा है। कल इंडिया के मेन क्रिकेट टीम, मेन हॉकी टीम दोनों ही फाइनल में होंगे, वो भी होने वाला है। और आज अगर बात करें तो और भी बहुत कमाल, रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग में भी बहुत कमाल हुए हैं आज की डेट में, साथ साथ बॉक्सिंग में भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, और आर्चरी में भी रिकर्व विमेन टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। तो आज बहुत सारे मेडल इंडिया को मिले हैं। और एक मैसेज तो ऐसा था, एक मैच तो ऐसा था कि जिसमें लग रहा था कि शायद अब ये मैच इंडिया के हाथ से चला ही गया है, लेकिन फिर भी रेसलिंग में जो गोल्ड दिलवाया है वो बहुत ही कमाल का मैच है। मतलब अगर आप हाइलाइट्स भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले 2-9 से पीछे चल रहे थे सुजीत कलाल इंडिया के, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल है इनका।

गोल्ड मेडल जीतना, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई कि भारत को एक और स्वर्ण पदक दिला ही दिया। ऐसा ही कुछ हुआ है रिकर्व गेम में, यानी कि आर्चरी में दो तरह के होते हैं, रिकर्व आर्चरी, कंपाउंड आर्चरी। तो उसमें जो आपका जिससे आप आर्च अगर आप एक आर्चर हैं तो आपको पता होता है कि आप किससे कौन सी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने वाले हैं, उस पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होता है और डिफरेंट गेम बदल जाता है वहाँ से। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी गेम देखते हैं तो एक मोटिवेशन भी मिलता है अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का, साथ साथ एक कॉन्फिडेंस भी आता है, और ये भी पता चलता है कि हमें कौन से गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि हम उस गेम को शायद खेलना पसंद करेंगे। मैंने एक बार इंडिया के जो बहुत जाने माने बहुत ज़्यादा पॉपुलर इस वक्त जैवलिन थ्रो में जो हुए नीरज, वो उनके बारे में भी सुना, तो उन्होंने बताया था कि जब वो पहली बार ग्राउंड में गए तो बहुत सारे गेम्स थे और उनके जो साथ में थे कोचेस थे और लोग थे, उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा जब मैंने पहली बार जैवलिन उठाया तभी मुझे ये फील आया था कि ये मेरा कुछ है इससे कनेक्शन। और उन्होंने जब जैवलिन फेंका था पहली बारी, तो पहली बार जब कोई प्लेयर फेंकता है तब वो उनका जितना दूर गया वो उतना दूर किसी का जाता नहीं है यूजुअली, तो इसीलिए उनके जो वहाँ पे जो कोच थे उनको भी ये एहसास हुआ कि ये अच्छा कर सकता है इसमें। तो कभी कभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए आखिर कौन सा स्पोर्ट्स बनाए, क्योंकि अब देखिए लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, पोल वॉल्ट भी है, रिले रेस भी है, रेस भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं स्पोर्ट्स में। तो आप किसी ऐसे स्टेडियम में जा सकते हैं जहाँ सारे गेम्स हो रहे हों, और या फिर आप ये सारे गेम्स देख सकते हैं, और आपको जहाँ ज़्यादा खिंचाव महसूस हो, जहाँ आपको लगे कि ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा स्पोर्ट है। चलिए फिलहाल आपको सुनाते हैं अगला गीत, लौट कर आएंगे, कार्यक्रम युवा मंच जारी रहेगा, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: रुपए रुका रुका। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
2: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
1: और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
2: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
1: ये क्या बात हुई भाई, है? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? और बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
3: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है युवा मंच। और दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर का दिन वैसे तो आप सभी जानते हैं कि खास होता है, और इस दिन नेशनल हॉलिडे क्यों होती है ये भी आप सभी जानते हैं। दोस्तों, एक आपने गीत सुना होगा, मुझे बड़ा पसंद था वो गीत, और वो कौन सा गीत था आइए आपको सुनाते हैं।

0: आज है 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। आज के दिन 2 फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान। ये गाना मुझे बिल्कुल बचपन की ओर ले जाता है और याद दिलाता है कि सच में भारत सुगंधित है ऐसी महान आत्माओं की वजह से, ऐसे नेताओं की वजह से, ऐसे देशभक्तों की वजह से जिन्होंने सबसे ऊपर देश को रखा, जिनके वजह से आज हम आज़ादी की इस भूमि पर, इस हवा में सांस ले सकते हैं, कदम रख सकते हैं। दोस्तों, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, उनके बारे में कुछ भी अगर जानते हैं, उनके जीवन शैली के बारे में जानते हैं, उनके कार्यकारिणी के बारे में जानते हैं, किस प्रकार से उनकी सोच थी, भारत को कहाँ ले जाना चाहते थे और किस प्रकार से वो जय जवान जय किसान का जो उन्होंने नारा दिया था कि सच में हमारा जो मुल्क, हमारा जो देश है किसानों के कारण, जवानों के कारण, अगर ये ना हो तो जीवन संभव ही नहीं है, तो वो इम्पोर्टेंस को बतलाता हुआ एक नारा जो प्रसिद्ध किया उन्होंने, उसने हमें महसूस कराया कि अगर कहीं भी हम ये सोच रहे हैं कि हमें जो कुछ मिल रहा है सिर्फ मेरे कारण है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा सोच लीजिए, क्योंकि सच में हमें गर्व से जब हम भारत की बात करते हैं तो ये नारा लगाना ही चाहिए, जय जवान जय किसान। दोस्तों, एनसीईआरटी ऑफिशियल के माध्यम से उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवन पर आधारित एक नाटिका, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि वॉइस ओवर भी है, उसमें कुछ नाटिका भी है, वो आपको सुनाते हैं। और आज ये सुनना इसलिए अहम है क्योंकि आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, तो आइए सुनते हैं।
1: यानी वाराणसी
2: सुते 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लाल बहादुर शास्त्री।

0: बात आज से लगभग 100 साल पुरानी है। उत्तर प्रदेश का मशहूर शहर बनारस यानी वाराणसी। इसी बनारस के समीप मुगल सराय में एक साधारण परिवार शारदा प्रसाद श्रीवास्तव का। वो इलाहाबाद की कायस्थ पाठशाला में पढ़ाते थे। 2 अक्टूबर 1904 को श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और श्रीमती राम दुलारी के घर मुगल सराय में पहली संतान का जन्म हुआ। प्यार से बच्चे का नाम नन्हे रखा गया।
1: नन्हे अभी 1.5 साल का ही था कि उसके पिता नहीं रहे।

मां ने नन्हे को बड़े जतन से पाला। उसमें ऐसे चारित्रिक गुणों का विकास किया कि आगे चलकर नन्हे एक मजबूत कंधों वाला इंसान बना। नन्हे भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बना। यानी हम बात कर रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री की। आम आदमी से देश के प्रधानमंत्री पद तक की लाल बहादुर शास्त्री की जीवन यात्रा असाधारण है।

0: पिता के देहांत के बाद लाल बहादुर का लालन पालन अपने ननिहाल में हुआ। लाल बहादुर पढ़ने में बहुत अच्छे थे, पर घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी न थी, इसलिए माँ बेटे की पढ़ाई को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। खेलने में भी लाल बहादुर का बहुत मन रमता था। वो रोज शाम को स्कूल से लौटने पर स्कूल से लाया हुआ काम निपटाकर पिछवाड़े खेलने चले जाते।
1: खेलने का सामान भी वो स्वयं बना लेते। वो खजूर के बहुत सारे फूल जमा करते और उन्हें पुराने कपड़ों में लपेटकर फुटबॉल बना लेते। जब बॉल बहुत छोटी रह जाती तो उससे हॉकी खेलते। पेड़ों की मजबूत टहनियां तोड़कर उन्हें हॉकी की स्टिक बना लेते। घर में हर उम्र के बच्चे थे।
2: चलो चलो बाग में आम तोड़ते हैं।
3: हाँ हाँ चलो चलो
2: चलो चलो
3: चलो चलो।
4: हाँ एक मिनट। हाँ ये लो ये भी हाँ ये लो।
5: कौन है? अरे कौन हो तुम लोग?
4: अरे भागो भागो।
5: अरे बड़े शैतान बच्चे हो।
4: चिपचिप यही चिपचिप।
5: अभी बताता हूँ।
6: अरे दीवार फाड़ लो, दीवार फाड़ लो।
4: चल चल यही चिपचिप है। चुप चुप चुप
5: चुप। अरे कहाँ छिप रहे हो? बताता हूँ। अरे पकड़ लिया था बच्चू। कहाँ जाओगे?
4: मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने तो बस ये फूल तोड़े। आम तो उन लोगों ने तोड़े।
5: बस फूल तोड़ा है।
4: तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मालूम है मेरे पिताजी नहीं है।
5: चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। देख इस तरह खुड़दंग में शामिल होना तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा कभी फिर मत करना बेटे।
4: जी, जी।

0: माली की बात का नन्हे के मन पर यानी लाल बहादुर शास्त्री के मन पर गहरा असर हुआ। इसके बाद लाल बहादुर ने कभी इस तरह की गलती नहीं की।
1: हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए लाल बहादुर बनारस पहुंचे।

0: आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए भी लाल बहादुर ने हिम्मत नहीं हारी। जब भी वो भीतर से कमजोर पड़ते, उन्हें मां का उम्मीद भरा चेहरा नजर आता और मां की उम्मीदों को वो कभी हारता हुआ नहीं देख सकते थे। अभावों ने उन्हें सहनशील बना दिया था।
1: हालात विकट थे, लेकिन लाल बहादुर ने उन पर विजय पाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। वो पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा समय लगाने लगे। हरिश्चंद्र हाई स्कूल में पढ़ते हुए ही लाल बहादुर ने देशभक्ति का पहला पाठ पढ़ा। यहाँ लाल बहादुर अपने अंग्रेजी के अध्यापक और क्लास टीचर निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्र से बहुत प्रभावित थे। एक दिन
2: शांत बच्चो, शांत। हाँ बैठो बैठो बैठो। देखो ऐसा है, कल कक्षा के सब छात्र मेला देखने जाएंगे।
3: अरे वाह,
4: मजा ही आ गया।
2: गंगा पार मेला लगा है और जिस जिस बच्चे को मेला देखने चलना है अपने साथ एक एक आना लेकर आए।
5: जरूर जरूर, मैं तो ले आऊंगा, मैं भी ले आऊंगा एक आना।
6: एक आना, एक आना।
2: लाल बहादुर, क्या बात है?
6: कुछ नहीं।
2: तुम शांत बैठे हो, तुम्हें मेला जाने की खुशी नहीं हुई? तुम्हें नहीं जाना?
6: नहीं सर, मुझे मेला वगैरह जाना अच्छा नहीं लगता।
1: वास्तव में लाल बहादुर का मन तो मेले में जाने का था, लेकिन उनके पास सिर्फ एक पैसा था। निष्कामेश्वर मिश्र बच्चे की भावना को समझ गए और घर परिवार की हालत की सारी जानकारी लेते हुए वो उन्हें मेला दिखाने ले गए और लौटने पर अपने घर ले गए। मिश्र जी ने कई बार उनकी आर्थिक रूप से सहायता करने का प्रयास किया, पर स्वाभिमानी लाल बहादुर ने नम्रतापूर्वक इनकार कर दिया।
0: ये वो समय था जब देश के वातावरण में राष्ट्रीयता की भावना बिजली की तरह दौड़ रही थी। इसने देश के युवकों में एक नया उत्साह फूंक दिया। लगता था जैसे एक विशाल शक्ति सोते से जाग उठी हो। बरसों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद होने के लिए भारत कसमसा उठा था। पूरा देश उथल पुथल से भर उठा था। लाल बहादुर ने उन्हीं दिनों लोकमान्य तिलक का भाषण सुना, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा तो जैसे मंत्र बन गया था उनके लिए।
1: 1917 बिहार में चंपारण सत्याग्रह की सफलता,
0: 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड,
1: 1920 सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन की शुरुआत,
0: और फिर गांधी जी की अपील।
7: मैं सभी स्त्री पुरुषों, छात्र नौजवानों और अध्यापकों से अपील करता हूँ कि राष्ट्र को स्वाधीन बनाने की लड़ाई में कूद पड़े।
0: वर्ष 1921, तब लाल बहादुर शास्त्री लगभग 16 साल के थे। देश में व्याप्त असहयोग आंदोलन की लहर ने उन पर गहरा असर डाला। इसी साल महात्मा गांधी देश का दौरा करते हुए बनारस पहुंचे। लाल बहादुर ने तल्लीन होकर उनकी प्रेरक वाणी सुनी और उन्होंने महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प कर लिया। जीविकोपार्जन की परवाह किए बगैर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया। सत्रह साल की उम्र में छात्र आंदोलन के दौरान लाल बहादुर पहली बार गिरफ्तार हुए।
1: कुछ समय बाद जब आंदोलन शांत हुआ तो लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। विद्यापीठ की पढ़ाई के दौरान लाल बहादुर को बहुत कुछ सीखने को मिला। मानवीय संबंधों की जितनी जानकारी हो सकती थी उन्होंने हासिल की। देश प्रेम, सादगी और आत्मत्याग की भावना का जो पाठ उन्होंने यहाँ पढ़ा उसने जीवन भर उनका मार्गदर्शन किया।
0: लाल बहादुर का छात्र जीवन बड़ी ही तकलीफों से भरा था। कॉलेज तक पहुंचने के लिए उन्हें हर रोज 9-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और कभी कभी जब वे सवेरे के घंटों की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट आते तो उन्हें शाम की कक्षा के लिए फिर उतना ही पैदल चलना पड़ता था। उनके पास साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और ना ही इक्के का किराया देने के लिए जेब में कुछ था। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि गंगा पार करने के लिए नाव का किराया न होने पर लाल बहादुर ने तैर कर नदी पार की। इन सब कठिनाइयों के बावजूद दर्शन शास्त्र की पढ़ाई उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की।
1: 1926 में लाल बहादुर ने स्नातक यानी शास्त्री की डिग्री हासिल की और ये शास्त्री उनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया, लाल बहादुर शास्त्री। तेईस साल की उम्र में जब लाल बहादुर शास्त्री की शादी हुई तो उपहार में उन्होंने एक चरखा और एक थान खादी ही स्वीकार किया।
0: अभावों की जरा भी परवाह किए बगैर वो सत्याग्रही बन गए और उनकी पत्नी ललिता जी सच्चे अर्थों में उनकी सहधर्मिणी बनी। उन्होंने गृहस्थी का पूरा भार अपने कंधों पर उठा लिया और शास्त्री जी को कभी चिंता में नहीं डाला।
1: देश की आजादी के लिए लाल बहादुर शास्त्री ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे। इस दौरान वे अक्सर जेल में रहे। उन्होंने कहा,
4: मुझे आज तक कभी पारिवारिक समस्या का भान नहीं हुआ। इससे मुझे गांधी जी और नेहरू सरीखे, दो कठोर परिश्रमी महापुरुषों के बीच अपनी शक्ति के उपयोग का काफी समय मिल गया। मैंने खुद को राजनीतिक संघर्ष में झोंक दिया। हर आंदोलन में मुझे जेल जाना पड़ा और एक तरह से मेरा बंदी जीवन बड़ा ही रोचक रहा, क्योंकि जेल में रहकर मैं खूब पढ़ा करता था।
1: आंदोलनों के दौरान जेल में रहकर शास्त्री जी ने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखकों की कृतियां बड़ी गहराई से पढ़ी। इसी दौरान शास्त्री जी ने मैडम क्यूरी की जीवनी का हिंदी में अनुवाद किया।
0: उन्नीस सौ पैंतीस से 1945 के बीच वो कई बार जेल गए। जेल यात्राओं के दौरान उनके एक बच्चे की मृत्यु और दूसरे की गंभीर बीमारी का दर्द भी शामिल था।
1: उनकी राजनीतिक गतिविधियां लोक सेवक मंडल की सदस्यता से शुरू हुई थी। 1937 में शास्त्री जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मंत्री चुने गए। शास्त्री जी की कर्मठता और सादगी से सभी प्रभावित थे। उन्होंने कांग्रेस संगठन में अनेक महत्वपूर्ण पद निभाए।
0: सन 1947 देश स्वतंत्र हुआ। ১৯৫২ में वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। 1952 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए। 1952 से 1956 तक वो रेल मंत्री रहे। एक गंभीर रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया।
1: 1957 के आम चुनाव के बाद वो परिवहन व संचार मंत्री और फिर वित्त व उद्योग मंत्री बने। ১৯৬১ में उन्होंने देश के गृह मंत्री का अति संवेदनशील पद संभाला। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उन पर असीम विश्वास था। नेहरू जी के निधन के बाद वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने।
0: लाल बहादुर शास्त्री ने जिस वक्त देश की बागडोर संभाली, उस वक्त देश संकट की घड़ी में था। देश के राज्यों में कहीं बाढ़ थी तो कहीं सूखा पड़ रहा था। महंगाई, गरीबी और अन्न का संकट चारों तरफ था। शास्त्री जी ने अन्न की कमी से निपटने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की और देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर ठोस कदम उठाए। किसानों और नौजवानों में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए उन्होंने नारा दिया, जय जवान, जय किसान। 1965 सितंबर में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान उन्होंने गहरे आत्मसंयम का परिचय दिया। वो शांति के उपासक थे पर देश की सुरक्षा सर्वोपरि थी। सितंबर के अंतिम सप्ताह में सुरक्षा परिषद ने युद्ध विराम की अपील की, जिसका उन्होंने पूरा सम्मान किया।
1: जनवरी 1966 में शास्त्री जी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के बीच वार्ता के लिए उस समय के अविभाजित रूस ने पहल की। इसे ताशकंद वार्ता के नाम से जाना जाता है। वार्ता तो सफल रही, पर अपनी मातृभूमि से दूर वहीं सोवियत रूस में 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हो गया।

0: देश ने अपना महान सपूत खो दिया। सारा देश स्तब्ध रह गया था।
1: अपनी मृत्यु से 6 महीने पहले यानी 15 अगस्त 1965 को लाल किले के प्राचीर से अपना पहला और आखिरी भाषण देते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था,
2: हम रहें या ना रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और ये देश रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये झंडा रहेगा। हम और आप रहें या ना रहें, लेकिन भारत का सिर ऊंचा रहेगा। भारत संसार के सभी देशों में एक बड़ा देश होगा और शायद दुनिया को कुछ दे भी सके।
1: लाल बहादुर शास्त्री आत्मविश्वास और आत्मशक्ति की सजीव मूर्ति थे। वो अत्यंत स्वाभिमानी होते हुए भी बहुत विनम्र थे। बहुत गंभीर होते हुए भी विनोदी स्वभाव के थे। उच्च पदों पर काम करते हुए उनकी सरलता और सादगी में कोई अंतर नहीं आया। सच्चे अर्थों में वो जनहितैषी थे। मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। वो सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा थे। उनमें आम भारतीय की सरलता और सहजता थी। सचमुच भारत के लाल थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्हें हमारा शत शत नमन।

0: सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयां बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा। भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है। ये समझ में आएगा, ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद भोगवाद ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद भोगवाद के कारण।
1: पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सुन रहे हैं आप कार्यक्रम युवा मंच। और दोस्तों इस वक्त लास्ट के दो मिनट बचे हैं। इंडियन वुमेन हॉकी टीम प्लेग्राउंड पर है चाइना के साथ, ये फाइनल

मुकाबला चल रहा है गोल्ड मेडल के लिए, और बहुत ही सुंदर प्रयास हो रहा है भारतीय क्रिकेट टीम की वजह से। भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय हॉकी टीम, माफ कीजिएगा, आगे चल रही है। एक गोल उन्होंने किया है, चाइना एक भी गोल अभी तक नहीं कर पाया है। और बहुत सुंदर अभी एक प्रयास हुआ था चाइना की ओर से, लेकिन हमारी जो गोल कीपर है उन्होंने बहुत ही कमाल का जो है वो सेव किया है। और अभी फिलहाल भारतीय टीम के हाथ में बॉल है और उनकी हॉकी स्टिक लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे उनके खेमे में जाएं और एक और गोल दाग दें। लेकिन प्रयास चाइना की तरफ से भी पूरा चल रहा है, उन्होंने अपने गोलकीपर को बाहर भी बुला लिया है क्योंकि एकदम अंतिम घड़ियां है, लास्ट मिनट जो है ये बचा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब बस गोल्ड मेडल आने ही वाला है। अगर आप देख सकते हैं जो भारत की बेटियां हैं इस वक्त कमाल की परफॉर्मेंस देते हुए, और चाइना जैसी बहुत अच्छी टीम को भी ऐसा मुकाबला देते हुए कि ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर जो बॉल है वो भारत के ही स्टिक पे रही है और पूरी तरह से उन्होंने कोशिश की है कि बस बस बस अब होने ही वाला है, 20 सेकेंड और कुछ और क्षण बाकी हैं और एक गोल्ड मेडल भारत को मिलने वाला है एशिया कप में। अगर ये गोल्ड मेडल मिल जाता है तो ओलंपिक्स के लिए आप ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर जाते हैं, कुछ किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब बस 7 सेकेंड शेष, अब 4, 3, 2, 1 बस, और हूटर बज गया है और भारत ने जीत लिया है हॉकी का ये मैच। स्वर्ण पदक मिल चुका है भारत की बेटियों ने, कमाल करके दिखा दिया है, हम सभी को गौरवान्वित महसूस करा दिया है भारत की बेटियों ने। और सभी उमंग उत्साह से भरपूर है, पहली बार ऐसा हुआ है एशियन गेम्स में भारत की बेटियों ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। और लॉस एंजलिस में होने वाले हैं ओलंपिक गेम्स, वहाँ पर अब ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर लिया है इन्होंने। ये बहुत ही गर्व का एक क्षण है हम सभी के लिए। तो हम सभी अपनी बेटियों को आगे ज़रूर बढ़ाएं, अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं तो दिल जी जान से उनका पूरा सपोर्ट ज़रूर करें। चलिए फिलहाल लेते हैं इजाजत, अगला कार्यक्रम लेकर आएंगे आरजे मोना, बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जीवन के सूखे मरुस्थल में झेले ये झंझावत कई, जितनी बाधा कनकट आते उनसे वे पाते शक्ति नई।
1: विश्वासी धर्मनिष्ठ कर्मठ निज देश प्रेम से ओतप्रोत, समर्थ हिमालय से ऊंची मन में जलती थी ज्ञान ज्योत।
0: थे कद से छोटे से दिखते, थे कोटि कोटि जन के प्यारे, थे लाल बहादुर शास्त्री वो, थे इस धरती के रखवारे।
1: उनके ही दृढ़ अनुशासन से वह पाक हिंद से हारा था, जय जवान और जय किसान यह उनका ही तो नारा था।
0: गए ताशकंद में उनके ही दृढ़ अनुशासन से, गए ताशकंद में शांति हेतु चिर शांति वहीं पर प्राप्त हुई, सोया है लाल बहादुर अब यह खबर वहीं से प्राप्त हुई, यह खबर वहीं से प्राप्त हुई।
1: गली गली भय से कांपी थी, गांव शहर सहमे थे, अंग्रेजी जल्लादों के सांसों तक पर पहरे थे।
0: 200 वर्षों तक हमने गोरों की करी गुलामी थी, पर तुमने जब अलख जलाई गोरी नस्ल कांपी थी।
1: बिन हथियार लड़े हो फिर भी हार गया शैतान, हे बापू तुमको मेरा प्रणाम, हे बापू तुमको मेरा प्रणाम।
0: जी हाँ दोस्तों, आज वो दिन है विशेष जो महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों का चरम दिन। तो चलिए, एक दो रतन है देश के, उनके लिए ये गीत समर्पित है, सुनते हैं।

0: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना, मेरे साथ हैं
1: रूहानी।
0: चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे वायु योद्धा के विषय पर आज कुछ बातें जरूर करते हैं। और अभी वायु योद्धा क्यों, आज अभी कल ही जो घटना घटी और जिसमें हमारे विशेष पायलट जिन्होंने एक फ्लाई दुबई को बचा लिया, उसको माने हाईजैक होने से, और काफ़ी घायल हुए लेकिन फिर भी भारत का नाम रोशन करा। चलिए दोस्तों हमारे वायु योद्धा क्या करते हैं।
1: देश में बाढ़ और आपदाओं के समय हमारी वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कैसे हमारी मदद करते आइए आगे जानते हैं।
0: देश में जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे भूस्खलन हो या फिर भीषण बाढ़ हो या भयानक तूफान, तब आसमान से उम्मीद की एक ही किरण दिखाई देती है। गड़गड़ाते ये हेलीकॉप्टर और गरजते विमानों की आवाज सुनते ही पीड़ितों के चेहरे पर कहीं ना कहीं राहत की मुस्कान जरूर आ जाती है। ये आवाज होती है भारतीय वायुसेना की,
1: जो न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं बल्कि संकट के समय देशवासियों के लिए देवदूत बनकर सामने आते हैं।
0: आसमान से जीवन की रक्षा वो कैसे करते होंगे? भारतीय वायुसेना युद्ध के अलावा आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे HADR अर्थात मानवीय सहायता और आपदा राहत ऑपरेशन कहा जाता है।
1: बाढ़ के समय खाना और पानी भी पहुंचाते हैं। जब गांव पानी में डूब जाते हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वायुसेना के हेलीकॉप्टर पीड़ितों तक राशन, पीने का पानी, दवाइयां और तिरपाल यानी शेल्टर शीट्स
0: एयर ड्रॉप करते हैं
1: यानी आसमान से नीचे गिराते हैं।
0: और बात यही हुई कि हाल ही नेपाल में जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई उस समय भी एयर ड्रॉप किया गया और जिसकी वजह से बचाया भी गया, कितने लोग उसकी वजह से बचकर आए, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ युद्ध में सहायता नहीं करना, युद्ध नहीं लड़ना, बल्कि डिजास्टर को भी मैनेजमेंट करना। इसके साथ साथ वो एयरलिफ्ट और रेस्क्यू भी करते हैं।
1: पानी से घिरे मकानों की छतों या पेड़ों पर फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है।
0: और यही चीज आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भरपूर देखा होगा, जब नेपाल में बड़ी सी बाढ़ या फिर लैंडस्लाइड हुई थी। और ऐसे में ये किस प्रकार और काम करते हैं, कौन कौन से विमान बनते हैं स्पेशली रक्षा हेतु?
1: वायुसेना राहत कार्यों में अपने सबसे आधुनिक और शक्तिशाली विमानों का उपयोग करती हैं,
0: जैसे कि MI-17V5 और
1: चेतक चीता हेलीकॉप्टर।
0: ये दुर्गम से दुर्गम इलाकों, संकरी पहाड़ियों और पानी में घिरे छोटे छोटे स्थानों पर उतरकर लोगों को रेस्क्यू करने में माहिर है। वहीं पर
1: दूसरा है C-130J सुपर
0: हरक्यूलिस
1: और C-17 ग्लोब मास्टर। ये विशालकाय परिवहन विमान आपदा वाले क्षेत्रों में भारी राहत सामग्री, NDRF की टीमों, मेडिकल स्टाफ, मोबाइल अस्पताल और बचाव नावों को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने का काम करते हैं।
0: तो देखिए कितनी उपयोगी है भारत की ये सेवाएं और इसीलिए समर्पित है अगला गीत स्पेशली हमारे वायु सेवा का। तो चलिए अगला गीत हम पहुंचाने से पहले आप सभी को कहते हैं आज विशेष दिन है और जो है रघुपति राजा राम, जो ये गीत जिसने खास फेमस किया था, उनके बारे में कुछ विचार हैं वो जरूर सुन लीजिए, क्योंकि आप जुड़े हैं सिर्फ और सिर्फ
1: उड़ान के साथ।
0: मैं हूँ आपकी दोस्त मोना, मेरे साथ है
1: रूहानी।
0: चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लौट कर आते हैं तुरंत। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।
2: आँख के बदले में आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी, जो हमें बताता है कि बदला ना ले, बदल कर दिखाएं। ये महान विचार है पूज्य बापू के।

0: ऊंची इरादे हैं ऊंचे महान, विजय भव भारत महान। चलिए इस प्यारी सी गीत के बाद लौट कर आते हैं क्योंकि आप सुन रहे उड़ान। आज विशेष आपने अपने स्कूल में क्या किया रूहानी, क्योंकि आज आपका स्कूल ओपन था, आपके लिए क्या टास्क था जो आपने विशेष किया आज स्कूल में?
1: टेस्ट दिया।
0: आज टेस्ट दिया। वैसे 2 अक्टूबर को मोस्टली इसके अलावा कुछ भी काम नहीं हुआ, मतलब स्कूल में क्लीनिंग का कोई विशेष सेलिब्रेशन नहीं? ये बहुत स्ट्रेंज है, कुछ स्कूल इस चीज के लिए अभी इस प्रकार का आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसको इस तरीके से मानते हैं कि 2 अक्टूबर छुट्टी का दिन है, ये नेशनल हॉलीडे का विशेष दिन है। बहुत सारे हॉलीडेज आपके हो गए होंगे, यही रीज़न रहा कि 2 अक्टूबर को उसको मैनेज किया गया होगा और आपका स्कूल आज खुला हुआ होगा। सर्टेनली यही रीज़न रहा, पर फिर भी सेलिब्रेशन हर इस नेशनल डे में हर जगह पर ये सेलिब्रेशन हुआ है। चलिए एक गीत में जो आपके सामने पेश कर रही थी उसे आगे सुना देते हैं क्योंकि आप सुन रहे हैं उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो
1: मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: ओम शांति, गुड इवनिंग,
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
1: आप और रोहिणी कैसे हो आप?
0: बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, रेडियो मधुबन में हमसे जुड़ने के लिए। बताइए।
1: मैं प्रोग्राम स्टार्टर से सुन रहा हूँ, बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। आप सभी हवाई जहाज आज के दिन का नेशनल डे का बहुत अच्छी जानकारी दे रहे, तो मेरे भी तरफ से सादगी और अहिंसा के देवता महात्मा गांधी जी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको शत शत नमन है, शत शत नमन है दीदी। और सभी को नमस्कार और ओम शांति।
0: थैंक यू, ओम शांति, ओम शांति।

0: था।
1: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति
1: जी। ओम शांति, कैसे हैं सर?
2: एकदम अच्छे हैं। और आज तो गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
1: थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
2: आज ओम शांति ओम शांति।
1: थैंक यू। चलिए, हमारे बहुत सुंदर ढंग से हमारे साथी फिरोज जी ने कॉल किया और कहानी के लिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो मधुबन में आप सुन रहे उड़ान, और दो महान आलसी दोस्त आज कहानी जरूर सुनेंगे, सोते सोते ही सुन लेंगे। मैं और रूहानी बिल्कुल आलसी नहीं है, तभी तो हम लेकर आते हैं रोज आपके लिए अलग अलग कहानियां और कार्यक्रम भी। सुनते रहो,
3: मुस्कुराते रहो।
4: उन्हें नींद आने लगती थी। जब गांव के लोग मेहनत करते तब ये दोनों पेड़ की छांव में आराम फरमाते थे। गोपाल और माधव का मानना था कि कम काम करना ही सुखी जीवन का राज है।
5: काम जितना कम, आराम उतना ज्यादा।
4: एक दोपहर दोनों हमेशा की तरह आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी पेड़ से एक पका हुआ आम टूटकर सीधे गोपाल के पेट पर आ गिरा।
6: अरे, ये क्या गिरा?
4: आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन हाथ उठाना भी उसे बहुत बड़ी मेहनत लगा।
5: इसे उठाने के लिए हाथ चलाना पड़ेगा।
4: आखिरकार गोपाल ने पास पड़े माधव को आवाज लगाई और मदद मांगी।
5: माधव भाई, जरा ये आम मेरे मुंह तक पहुंचा दो।
4: माधव ने एक आंख खोली और गोपाल की बात सुनकर भी उठने से साफ मना कर दिया।
7: माधव की बात सुनकर गोपाल ने आम को देखा और फिर आलस से वहीं पड़ा रहा।
5: काश आम खुद ही मेरे मुंह में आ जाता।
4: तभी व्यापारी हरिदास अपने घोड़े पर वहां से गुजरा।
5: अरे, ये दोनों फिर यहीं हैं?
4: हरिदास ने गोपाल के पेट पर रखा आम देखा और हैरान रह गया।
5: इतना आलस, कमाल है।
4: हरिदास ने आम उठाया और दोनों दोस्तों को देखने लगा।
5: बताओ, आम कौन खाएगा?
4: हरिदास ने आम आगे किया, लेकिन दोनों उठने को तैयार नहीं हुए।
5: माधव, आप ही खा लीजिए। तुम दोनों सुधरने वाले नहीं हैं।
4: हरिदास समझ गया कि दोनों को आराम ही सबसे प्यारा है।
5: अब चैन से सोते हैं।
4: हरिदास चला गया और दोनों दोस्त फिर आराम करने लगे। तभी आसमान में काले बादल छा गए और बारिश का मौसम बन गया।
5: लगता है बारिश आएगी।
4: तेज हवा चली और पेड़ की बड़ी शाखाएं जोर से हिलने लगीं।
5: अरे, हवा बहुत तेज है।
4: अचानक बारिश की एक बूंद माधव के चेहरे पर गिरी और उसकी नींद खुल गई।
6: अरे, पानी।
4: बारिश तेज हुई, लेकिन दोनों दोस्त पेड़ के नीचे ही पड़े रहे।
5: थोड़ा और यहीं रुकते हैं।
4: बारिश का पानी धीरे धीरे उनके पास जमा होने लगा।
5: अरे, पानी तो यहाँ भी आ गया।
4: माधव ने जगह बदलने की सोची, लेकिन आलस ने उसे रोक दिया।
5: उठूं कैसे? बहुत मेहनत होगी।
4: तभी पेड़ की एक छोटी शाखा टूटकर गोपाल के पैर के पास आ गिरी।
5: अरे, ये शाखा कहाँ से आ गई?
4: गोपाल ने माधव से शाखा हटाने के लिए कहा।
5: माधव, इसे जरा हटा दो।
4: माधव ने मना कर दिया।
8: तुम खुद हटा लो, मैं नहीं उठूंगा।
4: दोनों फिर चुपचाप पड़े रहे और बारिश देखते रहे।
5: ठीक है, ऐसे ही पड़े रहते हैं।
7: उसी समय रास्ते से दो चोर जल्दी जल्दी वहां से गुजर रहे थे।
5: जल्दी चलो।
4: अचानक एक चोर का पैर फिसला और उसका पैर माधव के पास जा लगा।
5: अरे, कौन है?
7: माधव की तेज आवाज सुनकर दोनों चोर घबरा गए और अपना सामान वहीं छोड़कर भाग गए।
5: भागो!
7: चोरों के भागने के बाद वहां एक भारी थैला पड़ा रह गया।
5: अरे माधव, ये थैला किसका है?
7: माधव ने थैले को देखा, लेकिन उसे उठाने की कोशिश भी नहीं की।
5: पता नहीं अंदर क्या है।
7: गोपाल ने सोचा कि शायद थैले में कोई कीमती चीज हो सकती है।
5: लेकिन थैला उठाने के लिए हाथ बढ़ाना भी दोनों को बहुत मेहनत लगा। रहने दो, बाद में देखेंगे।
7: थोड़ी देर बाद बारिश कम हुई और आसमान साफ होने लगा।
0: अब बारिश रुक गई।
9: सड़क पर एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ वहां से गुजर रहा था।
10: चलो भेड़ों, धीरे धीरे।
11: चरवाहे की नजर अचानक उस पड़े हुए थैले पर पड़ी। अरे, ये थैला यहाँ कैसे? चरवाहे ने थैला उठाया और उसके अंदर झांक कर देखा। इसमें तो बहुत कुछ है। थैले में चमकते सोने और चांदी के सिक्के देखकर चरवाहा हैरान रह गया। अरे वाह, ये तो खजाना है। गोपाल और माधव सब देखते रहे, लेकिन फिर भी अपनी जगह से नहीं उठे।
9: चरवाहा खजाने का थैला लेकर अपनी भेड़ों के साथ आगे बढ़ गया। आज तो मेरी किस्मत चमक गई।
7: गोपाल ने जाते हुए चरवाहे को देखा और फिर आलस से जमीन पर लेट गया।
5: जाने दो, हमें क्या। सही कहा, मेहनत कौन करें।
11: लेकिन कुछ देर बाद गोपाल को अपनी गलती का थोड़ा एहसास हुआ। शायद हमें थैला उठा लेना चाहिए था। माधव ने बात सुनी लेकिन फिर भी उठने को तैयार नहीं हुआ। अब जाने दो, बहुत देर हो गई। दोनों की आलस की वजह से एक बड़ा मौका उनके हाथ से निकल गया था। हमारी आलस ने सब बिगाड़ दिया। अब समझ आया, आलस बुरी चीज है। माधव ने माना कि आलस सच में नुकसान कराता है। दोनों ने तय किया कि अब वे मेहनत करना सीखेंगे।
5: कल से मेहनत करेंगे। लेकिन अगले ही पल दोनों फिर से आराम से लेट गए। कल से पक्का।
7: शायद उनके लिए मेहनत का दिन अभी थोड़ा दूर था।
5: पहले थोड़ी नींद।
7: अगली सुबह सूरज निकला लेकिन दोनों दोस्त अभी भी गहरी नींद में थे। बस 5 मिनट और।
9: गांव के लोग सुबह से अपने काम में जुट गए थे।
5: चलो काम शुरू करें।
9: गोपाल और माधव ने लोगों को काम करते देखा।
5: काम तो रोज करना।
9: फिर भी उठने का नाम नहीं लिया।
7: तभी गोपाल को पिछली रात का खजाना याद आया।
0: अरे अरे, वो खजाना।
12: अब वो हमारे पास कहाँ है?
7: लेकिन खजाना तो चरवाहा बहुत पहले ले जा चुका था। दोनों को अपनी आलस पर बहुत पछतावा हुआ।
12: हमने बहुत बड़ी गलती की।
7: माधव ने कहा कि अब उन्हें सच में बदलना होगा।
8: अब आलस छोड़ना होगा।
7: दोनों ने उठकर पहली बार काम करने की कोशिश की।
5: चलो आज से शुरुआत करें।
7: वे पास के खेत की ओर मेहनत करने चल पड़े।
8: धीरे चलना, मैं अभी नया हूँ।
5: चिंता मत करो, हम साथ हैं। अब हम आलसी नहीं बनेंगे।
7: उस दिन दोनों ने समझ लिया कि मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती।
9: खेत में पहुंचकर दोनों ने काम शुरू किया।
5: अरे, काम तो मुश्किल है।
7: थोड़ी मेहनत के बाद दोनों को पसीना आने लगा।
5: थोड़ा आराम कर लें।
9: माधव ने आराम करने की बात सुनी तो तुरंत खुश हो गया।
5: यही तो मैं सुनना चाहता था।
7: लेकिन गोपाल को अपना खोया हुआ खजाना याद आ गया।
5: नहीं, हमें मेहनत करनी है।
7: माधव ने भी हिम्मत जुटाई और फिर से काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों को मेहनत करने में मजा आने लगा।
8: देखो, काम अच्छा लग रहा है।
7: शाम तक दोनों ने खेत का काफी काम पूरा कर लिया।
5: आज हमने सच में काम किया। मेहनत का फल अच्छा होता है।
9: दोनों को पहली बार अपनी मेहनत पर गर्व महसूस हुआ।
7: उस दिन के बाद दोनों ने आलस छोड़ने का फैसला किया।
5: अब रोज मेहनत करेंगे।
7: अब उन्हें समझ आ चुका था कि मौका मिले तो मेहनत जरूर करनी चाहिए।
5: आलस से सिर्फ नुकसान होता है।
9: अगली सुबह दोनों दोस्त समय पर उठ गए।
5: आज देर नहीं करेंगे
9: और काम के लिए निकल पड़े।
7: गांव वालों ने दोनों को मेहनत करते देखा तो बहुत खुश हुए।
6: अरे दोनों बदल गए,
10: चलो काम पूरा करते हैं।
9: अब दोनों दोस्तों को काम करने में बिल्कुल आलस नहीं आता था। एक दिन उन्हें खेत के पास एक भारी लकड़ी दिखाई दी।
5: इसे हटाना पड़ेगा। एक दो तीन।
9: पहले दोनों ने मिलकर लकड़ी को धक्का दिया।
7: कुछ कोशिशों के बाद लकड़ी रास्ते से हट गई।
5: हो गया।
11: साथ रहें तो काम आसान है।
9: दोनों समझ गए कि मिलकर काम करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। उसी समय हरिदास भी वहां से गुजर रहा था और उसने दोनों को मेहनत करते देखा।
5: वाह, अब तुम दोनों बदल गए।
7: हरिदास ने उनकी मेहनत की प्रशंसा की और उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा।
5: मेहनत करते रहो, अब मेहनत ही हमारी पहचान होगी।
9: दोनों दोस्तों ने तय किया कि अब वे कभी आलस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे।
7: अब गोपाल और माधव रोज सुबह समय पर काम करने लगे।
5: चलो माधव, देर मत करो।
9: धीरे धीरे उनकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने लगा।
5: देखो फसल कितनी अच्छी है।
9: दोनों ने मेहनत करके अपनी फसल को खूब अच्छा बना लिया।
5: हमारी मेहनत रंग लाई।
7: फसल तैयार होने पर दोनों ने उसे बाजार में बेचने की तैयारी की।
5: चलो बाजार चलते हैं।
9: दोनों अपनी मेहनत की फसल लेकर बाजार पहुंच गए।
5: आज अच्छी कमाई होगी। हाँ,
11: आपकी फसल बहुत अच्छी है।
7: लोगों ने उनकी ताजी फसल पसंद की और अच्छी कीमत दी। दोनों ने मेहनत से पहली अच्छी कमाई की। मेहनत सच में काम आती है।
9: उन्हें याद आया कि कभी वे एक खजाना भी आलस के कारण खो चुके थे।
11: अगर तब मेहनत करते तो बात अलग होती।
9: दोनों ने उस घटना से हमेशा के लिए एक बड़ी सीख ले ली। मौका कभी नहीं छोड़ेंगे।
7: इस तरह दोनों आलसी दोस्त मेहनती बन गए और खुशी से जीवन बिताने लगे।
11: मेहनत ही असली धन है।
7: दोस्तों, इस कहानी की सीख

0: चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको सोच सुना रहे हैं हम जीतेंगे बाजी हम ये गीत जरूर। चलिए अभी थोड़ी देर पहले हम कुछ बातें कर रहे थे रूहानी के साथ और इन बातों के पीछे बहुत सारी लॉजिक लगाने की कोशिश करें तो ये लॉजिक लगती ही नहीं है। हम सिंपल भाषा में बात करते हैं, आपसे भी वही भाषा में, उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ उन्हीं भाषा में कन्वर्सेशन करें। लेकिन इनकी अलग ही भाषा है जो क्रिएट होती है। कुछ चार ऐसे जेन जी वाले वर्ड्स हमारी रूहानी आपको सुनाने वाली है। पल्ले पड़ गया तो बहुत अच्छी बात है, मेरे तो पल्ले ना पड़ पाया। चार वर्ड।
1: एक तो फ्लैक्स है।
0: फ्लैक्स, ओके, एफ एल ए एक्स, फ्लैक्स,
1: एफ एल ई एक्स।
0: अच्छा फ्लेक्स है, एफ एल ई एक्स, फ्लेक्स। हाँ उसका मतलब फ्लेक्सिबल
1: नहीं, उसका मतलब शो ऑफ करना।
0: शो ऑफ करना, शो ऑफ तो शो ऑफ ही है। इतना सुंदर वर्ड है जिसमें संपूर्ण बात आ जाती है, कितना शो ऑफ कर रही है। अब फ्लेक्स कैसे कर सकती है, तो आप इसको कैसे एक सेंटेंस में प्रूव करते हो?
1: फ्लेक्स तो गुड चीज के लिए है, मतलब वो देखो फ्लेक्स कर रही है अपनी चीजें,
0: अपनी चीजों को शो ऑफ कर रही है, दिखा रही है। हाँ बात का बतंगड़ बना रही है, दिखावा कर रही है, यही हम शो ऑफ को, इसका मतलब शो ऑफ में यही हम करते हैं। एक और वर्ड आप प्लीज।
1: एफ आर,
0: एफ आर। अब एफ आर से क्या क्या, ये तो एब्रीवेशन है, इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है? फ्रैक्चर, फ्रैक्शन, क्या?
1: फॉर रियल,
0: फॉर रियल। पूरा भाषा बोलने में क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है।
1: हम जेंजी लोग आलसी है, इसलिए
0: आलसी हैं, प्रूव कर दिया हमारी रूहानी ने। खैर दोस्तों ये होगी दूसरी, दूसरा स्लैंग। तीसरी स्लैंग और बता दो।
1: नो कैप्स,
0: नो कैप्स मतलब आप टोपी मत पहनाओ, ना टोपी पहनो, मतलब बुद्धू ना बनो, बुद्धू ना बनाओ।
1: नहीं इसका मतलब है झूठ मत बोलो।
0: अब झूठ ना बोलो तो ये तो इतना जने झूठ बोले कौवा काटे ये गीत में सुन रखा था। प्लीज आप लोग झूठ मत बोलिए, सत्य के राह पर चलिए, कितनी अच्छी भाषा है। पूर्ण पूर्ण रूप से एक सेंटेंस बन जाता है। अब इन्होंने कैप लगा दिया, अब प्लीज आप कैप ना लगाओ, मतलब आप प्लीज टोपी मत पहनो, यही तो समझेंगे ना आप और मैं, यही भाषा समझेंगे। लेकिन ये एक सेंटेंस में आप कैसे यूज करेंगे?
1: अगर आप किसी से बात कर रहे हो और अगर वो झूठ बोलेगा तो आप कह सकते हैं नो कैप्स यार,
0: नो कैप्स। खैर आपके साथ हम उड़ान में ही जुड़े थे और सोमवार को मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए उड़ान से कहेंगे गुड बाय, सुनते रहो
1: मुस्कुराते रहो
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM। जीतेंगे बाजी हम इस गीत के साथ कहते हैं गुड बाय।

लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज्य कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता। ये महान विचार है लाल बहादुर शास्त्री जी के।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन। आज हम गांधी जी पर बात कर रहे हैं। गांधी जी पर 1982 में बनी एक फिल्म जिसमें बेन किंग्सले ने गांधी का रोल किया है। ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार भी इस फिल्म ने जीता है।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती है और महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पितामह कहा जाता है। उन्होंने अपने सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को खत्म करने और गरीबों का जीवन सुधारने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम किया था। उनकी सत्य और अहिंसा की विचारधारा को मार्टिन लूथर किंग तथा नेपाल के नेल्सन मंडेला ने भी अपने संघर्ष के लिए ग्रहण किया। महात्मा गांधी, एक नाम सादा जीवन उच्च विचार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, सभी वर्गों से मिलते हैं, हमें खुशी है। सरकार का जो मंच है, आसपास गांव में अंचल में जो गतिविधि हो रही, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसको खोज के जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंच है, एक मंच देता है। तो आज इस मंच को लेकर सुदूर आबू रोड से पहुंचे पूरा जालौर जिला में और स्कूल का पूरा नाम बताएंगे, गांव का भी नाम बताएंगे, लेकिन हमारा श्रोता मित्र वॉल्यूम को तेज करके सुनिए। ये सामुदायिक रेडियो सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए प्रस्तुत करना होते हैं। तो 107.8 एफएम पर आप सब सुन रहे और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ वरिष्ठ शिक्षक भी है, तो उनको स्वागत करते। सर, अपना परिचय दीजिए, बच्चों को एक वार्म अप हो जाएगा और आपका आवाज देकर बच्चे भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे। आप अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन प्लीज।
1: सर, मेरा नाम सुनील है, मैं पाली जिले का स्थानीय निवासी हूँ और मैं जालौर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आहोर में पोस्टेड।
0: जी सर, स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए।
1: सर, हमारा स्कूल काफी लंबे समय से स्थापित किया गया था स्थानीय क्षेत्र में। यहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार पिछले कई वर्षों से उनके उत्थान, उनके उन्नयन और उनके समग्र विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं।
0: जी, बहुत अच्छा। और कितना स्टाफ सर?
1: हमारे विद्यालय में कुल स्टाफ की संख्या 22।
0: और प्रिंसिपल?
1: प्रिंसिपल महोदय श्रीमती अंशु बाला जी है।
0: जी, बहुत अच्छा। और बालिका स्कूल आपका है, क्योंकि बालिका स्कूल जो नाम सुनते कितना खुश लगता है, क्योंकि बालिकाओं में अंदर में अनुशासन
1: जी
0: और कुछ सीखने के लिए ललक रहता है।
1: ललक
0: बालक में थोड़ा सा पहले जैसे नहीं है, पर बालक आज बहुत अलग टाइप का, कि जो मीडिया का चलते, मोबाइल का चलते बच्चे दिशाहीन हो रहे, लेकिन लड़कियां और खासकर अनुशासन में रहते हैं और गॉड गिफ्टेड है बहनों को।
1: जी,
0: तो आपका जो स्कूल है ये कम बात नहीं, बालिका स्कूल है, तो बालिकाओं का उपस्थिति बहुत लगभग कितना सर?
1: जी, हमारे विद्यालय में 450 का नामांकन है और प्रतिदिन 90% से अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहते हैं और अध्ययन के प्रति इनकी गंभीरता और अन्य सहशैक्षिक गतिविधियों में इनका आगे आना बहुत ज्यादा हमें प्रेरित करता है।
0: क्योंकि बढ़ चढ़ कर बच्चे भाग लेते हैं तो हमारा इस कार्यक्रम को सजाएंगे। सर, खासकर बालिका शिक्षा को लेकर जैसे सरकार का जो मंच है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सही में आज मुझे देखने को मिल रहा है आपका स्कूल में
1: जी,
0: सभी विद्यार्थी पूरा उमंग उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आज 4-5 बच्चे अपना भाग लेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद एक प्रस्तुति सुनेंगे, पहला प्रस्तुति, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे। कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर्ण निष्ठा है, क्योंकि इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि बदले में उसे क्या मिलता है। ये महान विचार है लाल बहादुर शास्त्री जी के।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें खुशी है आज बच्चों का आवाज खासकर बालिका विद्यालय में पहुंचे तो गर्ल्स का जो नाम जब सुनते हैं जैसे हमारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी द्वारा और आपका भी बालिका स्कूल है ना, तो बहुत खुशी लग रहा है और बालिकाएं भाग लेंगे। तो पहला प्रस्तुति हमारा साथ बालिका उपस्थित है, तो पहले अपना नाम बताएंगे और स्कूल का पूरा नाम बताएंगे। आप अपना परिचय दीजिए प्लीज, हमारा श्रोता मित्र ध्यान से आपको सुन रहे हैं।
1: मेरा नाम चेतना है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ और हमारे स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आओर जिला जालोर।
0: गुड, बहुत अच्छा। कैसे लगा आज पहला बार मिला रेडियो मधुबन वाले पहुंचे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, आपको क्या क्या सीखने को मिला और क्या लगा?
1: अच्छा लगा।
0: चेतना नाम तो कितना सुंदर है, चेतना आत्मा तो चेतना उतना ज्योति है ना, चेतना मतलब लाइफ। तो चेतना कैसे लगा आज का प्रोग्राम, सब देखे शुरू से, कहानी भी सुनाए, अच्छा लगा?
1: हाँ।
0: अच्छा, कौन तुम्हारा दोस्त का नाम बताओ?
1: काजल।
0: काजल, वेरी गुड। कौन सा क्लास? 9th क्लास। अच्छा, दोनों आज मिलकर गाएंगे ना एक अलग?
1: दोनों मिलकर।
0: अरे काजल को छोड़ेंगे नहीं आज, है कि नहीं? चलिए काजल को भी स्वागत करते। काजल अपना परिचय देंगे।
2: मेरा नाम काजल है, मैं कक्षा 9th की छात्रा।

0: राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आहोर से हूँ।
1: चलिए शुरू करो।
0: ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारों, इस देश के

महात्मा गांधी जी के बारे में 1915 में गांधी जी भारत लौट आए और अपने गुरु समान श्री गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि बिहार और गुजरात में चंपारण व खेड़ा के आंदोलन थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी एक नाम, सादा जीवन, उच्च विचार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो नमस्कार।

0: चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सब सुन पा रहे हैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आहोर। तो आहोर जो कि जालोर जिला में आते हैं, तो पिंडवाड़ा ब्लॉक, आबुरोड ब्लॉक, रेबदर ब्लॉक, सिबीगंज, सिरोही सुनने का पश्चात आज जालोर का आवाज सुना रहे हैं। और हमारा बच्चे पहले मौका मिल नहीं रहा था, आज मौका मिल रहा है तो मौका का चौका छक्का लगा रहा है। पहला बार आए, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, और सर का उमंग उत्साह। चलिए हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ और एक छात्र आए। हेलो, अपना परिचय देंगे।
1: मेरा नाम रेखा है, मैं कक्षा 11 की छात्री हूँ। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आहोर की पढ़ने वाली हूँ।
0: आप क्या प्रस्तुत करेगी?
1: मैं गीत सुच करना चाहती हूँ।
0: चेतना को जानते हैं?
1: चेतना का हाँ जानती हूँ।
0: तुम्हारा दोस्त कौन है? चेतना?
1: चेतना
0: काजल?
1: चेतना।
0: चेतना, चलिए तुम्हारा नाम क्या है?
1: मेरा नाम रेखा है।
0: रेखा, वाह, हाथ तो भाग्य का रेखेगा, चमके का, क्योंकि होठ में भी रेखा है, मस्तक में भी रेखा है और हस्तों में भी रेखा है। रेखा ही रेखा, भाग्य का रेखा ढूंढते हैं। लेकिन आपका नाम कौन रखा है रेखा?
1: सर, मेरे दादाजी ने रखा हुआ है।
0: दादाजी है अभी?
1: हाँ।
0: उसको तो सलाम करना चाहिए, नाम बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि रेखा के लिए लोग दौड़ रहे हैं, रेखा प्राप्ति करने के लिए, भाग्य का रेखा। तो आपका भाग्य का रेखा तो चमकेगा, है ना? तो क्या प्रस्तुत करेगी?
1: सर, मैं गीत
0: सुना।

0: बेटी।
1: रेखा कैसे लगा तुमको?
0: बहुत अच्छा लगा सर।
1: पहले क्या सोचा था और रेडियो में आज आपका आवाज जन जन तक पहुंच रहा है और आपका परिवार वाले सुन रहे हैं इस समय?
0: यस सर।
1: कैसे लगेगा आपको?
0: बहुत अच्छा लगेगा,
1: क्योंकि अब तो रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन शाम को जो प्रसारण होगी तो आपका परिवार वाले जो सुनेंगे, दादा दादी नाना नानी चाचा मासी दोस्त लोग सुनेंगे, ये तो हमारा रेखा का आवाज है, आवाज में क्या दम है, पहचान है ना? तो आपको खुशी लगेगा।
0: यस।
1: और नामांकन में भी वृद्धि होगा आपका, स्कूल में पढ़ाई का साथ साथ इस तरह कार्यक्रम में भी बच्चियां भाग लेते हैं बढ़ चढ़ कर, खुशी लगेगा ना? आकाशवाणी में मीडिया में जब जाएंगे तो बोला अरे नाम तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे, ऐसे लगेगा ना रेखा?
0: यस सर।
1: चेतना और हमारा काजल भी, तो कैसे लगा काजल? और
2: मुझे बहुत अच्छा लगा है।
1: अच्छा लगा है।
2: और यहाँ पे हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है।
1: गुड, अगला बार मौका मिलेगा तो फिर बढ़िया से गीत गाना। चेत कुछ बोलेगी, क्या बोलेगी? नहीं तो हमारा रेखा को दीजिए। रेखा क्या लगा आज?
0: सर आज बहुत अच्छा लगा है, मैडम बता रही है और सर भी सब कुछ जो बताना चाहते है वो बता रहे है, सब कुछ हमको सब पता चल रहा है इसके बारे में, और कुछ प्रश्न करे हम आंसर भी दे रहे है उसमो के साथ में।
1: क्योंकि इसमें झिझक दूर होगी, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, बड़ों का सामने कैसे व्यवहार, ज्ञान, ये चीज सीखना जरूरी है। पढ़ाई तो करेंगे उसका साथ साथ बड़ों को सम्मान, विद्यार्थी जीवन में बड़ों को सम्मान करना चाहिए ना, दादा दादी सबको सम्मान करना चाहिए, आप तो करते होंगे, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और कभी मौका मिलेगा तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रेडियो मधुबन में घूमने के लिए मौका मिलेगा तो आएंगे?
0: यस सर।
1: हाँ तो नजदीक है, आ सकते हैं, है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आवर।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन। आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। गांधी जी एक विपुल लेखक भी थे। उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें इस प्रकार हैं। हिंद स्वराज 1909 में गुजराती में प्रकाशित हुई। उन्होंने हिंदी, गुजराती और इंग्लिश के अनेक समाचार पत्रों का संपादन किया, जिनमें हिंदी व गुजराती में हरिजन, इंग्लिश में यंग इंडिया व गुजराती पत्रिका नव जीवन मुख्य रूप से है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग भी लिखी। उनकी अन्य आत्मकथाओं में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, हिंद स्वराज आदि प्रमुख हैं।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक का बाद वंस मोर पहुंचते पहुंचते काजल चेतना रेखा नेक्स्ट क्या नाम आता है पता नहीं।
1: मेरा नाम पूर्णिमा।
0: पूर्णिमा पूर्ण संपूर्ण पूर्णिमा सोल कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परम धर्म एक भाषा एक जाति एक धर्म एक ईश्वर वन गॉड वन फैमिली तो उसी में सभी हम लोग का हाथ लग रहा है और हम सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं और हमारा साथ पूर्णिमा उपस्थित है। पूर्णिमा कौन सा क्लास के?
1: 12th।
0: अरे वाह बड़ी हो गई 12वीं क्लास। इसका बाद फिर क्या करेगी 12वीं का बाद?
1: 12वीं के बाद में पापा बोलेंगे वो
0: है?
1: पापा बोलेंगे वो।
0: पापा जो कहेंगे। पापा क्या करते हैं?
1: पापा तो कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा हो तो पढ़ ले आगे।
0: हाँ पढ़ना चाहिए ना नहीं पढ़ना चाहिए?
1: पढ़ना है।
0: पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि 12वीं क्लास के बाद तो
1: बीए
0: करेंगे। अरे वाह फिर
1: टीचर।
0: टीचर फिर आगे क्या है?
1: फिर आगे पढ़ाएंगे।
0: पढ़ाएंगे इसका बाद?
1: प्रिंसिपल।
0: प्रिंसिपल इसका बाद? तो हिम्मत रखना पड़ेगा प्रिंसिपल हो जाएंगे इसका बाद। फिर रिटायर्ड। फिर इसके बाद कुछ लक्ष्य नहीं है? देश सेवा करेंगे ना?
1: तो
0: हाँ वो तो हाँ कब करेंगे? सबका सेवा करना चाहिए। ओके बहुत अच्छा। क्या प्रस्तुत करेगी आज?
1: गाना।
0: हाँ गाना सुनाओ जो आपको आता है।

बहुत सुंदर सुंदर रूप में आपने प्रस्तुति को के पूर्णिमा सहित में पुनः आहुति दे दिए गीत में और हमारा कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। और विद्यार्थी जीवन में पढ़े का साथ साथ और दो चार घंटा इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। बड़े होकर क्या बनेगी, तो टीचर बनेगी बोल रहे थे और प्रिंसिपल, फिर रिटायरमेंट होंगे, इसके बाद देश सेवा करेंगे। जो रिटर्न देना पड़ेगा ना अभी इतना लिए, क्योंकि हमारा देश से हम बहुत कुछ लिए, हवा पानी प्रकृति से बहुत कुछ लिए, उसको तो रिटर्न देना पड़ेगा ना। हम तो कुछ देने सीखे है कि नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा अगला प्रस्तुति इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो तो अपना आवाज को रोक नहीं पा रही है, सुनेंगे अगला प्रस्तुति अल्प विराम का बाद, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज्य कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता, ये महान विचार है लाल बहादुर शास्त्री जी के।
1: चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रस्तुति अंतिम प्रस्तुति की ओर हम अग्रसर हो रहे, सभी को सुने, इसका बाद जो लास्ट है बहुत अच्छा से प्रस्तुत करेगी और नाम सुनाएगी।
2: मेरा नाम गोपी कुमारी है और मेरा गांव चरली है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
1: सुना
2: लुक्का चू।

0: तेरी माँ आजा सामने, मुझे तेरी फिकर आजा सामने, मुझे तेरी फिकर।
1: चलिए बच्चे को कम प्रस्तुति किया, पूरा गीत उनको थोड़ा सा होता है, लेकिन इसको साथ देने के लिए अगला को फिल अप द ब्लैंक्स करने के लिए हमारा सर कुछ कविता गुनगुनाएंगे। सर आपका दिल का बात को रखना चाहते हैं, आप गुनगुनाए अपना आवाज को।
2: जी वैसे मैं हिंदी में कविता लेखन का कार्य भी करता हूँ, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और उससे जो एक जुड़ाव और लगाव जो है वो जन्म से ही है। तो मैं अपनी स्वयं के द्वारा लिखी हुई एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो कि वीर रस में है। पराजय से अविचल होकर प्रचंड पराक्रम करना होगा, नांद उठी उर से धरणी और नभ में गर्जन करना होगा, नांद उठी उर से धरणी और नभ में गर्जन करना होगा, सफल विफल के कोलाहल में युद्ध भयंकर करना होगा, सफल विफल के कोलाहल में युद्ध भयंकर करना होगा। सूर्य सा तेज चमकना है तो प्रतिक्षण वैसा जलना होगा, सूर्य सा तेज चमकना है तो प्रतिक्षण वैसा जलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद तालियों का साथ। और आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आहोर का आवाज, जो कि जालौर जिला में आता है। तो आज मौका मिला तो जालौर में भी पहुंच गए, क्योंकि आप हमेशा आप रोड का आवाज को सुनते थे हर स्कूल का, क्योंकि विद्यार्थी विकास कार्यक्रम में खासकर विद्यार्थियों का, खासकर बालिका का आवाज जो आज इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजा, ये काम नहीं है, ये आपने आप बन पड़ा। कोई सूचना नहीं था, कोई प्रिपरेशन नहीं था, अचानक में सभी ने भाग लिए। सभी को नाम का साथ एक एक और संस्था के सभी स्कूल के जो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आहोर का सभी स्टाफ को, खासकर प्रधान शिक्षिका को भी धन्यवाद देते हैं हमें मौका दिए। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों का मिलित सहयोग से आज का कार्यक्रम सुंदर रूप में हुई। सबको नाम का साथ धन्यवाद। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल अच्छा। सभी को आभार।

हम अपने देश के लिए आजादी चाहते हैं, पर दूसरों का शोषण करके नहीं, ना ही दूसरे देशों को नीचा दिखाकर। मैं अपने देश की आजादी ऐसे चाहता हूँ कि अन्य देश मेरे आजाद देश से कुछ सीख सकें और मेरे देश के संसाधन मानवता के लाभ के लिए प्रयोग हो सके। ये महान विचार है लाल बहादुर शास्त्री जी के।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। महात्मा गांधी के इस जयंती पर पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल रहा है जो कि गांधी जी अहिंसा की नीति को प्रमाणित करता है, साथ ही लोगों के विचारों में भी प्रकट होता है। जो लोग भी गांधी जी की इस नीति में विश्वास करते हैं वे सभी गांधी जी के बारे में न केवल जानते हैं बल्कि उनके दर्शन से भी पूरी तरह से परिचित है। दूसरी तरफ इस दिवस को लोग जीवन के मूल्य और उनके और उसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं और उन्हें बढ़ावा देने का प्रयास भी करते हैं। महात्मा गांधी एक नाम सादा जीवन उच्च विचार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज्य कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता। ये महान विचार है लाल बहादुर शास्त्री जी के।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर। सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए। ओ, आज दर पे चल के आया है मौका।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन। आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। टाइम मैगजीन ने वर्ष 1930 में मैन ऑफ द ईयर महात्मा गांधी जी को चुना। 2011 में टाइम मैगजीन ने गांधी जी को विश्व के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे श्रेष्ठ 25 राजनीतिक व्यक्तियों में चुना। हालांकि उन्हें कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन वह इसके लिए 1937 से लेकर 1948 तक 5 बार

1937 से लेकर दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले नेता नेल्सन मंडेला को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है।

आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी, जो हमें बताता है कि बदला ना लें, बदल कर दिखाएं। ये महान विचार है पूज्य बापू के।

देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर्ण निष्ठा है, क्योंकि इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि बदले में उसे क्या मिलता है। ये महान विचार है लाल बहादुर शास्त्री जी के।

पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। ये महान विचार है पूज्य बापू के।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन। आज हम गांधी जी पर बात कर रहे हैं। गांधी जी पर 1982 में बनी एक फिल्म जिसमें बेन किंग्सले ने गांधी का रोल किया है। ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार भी इस फिल्म ने जीता है।

हम अपने देश के लिए आजादी चाहते हैं, पर दूसरों का शोषण करके नहीं, ना ही दूसरे देशों को नीचा दिखाकर। मैं अपने देश की आजादी ऐसे चाहता हूँ कि अन्य देश मेरे आजाद देश से कुछ सीख सकें और मेरे देश के संसाधन मानवता के लाभ के लिए प्रयोग हो सके। ये महान विचार है लाल बहादुर शास्त्री जी के।

0: मैं हूँ सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूँ। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा

0: रीत है। जिंदगी की रीत क्या है उसको समझने में न जाने कितने सारे गाने सुनने होते हैं, और तब पता चलता है कि भाई हार के बाद ही जीत है। लेकिन वो हार में कई बार आगे जीत नजर नहीं आती, छिप जाती है बादलों के पीछे जैसे सूरज छुप जाता है। और उसी जिंदगी से प्यार करना हम सीख रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम है लव यू जिंदगी, और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक्सपर्ट्स। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे ग्लोबल अस्पताल से हमारे साथ जुड़ी है कल्पना जी, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट भी है, साथ साथ स्पिरिचुअल काउंसलर भी है और हमारी गाइड और दोस्त भी है। कल्पना जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि जी, बहुत ही सुंदर टॉपिक्स के साथ आप हर बार आती है और श्रोताओं से मुखातिब होते हुए हमें बहुत बहुत बहुत मजा आता है, तो थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी। जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं आरजे श्री, जो कि रेडियो के जाने माने आरजे है, एंकर है, साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है श्रीनिधि जी।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि जी। कल्पना जी नमस्कार, हमारे सभी श्रोता मित्रों को नमस्कार। वापस फिर लव यू जिंदगी की एक और कड़ी में जुड़ के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम कड़ी से कड़ी जोड़ते जा रहे हैं, तो ये मजबूत कड़ियां बनती जा रही हैं।
0: हाँ, और इस मजबूत कड़ी में आज की कड़ी बड़ी अनोखी है। परिस्थिति आती है और कई बार हम उस परिस्थिति के अनुरूप ढल जाए या हम उसको अपने अनुरूप ढाल ले, समझ में नहीं आता, लेकिन सिचुएशंस हम सबकी लाइफ में आती जरूर है। आज चलिए थोड़ी बात उसी के बारे में कर लेते हैं, कैसे हम अवेयर होते हैं या कैसे रेगुलेट भी कर सकते हैं सिचुएशंस को या खुद को, इस गुत्थी को सुलझाते हैं आज। तो कल्पना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, अगर मतलब अवेयरनेस शब्द जब जुड़ जाता है तो ऐसा लगता है जो दिख रहा है उसके बियॉन्ड कुछ देखना है, क्या सिचुएशंस में भी ऐसा होता है?
1: हाँ बिल्कुल आरुषि जी, अवेयरनेस मतलब जागरूकता। जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, समझो हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या कोई परिस्थिति आई है, समझो कि कार चला रहे हैं और एक्सीडेंट ही हो गया है, या फिर हम कहीं होटल में गए हैं खाना खाने के लिए और कोई अच्छी ऐसी बात हो गई जिसको देख के हम थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा, या कोई ऐसी बात हो गई जो हमें बहुत अच्छी लगी, या कोई समझो सेलिब्रिटी आ गया अचानक और हमारा रिएक्शन, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आप सब्जी मार्केट में गए हैं और सब्जी खरीद रहे हैं और वहाँ एक दृश्य देखकर आपको अच्छा लगा या बुरा लगा या कोई भी ऐसी चीज। सो हर प्रकार की सिचुएशन में अवेयरनेस अगर हमें है कि ये परिस्थिति किस तरह की है और इस समय मेरा रिएक्शन किस तरह का होना चाहिए, अर्थात परिस्थिति को समझना और उसके साथ जुड़ी हुई प्रतिक्रिया को बैलेंस्ड रखना या उसको संभालना, ये परिस्थिति के साथ जुड़ा हुआ है।
0: ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। परिस्थिति को समझना तब रिएक्शन को समझना, वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है आपने बताया। श्री जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे सिचुएशन अवेयरनेस की बात है तो क्या हम जो समझ रहे हैं उससे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं? मतलब हमें दिख रहा है, कोई बोल रहा है, सामने से क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, सब कुछ दिख रहा है, हमारे जो सेंसेस है उससे हम समझ पा रहे हैं उस परिस्थिति को, बट क्या कई बार चीजें वैसी नहीं होती जो दिखती है, तब अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है, या हर सिचुएशन में ही अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है?
2: ये बहुत ही सुंदर सी बात है कि हम कितना ज्यादा अवेयर हैं चीजों के बारे में। कभी कभार हमारा मूड अगर ठीक है तो मौसम खराब भी है तो भी मतलब हम उस खराब मौसम को भी अच्छा महसूस करने लगते हैं, हाय इतनी अच्छी बारिश आ रही है, ओहो ये काले बादल और वही काले बादल वही बारिश आपका मूड खराब है तो बोले ओहो सच अ ग्लूमी वेदर आज, तो मतलब मौसम ना बेकार है,
0: काले बादल
2: बादल क्या मूड ही खराब कर दिया यार, मतलब कोई सनशाइन नहीं। नजरिया है आपका, अवेयरनेस है, आप किस नजरिए से उस चीज को देख रहे हो। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, जो दिखता है वो वैसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो चीजें वैसी है वैसी ही है, मगर मैं किस अवेयरनेस से उन चीजों को देखता हूँ वो बहुत मायने रखता है। और इसलिए लाइफ की परिस्थितियां भी ऐसे ऐसे होती है, कभी कभार लोग हमें कुछ चीजें कह देते हैं और कभी जब वो चीजें कहते हैं तो हम उनकी बातों का बुरा नहीं मानते, क्योंकि मैं अंदर से मेरी अवेयरनेस कोई और चीज की अवेयरनेस है, और कभी कभार उन्होंने उस भाव से उस चीज को कहा भी नहीं होता और हम कहने लगे तुमने मेरे लिए ये कहा, तुम ऐसी बात कह भी कैसे सकते हो मेरे लिए, तो बोले मैंने कहा क्या था, मतलब ये तो सिंपल सी चीज है। तो ऐसा होता है और इसलिए इन चीजों को समझने की जरूरत है कि जो चीज जैसी दिखती है वैसी हमेशा हो ये जरूरी नहीं। और कभी कभार हमारे मन के भाव उन परिस्थिति

0: यानी देयर इज समथिंग एल्स, कुछ और है जो प्रभावित कर रहा है, ये तो श्योर हो गया। कल्पना जी, मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि कई बार लाइफ में परिस्थिति ऐसे आती है कि जो दूसरा देख रहा है उसे लग रहा है कि एक एग्जाम में फेल हो गया, हम भी हुए थे या कोई और भी हो जाता है, हैपेंस, थोड़ा डांट देते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए उसे लगता है ये बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है, मेरी इंसल्ट हो गई, इतने लोगों के सामने मेरे साथ ये हो गया, और वो उसके लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है, शायद वो हैंडल नहीं कर पाए इतनी बड़ी बात। तो ये एक ही परिस्थिति इतनी ज्यादा अलग हो जा रही है, तो इसमें किस तरह की अवेयरनेस चाहिए हमें, जहाँ हमें ह्यूमिलिएशन फील हो, जहाँ हमें इंसल्टेड फील हो बहुत सारा।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल आजकल हो गया है। तो जब हम सिचुएशन अवेयरनेस की बात करते हैं तो उसको सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि मैं इस समय कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या परिस्थिति है, उसका अर्थ क्या है, और उस समय मुझे किस तरह का डिसीजन लेने की आवश्यकता है। इस पूरी बातों को मन में कुछ सेकंड्स में कलेक्ट करके उस तरह से एक्शन लेना या प्रतिक्रिया करना। फिर से मैं दोहराती हूँ, मैं इस समय कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, परिस्थिति क्या है, इस परिस्थिति के पीछे लोग जो जुड़े हुए हैं उनकी क्या भावनाएं हैं, इस परिस्थिति में मुझे किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया लगती है, बट हमारे दिमाग में उसके लिए कुछ सेकंड्स में इन चीजों को रिकलेक्ट करने का एक बहुत अच्छा यंत्र उपलब्ध है। मतलब हम कर सकते हैं क्योंकि हम रोजमर्रा की ये बातें हैं, बट इसमें केवल अवेयरनेस की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम का, बच्चे के एग्जाम का, उसके फेल होने का एग्जाम एक बताया, घटना आपने बताई, उसी घटना को एक पेरेंट जो है वो गुस्से से या नाराज होकर या बच्चे को दोष देकर या उसको ये याद दिलाकर कि तूने पढ़ाई नहीं की ठीक से इसलिए तुम फेल हो गए, ये सब कुछ उस सीन में करने से उस बच्चे को हर्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वो बच्चा ही में रेट हो रहा है। बट यही सीन अगर हम दूसरे एंगल से देखे, अवेयरनेस के एंगल से देखे, तो इसी परिस्थिति में अगर पेरेंट्स ये सोचे कि अभी एग्जाम हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, जो बीत चुका है उसके बारे में बात करके या याद दिला के कुछ फायदा नहीं है, अब क्या किया जा सकता है, ये सोचकर अगर बच्चे के साथ रिएक्ट करे, तो उसको कहा जाता है अवेयरनेस के साथ। अब बच्चा खुद शॉक में है, ऐसे समय पर माँ बाप भी उसको डांटे, फटकारे या मारे या फिर उसको बुरा भला कहे या उसको याद दिलाए, इसकी बजाय अगर वो ये कहे कि ठीक है, अब तो जो मिले सो मिले मार्क्स, कोई बात नहीं, आगे के लिए तुम अच्छे से पढ़ना और अच्छे मार्क्स ले आना, हम जानते हैं कि तुम अच्छा पढ़ सकते हो, तुम में वो काबिलियत है। अब एक ही सीन में दो प्रतिक्रियाओं के साथ क्या फर्क पड़ा। पहली प्रतिक्रिया जो थी उसमें बच्चा ह्यूमिलिएट हुआ, बच्चा नाराज हुआ, उसका मोटिवेशन कम हुआ और वो उदास हो गया
0: जी।
1: दूसरी तरफ माँ बाप को गुस्सा करने से अच्छा थोड़ी ना लगा, उनकी भी तो मनस्थिति खराब हो गई और उनका भी दिन डिस्टर्ब हुआ। लेकिन दूसरी सिचुएशन में जहाँ वो बच्चे को जो भी मार्क्स मिले हैं, कम मिले हैं, वो स्वीकार करते हुए उसको कहते हैं कि ठीक है, अब तक जो भी हुआ कोई बात नहीं, आगे तुम अच्छे से पढ़ना, तो बच्चा भी शांत, बच्चा भी रिस्पेक्टफुल फील किया उसने, उसका मोटिवेशन बढ़ा और पेरेंट्स पीसफुल रहे। तो कितना फर्क पड़ा हमारे। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, जो आगे चल के समझेंगे जब हम धीरे धीरे इस बात को आगे ले जाएंगे,
0: एक्सप्लोर करेंगे। और श्री जी, इसी इंसिडेंट को आगे ले जाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कभी कभी ना हम ये शब्द सुनते हैं कि तुम क्यों बात को बढ़ा रहे हो, तुम क्यों इतना उसमें ज्यादा देख रहे हो, जो है नहीं तुम वो भी देख ले रहे हो। तो बात को बढ़ाना या परिस्थिति को कुछ और समझ लेना, कई बार हम इस तरह की परिस्थिति में है जब बहुत ह्यूमिलिएशन फील कर रहे हैं, इंसल्ट फील कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी परिस्थिति हो जाती है। तो परिस्थिति जो जैसी है वो वैसे ही नजर आए, वो कैसे होता है?
2: ये बिल्कुल ऐसी बात आपने कही है, मेरे को गीता के श्लोक याद आ गए। भगवान गीता में एक जगह कहते हैं कि मैं जो हूँ, जितना हूँ उतना मुझे समझ के याद करो, ये बात कही जाती है। हालांकि मैं गीता के ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा इतना आसान नहीं होता कि जो जैसा है, जितना है उतना उन चीजों को हम माप तोल के समझ कर चले उस

0: समझ के आधार से चीजों को चले कि या तो हम चीजों को एग्जैजरेट कर देते हैं, जो दिख रहा है उसको राय का पहाड़ बना देते हैं। हम अक्सर ये कहावतों का इस्तेमाल करते हैं कि वो था छोटी सी चीज और उसको हमने राय का पहाड़ बनाया है। और कई बार हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ जैसी परिस्थिति भी उनके लिए रूई समान होती है कि भैया एकदम हल्के में लेते हैं, अच्छा ठीक है, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पर वो दो चीजें दिखाई देती हैं कि भाई वो वही चीज है, सिचुएशन वही है, चैलेंज वही हो सकता है, डिफिकल्टी वही हो सकती है, मगर हमारा अप्रोच क्या है उन चीजों के हिसाब से वो चीजें मायने रखती हैं हमारे लिए। तो हमारा माइंड सेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करता है। और कभी कभार हम देखते ही हैं कि जो जैसा है जितना है उसको हम देखें कैसे। लोग अक्सर इसके लिए अलग अलग अप्रोचेस की बात करते हैं। कभी कभार कॉर्पोरेट जगत में जब हम इन चीजों को देखते हैं, जब हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है या कोई चैलेंज है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, एक रोड ब्लॉक है, किसी प्रोजेक्ट को आप कर रहे हैं, कहीं पर आप स्टक हैं, तो लोग अक्सर कहते हैं कि आप एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन सोचो, कहा जाता है। तो यहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या, हम बॉक्स से बाहर निकले, क्या हम बॉक्स के अंदर थे जो बॉक्स के बाहर जाने
1: निकले पहले।
0: भाव ये है कि क्योंकि हम उस समस्या से, उस परिस्थिति से इतने ओतप्रोत हैं, हम उससे हटकर कोई और चीज सोचना ही नहीं चाहते। हमें ये बताया जाता है कि आप उससे ऊपर उठें, आप उस समस्या से एक ब्रेक लें। कई बार लोग लिटरली ब्रेक्स लेते हैं, ऑफिस से बाहर जाते हैं, या फिर कभी कभार वो लोग एक दो दिन के हॉलीडे पे जाते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते ही नहीं है, और जब फ्रेश माइंड से वापस आते हैं तो तब आपके पास समझ में आता है, ओह अच्छा, इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो देखने का ढंग जो है, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण, एक होलिस्टिक अप्रोच नजर आता है। और जो समस्या आपको पहले बड़ी लग रही थी, दो दिन बाद आपको लगता है अच्छा ये कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली, ऐसा लगने लगता है। तो इसके लिए एक सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट, एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट डेवलप करना भी आवश्यक है। और गीता में यही चीज कही भी गई है। आप श्रीमद भगवद गीता का एक श्लोक आता है जहां पर भगवान ये बात कहते हैं अर्जुन को कि कैसे आपको काबू करना है इस मन को। तो शायद मैंने ये चीज पहले भी बताई होगी, इस श्लोक में आता है कि अभ्यास एन तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास भी चाहिए बट साथ साथ वैराग्य चाहिए। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि मैं घर बार छोड़ दूं, मैं प्रॉब्लम्स को फेस ही ना करूं, मैं भाग जाऊं, मैं बोलूं मेरा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप मुंह नहीं फेर रहे हैं उस चीज से, आप एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट कल्टिवेट कर रहे हैं कि एक सेकंड के लिए मैं सॉल्यूशंस के बारे में नहीं सोचता, एक सेकंड के लिए मैं प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचता, मैं सिर्फ उससे पीछे हटता हूं, अपने आप को मैं रिलैक्स करता हूं, अपने आप को मैं शांत मनोस्थिति में ले आता हूं, अपने आप को उस प्रॉब्लम से हटाकर किसी और चीज में लगाता हूं जो एक हैप्पी इमोशन है, या एक पीसफुल इमोशन है, या एक कंटेंटेड इमोशन है, या मैं बगीचे में जाता हूं, या मैं किसी फूल को, किसी पौधे को देखता हूं, किसी जानवर को, पालतू जानवर है या कोई पेट है आपका, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वे अपने पसंद का गाना सुनते, कुछ ना कुछ ऐसा करके आप अपने मन को उस चीज से डिस्कनेक्ट करते हो। और तब आप जब वापस उस पे लौटते हो तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। पर्सपेक्टिव अलग नहीं भी होता तो भी आप एक रिलैक्स्ड नजर से उस चीज को देख सकते हैं,
1: देख सकते हैं,
0: आपकी अवेयरनेस में एक शिफ्ट आया है, आप ये महसूस कर सकते हो। ये करना आवश्यक होता है। और जैसे फेलियर्स की बात कह रहे थे, मैंने अपने लाइफ में फेलियर्स देखे हैं, एज अ स्टूडेंट मैंने फेलियर देखा है। हम कॉम्पिटिशन्स अटेंड करते हैं, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हमेशा सक्सेस नहीं मिलती,
1: बिल्कुल
0: हाँ, कहीं कभी कभार उन फेलियर्स की वजह से मैं रोया हूँ, पेरेंट्स की डांट पड़ी है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, मगर आज जब उन चीजों को पलट कर देखा जाता है तो आज लगता है कि क्या इतनी छोटी बातों पर मैं इतना परेशान हुआ। कभी कभी अपने आप पर हंसते हैं, अगर ये समझ उस घड़ी आई होती तो फिर आपको
1: उतना परेशान नहीं होते शायद।
0: आप बहुत इन्वॉल्व हैं उस चीज में, इसलिए आप फंसे हुए हैं, तो इसमें आपको जकड़न महसूस होती है, आपको लगता है कि अब मैं हिल भी नहीं सकता। तो ऊपर उठना थोड़ा आवश्यक है, और ये ऊपर उठना कोई फिजिकल हॉलिडे या भाग जाने की बात नहीं है। हालांकि श्री कृष्ण के एक नाम के लिए ये नाम भी मशहूर है कि रणछोड़, और उसके लिए भी गाने बने हुए हैं, भजन बने हुए हैं। कभी कभार रण छोड़ना पड़ता है, कभी कभार आपको रिट्रीट करना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, ताकि आप बेहतर तरीके से उस चीज को समझ सको। हम ये कहते हैं कि जब आप जैवलिन थ्रो करते हैं या शॉर्ट पुट थ्रो करते हैं तो आप थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग जंप या हाई जंप भी लगाना चाहते हैं तो पहले आप थोड़ा पीछे दौड़ते हैं और फिर गति पकड़ के आगे आते हैं,
1: आगे जाते हैं।
0: ये पीछे हटना हार नहीं है, पीछे हटना एक पर्सपेक्टिव लेने के लिए थोड़ा ऊपर उठना, ये चीज है जो सही चीजों को हमारे सामने अवेयरनेस में शिफ्ट लाने के लिए मदद कर सकता है,
1: मदद कर सकता है। दैट्स ग्रेट एक्चुअली। अलग थोड़ा सा डिटैच होना कैसे मदद करता है वो हमने समझा, प्रोसेस क्या है, कितनी मेहनत है, आसान है, डिफिकल्ट, आई थिंक आगे जानेंगे ये। कल्पना जी की ओर आगे बढ़ते हैं, हम कार्यक्रम की अंतिम घड़ियों में जा रहे हैं। कल्पना जी, आपने जिस तरह से स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल लिया था, मैं थोड़ा सा चाहूंगी अगर आप उसको एलाबोरेट करें, क्योंकि अगर मान लीजिए पेरेंट्स छोड़ भी देते हैं बच्चे को, ठीक है, हम सिचुएशन को समझ रहे हैं, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर उनको लगता है कि स्पॉइल हो जाएगा बच्चा, उसको लगेगा कि यू नो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, एंड कोई आदत बन जाएगी, तो क्या परिस्थिति को उतना ही देखना या छोटा करके देख लेना वो नुकसान भी कर सकता है हमको, ऐसा पॉसिबल है?
2: आरुषि जी, बहुत सही जगह पर आपने ये बात को मार्क किया है। एक्चुअली देखिए, वही सिचुएशन अगर हम ले तो किसी भी चीज की प्रतिक्रिया को हम अग्रेशन, एंजाइटी, एंगर, इन चीजों के साथ जब प्रतिसाद देते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो दोनों तरफ नेगेटिव होता है, सामने वाले पर और वो प्रतिक्रिया करने वाले पर नेगेटिव होता है। और नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना,
1: सिर्फ मैथ्स में,
2: मैथ्स में हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता है,
1: यहाँ नहीं, लाइफ में नहीं,
2: नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, या हम कहें नेगेटिव इनटू नेगेटिव है,
1: जी जी,
2: तो नेगेटिव रहेगा, डबल नेगेटिव होगा या मल्टीपल नेगेटिव होगा। सो इसीलिए श्री जी की बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूँ, बट जब मैं अपने श्रोताओं को देखती हूँ तो श्री जी की बातें थोड़ी सी मुझे कठिन लगती है समझने के लिए, है ना। तो मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ कि क्या है, समझो मैं किसी सिचुएशन में हूँ तो प्रोसेस क्या होनी चाहिए सिचुएशन की प्रतिक्रिया तक पहुँचने से पहले। तो सबसे पहला काम है देखना, देखने को हम कह सकते हैं ऑब्जर्व करना, है ना, तो वो थोड़ा सा पॉज हम वहाँ लेते हैं ऑब्जर्व करते समय। दूसरी स्टेप है समझना, अर्थात सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, है ना। तीसरी स्टेप है एनालाइज करना या अनुमान लगाना कि ये सिचुएशन है क्या, उसको अच्छी तरह से समझकर उसको किस तरह से प्रतिक्रिया करनी चाहिए, उसको एनालाइज करना या अनुमान लगाना हम कह सकते हैं कि क्या करना, या अवेयरनेस की स्टेज को कहते हैं। तो देखना, समझना, अनुमान लगाना और फिर उचित प्रतिक्रिया देना। ये प्रोसेस माइंड में 10 सेकेंड्स में भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड एक्शन, नॉट रिएक्शन।
1: ओके,
2: रिएक्शन जहाँ हम कहते हैं
1: वो जल्दी आता है
2: तो वो ट्रिगर दूसरे के हाथ में है, रिएक्शन है तो, है ना, एक्शन है तो ट्रिगर मेरे हाथ में है। सो देखना जानकारी है, समझना जागरूकता है, और सही प्रतिक्रिया देना ये समझदारी है। तो समझदारी से काम करना चाहिए। अब आप बताइए, पेरेंट्स का रिएक्शन समझदारी वाला था, गुस्सा करना, या नासमझी वाला?
1: ये बात समझ में आती है अब आपने ऐसे बताई तो, नहीं तो उस वक्त वो ही वैलिड लगता है लेकिन ऐसे जब चार स्टेप लेके समझते हैं तो सही बात है, वो शायद एक रिएक्शन है, वो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है उसका। कल्पना जी, इस चीज को मुझे लगता है हम आने वाले एपिसोड्स में और भी थोड़ा स्टेप्स को समझना चाहेंगे, फिलहाल लेकिन समय की सीमा में यहीं तक इजाजत देती है, तो क्या जाते जाते हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं ताकि हम उस परिस्थिति में होते हुए भी लिटिल डिटैच, या जैसा आपने कहा वो एक ऑब्जर्व कर सके, पहले स्टेप पे जा सके?
2: जी बिल्कुल, इसकी बहुत सुंदर छोटी छोटी एक्टिविटीज के माध्यम से हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। आगे के एपिसोड्स में हम इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस समय जो समय है वो रिलैक्स होकर कुछ अफर्मेशंस को अपने मन में दोहराने का। तो हम अपने श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि 2 मिनट के लिए, केवल 2 मिनट के लिए आप किसी निश्चित स्थान पर आराम से बैठ जाएं, अपने शरीर को रिलैक्स फील करें, गहरी और लंबी सांसें लें, मन और शरीर को ढीला छोड़ते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए मन की आंखों को जगाते हुए जागरूकता के साथ कुछ अफर्मेशंस, कुछ वाक्यों को जो हम सुना रहे हैं उसे अपने मन में रिपीट करें। मैं वर्तमान क्षण में सजग और जागरूक हूँ। मैं वर्तमान क्षण में सजग और जागरूक हूँ। मैं अपने आसपास की परिस्थितियों को शांत मन से देखती हूँ या देखता हूँ। मैं अपने आसपास की परिस्थितियों को शांत मन से देखती हूँ। केवल मैं परिस्थिति को देखता ही नहीं हूँ, परंतु परिस्थिति को समझने की कोशिश करता हूँ। यहां पर गहरी और लंबी सांस लें। पहले रिपीट किए हुए तीनों वाक्यों को मन में महसूस करें। जागरूकता, शांत मन और समझने का प्रयास, इन तीन शब्दों को अपने मन में दोहराएं। जागरूकता, शांत मन और समझने का प्रयास। गहरी लंबी सांस लें। अगला वाक्य है, मैं तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले रुकती हूँ, समझती हूँ और फिर प्रतिक्रिया देती हूँ। मेरा मन शांत होता है तब वो मुझे सही निर्णय लेने में सहायता करता है। मेरा मन शांत होता है तब वो सही निर्णय लेने में मुझे सहायता करता है। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।
1: एक्चुअली इतना सारा है ये, अगर हम प्रैक्टिस करें तो बहुत सारा सारा बेनिफिट होने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, हमें अभी ही वो महसूस हुआ और इसको रिपीटेडली करेंगे तो हम जो चाहते हैं अपने से वो हम कर पाएंगे। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया है आपसे भी इजाजत लेने का। आप भी दिल खोल के एक बार जिंदगी से कह दीजिए कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर्ण निष्ठा है क्योंकि इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि बदले में उसे क्या मिलता है। ये महान विचार है लाल बहादुर शास्त्री जी के।

0: वंदे मातरम गीत देश के क्रांतिकारियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत था। ये आजाद हिंद फौज के सैनिकों का भी मूल मंत्र था। वही आजाद हिंद फौज जिसकी नींव भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे महान नेताओं और सूत्रधारों में से एक रास बिहारी बोस ने की थी, जिसकी कमान बाद में सुभाष चंद्र बोस के हाथों में चली गई। कहते हैं कि अगर अरबिंदो घोष को यंग इंडिया का मैजिनी माना जाता है, तो रास बिहारी बोस को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का कैवूर कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने विदेशी धरती पर रहकर भारतीय राष्ट्रवाद की लौ जलाए रखी। एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा की आज की कड़ी में हम सुनेंगे भारत के इन्हीं दिलेर क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की वीरता एवं जाबाजी की कहानी।
1: दीदी, ये वही क्रांतिकारी तो नहीं जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले के मुख्य सूत्रधार थे?
2: बिल्कुल सही पहचाना बन्नू, तुम्हें याद रहा, ये बड़ी बात है।
1: हाँ दीदी, भिकाजी कामा और कुछ अन्य क्रांतिकारियों के साहसिक किस्से सुनाते समय आपने इनका जिक्र किया था।
2: दरअसल रास बिहारी बोस तभी चर्चा में आए थे जब उनका नाम भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमले में आया था।
0: बड़ी शानदार योजना बनाई गई थी क्रांतिकारियों द्वारा चंदन नगर में हुई उस बैठक में। हार्डिंग पर हमले का सुझाव देने वाले कोई और नहीं, रास बिहारी के निडर दोस्त श्रीश घोष थे। लेकिन बैठक में मौजूद कुछ लोगों को ये अव्यवहारिक लगा।
3: मुझे शंका है कि हम हार्डिंग पर बम से हमला कर पाएंगे, उसके आसपास बहुत सुरक्षा रहती है।
4: हम तैयार और दृढ़ हैं, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। हमें शक्तिशाली बम दिया जाए और पक्के क्रांतिकारी चरित्र वाला एक युवा मिले।
0: रास बिहारी की दोनों शर्तें पूरी की गईं। 1911 की दिवाली पर चारों ओर पटाखों की आवाज के बीच पहली रिहर्सल भी हुई। बम रास बिहारी की उम्मीद के मुताबिक फटे, लेकिन उन्हें एक साल से अधिक इंतजार करना पड़ा। फिर आया 22 दिसंबर 1912 का दिन। रास बिहारी बोस अपनी युवा गर्लफ्रेंड को टोंगा में बिठाकर चांदनी चौक की सड़कों पर ले गए, जहां अगले दिन हमले की योजना बनी थी।
4: बसंत, तुम चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक के पास क्लॉक टावर वाले जगह पर रहोगे, महिलाओं के बीच, महिलाओं के वेश में। बम तभी फेंकना जब वायसराय का हाथी ठीक सामने हो। अगर तुम चूकोगे तो मैं और अवध बिहारी हमले को अंजाम देंगे।
5: जी गुरुजी।
6: तुम्हें डर तो नहीं लग रहा बसंत?
5: नहीं, डर किस बात का, महीनों अभ्यास किया है, आज के दिन का ही तो इंतजार था।
0: वायसराय और उनकी पत्नी हाथी पर सवार गली में प्रवेश करते हैं। महिलाएं जुलूस के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बसंत, जो कि एक लड़की के भेष में था, वो भी उन्हीं के बीच उपस्थित था। तभी अचानक रास बिहारी का ध्यान आता है और वो अपनी शंका अवध बिहारी से साझा करते हैं।
4: देहरादून में सिगरेट के डिब्बे में बम फेंकने की जो प्रैक्टिस की गई थी, यह काम नहीं आएगी।
6: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
4: यह हमें पहले जमीन से हाथी पर बैठे टारगेट तक की ऊंचाई का अंदाजा लगाना होगा। वसंत, तुम अपना कपड़ा बदल लो और नीचे आ जाओ।
0: कहने को तो लॉर्ड हार्डिंग पर हमले के पूरे ऑपरेशन की योजना बहुत चतुराई से बनाई गई थी, लेकिन 23 दिसंबर 1912 का ये हमला दुर्भाग्य से विफल रहा। बसंत बिल्डिंग के नीचे गया और फुटपाथ पर भीड़ में घुल मिल गया, लेकिन बम अवध बिहारी ने फेंके। इसमें वॉयसराय पूरी तरह घायल हो गए। उन्हें पास के एक डॉक्टर एस सी सेन के पास ले जाया गया। रास बिहारी तो बच निकले, मगर हत्या की नाकाम कोशिश के बाद बोस के 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चला। उनमें से एक को उम्र कैद की सजा हुई, बाकी अवध बिहारी गिरफ्तार समेत 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। जबकि बोस भारत में क्रांतिकारियों के बीच मशहूर हो गए। उनके समकालीन क्रांतिकारी साथी बोस के बारे में कुछ यूं बताते हैं।
6: उनके जैसा निडर तो देखा ही नहीं। वायसराय पर हमला करने के बाद वो रात को ही ट्रेन से देहरादून लौट गए। अगले दिन दफ्तर में ऐसे काम पर लग गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने वायसराय पर हुए हमले की निंदा करने के लिए देहरादून के नागरिकों की एक बैठक भी बुलाई। इस वजह से किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि इस बेहद अहम क्रांतिकारी कार्रवाई की योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले वही थे।
7: मुझे 1908 की घटना याद आ रही है। उन्हें अलीपुर बम केस में फंसाया गया था, जेल भी भेज दिया गया, लेकिन वहां से रिहा होते ही फिर से वे क्रांतिकारियों के साथ गुप्त रूप में संपर्क में रहने लगे।
1: दीदी, भिकाजी कामा ने भी रास बिहारी जी से बम और हथियार इकट्ठा करने को कहा था ना?
2: हाँ, दरअसल रास बिहारी बोस एक बहुत ही काबिल क्रांतिकारी नेता थे। स्कूली दिनों से उनकी दिलचस्पी क्रांतिकारी गतिविधियों में रहने लगी थी। मैट्रिक पास करने से पहले ही देसी बम बनाना सीख लिया था। ऐसे में जब वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए तो उनकी भूमिका बढ़ गई। उन पर लेखक, कवि और विचारक बंकिम चंद्र चटर्जी के क्रांतिकारी उपन्यास आनंद मठ का काफी प्रभाव था।
0: आनंद मठ के अलावा रास बिहारी ने मशहूर बंगाली कवि नवीन सेन की देशभक्तिपूर्ण कविताओं का संग्रह प्लासीर युद्ध भी पढ़ा। समय के साथ उन्होंने और भी क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ी। उन्होंने वक्ता और क्रांतिकारी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी भाषण पढ़े। चंदन नगर में उनके शिक्षक चारू चंद्र, जो क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे, उन्होंने रास बिहारी को क्रांतिकारी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए।
8: मैंने फोर्ट विलियम में तुम्हारी नौकरी के लिए बात कर ली, तुम वहाँ चले जाओ।
4: जी, जैसा आप कहे।
0: रास बिहारी फोर्ट विलियम चले गए, लेकिन वहाँ का माहौल उन्हें रास नहीं आ रहा था। पिताजी की भी यही इच्छा थी कि उनका तबादला शिमला में सरकारी प्रेस में हो जाए। इस तरह उन्हें प्रेस में कॉपी होल्डर नियुक्त किया गया। रास बिहारी ने अंग्रेजी और टाइपराइटिंग में महारत हासिल कर ली। कुछ समय बाद वो कसौली के पाश्चर इंस्टीट्यूट चले गए, लेकिन ये नौकरियां उन्हें रास नहीं आ रही थी। वो खुश नहीं थे।
4: मुझे ये काम अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्या करूं, उलझन में हूं।
5: आप देहरादून क्यों नहीं जाते? वहां प्रथमनाथ टैगोर के घर पर गार्जियन ट्यूटर की जगह खाली है, मैं बात करता हूं।
4: जरूर करे बात मेरे लिए।
0: इस तरह वो एक ट्यूटर के तौर पर काम करने लगे। फिर उन्हें देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्लर्क की नौकरी मिली, जहां कड़ी मेहनत से वो हेड क्लर्क बन गए।
2: जानती हो बन्नो, बोस का मन नौकरी में क्यों नहीं लग रहा था?
1: क्यों दीदी?
2: वजह थी 1905 में हुआ बंगाल का बंटवारा और उसके बाद हुई घटनाएं। तब रास बिहारी बोस अपनी किशोर अवस्था में थे। बंटवारे का कारण प्रशासनिक बताया गया था, लेकिन असल में वो धार्मिक आधार पर किया गया प्रतीत हो रहा था। दूसरे बंगाली हिंदू राष्ट्रवादियों की तरह बोस इससे बहुत नाराज थे।
0: भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का मुख्य केंद्र बंगाल था। बंगाली हिंदुओं को लगा कि अंग्रेज उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए ये बंटवारा कर रहे हैं। मुसलमानों ने इस कदम का काफी समर्थन किया। पूरे बंगाल में राष्ट्रवादी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। द न्यू एशिया ऑफ रास बिहारी बोस, इंडिया जापान एंड द लिमिट्स ऑफ द इंटरनेशनल 1912 से 1945 के लेखक जोसेफ मैक्वेट के अनुसार,
9: अहिंसक गुट ने आर्थिक बहिष्कार के जरिए ब्रिटिश शासन को कमजोर करने की कोशिश की, जबकि एक ज्यादा कठोर गुट ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने की कोशिश की।
0: रास बिहारी बोस गदर क्रांति के मुख्य आयोजकों में से भी एक थे। मैकक्विड अपनी एक किताब में लिखते हैं,
9: जब अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में उलझे हुए थे तब रास बिहारी बोस ने 1857 के विद्रोह जैसा ही एक विद्रोह भड़काने की योजना बनाई। तब ब्रिटिश शासकों के अधीन काम करने वाले भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी थी। पहले विद्रोह शुरू करने की तारीख 21 फरवरी 1915 तय की गई थी। स्थान था लाहौर। 1914 तक लगभग 4000 गदर आंदोलनकारी हथियार और पैसे लेकर अमेरिका, कनाडा और सुदूर पूर्व से भारत आ चुके थे, लेकिन उनके पास कोई सही नेता नहीं था। तब रास बिहारी बोस ने उनका नेतृत्व एवं मार्गदर्शन किया। जनवरी 1915 के मध्य में रास बिहारी ने बनारस में एक निजी बैठक में आगामी क्रांति को लेकर पहली बार चर्चा की।
4: यूरोप में युद्ध शुरू हो चुका है। देश में केवल 30,000 सैनिक ही बचे हैं, जिनमें से ज्यादातर भारतीय हैं और उनकी वफादारी आसानी से जीती जा सकती है। योजना यह है कि भरोसेमंद गदर आंदोलनकारियों को सेना की छावनियों में भेजा जाए। देशभक्तों की क्रांतिकारी कार्रवाई के बिना ब्रिटिश सरकार नहीं मानेगी।
10: आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ।
0: रास बिहारी द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप खैरों, फिरोजपुर और लाहौर में कुछ रिहर्सल भी आयोजित किए गए, लेकिन दुर्भाग्य से इस योजना को अंजाम नहीं दिया जा सका। वो जल्द ही विफल हो गई। यूं कहें कि ब्रिटिश सरकार ने संघर्ष को शुरू होने से पहले ही कुचल दिया। एस्टन और कवाबे अपनी किताब में लिखते हैं,
5: जैसे ही जासूसों ने आंदोलन में घुसपैठ की, अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों से हथियार छीनना शुरू कर दिया। बिना डरे बोस ने विद्रोह शुरू करने की तारीख 19 फरवरी कर दी, लेकिन काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए इस योजना को दबा दिया गया। कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, जेल में डाला गया और यहां तक कि देश निकाला दे दिया गया।
0: ब्रिटिश अधिकारियों के पीछे पड़ने और सिर पर इनाम घोषित होने के बाद रास बिहारी बोस ने तय किया कि वो भारत में सुरक्षित नहीं है। 12 मई 1915 को रास बिहारी कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के रिश्तेदार का भेष बदलकर कोलकाता बंदरगाह से जापान के लिए रवाना हो गए। इस दौरान वो गदर पार्टी के हैरम लाल गुप्ता और भगवान सिंह से मिले।
4: मैं एक भगोड़े की तरह रहकर थक चुका हूँ। 17 बार अपना ठिकाना बदला है।
7: आपको और हैरम लाल को जापान से वापस भेजने की कोशिश करता हूँ।
0: भले ही 1902 से 1923 के बीच जापान ब्रिटेन का सहयोगी था, बावजूद इसके उसने उन क्रांतिकारियों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे थे जो भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना चाहते थे। पता चला कि हैरम लाल अमेरिका भाग गए और रास बिहारी ने तोसिको सोमा से शादी करके जापान की नागरिकता ले ली।
2: बन्नो, रास बिहारी बोस ने ही जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और बाद में आजाद हिंद फौज की नींव रखी, जिसकी कमान बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। हालांकि इस संगठन का प्रमुख स्लोगन वंदे मातरम ही रहा। बंगाल के सभी क्रांतिकारियों की तरह रास बिहारी बोस के लिए ये केवल एक गीत नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नारा था।
0: जापान में 3 दशकों से ज्यादा समय तक निर्वासित रहने के दौरान रास बिहारी भारत की आजादी के लिए लगातार काम करते रहे। वहां उन्होंने एक भारतीय बुद्धिजीवी, दार्शनिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर ऊंचा मुकाम हासिल किया। उसकी मिसाल आज भी नहीं मिलती। उन्होंने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवादी प्रतीकों को बढ़ावा दिया। रास बिहारी का मानना था कि INA उपमहाद्वीप के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एकता के प्रतीक के तौर पर काम करेगी, ताकि वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का मौका पा सके। असल में INA रास बिहारी बोस के आजादी के लिए उनके सशस्त्र संघर्ष के 30 साल की लंबी कोशिश का परिणाम था। वो कहते थे,
4: मैं एक व्यवहारिक और राष्ट्रवादी सोच रखता हूँ। मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में एकता और एकजुट रुख की जरूरत होती है। इसीलिए मैंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। यह संगठन दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में भारत की आजादी की लड़ाई के लिए जनमत और समर्थन जुटाने में एक असरदार और गतिशील संस्था के रूप में काम करेगा। वैसे ही वंदे मातरम महज एक गीत नहीं बल्कि भारतीय अस्मिता का बड़ा प्रतीक है। इसमें प्रवासी भारतीयों को एकजुट करने की क्षमता है।
0: राज बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई दादा कालीचरण की देखरेख में सुबलदाहा में हुई। उनका निधन 1945 में हुआ, यानी 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी मिलने से ठीक पहले। ये एक ऐसी जीत थी जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और वीर क्रांतिकारी से। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन

हम अपने देश के लिए आजादी चाहते हैं, पर दूसरों का शोषण करके नहीं, ना ही दूसरे देशों को नीचा दिखाकर। मैं अपने देश की आजादी ऐसे चाहता हूँ कि अन्य देश मेरे आजाद देश से कुछ सीख सकें और मेरे देश के संसाधन मानवता के लाभ के लिए प्रयोग हो सके। ये महान विचार है लाल बहादुर शास्त्री जी के।

आज का दिन दो महान विभूतियों की याद दिलाता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, और लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने सादगी, ईमानदारी और देश सेवा को अपने जीवन का आधार बनाया। तो आइए आज के इस खास दिन पर उनके आदर्शों को याद करते हुए अपने आशियाना की खूबसूरत शुरुआत करते हैं। सत्य की राह पर चले, अहिंसा को अपनाए, शास्त्री जी की सादगी से जीवन को सजाए, दो महान आत्माओं को दिल से करे नमन, दो महान आत्माओं को दिल से करे नमन, देश प्रेम और अच्छे कर्मों से रोशन हो हर मन, देश प्रेम और अच्छे कर्मों से रोशन हो हर मन। तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। शास्त्री जी के पास देश की सबसे बड़ी शक्ति और संसाधन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कभी भी देश के पैसे या सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए नहीं होने दिया। कैसे, जरा विचार करेंगे? और जी हाँ, बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय भी देने वाली हूँ। किस पर, वो आप आशियाना सुनेंगे तब जानेंगे, क्योंकि सस्पेंस रहेगा। अभी इसकी सीजन शुरू होने जा रही है, इतना सा हिंट में दे सकती हूँ, ठीक है? फिर खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। तो व्यंजन भला कैसे भूल सकते, भाई श्राद्ध पक्ष चल रहा है, और श्राद्ध पक्ष में हम क्या क्या बनाते थोड़ा याद कर लीजिए। उन्हीं में से एक रेसिपी आपको सिखाने वाली हूँ, और आज का टंग ट्विस्टर बहुत ही सुंदर रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका आशना कार्यक्रम में। आज का सुंदर सा विचार है, शास्त्री जी के पास देश की सबसे बड़ी शक्ति और संसाधन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कभी भी देश के पैसे या सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए नहीं होने दिया। कैसे, तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। देखिए, वैसे तो शास्त्री जी अपनी सादगी, ईमानदारी और उच्च नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इसी दिन पूरे देश में महात्मा गांधी की जयंती भी आज ही के दिन मनाई जाती है। तो यहाँ पर मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, एक घटना याद आ रही जो आपके समक्ष रखना चाहूंगी। ये घटना उस समय की है जब लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें सरकार की तरफ से एक आधिकारिक गाड़ी इम्पाला शेवरले मिली हुई थी। एक दिन उनके बेटे सुनील शास्त्री किसी काम से उस सरकारी गाड़ी को लेकर बाहर चले गए और काम खत्म करके वापिस आ गए। जब शास्त्री जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर को बुलाया और पूछा कि गाड़ी आज कितने किलोमीटर चली है। ड्राइवर ने उत्तर दिया, जी साहब आज गाड़ी 14 किलोमीटर चली है। शास्त्री जी ने उसी समय ड्राइवर को निर्देश दिया, सुनील ने आज इस गाड़ी का इस्तेमाल अपने निजी काम के लिए किया है, इसलिए तुम लोग डायरी में लिखो कि 14 किलोमीटर का सफर निजी काम के लिए तय किया गया था और इसके कितने जितने भी पैसे बनते हैं उतने पैसे मेरी निजी सैलरी में, मेरी निजी तनख्वाह से काट करके सरकारी खाते में जमा करवा दो। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, शास्त्री जी के पास देश की सबसे बड़ी शक्ति और संसाधन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कभी भी देश के पैसे या सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग अपने परिवार के लिए नहीं होने दिया। उनका यही ईमानदार और सादगी भरा व्यक्तित्व उन्हें आज भी हर भारतीय के दिल में अमर बनाए रहता है। तो ऐसी महान विभूति को पुनः हम नमन करते हैं और आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर सायरा मैयर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। जी हाँ, मैंने कहा था कि ऐसी चीज सिखाने जा रही हूँ जिसकी सीजन बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। तो मूली, मूली की सीजन अब शुरू हो जाएगी क्योंकि सर्दी का मौसम बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। तो मूली से कौन सी बीमारी ठीक करेंगे जानेंगे। देखिए, मंदाग्नि, अरुचि, अफारा, पुरानी कब्ज, उधर के विकारों के निराकरण के लिए, इन सब के लिए भोजन के साथ मूली कच्ची या अचार, चटनी, सब्जी बना करके सेवन करना चाहिए मूली का। ठीक है, इसका अचार भी बना सकते हैं, परोठा भी बनाकर खा सकते हैं, इसकी सब्जी भी खा सकते हैं। इससे मंदाग्नि, अरुचि, अफारा, पुरानी कब्ज ठीक हो जाएगी। आइए, अब बहुत ही सुंदर आपको उपाय बताने जा रही हूँ। और भी अगर पथरी की समस्या है तो मूली के पत्ते खाइएगा, और मूली का रस भी पी सकते हैं, नियमित पीजिएगा, इससे पथरी गल करके बाहर आ जाएगी। तो मूली के पत्ते खाने से या मूली का रस कई मास तक नियमित पीते रहने से पथरी गल करके बाहर निकल जाती है। अगर बवासीर की समस्या है तो क्या करेंगे, बवासीर की समस्या है तो कच्ची मूली खाइएगा, इससे बवासीर से खून गिरना बंद हो जाएगा। और मूली के 100 ग्राम रस में 8 ग्राम देसी घी मिलाकर कुछ दिनों तक सुबह शाम रोज पीजिएगा। ठीक है, फिर मूली काटकर नमक लगा ओस में रात को सुरक्षित रख दीजिए, इसे सुबह निराहार खाइएगा। सोच के उपरांत गुदा को मूली के पानी से धोने से भी बवासीर ठीक हो जाता है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर उपाय है, मूली कैसे फायदा करती और भी जानेंगे। अगर पीलिया है तो क्या करेंगे, पीलिया है तो बहुत ही सुंदर उपाय आपको देने जा रही हूँ। छोटे पत्तों सहित ताजा कच्ची मूली सुबह सुबह खाली पेट नियमित खाइएगा, इससे कुछ ही दिनों में पीलिया ठीक हो जाएगा। तो क्या करेंगे, छोटे पत्तों सहित ताजा कच्ची मूली के पत्ते आप सुबह ही सुबह, मतलब पत्ते नहीं, कच्ची मूली खाइएगा सुबह ही सुबह खाली पेट। ठीक है, इससे बहुत जल्दी पीलिया ठीक हो जाएगा। अगर गले में सूजन है, मूली के गर्म पानी में नमक डाल करके गरारा करिएगा, इससे गले की सूजन भी ठीक हो जाएगी। मूली के गर्म पानी में नमक डाल करके गरारा करने से सूजन ठीक हो जाती है। और लास्ट उपाय भी बहुत ही सुंदर है, अगर बिच्छू ने काटा हो तो दंशित स्थान पर नमक लगे मूली के टुकड़े रखिएगा, इससे वेदना शांत हो जाएगी। जहां पर भी बिच्छू ने काटा है उस स्थान पर नमक लगाकर मूली के टुकड़े रख दीजिए, इससे वेदना शांत हो जाएगी। तो ये सारे ही उपाय बहुत ही सुंदर है, और आप चाहे तो आजमा सकते हैं। अब आइए आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ेंगे। आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनेंगे आप सभी। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति, सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बन भारत की पहचान। ये आपको 3 से अधिक बार नहीं सुनाना है, और कम से कम 2 बार तो आपको बोलना ही है। पुनः दोहरा रही हूँ, गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति, सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। तो ये आज का टंग ट्विस्टर है, सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं, और आज का टंग ट्विस्टर सुना सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज व्हाट्सएप के जरिए। ठीक है, तो आइए फिर से सुन लेते हैं एक गीत, उसके बाद पुनः रूबरू होते हैं। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आज हम बहुत ही धूमधाम से महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती दिन मना रहे हैं। इन दोनों ही उत्सव की पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सत्य की राह दिखाई, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, बापू ने भारत को प्रेम का दीप जलाया, न हथियार उठाया न किसी से बैर किया, सत्य और शांति से देश को मजबूत किया। गांधी जी का संदेश आज भी यही पुकारे, सत्य अहिंसा के दीप से जीवन अपना संवारे, सत्य अहिंसा के दीप से जीवन अपना संवारे। पुनः आप सभी को गांधी जयंती के ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आइए अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। कैसे हम भी अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बना सकते हैं, किस तरह हम अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार देंगे कि उनका भी जीवन सुंदर और श्रेष्ठ बनेगा। तो आज इन दोनों महान विभूतियों से हम इनके गुणों को धारण करने की कोशिश करेंगे। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शांति, सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। तो बहुत ही सुंदर आज का टंग ट्विस्टर है। आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं, और टंग ट्विस्टर भी सुना सकते हैं। तीन से ज्यादा बार नहीं बोलना है, दो से कम बार नहीं सुनाना है। आप जरूर जुड़िएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु मेरे को लगता है कि अपने पूर्वजों का तर्पण करने के लिए गया जी गए हुए हैं क्या? चलिए अच्छी बात है, जैसे भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और श्राद्ध पक्ष है तो करना भी चाहिए, है ना। 12 महीने में यही दिन आते हैं कि हम इस तरह तर्पण कर सकते हैं, और अपने पूर्वजों के साथ अगर किसी भी समय बुरा कुछ व्यवहार किया हो तो भी क्षमा याचना भी कर सकते हैं, और उनको खुश और संतुष्ट रखने के लिए इस तरह तर्पण भी करना चाहिए। लेकिन जो नहीं गए हैं गया जी, जो अपने अपने घर में ही है, वो जरूर जुड़िएगा भाई। रेडियो मधुबन के बहुत सारे श्रोता बंधु है, एक नहीं दो नहीं अनेक है। चलिए जुड़ चुके हैं हमारे श्रोता बंधु, तो बात करेंगे। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
1: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। तो बैठे हैं, बात कर रहे हैं आपसे, और अभी तो मैं अहमदाबाद हूँ, तो अहमदाबाद आए सुबह में।
0: अच्छा अच्छा,
1: अहमदाबाद में बैठा हूँ बेटी के साथ आपसे।
0: अच्छा जी जी जी,
1: हमारा एक आसान है, हम जहाँ भी जाते हैं हम रेडियो सुन पाते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे जो रेडियो सुनते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम कहीं भी जाते हैं तो रेडियो सुन पाते हैं। लेकिन पहले तो क्या था कि हम रेडियो साथ में नहीं ले जा सकते थे, या ले जा सकते तो कहीं पकड़ता नहीं पकड़ता।
0: सही बात है,
1: मोबाइल में तो इंटरनेट पे तो हम कहीं भी जाए देश के कोने में तो हम रेडियो सुन पाते।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो ये हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है।
0: जी
1: चलो, आज तो बहुत अच्छा दिन है हमारे गांधी जी का, और हमारे शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, तो दोनों महान विभूतियों को हम सलाम करते हैं, और देश के लिए जो किया है वो ऐसा तो कैसे हम बोल सकते हैं। दीदी देखो, हम गांधी जी, हमारे कोई व्यक्ति हथियार नहीं लिया,

0: भी किसी के झगड़ा नहीं किया है, फिर भी देश को इतनी आसानी से देश को विजय किया है
1: जी,
0: और एक अच्छे हमारे देश को महान बनाया है, सत्य की राह पर चले हैं, कभी झूठ नहीं बोले हैं, क्योंकि कहते ना भी किसी बोलता वो तो सत्य को भी हमेशा सत्य की विजय होती है, पहले हो या लेकिन सत्य की तो जय होती
1: जी,
0: लेकिन झूठ नहीं बोलना, क्योंकि कहते एक झूठ सौ झूठ बोलवाता है,
1: बिल्कुल
0: तो झूठ नहीं बोलना है, जैसे काफी जी के पर चले तो हम भी विषय पे आता है कि हम भी बच्चों को बस ऐसा ही बनाना है, क्योंकि बच्चों को पहले ऐसा शिक्षा देना कि कभी झूठ नहीं बोलना है
1: जी,
0: और जैसे हमारे महान विभूति ने जो गाधी दी है लालू, हमारे कई सारे महान हमारे गए हैं, तो इसी राह पर चलना है। अब देखो कई सारे ऐसे बच्चे के आज उल्टा राह पर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं नशे पे जा रहे हैं
1: जी,
0: तो ऐसे बच्चे जैसे हमको बच्चों को ऐसे राह देनी सीख देनी कि अच्छे नेक पर चलना, कभी चुप नहीं बोलना, सच्चाई के साथ देना, सच्चाई से चलना, और वो सब एक दूसरे के काम करना, ये तो हमारे साथ गांधी जी ने बताया है।
1: तो जी जी।
0: बच्चों को तो हम एक ही बात करेंगे, बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे, बच्चों को अच्छा टैलेंट देंगे कि वो आगे जाके अच्छा बन पाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और मैं सुनाता हूँ दीदी।
1: हाँ जी हाँ जी, सुनाइए सुनाइए।
0: शास्त्री जी और गांधी जी बनवाया है तो एक बार आप बोल दीजिए शायद मेरे।
1: हाँ जी मैं सुना देती हूँ, ठीक है। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शांति सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। जी
0: दिखाया
1: अच्छा, आवाज आवाज आपकी स्पष्ट नहीं पहुंच रही है
0: जी, मैं जरा बाहर निकलता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम घर में रहता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: अब आ रही है आपकी मेरी आवाज?
1: हाँ जी आ रही है, आ रही है।
0: चलो अच्छा मैं बताता हूँ, गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, क्रांति शास्त्री गांधी का संदेश बने ऐसा, गांधी जी की
1: चलिए बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई, आपके लिए ढेर सारी तालियां जी, बाकी सब बढ़िया। चलिए ये थे सुरेश भाई जोटाना से, बहुत ही सुंदर आपने भी बात रखी है और टंग ट्विस्टर भी बोल के सुनाया है। अब आप क्या सोच रहे हैं, आप भी जुड़िएगा और टंग ट्विस्टर जरूर सुनाइएगा। आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है भाई, दो दो महान विभूतियों का जन्मदिन है, कैसे भूल सकते हैं उनके त्याग, उनकी तपस्या, उनके जीवन के इतनी सुंदर यात्रा, उनका साहस, उनका पराक्रम, उनका परोपकार, अहिंसा का मार्ग, सत्य की राह, कैसे भूल सकते हैं हम उन महान विभूतियों से कम एक दो गुण भी हम अगर अपना ने जीवन में धारण करें ना तो भी हमारा जीवन सवर जाएगा। हेलो,
2: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी, कैसे हो?
1: हाँ जी ओम शांति, नमस्कार, हम अच्छे हैं, आप कैसे हो सुभाष भाई?
2: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, तो आपको रेडियो परिवार और सभी छोटे भाई बहनों को, दोस्तों को सुभाष भाई का प्यार भरा नमस्कार, और विषय विचार सुरेश भाई जी की बातें, आपकी बातें, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, और महात्मा गांधी जी और पूर्व पीएम चाचरी जी के जयंती पर मेरा भी शत नमन। और बहुत ही अच्छी बातें हो चुकी है, आगे भी होगी। तो थोड़े में मैं बोलता हूँ, देखो एक पॉइंट जो आपने बोला है शादी और सत्य, जो बचपन से बच्चों के ऊपर ये दो सत्य और सादगी के ऊपर संस्कार हमें अगर उनको सिखा दिया, लाद लिया, उनके अंदर तक वो संस्कार चले गए तो आगे उनका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि बचपन में माता पिता, शिक्षक, दोस्तों, महान पुरुषों द्वारा जो संस्कार हमारे ऊपर लादे जाते हैं, जिससे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है, और यही विकास आगे जीवन भर हमें काम आता है। क्योंकि ये बचपन के ही संस्कार हम भूलते नहीं, ये हृदय में छप जाते हैं। वैसा ही गांधी जी और शास्त्री जी के ऊपर भी उनके माता पिता, टीचर, गुरु और जो भी उनके ऊपर संस्कार थे बचपन से, उनका देखो हम उनका आदर्श रखते, उनके आदर्श के पालना के ऊपर ही हमारा सभी का विकास चल रहा है। तो धन्यवाद, सभी को नमस्कार, शुक्रिया, ओम शांति।
1: बहुत बहुत आभार सुभाष भाई। और आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे? हेलो, चलिए, ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से। आपने भी अपनी बात को अच्छी तरह रखी है, बहुत ही सुंदर विषय है। आज हम देखे इन दोनों महान विभूतियों का जन्मदिन मना रहे हैं। हर किसी का तो नहीं मनाते हैं ना, कितने ही गए इस दुनिया से, कितने ही आए हैं, तो सभी का नहीं मनाते हैं। लेकिन इन खास लोगों का क्यों मनाते हैं, जिनको याद करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो महान कर्म करके गए हैं इस दुनिया से। जाना सभी को है, आप हम सभी जाएंगे, लेकिन जाना कैसे है ये हमें सोचना है। क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, जो लाख जतन करो फिर भी आनी ही है, तो उसको हम टाल नहीं सकते। लेकिन हम अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बना सकते हैं, जिसके जरिए आने वाले समय में हम इस दुनिया में नहीं भी रहे तो भी याद किया जाए। तो इन दोनों महान विभूतियों ने ऐसे काम किए हैं। शास्त्री जी का तो मैंने उदाहरण दिया ही था कि देखिए कैसे अपने निजी खर्च में इतनी ऊंची पोस्ट प्रधानमंत्री जी की, और उसके बावजूद भी एक रुपया भी सरकारी खर्च हो जाता है, अगर निजी काम में सरकारी पैसा लग जाता है, तो कैसे उन्होंने गाड़ी का पेट्रोल का किराया भी खुद की जेब में से दिया। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार, ओम शांति।
1: हाँ जी, नमस्ते दयाराम जी, कैसे हो आप?
3: मैं बहुत अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है सभी बहनों की, भाइयों की, और भी हमारे रेडियो मधुबन के आरजे भाई बहनों की
1: जी।
3: और मैं आज रेडियो मधुबन सुन रहा हूँ, क्लियर आवाज आ रही है। और सबसे पहले तो हमारे जो महान पुरुष हुए, जिन्होंने अपनी इतनी मेहनत करके अपना ऊंचा नाम कमाया, आज हमारे देश को दिशा दी है, उन महान पुरुषों को मेरा सत सत नमन, उनको सलाम, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम साहब।
1: बिल्कुल, आपको भी।
3: और दीदी का,
1: हाँ जी, आज आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आज का विषय यही है, इन दोनों महान विभूतियों का हम जयंती दिवस मना रहे हैं, हम कैसे अपने जीवन में इनके गुणों को धारण करेंगे, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार देंगे?
3: जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे जो महान पुरुष गांधी जी थे, तो हमेशा अहिंसा और सत्य की राह पर चलने वाले, तो उसके जो सत्य की जो मार्ग है, जो सत्य की हम राह पर चलेंगे, अपने बच्चों को ऐसे अच्छे संस्कार सिखाएंगे और तो हमारे बच्चे की जिंदगी अच्छी सुधरेगी और भी अच्छा काम कर पाएंगे, और भी एक अच्छे बन के अपना भी नाम ऊंचा करेंगे। और हमारे शास्त्री जी तो इतने बड़े शास्त्री जी से विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किया और आज धनु महान पुरुषों का नाम आज पूरे वर्ल्ड में भी लिया जा रहा है। आज इनकी जो प्रेरणा लेके दूसरे भी देश भी आगे बढ़ रही है, वो भी सराहना कर रही है। उन्होंने अच्छा काम किया, सत्य की राह चले और मार्गदर्शन दिया, पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया। ऐसे अच्छा काम करेंगे, हम जैसे झूठ नहीं बोलेंगे, बहुत सारी है उनसे अच्छा कार्य करते रहेंगे तो हमेशा ठीक है। और आज का दीदी सॉन्ग कुछ सुनाऊं?
1: हाँ जी, हाँ जी, जरूर सुनाइए।
3: गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शांति और शास्त्री जी की शान बने, गांधी जी और शास्त्री जी का संदेश बने भारत की पहचान। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शांति, शास्त्री जी शान, गांधी जी शास्त्री जी का संदेश बने भारत की महान पहचान।
1: क्या बात है दयाराम, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार।
3: मैं वैसे तो रेडियो मधुबन तो सुनता हूँ दीदी, मेरा थोड़ा मोबाइल खराब हो गया, जुड़पा नहीं रहा कार्यक्रम में, तो आज मुझे मेरा काम जुड़ा हूँ, आज मुझे रेडियो मधुबन भी क्लियर सुनाई दे रहा है। मेरे सभी मेरे प्यारे मित्र है जो सुन रहे हैं, मेरे सुरेश भाई, कंचन भाई और बहुत सारे हमारे रेडियो परिवार हमारे भाई, हम सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, ओम शांति।
1: बहुत बहुत आभार दयाराम जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे दयाराम जी रामपुरा से, बहुत ही सुंदर आपने विषय को भी स्पष्ट किया है, तो टंग ट्विस्टर भी बोल के सुनाया है। आप भी जुड़ सकते हैं और इसी तरह आप भी आज के विषय में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। हेलो, और आज का टंग ट्विस्टर भी बोल के सुना सकते हैं, परंतु पहले लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद इसी विषय को कंटिन्यू रखेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

सादगी थी जीवन में, विचारों में महानता थी। सादगी थी जीवन में, विचारों में महानता थी। देश के प्रति समर्पण ही उनकी पहचान थी। जय जवान जय किसान का दिया उन्होंने नारा, जय जवान जय किसान का दिया उन्होंने नारा। मेहनत और हिम्मत से देश को मिला सहारा। शास्त्री जी का जीवन हमें यही सिखाता है, सच्चा नेतृत्व वही जो देश के काम आता है, सच्चा नेतृत्व वही जो देश के काम आता है। पुनः आप सभी को शास्त्री जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में आज का विषय भी बहुत ही सुंदर है और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही अच्छा है, जिसको भी दोहरा रही हूँ। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति। पहले मैं बोल रही थी शांति, लेकिन शक्ति आप सुना सकते हैं। सत्य की शक्ति, सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। ये टंग ट्विस्टर आपको 3 से अधिक बार नहीं बोलना है, 2 से कम बार नहीं सुनाना है। देखते हैं कौन जुड़ते हैं और आज का टंग ट्विस्टर बोल के सुनाते हैं, आज के विषय में अपनी राय व्यक्त करते हैं। तो आप जरूर जुड़िएगा और अपनी बात को जरूर रखिएगा। आज इन दो महान विभूतियों का जन्मदिन एक साथ में है। बहुत कम संजोग ऐसे होते हैं जो बरोबर के होते हैं और उनका एक ही दिन जन्म हुआ होता है। भले वर्ष अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डेट एक हो, बहुत आश्चर्य की बात होती है ना। तो ऐसे ही महान विभूतियां हमारे देश में जन्मे थे, गांधी जी और शास्त्री जी, जिनका हम जितना उनको नमन करें, जितनी उनकी महिमा करें उतनी कम है। क्योंकि देखो, दोनों के कर्म बहुत ही अच्छे थे, दोनों ने ही देश के लिए बहुत कुछ किया। कहाँ स्वतंत्रता के आंदोलन में गांधी जी ने अहिंसा के पथ पर चल करके सहयोग दिया, तो कहाँ शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन करके भी साधारण जीवन को जिया। यह भी बहुत बड़ी प्रेरणा है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। अगर हम लेना चाहे तो लोगों को छोटा सा पद पोजीशन मिलता नहीं कि न जाने वो अपने आप को क्या समझ बैठते हैं। अभी चुनाव हुए थे ना राजस्थान में, 2 दिन पहले मेरी तो एक रिश्तेदार का फोन आया, बोले बहन जी हमने इतना सहयोग दिया पार्षद बनने के लिए, इतना सहयोग दिया, रात दिन लगे रहे कि कैसे भी करके हमारे ये रिश्तेदार है जो पार्षद बन जाए। और पार्षद क्या बन गए, 10 बार फोन किया, एक भी बार नहीं उठाया। और उन्होंने अच्छी सी पार्टी भी दी तो हमको नहीं बुलाया। और नहीं बने थे तब तक 10 चक्कर घर के काटते थे कि बहन जी आपका बहुत कांटेक्ट है, आप हमें ज़रूर हेल्प करना। और बोले कि मैंने 50 वोट दिलवाए और आज वो नदारद, कोई मतलब फ़ोन नहीं उठाना, उनके प्रोग्राम में नहीं बुलाना। मतलब एक पार्षद के पद पर भी अगर हम इस तरह करेंगे तो क्या होगा, आप ही सोचिए। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन कितने सादगी, कितने उनके जीवन के सिंपलता की आज भी हमें प्रेरणा देती है। और देश के सहयोग में, देश से वो इतना प्यार करते थे कि 1 रुपया भी वेस्ट नहीं जाने देते थे। तभी तो उन्होंने अपने बेटे का जब 14 किलोमीटर निजी कार्य के लिए गाड़ी चलाकर लेके गए, तो उन्होंने अपनी तनख्वाह में से कटवाए पैसे। बाकी तो समझ सकते हैं आप, खुद के पैसे तो नहीं जाएगा गवर्नमेंट का, ऊपर से दादागिरी बताएंगे कि अरे हम तो इस पद पर है, कौन होते आप। सभी का अलग अलग नजरिया, इसलिए सबको याद नहीं करते हैं, याद उन्हीं को करते हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया होता है। क्या बात है, आज आप ये जयंती मनाने में व्यस्त हो गए क्या, या फिर बस तौबा कर ली? कल फिर क्या है वो आप सभी को पता है, तो आपको जुड़ना तो पड़ेगा ना। हम तो इंतज़ार करते हैं, सब परिवार के सदस्य है तो एक बार ज़रूर बातचीत हो जाए। तो बहुत ही सुंदर विषय है। हम तो यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि प्यारे श्रोता बंधु, ऐसी महान विभूतियों का जब हम ये दिन मनाते हैं तो खाली मना करके भूल जाना ये कोई बात नहीं हुई। जो भी दिन हम मनाएं, अच्छे अच्छे महान विभूतियों का जो भी दिन आता है,
तो कम से कम ज्यादा नहीं तो उनके एक गुण को ही हम अपने जीवन में उतारे। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, मौन में ज्यादा रहते थे, ज्यादा आवाज में नहीं जाते थे, वो सत्य की राह पर चलने वाले थे। तो बहुत सारे गुण हैं, उनमें से एक गुण तो ले ही सकते हैं कि चलो हम सप्ताह में एक बार मौन रहेंगे, या महीने में एक बार मौन रहेंगे, या फिर हम झूठ नहीं बोलेंगे, या फिर अहिंसा के मार्ग में चलेंगे। कोई भी एक गुण तो हम ले ही सकते हैं। शास्त्री जी देखे पूरे ही एग्जाम्पल है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके जीवन से हमको खटकती हो, बिल्कुल ही नहीं। सादा जीवन, उच्च विचार, यही है शास्त्री जी की शान। तो सादगी में भी काफ़ी कुछ दे गए हैं। तो आज हम इन महान विभूतियों को इसलिए तो याद कर रहे हैं, तो इनके गुणों को अपने अंदर धारण करें। एक एक गुण दोनों के ले लेते हैं तो भी हमारा जीवन सवर जाएगा मेरे प्यारे श्रोता बंधु, और आने वाली पीढ़ी को भी इन्हीं से अवगत कराए। आजकल तो फोन का जमाना हो गया है, माता पिता भी फोन लेकर के बैठेंगे, बच्चे भी फोन लेकर के बैठेंगे। अब फोन में कोई प्रेरणादायी कहानियां तो वो सुन नहीं रहे, तो क्या होगा, क्या वो अपने जीवन में उतारेंगे। इसलिए इनको मोबाइल से दूर रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप ऐसे एंजॉय करते हुए बैठिए और कहिए आ जाओ बच्चों, आज

0: बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं कि आप सुनते ही भाव विभोर हो जाएंगे, और ऐसे अंदाज से कहिए कि बच्चे एकदम दौड़े आए कि अरे वाह वाह क्या बात है, आज मम्मा कौन सी कहानी सुना रहे, आज पापा कौन सी कहानी सुना रहे, क्या कहने जा रहे, चलो सुनते हैं। और इंटरेस्ट से सुनाइए इन महान विभूतियों के बहुत सारे जीवन की घटनाएं हैं, तो आप उनको सुनाइए तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, अंदर से प्रेरणा भी मिलेगी, देश के प्रति प्रेम बढ़ेगा और इन महान विभूतियों को भी वो पहचानेंगे। नहीं तो कौन गांधी जी हमें क्या पता, कौन शास्त्री जी हमें क्या पता। हाँ किताबों में है, आया था पाठ, हमने पढ़ लिया, हो गई बात खत्म, ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। वैसे तो स्कूलों में भी इन दिनों को खास बहुत ही अच्छी तरह मनाते हैं, लेकिन फिर भी माता पिता का बड़ों का भी फर्ज बनता है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन दिखाए। इसलिए ऐसे नहीं कि खाली जयंती दिन है तो ही हम कहानी सुनाएंगे, जब हम पहले से कहानियां सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें इनको सुनाते हैं, और जब ये खास दिन आता है तो बच्चे और भी उत्सुक हो जाते हैं, अरे पापा आप वो कहानी सुनाते उन्हीं का दिन है ना, आज गांधी बापू का दिन है, अरे वाह मैं ये करूंगी वो करूंगी, कितने संकल्प आ जाते हैं कि बहुत अच्छे थे वो। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात करेंगे तो कहेंगे अरे वाह भाई गांधी जी तो बहुत अच्छे थे, शास्त्री जी तो बहुत अच्छे थे, ऐसे वो देश के सेवा में सहयोग देते थे, देश की उन्नति में सहयोग करते थे। आप अपने फ्रेंड्स के सामने भी बात करोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि अरे वाह कितना नॉलेज है इनको जरूर, और जो भी दूसरे भी सुन रहे होंगे तो भी कहेंगे कि वाह कितने अच्छे घर से शिक्षा संस्कार मिलते होंगे। तो कोई भी प्रेरणा स्रोत बन सकता है, छोटी छोटी बातों में तो बन ही सकते हैं, ठीक है, हम शास्त्री जी तो नहीं बन सकते, हम गांधी जी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करके हम भी प्रेरणादायी बन सकते हैं। किसी एक ने भी तारीफ कर ली कि क्या आपके बच्चे संस्कारी के, भाई आप बहुत अच्छी शिक्षा संस्कार देते हैं और इन महान विभूतियों का परिचय जो आप कराते हैं हम तो बहुत खुश हो जाते हैं। इतना सुन लिया तो भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत ही प्रेरणा की बात है, इसलिए प्रेरणा स्रोत कोई भी बन सकते हैं। बाकी तो ठीक है, फोन दे दिया बच्चों को, मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, न तो उनका मानसिक विकास होगा और ना ही आंतरिक उन्नति हो पाएगी, क्योंकि मोबाइल लेकर बैठने से क्या होता है, देखा भूला देखा भूला, फिर कुछ गलत बातें हैं तो वो बुद्धि में बैठ गई। आजकल देख रहे हैं ना आए दिन क्या क्या सूचनाएं सुनने को मिलती है कि उसने उसमें से नकल की और ऐसे पिता को मार दिया, ऐसे फलाने को मार दिया। छोटे छोटे बच्चे भी अभी तो क्रिमिनल होते जा रहे हैं, जो न्यूज आती है सुनते हैं उसके अनुसार। तो कहाँ जा रहे हमारे बच्चे, कहाँ जा रहे हमारे शिक्षा और संस्कार। इसलिए आपको एक बहाना चाहिए तो ये बहाना है कि चलो बच्चों आज से अच्छी शुरुआत करते हैं, आज किसका दिन है, आज इन दो महान विभूतियों का दिन है, तो चलो आज मोबाइल नहीं, आज मैं आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाता हूँ, रोज सुनाऊंगा, आज से शुरुआत करते हैं। बच्चे भी बैठेंगे तो कहते हैं ना शुभ शुरुआत अच्छे दिन से कर लीजिए, अच्छा दिन रोज का है, फिर भी आज खास दिन है तो आप अच्छी शुरुआत करिएगा। और चलो हो गया सो हो गया, देख लिया जितना देखना था, फोन देख लिया और जितना बच्चों को जो करना था कर लिया, लेकिन आज से अभी से नियम थोड़ा सा चेंज करिए घर के भी, और भाई फोन तो किसी को मिलेगा नहीं। और आइए हम बात करते हैं उन महान विभूतियों की जिनका आज हम क्यों याद करते हैं, तो बच्चे भी बड़े खुश हो जाएंगे, उनके बाल मन पर तो जो छाप छोड़ेंगे वो छाप जमी रहेगी, मोबाइल की छाप छोड़ेंगे तो मोबाइल की छाप जमेगी, इन महान विभूतियों के जो अच्छे गुणों की बात करेंगे, इनके अच्छे कर्मों की बात करेंगे तो वो छाप जमेगी। अब हमें देखना है कि हमें अपने बच्चों के दिलों में कौन सी छाप छोड़नी है, ठीक है। और आइए अब आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर है गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। यह आज का टंग ट्विस्टर है, सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। हेलो हेलो नमस्ते,
1: हेलो
0: आप जो भी बोल रहे हैं आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
1: अभी आई?
0: हाँ जी,
1: अभी आई क्या?
0: हाँ आई आई। हाँ जी, जय श्री हरि, जय श्री हरि। और सुनाइए, कैसे हैं आप?
1: मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और कैसे हो आप?
0: बस अच्छे हैं हम, आप सुनाइए।
1: ठीक है, सही है गाड़ी।
0: अच्छा,
1: और इसका खुशनुमा जीवन का क्या है?
0: बस विषय समाप्ति की ओर है, दो मिनट है आपके पास। आज हम गांधी जयंती, शास्त्री जयंती मना रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे बच्चों को शिक्षा संस्कार देंगे, कैसे फोन से दूर करेंगे?
1: तो देखिए, फोन से दूर तो ऐसी बात है कि लोग क्या करते हैं कि आजकल क्या है कि छोटा बच्चा होता है ना तो रोता है ना, तो फोन हाथ में दे देते हैं, चुप रह जाएगा। एक घर सभी तरह में ये हो रहा है। आप स्टार्टिंग से बच्चों को ये आदत मत दीजिए। आप उस समय आदत नहीं है ना तो बच्चा फोन खा ले, और इसमें दिलचस्पी लगवाओगे तो बेहतर रहेगा, तो फोन से वो दूर ही रहेंगे। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, माँ बाप
0: जी,
1: आज का
0: टंग ट्विस्टर है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और आइए यहाँ पर एक अल्पविराम लेकर के लौटते हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन। आज हम गांधी जी पर बात कर रहे हैं। गांधी जी पर 1982 में बनी एक फिल्म जिसमें बेन किंग्सले ने गांधी का रोल किया है। ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार भी इस फिल्म ने जीता है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिएगा। आज आपको बहुत ही सुंदर व्यंजन में, जैसे अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो श्राद्ध पक्ष में क्या बनाया जाता है भाई, मीठी चीज़ें ज़रूर बनती है और वो भी दूध की चीज़ तो ज़रूर बनती है। उसमें हम अक्सर खीर बनाते हैं, रबड़ी बनाते हैं, मालपुआ बनाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, ये चीज़ें तो अक्सर बनती रहती है ना। दही बड़े बनाते हैं, ये चीज़ें तो बनती रहती है। लेकिन आज मैं आपको सिखाने जाऊंगी मकई की खीर, ठीक है। कल आपने डोडा पाक सीखा, आज आपको सिखाते हैं मकई की खीर। लेकिन उसके पहले दयाराम जी लाखनी से आपने टंग ट्विस्टर बोल के भेजा है, तो उनके द्वारा हम टंग ट्विस्टर सुनेंगे।
1: गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शांति सादगी की शान, शास्त्री जी गांधी जी का संदेश बने भारत की महान पहचान।
0: चलिए, दयाराम जी ने एक बार बोल के सुनाया है, इनके लिए ढेर सारी तालियां बजा रहे हैं। दयाराम जी बहुत बहुत आभार, लेकिन आपको दो बार तो बोलना ही था, खैर कोई बात नहीं, एक बार भी कोशिश की अच्छी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अलका जी कप्पासन से आपने भी बोल के सुनाया है, तो देखते हैं उनके द्वारा भी सुनते हैं।
2: गांधी जी का सत्य शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति सादगी किसान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति सादगी किसान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति सादगी किसान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान।
0: क्या बात है, अलका जी के लिए भी ढेर सारा बहुत बहुत आभार। अलका जी आपने दो बार बोल के सुनाया है, तीसरी बार भी बोल रखा है, लेकिन हमने दो बार सुना दिया है, चलिए बहुत बहुत आभार। तो बहुत ही सुंदर आपने सुना है इनके द्वारा। और इस तरह आप भी वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, अगर आप जुड़ नहीं पाते तो वॉइस मैसेज भेज दीजिए। और अब खीर बना लेते हैं फटाफट। तो आप क्या करेंगे, मकई वही सॉफ्ट वाली मकई लीजिएगा, है ना, एकदम ताज़ा एकदम सॉफ्ट दाने वाले मकई आपको लेनी है। फिर आप लीजिएगा ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, और फिर आप लीजिएगा शक्कर, ठीक है, दूध, मकई, थोड़ा सा घी, ड्राई फ्रूट्स, शक्कर और इलायची पाउडर, ये हो गई सामग्री। अब बनाने का तरीका भी आपको सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो हमने मकई ली है, छिलके निकाल दीजिए, छिलके निकाल करके इन दानों को भले कद्दूकस करिए, भले इन दानों को निकालिए, निकाल करके यही दरदरा पीस लीजिए, ठीक है। और

कढ़ाई रखे गैस पर, हल्का सा घी डाल करके अब आप ये जो दरदरा पिसा हुआ मकई है ना, ये आप डालिए और धीमी आंच पर अच्छी तरह इसको सेकिए। हल्का सा कलर चेंज हो जाए आप समझ लीजिए कि ये मकई सीख गई है। अब इसमें आप दूध डाल दीजिए, ठीक है। दूध डाल करके अब इसको आप हिलाते जाइए, खीर बनेगी, ठीक है। और अच्छी तरह 10-15 मिनट तक इसको बनाइएगा, और जब आपको लगे कि खीर हमारी तैयार हो चुकी है तो आप शक्कर डाल दीजिएगा। शक्कर डालने के बाद भी 2-3 उबाले लेने हैं, उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए, ड्राई फ्रूट की कतरन डाल दीजिएगा और इलायची पाउडर ऊपर से बुरका दीजिए। तो ये बन गई मकई की खीर, जिसको दूध पाक भी कहते हैं। तो फिर से दोहरा रही हूँ विधि, ध्यान दीजिएगा। मकई को या तो कद्दूकस करिए या फिर मकई के दाने निकाल करके मिक्सर में दरदरा पीस लीजिए। अब आप रखिए कढ़ाई या भगोना, गैस पर घी डालिए और घी गर्म हो जाए तो आप ये दरदरी पीसे हुई मकई आप डाल दीजिएगा और चम्मच से अच्छी तरह हिलाते रहिए धीमी आंच पर। जब ये हल्का सा कलर चेंज हो जाए समझ लीजिए कि ये सिक चुका है आपका। उसके बाद अब आप दूध डाल दीजिएगा, केसर चाहे तो केसर का 1-2 धागा भी साथ ही साथ दूध के डाल दीजिएगा। उबलने दीजिए, अब अच्छी तरह खीर बनने दीजिए। जब आपको लगे कि हाँ अब खीर अच्छी तरह तैयार हो चुकी है तो आप गैस बंद कर दीजिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए और ऊपर से इलायची पाउडर डाल दीजिए। शक्कर तो पहले ही डाल दे देनी है, ठीक है। शक्कर डाल करके जब आपको लगे कि खीर तैयार हो चुकी है तो सबसे पहले शक्कर ही डालनी है। शक्कर गल करके उसके पानी की मात्रा खत्म हो जाए उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, गैस बंद कर दीजिए, फिर इलायची पाउडर बुरका दीजिए। तो ये बन गई मकई की खीर। तो आप अपने पूर्वजों के श्राद्ध में मकई की खीर भी आप खिला सकते हैं। जो मेहमान आपके घर पर आ रहे हैं उनको गऊ ग्रास निकाल सकते हैं सब। तो पहले अपने इष्ट देव को भोग लगाइएगा, उसके बाद आपको जो करना हो करिएगा। तो इस तरह मकई की खीर बनाई जाती है। आइए अब फिर से आज के टंग ट्विस्टर की तरफ बढ़ते हैं। आज का टंग ट्विस्टर ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति, सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। यह आज का टंग ट्विस्टर है। सुनाने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। और फिर से सुनते एक गीत, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी व माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा के साथ हो गया था। उनके 4 बेटे हरिलाल, मनीलाल, रामदास व देवदास। महात्मा गांधी एक नाम, सादा जीवन, उच्च विचार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के इस पावन अवसर पर हम केवल गांधी जी और शास्त्री जी को ही याद नहीं करें, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प भी लेवे। सत्य की राह पर चले, अहिंसा को अपनाए, मेहनत का सम्मान करें और अपने देश को आगे बढ़ाए। इन्हीं महान विभूतियों को शत शत नमन के साथ अब मैं आप सभी से विदा लूंगी। आज का कार्यक्रम तो आपने सुना ही है, काफ़ी अच्छा रहा है। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और उसके भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, उन्हें आप आजमा सकते हैं। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो रेसिपी में जो आपको मक्के की खीर बनाना सिखाई है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं दोहरा रही हूँ। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति, सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति, सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। गांधी जी का सत्य, शास्त्री जी की सादगी, सत्य सादगी से सजे देश की बंदगी, सत्य की शक्ति, सादगी की शान, शास्त्री गांधी का संदेश बने भारत की पहचान। तो मैं खुद के लिए पहले तालियां बजाना चाहूंगी, फिर हमारे श्रोता बंधु जुड़े हैं। सुरेश भाई जोटाना से आपने टंग ट्विस्टर बोल के सुनाया है। दयाराम जी रामपुरा से आपने टंग ट्विस्टर बोल के सुनाया है। और अलका जी कप्पासन से आपने भी टंग ट्विस्टर बोल के सुनाया, इसके लिए आप सभी विषय में जुड़े हैं। सुरेश भाई चौटाना से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, दयाराम जी रामपुरा से, पुणे आप सभी के लिए। आज का मीठा मोती है, मन के संकल्पों को बीच बीच में रोकने का अभ्यास कर लीजिए तो थकावट नहीं होगी। और अब मैं आपको प्यारी सी कविता सुनाऊंगी। इन दोनों महान विभूतियों पर आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। जाते जाते आप सभी से यही कहना चाहूंगी, आप सभी के जीवन में सत्य, शांति और सद्भाव बना रहे। और कल आप सभी को पता है, कल मिलेंगे अंताक्षरी कार्यक्रम में, और कल की थीम रहेगी पुराने पिक्चर के गीत। आप सभी तैयार रहिएगा, आज ही तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है? और कल मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। सत्य अहिंसा का दीप जलाकर गांधी जी ने राह दिखाई, बिना किसी हथियार के उन्होंने आजादी की अलग जगाई। सादगी जिनकी पहचान बनी, सच्चाई जिनका श्रृंगार, राष्ट्रपिता के आदर्शों से रोशन हुआ हिंदुस्तान हमारा। जय जवान जय किसान का नारा जिसने देश को दिया, सादगी और कर्मठता से भारत को गौरव दिया। गांधी जी का सत्य अहिंसा, शास्त्री जी का कर्म महान, इन दोनों के आदर्शों से सदा बढ़े अपना हिंदुस्तान, इन दोनों के आदर्शों से सदा बढ़े अपना हिंदुस्तान।

0: बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है, कार्यक्रम सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, जब हम बचपन में किसी से पूछते हैं, बच्चों से, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, शायद कोई ऐसा होता होगा, बड़े होके मुझे सन्यास बनना है, या फिर मुझे ऐसा जीवन जीना है जिसे देश के लिए मैं सेवा करूं, या फिर मैं ऐसा जीवन जीऊं जो सारे विश्व के लिए मेरा जीवन का कोई मकसद हो। लेकिन जीवन में चलते चलते उतार चढ़ाव आता है और हम कई बातें ऐसे सीखते हैं, फिर अनायास ही हमारा लक्ष्य जीवन का कब बदल जाता है हमें भी पता नहीं चलता। जिस दिन उस लक्ष्य को हम समझ जाते हैं और उस मंजिल पे पहुंचने के लिए जो यात्रा होती है वो कभी सुकून वाला होता है तो कभी बहुत सारी रियलाइजेशंस की बातें होती हैं, कठिनाइयों से भी गुजरता है। जीवन कभी एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का जीवन अलग अलग होता है। लेकिन आज जो हमारा कार्यक्रम जीना इसी का नाम है, आज की जो हमारे मेहमान हैं या आज की हमारे जो योगी हैं, उनका जीवन कैसा रहा और वो ऐसा योगी जीवन जीने के लिए क्यों चुना, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ है राजयोगी आदरणीय शरद भाई जी। आप तो मूलतः कटक उड़ीसा से हैं और वर्तमान समय में आप शांतिवन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कटक से राजस्थान की यात्रा और एक बाल्यकाल में अध्यात्म को चुन करके एक ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के लिए जो निर्णय लिया है, ये सफर कैसा रहा और इस सफर में आपने क्या सीखा है, आइए जानते हैं। उसके लिए हम स्वागत करते हैं आदरणीय शरद भाई जी को आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम में। नमस्कार भाई जी।
2: नमस्कार।
1: ओम शांति।
2: ओम शांति।
1: भाई जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, आप वर्तमान समय में तो शांतिवन ब्रह्म कुमारीज हेडक्वार्टर्स में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो जीवन की शुरुआत है, जहाँ पे आपने जन्म लिया है, उस जीवन के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका जन्म किस परिवार में रहा, क्या माहौल रहा आपके बचपन का और आपके परिवार का, उसके बारे में कुछ बताइए।
2: हम एक्चुअली एक गाँव के रहने वाले है और जिस माहौल में हम पले बढ़े बड़े हुए, माहौल उस समय इतना अच्छा नहीं था जैसे आज समाज में हर जगह शिक्षा की बातें हैं, कला प्रदर्शन की बातें हैं, वो नहीं थी। फिर भी माताजी पिताजी के जो तत्वावधान जो पालना थी, वो पालना हमको बहुत आकर्षक माने जाते, क्योंकि हम घर और स्कूल के सिवाय और कुछ नहीं जानते थे।
1: ये कौन से गांव की बात कर रहे हैं?
2: ये हमारा जन्म स्थान जो ब्रह्मपुरा गांव है
1: जी,
2: वहाँ की बातें कर रहे हैं।
1: ब्रह्मपुरा कटक डिस्ट्रिक्ट में।
2: हाँ जी, हाँ, कटक डिस्ट्रिक्ट। तो उस माहौल में हम सिर्फ इतना जानते थे स्कूल और हमारा घर, उसके सिवाय हम दुनिया के बारे में कुछ इतना नहीं जानते थे।
1: ये कौन से सन की बात रही होगी? जो
2: ये जो है 89, माना बाबा का ज्ञान प्राप्त होने का पहले की बात,
1: 89 से पहले की बात।
2: तो पिताजी जितना पढ़े हुए थे, घर की अवस्था जितना थी, खाने पीने का घर का हो जाता था, बाकी इनकम और एजुकेशन का जो बातें थी हमारे लिए इतना आसान नहीं था। यहाँ तक कि हम 10th तक चप्पल भी पाँव में नहीं पहना था। जब हमारा 10th का एग्जाम हुआ, घर से हम 25 किलोमीटर दूर किसी हाई स्कूल में हमारा एग्जाम हुआ, तब हमने एक चप्पल पहनने का मार्जिन हमको मिला था। उसके बाद हम ये जो बात है 84 की बात, 10th हम जब कह दिया, फिर 85 में हमारा कॉलेज हुआ। तो कॉलेज में हमारा जो पास तो नहीं हुआ, मतलब एक सब्जेक्ट हमारा ज्यादा कमजोर था इंग्लिश, उसके कारण हमको फेल होना पड़ा। नेक्स्ट टाइम हम फिर एग्जाम देके पास किया।
1: आप कितने भाई बहन थे?
2: हम भाई 3 हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ,
1: कोई बहन नहीं।
2: बहन नहीं, तो इसीलिए बाबा ने इतना सारी बहन दिया है। तो फिर उस समय जब हम एग्जाम दिया था प्लस टू का, उस समय बाबा का परिचय मिला। भुवनेश्वर से भाई बहने सब आए थे हमारे गांव में, और उन्होंने जो चित्र प्रदर्शनी लगाए थे उसको हमने जाके देखा सुना, बहुत अच्छा लगा। उसमें से एक चित्र था जो चार स्तंभ का चित्र है, तो उसमें उन्होंने बताया ब्रह्मचर्य सुधर्ण
1: राज्यों की आधार।
2: हाँ, तो उसमें ये लगा कि चारों स्तंभ को अगर हमारा जीवन में हम मजबूत करें, उनको उन्होंने जो समझाया था, तो आप एक देवता बन जाए। हमारा बुद्धि में ये आया, देवता बनने की बात तो अलग है, कम से कम एक अच्छा इंसान बन जाए, ये हमारा बुद्धि में। तो फिर रात्रि का उनका प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपको एक्स्ट्रा जानने के लिए मॉर्निंग में हमारा जो सेशन होगा उसमें आपको आना पड़ेगा। फिर आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र साप्ताहिक का कोर्स हुआ।
1: तो उस कोर्स में आप अकेले गए थे?
2: नहीं, वहाँ उस कोर्स में हम 150 करीब भाई बहन गए थे। उसमें
1: आपकी परिवार से आप अकेले थे?
2: हमारा परिवार से हम अकेले थे। तो उसमें से 75 लोग क्लास किया, शुरू किया। लेकिन कठिनाई ये थी उस समय कि खान पान के ऊपर जो उनका सिस्टम था कि राजयोग अभ्यास करने के बाद प्याज लहसुन ये सब चीज को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने एक टारगेट दिया था, आप सुबह शाम मेडिटेशन करो, ये नहीं सोचो कि हम मच्छी वगैरह सब खाते हैं वो कैसे होगा क्या, उसके बारे में आप सोचो नहीं, आप सोचो कैसे करके हम दोनों टाइम में राजयोग अभ्यास करें। राजयोग अभ्यास करते करते करते आपको अच्छा फीलिंग्स होगा और उस फीलिंग्स के आधार पर ये सारे चीजें आपसे दूर हो जाएंगे, संग दोष और ये खान पान, क्योंकि हमारा उस समय पान सिगरेट मद जो शराबी वगैरह ये हमारा अभ्यास में नहीं था, क्योंकि घर की थोड़ा पिताजी की स्ट्रिक्ट, चाय तक पिया नहीं था हमने और आज तक हम चाय नहीं पीते।
1: अच्छा
2: जी। क्योंकि एक बार पिताजी के पास हम गया था चाय पीने के लिए, कुछ मेहमान आए हुए थे तो कटोरी लेके चला गया, पिताजी हमको मुरमुरा थोड़ा थमा दिया, चाय की बात जब आया, तुम जब इनकम करेगा तब चाय पिएगा।
1: अच्छा।
2: तब से आज तक हमने चाय पिया नहीं। तो ये हमारा बुद्धि में था नहीं कि हमने ज्ञान में चलेंगे, बाकी इच्छा था, सत्संग करना जीवन में अच्छा है, तो ये चीज हमको बहुत आकर्षित किया। तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं, जैसे चलता है आज ही चलने दो, और धीरे धीरे धीरे धीरे वो छोड़ के चले जाए। तो फिर हम बोला ठीक है, हम क्यों इतना मेहनत कर, जब वो अपने आप छोड़ के जाएंगे हमें कोई मेहनत करना जरूरी नहीं। लेकिन तब
1: मतलब
2: से
1: हमारी कमी कमजोरी अपने आप चले जाए।
2: अब हाँ, हमारा कमी कमजोरी अपने आप चले जाए।
1: तो फिर परिवार में पता था कि आप राजयोग मेडिटेशन सीख रहे हैं?
2: परिवार में पता यहाँ तक था दीदी कि पिताजी को लोगों ने ये बता दिया कि इस संस्था में जो जाता है वो मैरिज नहीं करता है।
1: अच्छा।
2: तो ये पिताजी को तब पता चला, और पहला दिन कोर्स में हमने घर पे बता दिया कि आज से मच्छी वगैरह जो होता है मैं नहीं खाऊंगा। सेकेंड दिन का कोर्स में जब आया फिर माताजी को बोल दिया कि ये प्याज लहसुन मेरे लिए नहीं करने, अलग से कुछ भून लेना मैं खा लूं। तो उस समय पिताजी को माताजी ने बोले ये क्या दो चार दिन से बोलता है मैं प्याज लहसुन कुछ नहीं खाऊंगा। तो पिताजी उनको ये बोले ये ओम शांति कुछ सत्संग हो रहा है, गाँव के कुछ लोग जा रहे हैं, ये वहाँ जाता है सुनने में आया, तो वो लोग जब चले जाएंगे फिर उनका नेचुरल जैसे चलता था ऐसे चलेगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये
1: जाने वाले
2: और इस लाइन में पक्का हो जाएंगे। लेकिन माताजी का एक था आशीर्वाद कि वो चाहती थी मेरा कोई एक संतान अगर इस मार्ग में जा रहा है तो ये हमारा भाग्य की बात है। जो लौकिक में सुना करते हैं कि अगर अपना लड़का या अपना परिवार में कोई साधु संन्यासी बनता है तो ये पूर्व भाग्य की ही बात है। ये जो विश्वास था घर पे गांव पे भी आज तक है
1: जी।
2: हर कोई घर से या परिवार से साधु संन्यासी बनना इतना आसान नहीं है। फिर हमारा ये सिलसिला चलता रहा। गांव में जो 75 लोग आ रहे थे रेगुलर क्लास करने के लिए, जो भाई निमित था उनका ट्रांसफर हो गया। किशोरी डिपार्टमेंट का अच्छा एक भाई मैंने गांव का था, ट्रांसफर होने के बाद धीरे धीरे जो दायित्व लेकर के कर रहे थे तो धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन हमने जो 5-6 महीना रेगुलर क्लास किया था तुरंत जो बंद हुआ हमको बहुत कष्ट हुआ, उतना कष्ट हुआ कि इसके लिए हमारे पास अभी शब्द नहीं है। फिर गांव से 8 किलोमीटर दूर एक गांव था तुलसीपुर, तो वहां फिर जाने के लिए हम सोच, तब हमारे पास सिर्फ साइकिल था, कॉलेज वाला साइकिल।
1: मतलब जब 89 में आपको इस राजयोग मेडिटेशन का परिचय मिला उस समय आपकी क्या उम्र रही?
2: 23।
1: अच्छा।
2: 12वीं में था, उसके बाद जो एग्जाम हुआ एग्जाम के बाद हमने बाबा का परिचय प्राप्त, मतलब ये है 89 की। तो फिर जो साइकिल था उसको लेकर के हम गाँव से रोज 8 किलोमीटर दूर जो गीता पाठशाला हमारे था, रात को भोजन करने के बाद फिर हम चले जाते थे, रात को वहाँ रुकना, फिर अमृत वेला वहाँ करके मुरली क्लास करके फिर गांव में आना। ये सिलसिला हमारा 89 9 से लेकर 91 तक चला। फिर 91 में मधुबन से एक न्यूज गया कि 91 का जो ब्रह्मा बाबा का जनवरी मास में जो होता है योग तपस्या, और 91 में जो तपस्या मास चला, तो यहाँ से मैसेज गया था कि दादियों ने जो बाबा के साथ 14 साल तपस्या किया था, अगर इस महीने में हम लोगों वो तपस्या करते हैं तो 14 साल का जो बाबा का बच्चों को जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त ईश्वरीय प्राप्ति जो होगा आपको वो मिलेगा। तो पिताजी को बोल के फिर हमने उसी गीता पाठशाला में एक महीने तक वहाँ रहा था और योग भक्ति का प्रैक्टिस हमने वहाँ किया था तुलसीपुर गांव। फिर पिताजी से जब हमने छुट्टी लिया, पिताजी बोले कि तुमने यहाँ गांव में क्लास करता था, सत्संग करता था, अभी यहाँ से फिर दूर 8 किलोमीटर दूर कौन इतना सत्संग से क्या प्राप्ति होता है जो तुम वहाँ जाते हो, और फिर अभी बोलते हो कि वहाँ मुझे एक महीना रहना है, फिर आगे का क्या। मैंने बोला आगे का क्या तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, बाकी आपका छुट्टी हो तो एक महीना जाके थोड़ा योग तपस्या अभ्यास करेंगे, फिर आगे का जब होगा तो आपको बताऊंगा।
1: पढ़ाई की प्रेशर नहीं थी, अभी तो 12वीं किया है, अभी आप ये सब कर
2: तो बुद्धि में यही था कि बहने भाई लोग जो सफेद ड्रेस में गांव-गांव गली-गली में सेवा कर रहे, मन उसमें ये आकर्षण था मैं जाकर लोगों को सत्संग सुनाऊंगा, ये बुद्धि में था। फिर ये लोगों ने बताया कि कुछ दिनों के बाद संसार विनाश हो जाएंगे।
1: अच्छा,
2: मैंने 2000 उनका टारगेट था कि जो अपना गाँव में सब बोलते है ना, अलग अलग दर्शन वाले, अलग अलग जो कुछ भविष्य ज्ञानताकारी जो जानकारी वाले बोलते हैं, उसी हिसाब से बुद्धि में था कि 2000 अगर विनाश हो जाएगा कुछ पुण्य कर ले तो काम आएगा, इसी हिसाब से हम चल पड़े। तो पिताजी बोले ठीक है, फिर हमने वहाँ एक महीना जनवरी मास का पूरा कंप्लीट किया था। तो उस समय में भुवनेश्वर में दादी प्रकाशवाणी को आना था जनवरी 26 को, तो सभी ने बोले हमारा भट्टी चल रहा है और वो भट्टी को कैसे ब्रेक करके हम चले, लेकिन हमारा बुद्धि में था कि दादी बड़े मुश्किल से राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं, कभी चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए दादी का दर्शन हम कर ले। तो उस गीता पाठशाला से 4-5 भाई हम फिर आए थे भुवनेश्वर दादी से मिलने, तो वहाँ के आकर्षण और बहुत था कि देखो दादियों ने कैसे कैसे कहाँ से कहाँ कहाँ से कहाँ, जब यज्ञ का हिस्ट्री थोड़ा बहुत मालूम हुआ फिर ये चीज और गहरा होता गया। फिर वहाँ से आकर फिर जैसे योग भट्टी चालू था ऐसे किया, ताकि वहाँ से एक नया चीज हमको आभास हुआ, हमारे गांव से एक भाई जिसका फैमिली टोटल आके भुवनेश्वर में रह रहे हैं और टोटल फैमिली उनका ज्ञान में चल रहे, तो उस भाई के साथ जब हमारा परिचय हुआ और वो योग कैसे करते है, अनुभव कैसे होना है, हमारा ब्राह्मण जीवन कैसे होना चाहिए और कुमार जीवन और लौकिक जीवन में क्या अंतर है, वो डिटेल से उन्होंने बताया कि हम नए नहीं थे, और उन्होंने जितना भी बताया हमें बिल्कुल कुछ मालूम नहीं था। फिर उन्होंने ये सारा पूछने के बाद क्वेश्चन किया कि आप ज्ञान में क्यों चला, क्या कारण है जो आप ज्ञान में चलते हो। फिर मेरे को एक शक लगा क्योंकि ये लोग बोलते थे कि ज्ञान में चलो, जब नहीं चलते थे तब बोले कि ज्ञान में चलो तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। फिर जब
1: ये किसने बोला ज्ञान में चलो,
2: जो भाई जो गांव का था जिन्होंने भुवनेश्वर में पिताजी के साथ रहा करते थे, टोटल फैमिली उनका था भुवनेश्वर में, उनका पिताजी भुवनेश्वर में कहीं नौकरी करते थे, तो ये भाई बहन सब ज्ञान में चलते थे। और वो भाई जब ये पूछे मैंने भाई साहब आप लोग तो बोलते हो ज्ञान में चलो, फिर ज्ञान में चलने के बाद बोलते हो ज्ञान में क्यों चला, इसका क्या
1: अर्थ है।
2: अर्थ है
1: जी,
2: नहीं फिर भी कुछ तो मन में आया होगा तो आपने ज्ञान में चला। मैंने इतने उनको थोड़ा रुक के बोला कि देखो सभी बोलते हैं क्या मैंने दुनिया 2000 को विनाश हो जाएगा, तो विनाश होने के पहले कुछ पुण्य कर दे ताकि कुछ काम में आएगा। फिर उन्होंने पलट के फिर दूसरा क्वेश्चन किया, तो अगर 2000 को विनाश नहीं हुआ तो ज्ञान छोड़ दोगे, तो हमारे मन में एक धक्का आया, अगर ज्ञान इतना दिन चलने के बाद छोड़ देंगे कैसे। तो उन्होंने बोले आपका उत्तर ही बोलता है कि 2000 तक चलेंगे उसके बाद गारंटी कुछ नहीं, तो ये तो फिर आपको ज्ञान में चलने नहीं देगा। उनका कहना था कि ज्ञान मैंने 2000 को विनाश नहीं होगा तो ज्ञान छोड़ दोगे, इसी हिसाब से हमने बोला कि नहीं। फिर हमने बोला कि नहीं अब जब इतना दिन चल पड़े हैं तो फिर आगे चल पड़ेंगे, ना ये पूरा निश्चय नहीं हुआ। उन्होंने पूरा ऐसे कहा कि तुम्हारा
1: ज्ञान की तर्क वितर्क की बातें की।
2: हाँ जी हाँ जी
1: जी।
2: तो फिर उन्होंने बताया कि आपका बुद्धि में ये रहना चाहिए और आज से रखो कि विनाश कब होगा उसका कोई मूल ये नहीं है, उद्देश्य नहीं है, जब विनाश होगा होगा, तो मुझे बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है,
1: परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ना है।
2: तो ये बुद्धि में रखो तो आपका विपरीत परिस्थिति में कभी कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब ठीक है,
1: लेकिन समर्पित होने का संकल्प कैसे लिया?
2: फिर समर्पित की बात जब आई, वो भाई की ये जो बात हुआ, फिर उनसे थोड़ा दोस्ती जैसा हो गया एकदम नजदीक, और ये फीलिंग हुआ कि हमारा एरिया का भाई है, तो उनसे फिर नजदीक होकर के ज्ञान की कुछ बातें हुआ, फिर माउंट आबू की बातें हुई, फिर हम वहाँ रह सकते नहीं रह सकते ये सारी बातें, क्योंकि सेंटर की इच्छा नहीं थी, और हेडक्वार्टर में रहने का अगर चांस मिलता है तो आगे बढ़े। और उस समय हमारे एरिया का एक भाई था जो दिल्ली में रहा करते, तब हम उसको देखा नहीं था, तो ये बुद्धि में आया जब वो भाई दिल्ली में रह सकता है तो हम क्यों नहीं। फिर भाई जी से उसी समय बात कर लिया कि मेरा इच्छा है माउंट आबू में जाके परमानेंट सेवा कर। फिर वो भाई ने अच्छा नोट किया था, क्योंकि हम जब यहाँ घर से जाते थे 8 किलोमीटर दूर, वहाँ जाकर स्नान करके अमूर्ति वेला करना, फिर मुरली पढ़ना। और दीदी आज तक हमने जब से ज्ञान में चले, जो बीच में जो बंद हुआ था वो भाई के कारण, उसके अलावा हमारा आज तक यज्ञ में जब से है मुरली एक भी दिन मिस नहीं हुआ। पता नहीं क्यों मुरली के समय में हमारा सारा काम बंद करके हम सीधा चले जाते मुरली क्लास में, यही हमारे पास एक ही ताकत है, बाकी तो परिवार संगठन भाई बहन की आशीर्वाद ऐसे हम अभी तक चल रहे।
1: तो समर्पित का संकल्प कैसे आया और मधुबन कैसे पहुंचे?
2: फिर वो जो भाई से हमने मिला था, वो भाई को हमने बोला कि घर पे हम 3 भाई है, मैं सबसे बड़ा हूँ, और घर का जो जमीन है लोग की खेती बाड़ी, वो साल के लिए हमारा खाना पीना हो जाता है, तो इसीलिए हमारे ऊपर कोई इतना बड़ा
1: जिम्मेवारी
2: नहीं है। तो ये भरोसे से भाई से हमने बात किया, वो भाई ने हमको भरोसा दिलाया कि ठीक है हम दादी से बात करते। फिर दादी से बात करके उन्होंने मैसेज दिया, दादी ने उनको बोला था कि भाई वो कहीं गांव का रहता है, ज्ञान योग कैसे करता है नहीं करता मैं नहीं जानता, संगठन में कैसे चलेगा, किसका संस्कार कैसे, ये संस्कार मिला के चल पाएगा नहीं पाएगा वो मैं नहीं जानता, जब तुम्हारा भरोसा है तुम्हारे भरोसे ऊपर मैं राजी होता हूँ, लेकिन एक शर्त है, वो भाई को बुलाओ ओम निवास, ये वो मेरे सामने ज्ञान योग करेगा संगठन में रहेगा, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि ये कैसे ज्ञान में चल सक या नहीं चल सक। फिर एक भाई के पास मैं रहा, उन्होंने सेटिंग किया, 1 महीना दादी के सामने ज्ञान योग सेवा जो मिलता था सेंटर का वो सेवा करने के बाद, उस समय शांतिवन का कंस्ट्रक्शन चलता था, तो महेंद्र भाई आज है नहीं, तो उन्होंने दादी को मैसेज दिया कि हमको 2 भाई चाहिए, वो भी उसमें हमारी नाम नहीं था, जो भाई दिल्ली गया था वो भाई, वो जिसको चुनेगा दूसरा भाई, तो वो भाई ने भेजा मेरे को गांव कि वो भाई को बुला के लाना कि वो माउंट आबू आए। तो वो भाई को जब हमने मिला और उन्होंने लौकिक में बाबा का प्रचार प्रसार बाबा का सेवा करूंगा इस हिसाब से मैं अभी मधुबन नहीं आ सकता ये दादी को आप बताना, फिर उस समय हमारे पास जितना बुद्धि था उसी हिसाब से उनको समझाया कि भाई मधुबन जैसा स्थान नहीं मिलता है, अगर ऑफर मिलता है और आप तो दिल्ली में कुछ दिन रहा फिर वहाँ क्या दिक्कत है, लेकिन उनका एक जिद्दी था कि लोकल में हमारा बाबा का सेवा करें, ये तो उनका विचार था। फिर हमने चुपचाप आ गए, लेकिन ये ठान के आए कि अब वो भाई नहीं जा रहा है, उसके साथ जो दूसरा भाई जाना था वो भी नहीं जा रहा है, तो इसलिए हमारा नंबर पक्का है। तो उस हिसाब से हमने दादी को मैसेज दिया, और वो मैसेज देने के बाद फिर हमारे पास उस समय कुछ नहीं था, टिकट दादी करवाई, फिर ड्रेस भी कुछ नहीं था, ड्रेस भी बनवाए टिकट भी बनवाए हमको गाड़ी में छोड़े। तो इसी हिसाब से हमने मई 25 मेरा जन्मदिन था, मई 25 को ट्रेन में बैठा वहां से, और यहाँ 27 को पहुंचा। फिर पहुंचने के बाद हमको सेवा मिली कंस्ट्रक्शन में सुपरविजन के, और इतना धूप होता था उस समय
1: शांतिवन का
2: कंस्ट्रक्शन महेंद्र भाई के अंडर में, बड़े मधुकर जो आज कारपेंटर में है रमेश भाई कंस्ट्रक्शन के, उनके साथ हमको सेवा मिला।
1: मगर आप तो सिर्फ 12वीं पढ़े थे।
2: जी जी जी, कंस्ट्रक्शन का इतना कोई कुछ ज्ञान नहीं, बाकी सेवा करे जो सेवा के मिलेगा वो करेंगे, उसी हिसाब से हमको वहाँ यहाँ
1: जी
2: शांतिवन में सेवा मिला, और सेवा में लग गए, और इस तरीके से शांतिवन पहुँचना आसान हुआ। और वहाँ 96 तक हम जो सेवा किया कंस्ट्रक्शन में, तो बुद्धि में उस समय ये आया था, हम नहीं जानते थे कि प्याड ऑफिस में एक फाइट बनता है, ये होता है वो होता है, हमारा बुद्धि में नहीं था, हमारा बुद्धि में ये था कि हम समर्पित हो गए, बाकी ये जो फाइल बनाना ये चीज हमको
1: नहीं पता।
2: तो फिर जब ये पता चला कि इसे फाइल बनता है और वह रजिस्ट्री वगैरह बनता है, फिर हमने ये डिसीजन कर लिया जब तक हमारा फाइल नहीं बनता तब तक हमको घर जाना नहीं है।
1: अच्छा,
2: 91 से लेकर के 96 तक हम घर नहीं गए थे। 96 के बाद हमारा जो यहाँ के हिसाब से जो फाइल बनना था बनना, हमारा नंबर आया, उसके बाद हम घर गए।
1: अच्छा, बीच में आप जो बोल रहे थे कि संन्यास मतलब ऐसे भिखारी वाला संन्यास नहीं बनना है, तो वो बात कहाँ से आई?
2: क्योंकि हमने देखा प्रैक्टिकल में जितने साधु संत महात्मा हमने देखा है, गेरुआ वस्त्र धारण करके गांव में आके लोगों को भिक्षा दे ही करके जो मांगते थे,
1: भिक्षा लेते,
2: हाँ, ये हमको कष्ट होता था। क्योंकि जो भी हमने जिन जिन को देखा है, एजुकेटेड पर्सन देखा है, लेकिन ऐसे मांगते है, कई लोग बोलते थे उनको कि आप इतने हट्टे कट्टे हो, आप मांग के क्यों खाते हो, सन्यासी बन गया ठीक है, लेकिन मांग के खाना ये कौन से सन्यासी की? और जब लोगों से मांग के खाते हो तो सन्यासी किसी बात की रहा? पिताजी माताजी को छोड़ा यहाँ आकर के मांग के खाते हो, ये चीज हमको बड़ा अकड़ता था कि ये सन्यासी हमको फिर पसंद नहीं।
1: तो जब आपको समर्पित होने का ख्याल आया, लेकिन आपको ये क्लैरिटी थी कि आपको सन्यास बनना मतलब भिखारी वाली सन्यास नहीं बनना है, भिक्षा लेने वाली सन्यास नहीं बनना है, तो आपको उस समय क्लैरिटी थी कि मैं जब ईश्वरी विश्वविद्यालय में समर्पित होऊंगा तो मेरा एक रॉयल लाइफ होगा और मुझे इस तरीके से भिक्षा लेने की जरूरत नहीं?
2: तो बुद्धि में ये था, जो बहने भुवनेश्वर से आए हुए थे, वो लोगों जो खाना खाते थे और भुवनेश्वर सेंटर में रहते थे, वो कहीं नहीं जाते थे, बाबा का भंडारी से जो मिलता था, जैसे पालना मिलती थी उसी हिसाब से वो चलते थे। भाई जब वो चल रहे हम क्यों नहीं चल सकते, ये बुद्धि में पक्का था। क्योंकि ज्ञान को समझाना और खुद समझना, लोगों तक उस बात को प्रैक्टिकल रखते थे वो लोग, ऐसे कोई प्रश्न नहीं जिस प्रश्न का उनके पास उत्तर नहीं था, तो हमने उस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। पर उन लोगों ने जो पूछा था कोर्स करने के समय, हर चीज के ऊपर उनका क्वेश्चन था, क्रॉस क्वेश्चन,
1: उनके पास जवाब थी,
2: उनके पास वो जवाब। दूसरा आकर्षण था, जब हमारा गांव में कोर्स चला उसमें इंजीनियर प्रोफेसर ये सब थे, किंतु लौकिक में हमने नहीं देखा था जो साधु संत महात्मा और जो लोग सत्संग करते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग कभी सत्संग करते हुए हमने नहीं देखा, सत्संग कराने के लिए भी ऐसे एजुकेटेड पर्सन नहीं देखा था। वो चीज थोड़ा हमको और आकर्षित किया कि इस ज्ञान में जरूर कुछ है, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर थे, होम डिपार्टमेंट का बड़ा ऑफिसर था, एक बड़ा इंजीनियर भाई था जो हमको कोर्स कराया था, तो हमने देखा मतलब इस ज्ञान मार्ग में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों ये पढ़ाई पढ़ते हैं, और जब इतने पढ़े लिखे लोगों इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो जरूर इसमें कुछ अंधविश्वास की बात नहीं होगा। तब वो लोग, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो ऊट पटांग क्वेश्चन करते हैं, गांव वाले भी इतना क्वेश्चन नहीं कर सकते जितना क्वेश्चन वो लोग, ऐसे गांव में था कोर्स के समय सभी लोगों ने हर चीज को माना, लेकिन सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष है उस चीज को कोई नहीं माना। फिर जो कोर्स करने वाले भाई थे, हम उनसे डायरेक्ट पूछा, मतलब भाई साहब एक बात पूछो, कोई बात नहीं पूछ। फिर हमने पूछा था उनको कि ये लोग सभी बात को मानते हैं, आत्मा को माना, परमात्मा को माना, सृष्टि चक्र में जब सृष्टि चक्र की समय सीमा 5000 वर्ष कहा गया वो नहीं माना। फिर उन्होंने एक लॉजिक दिया कि देखो हम 10 किलोमीटर रास्ता जब तय करते तो उस रास्ते में जब हम 90% सिग्नल देते कि ये चीज है, लास्ट सिग्नल को अगर कोई मानता नहीं है और हम कहते हैं कि लास्ट सिग्नल यही होगा, अगर वो नहीं मानते 90% चीज को उन्होंने स्वीकार किया है तो फिर ये जरूर 100% सत्य है। अगर वो लोग नहीं मानते तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो बाबा जाने और हो जाए। फिर हमारा बुद्धि में ये हो गया कि ये लोग कुछ बोले या ना बोले इसमें कोई मतलब नहीं। फिर दूसरी बात, जब 6 महीने वो लोग ज्ञान में रेगुलर सुने और उसके बाद सिर्फ खान पान के कारण चले गए, प्याज लहसुन नहीं खाना है, मांस मंदिर ये नहीं करना है, फिर मैंने बोला ये लोगों का निश्चय नहीं है।
1: जब आप समर्पित होने के लिए आए और ये सारी बातें, तब तक फिर आपके परिवार मान गई थी आपकी इस तरह?
2: परिवार वाले माने थे कुछ, बाकी कुछ नहीं माने थे, क्योंकि उनको जब बोला गया पब्लिक से कि संस्था में जो जाते हैं मैरिज नहीं करते, और घर पे घर का बड़ा होने के कारण साहस से कोई पूछ नहीं पाते थे। फिर एक दिन हमारा बुआ जो होगा तो उन्होंने पूछा कि ऐसे से बात हम सुन रहे हैं, मैंने बोला ऐसे कोई बात नहीं, अगर वहाँ मैरिज का कोई सिस्टम नहीं है फिर वहाँ वो सत्संग करने हम जाएंगे, तो उनको ये जवाब हमने दिया था। तो अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं और घर पे उसमें भी हम एडजस्ट करके रह रहे हैं। अच्छा, जो बंदे को हम लाएंगे घर पे उसका खाना पीना रहना ये सारी सिस्टम करेंगे, फिर नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, इनकम सोर्स कुछ होगा, उसके बाद सोचेंगे कि मैरिज करना है नहीं। फिर उनके बुद्धि में क्या है, नहीं नहीं हमारा लड़का ठीक समझा है, अभी पढ़ता है, नौकरी या चाकरी जो भी बिजनेस करेगा उसके बाद मकान उसके लिए बना के फिर मैरिज कर। मतलब फिर उन्होंने छुट्टी दिया, बेटा तुम जिस रास्ते में जाते हो वो रेगुलर जाओ।
1: फिर खान पान का भी छूट मिल गया।
2: हाँ, फिर क्योंकि उन्होंने ये समझा कि हमारा लड़का ज्ञान ठीक समझा है,
1: ठीक समझा,
2: क्योंकि नौकरी करेगा।
1: फिर भले वो फॉलो नहीं करते हैं, वो सेंटर नहीं जाते, लेकिन आपको छुट्टी मिल गई।
2: छुट्टी मिल गई,
1: बहुत अच्छा। सो भाई जी, वर्तमान समय में आप क्या करते हैं संस्था में?
2: संस्था में यहाँ जितने भाई बहन हम लोग रहते हैं, दुनिया के हिसाब से हम लोगों सभी अपने अपने जो सेवा स्थान मिला है, जैसे हमको पीने का पानी का सेवा मिला है वहाँ हम सेवा दे रहे, उसके साथ जब पब्लिक में कभी सेवा का चांस मिलता है वो करते हैं। बाकी ड्रिंकिंग वाटर सेवा में हमको 10-12 घंटा से ज्यादा समय हो जाता है।
1: मतलब इतने बड़े कैंपस में जो मिनरल ड्रिंकिंग वाटर की आवश्यकता होती है,
2: उस सेवा में हम अपना समय
1: जगह जगह पे उस समय पे उपलब्ध रहे। वाटर मशीन चलाओ, क्लीनिंग करो, क्लीनिंग वाटर करो, और मशीन का मेंटेनेंस, ये सारी चीजें आप संभालते हैं
2: जी।
1: बहुत अच्छा है भाई जी। आपको जीवन में कब ये महसूस हुआ कि इसे जीना कहते हैं या जीना इसी का नाम है? वो क्या पल था, क्या मोड़ था वो?
2: ये तो हमने इतना नहीं सोचा, बाकी ये सोचा कि जैसे कोर्स के समय जो भाई बोला था, ये चीज अगर आपके जीवन में आ जाएगा आप एक देवता बन जाओगे, तो हमारा लक्ष्य वहाँ था कि हम देवता बनने की बात छोड़ो, एक अच्छा इंसान बन जाएंगे, ये हमारा बुद्धि में था। तो ये था जब हम कोर्स करने के पहले जो मैसेज था कि अच्छा इंसान बन जाएंगे समाज के अंदर। आज समाज में ये देखा जाता है कि लोगों कितना एजुकेशन लिया हुआ हो, कितना भी पढ़ाई किया हो, लेकिन चरित्र नाम का चीज उनके पास नहीं है। जैसे सर्टिफिकेट मिलने के बाद कैरेक्टर इज गुड लिखा जाता है, लेकिन आज के समय अगर उनको पूछा जाए कि कैरेक्टर क्या है, तो उसका जवाब नहीं दे सके। और उसका जवाब सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जितने भाई बहन है वो लोग उसका जवाब दे सके। तो ये चीज ज्यादा हमको प्रभावित
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आज आप अपने अमूल्य समय लेकर के आए, और हम सभी को आपकी जीवन के उन चंद पलों से अनुभव कराया कि बाल्यकाल में हमारे मन में जो चीजें होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन की दिशा बनाती हैं। भले उस समय हम ये सोचते हैं कि हम बड़े होकर के इंजीनियर बने, क्या बने, लेकिन मूलभूत जो हमारी संवेदनशीलता या भावनाएं जो होती है वो हमारी जीवन की दिशा बनाती है
2: जी। थैंक यू,
1: धन्यवाद भाई जी। तो दोस्तों, ये था आज के इस योगी की कहानी, जीना इसी का नाम है। इस कार्यक्रम में आप हमेशा जीवन के उन पलों को या फिर हर एक के जीवन के कुछ नया दृश्यों को आप सुनते हैं, और ये प्रेरणा लेने की हम कोशिश करते रहते हैं कि क्यों हमें इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, और आध्यात्मिकता से हमारे जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन या हमारे जीवन में शक्ति का प्रदान होता है। दोस्तों, यही पे हम विराम लेते हैं और फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए योगी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती है और महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पितामह कहा जाता है। उन्होंने अपने सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को खत्म करने और गरीबों का जीवन सुधारने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम किया था। उनकी सत्य और अहिंसा की विचारधारा को मार्टिन लूथर किंग तथा नेपाल के नेल्सन मंडेला ने भी अपने संघर्ष के लिए ग्रहण किया। महात्मा गांधी एक नाम, सादा जीवन, उच्च विचार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते हैं सभी वर्ग से मिलते हैं, हमें खुशी है। सरकार का जो मंशा है आसपास गांव में अंचल में जो गतिविधि हो रही, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसको खोज के जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा है एक मंच देता है। तो आज इस मंच को लेकर सुदूर आबू रोड से पहुंचे पूरा जालौर जिला में और स्कूल का पूरा नाम बताएंगे, गांव का भी नाम बताएंगे, लेकिन हमारा श्रोता मित्र वॉल्यूम को तेज करके सुनिए। ये सामुदायिक रेडियो सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए प्रस्तुत करना होता है। तो 107.8 FM पर आप सब सुन रहे और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ वरिष्ठ शिक्षक भी है, तो उनको स्वागत करते। सर अपना परिचय दीजिए, बच्चों को वार्म अप हो जाएगा और आपका आवाज देकर बच्चे भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे। आप अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन प्लीज।
1: सर मेरा नाम सुनील है, मैं पाली जिले का स्थानीय निवासी हूँ और मैं जालौर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आहोर में पोस्टेड।
0: जी सर, स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए।
1: सर हमारा स्कूल काफी लंबे समय से स्थापित किया गया था स्थानीय क्षेत्र में। यहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार पिछले कई वर्षों से उनके उत्थान, उनके उन्नयन और उनके समग्र विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं।
0: जी बहुत अच्छा। और कितना स्टाफ सर?
1: हमारे विद्यालय में कुल स्टाफ की संख्या 22।
0: और प्रिंसिपल?
1: प्रिंसिपल महोदय श्रीमती अंशु बाला जी है।
0: जी बहुत अच्छा। और बालिका स्कूल आपका है, क्योंकि बालिका स्कूल जो नाम सुनते कितना खुश लगता है, क्योंकि बालिकाओं में अंदर में अनुशासन
1: जी
0: और कुछ सीखने के लिए ललक रहता है।
1: ललक
0: बालक में थोड़ा सा पहले जैसे नहीं है, पर बालक आज बहुत अलग टाइप का, कि जो मीडिया का चलते, मोबाइल का चलते बच्चे दिशाहीन हो रहे, लेकिन लड़कियां और खासकर अनुशासन में रहते हैं और गॉड गिफ्टेड है बहनों को।
1: जी
0: तो आपका जो स्कूल है ये कम बात नहीं, बालिका स्कूल है, तो बालिकाओं का उपस्थिति बहुत लगभग कितना सर?
1: जी हमारे विद्यालय में 450 का नामांकन है और प्रतिदिन 90% से अधिक विद्यार्थी उपस्थित रहते हैं और अध्ययन के प्रति इनकी गंभीरता और अन्य सह शैक्षिक गतिविधियों में इनका आगे आना बहुत ज्यादा हमें प्रेरित करता है।
0: क्योंकि बढ़ चढ़ कर बच्चे भाग लेते हैं तो हमारा इस कार्यक्रम को सजाएंगे। सर खासकर बालिका शिक्षा को लेकर जैसे सरकार का जो मंशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
1: जी,
0: और सही में आज मुझे देखने को मिल रहा है आपका स्कूल में
1: जी,
0: सभी विद्यार्थी पूरा उमंग उत्साह के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज 4-5 बच्चे अपना भाग लेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद एक प्रस्तुति सुनेंगे, पहला प्रस्तुति। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM।

देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर्ण निष्ठा है क्योंकि इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि बदले में उसे क्या मिलता है। ये महान विचार है लाल बहादुर शास्त्री जी के।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें खुशी है आज बच्चों का आवाज खासकर बालिका विद्यालय में पहुंचे तो गर्ल्स का जो नाम जब सुनते हैं जैसे हमारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी द्वारा और आपका भी बालिका स्कूल है ना तो बहुत खुशी लग रहा है और बालिकाएं भाग लेंगे तो पहला प्रस्तुति हमारा साथ बालिका उपस्थित है तो पहले अपना नाम बताएंगे और स्कूल का पूरा नाम बताएंगे आप अपना परिचय दीजिए प्लीज हमारा श्रोता मित्र ध्यान से आपको सुन रहे हैं।
1: मेरा नाम चेतना है मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ और हमारे स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आओर जिला जालोर।
0: गुड बहुत अच्छा कैसे लगा आज पहला बार मिला रेडियो मधुबन वाले पहुंचे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए आपको क्या क्या सीखने को मिला और क्या लगा?
1: अच्छा लगा।
0: चेतना नाम तो कितना सुंदर है चेतना आत्मा तो चेतना उतना ज्योति है ना चेतना मतलब लाइफ तो चेतना कैसे लगा आज का प्रोग्राम सब देखे शुरू से कहानी भी सुनाए अच्छा लगा?
1: हाँ।
0: अच्छा कौन तुम्हारा दोस्त का नाम बताओ?
1: काजल।
0: काजल वेरी गुड कौन सा क्लास? 9th क्लास। अच्छा दोनों आज मिलकर गाएंगे ना एक अलग
1: दोनों
0: मिलकर अरे काजल को छोड़ेंगे नहीं आज है कि नहीं चलिए काजल को भी स्वागत करते काजल अपना परिचय देंगे।
2: मेरा नाम काजल है मैं कक्षा 9th की छात्रा हूँ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आहोर से हूँ।
0: चलिए शुरू करो।
2: ये देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश के यारों इस देश के

महात्मा गांधी जी के बारे में 1915 में गांधी जी भारत लौट आए और अपने गुरु समान श्री गोपाल कृष्ण गोखले के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि बिहार और गुजरात में चंपारण व खेड़ा के आंदोलन थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का भी नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी एक नाम, सादा जीवन, उच्च विचार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुरा।

0: चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सब सुन पा रहे हैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आहोर। तो आहोर जो कि जालोर जिला में आते हैं, तो पिंडवाड़ा ब्लॉक, आबुरोड ब्लॉक, रेबदर ब्लॉक, सिबीगंज, सिरोही सुनने का पश्चात आज जालोर का आवाज सुना रहे हैं। और हमारा बच्चे पहले मौका मिल नहीं रहा था, आज मौका मिल रहा है तो मौका का चौका छक्का लगा रहा है। पहला बार आए, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, और सर का उमंग उत्साह। चलिए हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ और एक छात्र आए। हेलो, अपना परिचय देंगे।
1: मेरा नाम रेखा है, मैं कक्षा 11 की छात्री हूँ। मैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आहोर की पढ़ने वाली हूँ।
0: आप क्या प्रस्तुत करेगी?
1: मैं गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
0: चेतना को जानते हैं?
1: चेतना का हाँ जानती हूँ उसको।
0: और तुम्हारा दोस्त कौन है? चेतना?
1: चेतना
0: काजल?
1: चेतना।
0: चलिए, तुम्हारा नाम क्या है?
1: मेरा नाम रेखा है।
0: रेखा, वाह, आज तो भाग्य का रेखा का चमके का, क्योंकि ओठ में भी रेखा है, मस्तक में भी रेखा है और हस्त में भी रेखा है। रेखा ही रेखा, भाग्य का रेखा ढूंढते हैं। लेकिन आपका नाम कौन रखा है रेखा?
1: सर, मेरे दादाजी ने रखा हुआ है।
0: दादाजी है अभी?
1: हाँ।
0: उसको तो सलाम करना चाहिए, नाम बहुत अच्छा रखा है, क्योंकि रेखा के लिए लोग दौड़ रहे हैं, रेखा प्राप्ति करने के लिए, भाग्य का रेखा। तो आपका भाग्य का रेखा तो चमकेगा, है ना? तो क्या प्रस्तुत करेगी?
1: सर, मैं गीत
0: सुना।

0: की बेटी।
1: रेखा कैसे लगा तुमको?
0: बहुत अच्छा लगा सर।
1: पहले क्या सोचा था और रेडियो में आज आपका आवाज जन जन तक पहुंच रहा है और आपका परिवार वाले सुन रहे हैं इस समय?
0: यस सर।
1: कैसे लगेगा आपको?
0: बहुत अच्छा लगेगा,
1: क्योंकि अब तो रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन शाम को जो प्रसारण होगी तो आपका परिवार वाले जो सुनेंगे, दादा दादी नाना नानी चाचा मासी दोस्त लोग सुनेंगे, ये तो हमारा रेखा का आवाज है, आवाज में के दम है, पहचान है ना? तो आपको खुशी लगेगा।
0: यस।
1: और नामांकन में भी वृद्धि होगा, आपका स्कूल में पढ़ाई का साथ साथ इस तरह कार्यक्रम में भी बच्चियां भाग लेते हैं बढ़ चढ़ कर, खुशी लगेगा ना? आकाशवाणी में मीडिया में जब जाएंगे तो बोला अरे नाम तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे, ऐसे लगेगा ना रेखा?
0: यस सर।
1: चेतना और हमारा काजल भी, तो कैसे लगा काजल? और
2: मुझे बहुत अच्छा लगा है।
1: अच्छा लगा है।
2: और यहाँ पे हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है।
1: गुड, अगला बार मौका मिलेगा तो फिर बढ़िया से गीत गाना। चेत कुछ बोलेगी, क्या बोलेगी? नहीं तो हमारा रेखा को दीजिए। रेखा क्या लगा आज?
0: सर आज बहुत अच्छा लगा है, मैडम बता रही है और सर भी सब कुछ जो बताना चाहते है वो बता रहे है, सब कुछ हमको सब पता चल रहा है इसके बारे में, और कुछ प्रश्न करे हम आंसर भी दे रहे है उसनों के साथ में।
1: क्योंकि इसमें झिझक दूर होगी, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, बड़ों का सामने कैसे व्यवहार, ज्ञान, ये चीज सीखना जरूरी है। पढ़ाई तो करेंगे उसका साथ साथ बड़ों को सम्मान, विद्यार्थी जीवन में बड़ों को सम्मान करना चाहिए ना, दादा दादी सबको सम्मान करना चाहिए, आप तो करते होंगे, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और कभी मौका मिलेगा तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में रेडियो मधुबन में घूमने के लिए मौका मिलेगा तो आएंगे?
0: यस सर।
1: हाँ तो नजदीक है, आ सकते हैं, है ना? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आहोर।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन। आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। गांधी जी एक विपुल लेखक भी थे। उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें इस प्रकार हैं। हिंद स्वराज 1909 में गुजराती में प्रकाशित हुई। उन्होंने हिंदी, गुजराती और इंग्लिश के अनेक समाचार पत्रों का संपादन किया, जिनमें हिंदी व गुजराती में हरिजन, इंग्लिश में यंग इंडिया व गुजराती पत्रिका नव जीवन मुख्य रूप से है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग भी लिखी। उनकी अन्य आत्मकथाओं में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, हिंद स्वराज आदि प्रमुख हैं।

0: नमस्ते कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए एक का बाद वंस मोर पहुंचते पहुंचते काजल चेतना रेखा नेक्स्ट क्या नाम आता है पता नहीं।
1: मेरा नाम पूर्णिमा।
0: पूर्णिमा पूर्ण संपूर्ण पूर्णिमा सोल कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परम धर्म एक भाषा एक जाति एक धर्म एक ईश्वर वन गॉड वन फैमिली तो उसी में सभी हम लोग का हाथ लग रहा है और हम सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं और हमारा साथ पूर्णिमा उपस्थित है। पूर्णिमा कौन सा क्लास के?
1: 12th।
0: अरे वाह बड़ी हो गई 12वीं क्लास। इसका बाद फिर क्या करेगी 12वीं का बाद?
1: 12वीं के बाद में पापा बोलेंगे वो
0: है?
1: पापा बोलेंगे वो।
0: पापा जो कहेंगे पापा क्या करते हैं?
1: पापा तो कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा हो तो पढ़ ले आगे।
0: हाँ पढ़ना चाहिए ना नहीं पढ़ना चाहिए?
1: पढ़ना है।
0: पढ़ना चाहिए क्या पढ़ेंगे क्योंकि 12वीं क्लास के बाद तो
1: बीए
0: करेंगे। अरे वाह फिर
1: टीचर
0: टीचर फिर आगे क्या है?
1: फिर आगे पढ़ाएंगे
0: पढ़ाएंगे। इसका बाद
1: प्रिंसिपल
0: प्रिंसिपल। इसका बाद तो हिम्मत रखना पड़ेगा प्रिंसिपल हो जाएंगे। इसका बाद फिर रिटायर्ड। फिर इसके बाद कुछ लक्ष्य नहीं है? देश सेवा करेंगे ना?
1: तो
0: हाँ वो तो हाँ कब करेंगे सबका सेवा करना चाहिए। ओके बहुत अच्छा क्या प्रस्तुत करेगी आज?
1: गाना।
0: हाँ गाना सुना जो आपको आता है।
1: अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबा पे सवार रखना दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना चिट्टी तारों पर भी मेरा तू सलाम रखना अंधेरा

बहुत सुंदर सुंदर रूप में आपने प्रस्तुति को के पूर्णिमा सहित में पुनः आहुति दे दिए गीत में और हमारा कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। और विद्यार्थी जीवन में पढ़े का साथ साथ और दो चार घंटा इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। बड़े होकर क्या बनेगी, तो टीचर बनेगी बोल रहे थे और प्रिंसिपल, फिर रिटायरमेंट होंगे, इसके बाद देश सेवा करेंगे। जो रिटर्न देना पड़ेगा ना अभी इतना लिए, क्योंकि हमारा देश से हम बहुत कुछ लिए, हवा पानी प्रकृति से बहुत कुछ लिए, उसको तो रिटर्न देना पड़ेगा ना। हम तो कुछ देने सीखे है कि नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा अगला प्रस्तुति इंतजार कर रहे हैं। हाँ, वो तो अपना आवाज को रोक नहीं पा रही है, सुनेंगे अगला प्रस्तुति अल्प विराम का बाद, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज्य कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता। ये महान विचार है लाल बहादुर शास्त्री जी के।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रस्तुति, अंतिम प्रस्तुति की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं।

0: सभी को सुने, इसका बाद जो लास्ट है बहुत अच्छा से प्रस्तुत करेगी और वो नाम सुनाएगी।
1: मेरा नाम गोपी कुमारी है और मेरा गांव चरली है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
0: सुना
1: लुक्का चू।

0: तेरी माँ आजा सामने, मुझे तेरी फिकर, आजा सामने मुझे तेरी फिकर।
1: चलिए, बच्चे को कम प्रस्तुति किया, पूरा गीत उनको थोड़ा सा होता है, लेकिन इसको साथ देने के लिए अगला को फिल अप द ब्लैंक्स करने के लिए हमारा सर कुछ कविता गुनगुनाएंगे। सर, आपका दिल का बात को रखना चाहते हैं, आप गुनगुनाए अपना आवाज को।
2: जी वैसे मैं हिंदी में कविता लेखन का कार्य भी करता हूँ, चूंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और उससे जो एक जुड़ाव और लगाव जो है वो जन्म से ही है, तो मैं अपनी स्वयं के द्वारा लिखी हुई एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो कि वीर रस में है। पराजय से अविचल होकर प्रचंड पराक्रम करना होगा, नांद उठी उर से धरणी और नभ में गर्जन करना होगा, नांद उठी उर से धरणी और नभ में गर्जन करना होगा, सफल विफल के कोलाहल में युद्ध भयंकर करना होगा, सफल विफल के कोलाहल में युद्ध भयंकर करना होगा। सूर्य सा तेज चमकना है तो प्रतिक्षण वैसा जलना होगा, सूर्य सा तेज चमकना है तो प्रतिक्षण वैसा जलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद तालियों का साथ। और आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आहोर का आवाज, जो कि जालौर जिला में आता है। तो आज मौका मिला तो जालौर में भी पहुंच गए, क्योंकि आप हमेशा आप रोड का आवाज को सुनते थे हर स्कूल का, क्योंकि विद्यार्थी विकास कार्यक्रम में खासकर विद्यार्थियों का, खासकर बालिका का आवाज जो आज इस कार्यक्रम को सुंदर में सजा, ये काम नहीं है, ये अपने आप बन पड़ा, कोई सूचना नहीं था, कोई प्रिपरेशन नहीं था, अचानक में सभी ने भाग लिए, सभी को नाम का साथ एक एक और संस्था के सभी स्कूल के जो बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आहोर का सभी स्टाफ को खासकर प्रधान शिक्षिका को भी धन्यवाद देते हैं, हमें मौका दिए। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय दोनों का मिलित सहयोग से आज का कार्यक्रम सुंदर रूप में हुई, सबको नाम का साथ धन्यवाद। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल अच्छा, सभी को आभार।

हम अपने देश के लिए आजादी चाहते हैं, पर दूसरों का शोषण करके नहीं, ना ही दूसरे देशों को नीचा दिखाकर। मैं अपने देश की आजादी ऐसे चाहता हूँ कि अन्य देश मेरे आजाद देश से कुछ सीख सकें और मेरे देश के संसाधन मानवता के लाभ के लिए प्रयोग हो सके। ये महान विचार है लाल बहादुर शास्त्री जी के।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन। महात्मा गांधी के इस जयंती पर पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल रहा है जो कि गांधी जी अहिंसा की नीति को प्रमाणित करता है, साथ ही लोगों के विचारों में भी प्रकट होता है। जो लोग भी गांधी जी की इस नीति में विश्वास करते हैं, वे सभी गांधी जी के बारे में न केवल जानते हैं बल्कि उनके दर्शन से भी पूरी तरह से परिचित है। दूसरी तरफ इस दिवस को लोग जीवन के मूल्य और उनके और उसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं और उन्हें बढ़ावा देने का प्रयास भी करते हैं। महात्मा गांधी एक नाम, सादा जीवन, उच्च विचार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते।

अभी बजे हैं रात के 1, याद दिलाइए स्वयं को, मेरा तो परमपिता परमात्मा एक।

0: आए हम।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। थोड़ा सा जगदीश भाई साहब के बारे में भी हम जानेंगे। आज दीदी उर्मिला जी हमारे मध्य हैं। आप एक लेखिका हैं, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और इसके साथ साथ आप एक चिंतक हैं और आप एक साधक तो हैं ही हैं, और आपने अनेक जीवन को मार्गदर्शन दिया है परिवर्तन करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को एक लाइफ कोच भी आप हैं। तो आइए दीदी का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर।
3: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सेवा का मौका दिया मुझे
2: जी। दीदी आज के गाने की ओर जाने से पहले, जैसे आज हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जगदीश भाई साहब को याद कर रहे हैं आज के दिन, उनके विषय में थोड़ा सा कहिए।
3: जगदीश भाई जी ब्रह्मा कुमारी के चीफ स्पोक्समैन थे। हमारी उस समय 3 मैगजीन थी, हिंदी के ज्ञानामृत, इंग्लिश की प्योरिटी और वर्ल्ड रिन्यूअल, तीनों के ही चीफ एडिटर थे
2: जी।
3: बाल्यकाल से ही उनको भगवान से बहुत अधिक प्रेम था। उनका जन्म मुल्तान शहर में हुआ था, कॉलेज के अच्छे पढ़ाकू स्टूडेंट्स में थे और उस समय कुछ कुछ सोशल एक्टिविटीज में पढ़ते पढ़ते भी भाग लेते थे, क्योंकि आतम भाई के जो बड़े भाई लक्ष्मण भाई थे वो उनके साथ उसी कॉलेज में पढ़ते थे, तो उनके बारे में उन्होंने कई बातें आंखों देखी बताई हैं। और वो कराची गए थे, उन्हें कुछ इंट्यूशन हुआ था कि भगवान धरती पे आया है और वो कराची में आया है, लेकिन जब वो कराची में उन्हें ढूंढने गए तब तक ये पूरा कारमा माउंट आबू में शिफ्ट हो चुका था। लोगों ने उन्हें बताया था कि हाँ यहाँ कुछ सफेद कपड़े वाले लोग रहते थे, लेकिन एक तो माइनॉरिटी थी और एक बाहर की पब्लिक रिलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, तो लोग कोई बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण नहीं दे पाए थे। उसके बाद पार्टीशन के बाद वो भी दिल्ली में आ गए। दिल्ली के पास ही सोनीपत है, वहाँ पे एक हॉस्टल था जिसमें वो हॉस्टल के वार्डन भी थे और लेक्चरर भी थे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कई भाषाओं के वो बहुत ही ज्ञाता थे और जितने भी भारतीय शास्त्र हैं वो सब उन्होंने पढ़े थे
2: जी।
3: तो उनको वास्तव में ये परिचय ऐसे मिला कि दिल्ली में एक थियोसोफिकल सोसाइटी थी, उसने ब्रह्मा कुमारी बहनों को भाषण के लिए इनवाइट किया था। उस समय 52 में एक छोटी सी जगह बनी थी जहाँ पे कुछ बहनें रहती थी और जानकी दादी और एक दो बहनें उस थियोसोफिकल सोसाइटी में भाषण करने गई थी। ये भी वो भाषण सुनने के लिए बैठे हुए थे
2: जी।
3: और जब उन्होंने इनका भाषण सुना तो इनको लगा कि हाँ यहाँ मुझे कुछ मिल सकता है, तो ये बहनों के पीछे पीछे सेंटर पे गए और बहनों ने इन्हें अगले दिन आने का समय दिया। तो सोनीपत से दिल्ली जाना ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात थी। सोनीपत से सुबह सुबह एक ट्रेन निकलती थी, उसमें जाना और कोर्स करके वापस अपनी ड्यूटी पे भी पहुंचना। उस समय ट्रेनें इतनी ज्यादा नहीं चलती थी और फिर स्टेशन से पैदल आश्रम तक जाना, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ किया। एक बार का अनुभव है कि थोड़े से लेट हो गए तो आखिरी का जो गार्ड का डब्बा होता उसमें चढ़ गए। गार्ड ने सोचा कि ये यंग लड़का शायद सोनीपत से भाग के दिल्ली में फिल्म देखने जा रहा है
2: जी।
3: तो उसको रोका, उसने कहा मैं फिल्म नहीं देखने जा रहा हूँ, आज निराकार भगवान धरती पे आके ब्रह्मा के मुख से जो बोल के गए हैं वो महावाक्य मुझे सुनने, पता नहीं उन्होंने क्या बोल दिया होगा और मैं वंचित रह जाऊं। तो गार्ड को भी दया आ गई, उसको बैठने दिया, उसको सीट दी और फिर वो सीधे सेंटर पे गए, वहां से

0: खटखटापट सुन करके फिर सोनीपत अपनी ड्यूटी पे आए। तो इस तरह से शुरू का लाइफ बहुत ही संघर्ष का रहा। फिर इन्होंने अपने कार्य से रिजाइन कर दिया। ये कुछ अपने कॉलेज की जो मैगजीन थी उसमें लिखते थे, उसके एडिटर थे, उससे भी रिजाइन कर दिया। बाद में जब इनसे आर्टिकल मांगा गया तो इन्होंने कहा कि ये हाथ अब भगवान के लिए समर्पित हो चुके हैं, इसलिए अभी किसी और के लिए कुछ भी नहीं लिख सकते। शुरू में दिल्ली की जो हमारी ब्रांच थी वो बहुत छोटी थी, और उस ब्रांच में एक दो कमरे ही थे, गुलजार दादी रहती थी, बाकी दादियां रहती थी। ये तो उस हॉल में बैठते थे जहाँ पे क्लास होती थी, सारा दिन बैठे बैठे लिखते थे। और जब इनका मन करता था कि मैं पाँव लंबे करूँ तो पाँव कैसे लंबे करूँ, यहाँ तो देवियाँ रहती, जिन देवियों की हम पूजा करते हैं पाँव लंबे करें तो उनका डिस्रिगार्ड हो जाए। बहनों का बहुत ज़्यादा रिगार्ड था। और इन्होंने अपनी अलमारी ऐसी बनाई थी जो फ्रूट की पेटी होती है
1: जी,
0: वो पेटी के ऊपर पेटी रख करके वो अलमारी बन गई। वो रफ पेटियां नहीं होती फ्रूट की, अमरूद की, सेब की, वो लकड़ी की आती है। हाँ, तो उनमें अपनी किताबें रखते थे। गर्मी के दिन होते थे, बहनों को बहुत गर्मी लगती थी, एसी नहीं, कूलर नहीं, शायद पंखा रहा होगा, तो बहुत दूर एक बर्फ की फैक्ट्री थी, वहां से सिर पे बर्फ की सिल्ली रख के लेके आते थे ताकि बहनें ठंडा पानी पी सके
1: जी।
0: तो बाबा ने भी कहा था कि ये बच्चा बेगरी पार्ट में समर्पित हुआ तो इस बच्चे की तो महिमा परम अपार है। कई बार बाबा कहते थे ये मेरे से भी आगे है। और होता क्या था कि बाबा कहते थे कि बच्ची शिवरात्रि आ रही है तो तुमको ये वाली बुक छपवानी है। अब बुक छपवाने के केवल दो दिन है, उसमें वो बुक तैयार करनी, उसकी रीडिंग करनी, फाइनल करना, बाबा को दिखानी, उसमें समय चला जाता था। एक दिन बचता था उसमें वो दिल्ली की प्रेस में जाते थे कि मेरी ये बुक छापो अर्जेंट है। तो वो दिल्ली वाले कहते थे जगदीश भाई अर्जेंट तो कभी कभी होता है, आप तो जो भी काम लेके आते हो कहते हो अर्जेंट है। वो कहते थे मैं क्या करूं, ऊपर वाले का काम है, मेरी कोई वश की बात नहीं है। और उन दिनों साइकिल नहीं, स्कूटर नहीं, तो कृष्णा जहाँ वो रहते थे शक्ति नगर, वहां से पैदल प्रेस में जाते थे। कोई भोजन का टिफिन नहीं, जेब में भुगड़े होते थे, बाहर कोई पेड़ है उसके नीचे बैठ के भुगड़े खा लिए, पानी पी लिया, और जब तक वो छपेगा नहीं तब तक वापस नहीं आएंगे, क्योंकि बीच में कोई मिस्टेक है तो इतनी दूर से फिर करेक्शन करना। तो वो पूरी छपाई करा के और फिर सिर पे ही रख करके वापस लेके आते थे
1: जी।
0: तो आत्म भाई कहते हैं कि जगदीश भाई चलते थे और हम उनके पीछे दौड़ते थे
1: जी।
0: क्योंकि लंबी टांगे थी और चाल बहुत तेज थी, तो बहुत मेहनत की शुरू में। और फिर आते ही लिटरेचर पैक कराना, सेंटरों पे भेजना। अगर कोई बांधेली बहन है तो उस बहन के लिए सारे प्रबंध करना, बांधेली माता है। कई लोगों ने कई बार इनकी पिटाई करने कोशिश की, बहुत कुछ हुआ, कितनी सैकड़ों बार ये मरते मरते बचा, लेकिन ये बाबा के कार्य से कभी भी पीछे नहीं हटा। बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, तो पूरा टाइम उसी में चला जाए
1: जी, तो फिर कभी सुनेंगे। और आज जिस गाने के बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो वो गाना है ये सफर, और ये फिल्म 1942 ए लव स्टोरी से है। लिरिक्स जावेद अख्तर साहब और शिवाजी चट्टोपाध्याय जी इसमें परफॉर्म उन्होंने किया है। तो आइए सीधा हम चलते हैं उन लाइनों की ओर, दीदी से पूछते हैं। दीदी कहते हैं कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो आप इस लाइन्स को कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे?
0: असल में ना उम्मीदी की लाइन है, लेकिन इनमें भी उम्मीद छिपी हुई है। वो राइटर कहता है कि गम की शाम लंबी है मगर शाम ही तो है
1: जी,
0: क्योंकि शाम के बाद सवेरा तो आना ही है, तो हो ही नहीं सकता कि शाम हमेशा चलती रहे, आज तक नहीं चली है। और ना उम्मीद नहीं है दिल, नाकाम ही तो है। मान लीजिए हम किसी काम में नाकाम हो गए
1: जी,
0: नाकामी बड़ी बात नहीं है, नाकामी तो सबको मिलती है, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए
1: जी।
0: जैसे किसी व्यक्ति का एक बहुत बड़ा मकान था, दुकान थी, तो वो शहर में गया और पीछे से शॉर्ट सर्किट हुआ, मकान भी जल गया, दुकान भी जल गई। वापस लौटा तो वहाँ राख का ढेर मिला जहाँ सुबह मकान दुकान थे। बहुत सारे लोग आए उसे सहानुभूति देने, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तेरा सब कुछ जल गया। तो उसको अच्छा नहीं लगा कि लोग मुझे सहानुभूति दें। उसने एक कलाकार को कहा कि एक सुंदर सा बोर्ड बनाओ, बोर्ड पे क्या लिखूं? तो उसने कहा इस पे लिखो कि होम इज बर्नट, शॉप इज बर्नट, बट होप इज नॉट बर्नट. तो असल में जो उम्मीद है
1: जी,
0: जो हमारी होप है, वो नहीं जलनी चाहिए. बाकी सब कुछ जल जाए नो प्रॉब्लम, क्योंकि उम्मीद के सहारे हम दोबारा खड़े हो सकते हैं. मैं जब भूकंप आया था गुजरात में 2001 में
1: जी,
0: तो जो राहत शिविर लगे थे भुज में, कच्छ में, वो एरिया ज्यादा अफेक्टेड था, वहां पे गई थी तो हमने देखा कि एक तंबू में तंबू को लगा दिए थे गवर्नमेंट ने, घर तो बिल्कुल जमीन दोज हो गए थे, 10-10 मंजिली, 5-5 मंजिली बिल्डिंग, वहां पे मलबे का ढेर पड़ा था
1: जी.
0: तो वो जो तंबू लगाए थे, जिनको हम शिविर बोलते हैं टेम्परेरी, वो कपड़े का ऐसा होता है स्लोप वाला, और उसके अंदर ऐसे झुकके जाना होता है, पूरे के पूरे परिवार उसके अंदर, वहीं पे थोड़ा बहुत खाना बनाते हैं, वहीं पे रहते हैं जब तक कि उनके लिए कोई प्रबंध हो. तो मैं एक फैमिली से मिली, उनका जवान बेटा चला गया था
1: जी,
0: बहू थी और बहू के दो बच्चे और बूढ़ा ससुर, चार लोग थे उस तंबू में. तो मैंने उनको पूछा कि आपका घर चला गया और अभी पता नहीं बनने में कितना समय लगेगा. तो उसने बहुत सुंदर बात कही, उसने कहा बहन जी हम तो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, समुद्र की एक झाल आती है हमारा घर ले जाती है, और समुद्र की दूसरी झाल आती है तब तक हमारा नया घर बन जाता है. तो आप जब अगली बार आओगे ना तो हमें बहुत सुंदर मकान में देखोगे. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि तंबू में रहते हुए भी इनके चेहरे पे खुशहाली है, मायूसी नहीं है, जवान लड़का चला गया फिर भी होप बाकी है. और सचमुच मैं अगले साल उस एरिया में फिर गई, मेरा कोई प्रोग्राम था, तो मुझे उन बहनों ने कहा कि देखो यहाँ आपने मलबे का ढेर देखा था ना, अब आप देखो यहाँ कितने सुंदर मकान बन गए. बल्कि पहले जो सिटी बनी थी वो हाफ हजार्ड थी, अनप्लैंड थी, कोई घर इधर है, गली टेढ़ी है, भिड़ी गली है, चौड़ी गली है. अब ये मकान, अब ये शहर प्लैंड रीति से बना है, तो आप देखो गलियां चौड़ी चौड़ी है, सब एक सीध में मकान, तो सब कुछ एक साल के अंदर फिर बन गया. इसलिए दुनिया में नाकामयाबी है लेकिन कभी भी होप खोनी नहीं चाहिए
1: जी. लेकिन कई बार देखा जाता है कि बार बार नाकाम होते हैं लोग, तो वो उम्मीद छोड़ देते हैं और पूछते हैं कि कब तक उम्मीद में रखें.
0: देखिए उम्मीद की कोई डेट नहीं होती है. जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो डॉक्टर भी कहते हैं कि उम्मीद रखो जी जाएगा. पहले उसको आईसीयू में ले जाते हैं, वेंटिलेटर पे रखते हैं, आखिरी तक उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, छोड़ नहीं देते. जीवन भी ऐसे ही है, इसकी ट्रीटमेंट आखिरी तक करनी चाहिए. वो एक बहुत पुरानी स्टोरी हमने बचपन में सुनी थी कि एक राजा युद्ध हार गया था, जंगल में उदास बैठा था, तो उसने वहाँ जंगल में ही देखा कि एक स्पाइडर, एक मकड़ी
1: जी,
0: और वहाँ कोई पुराना खंडर का मकान है, तो उस खंडर में दीवार पे चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है. 16 बार चढ़ी, 16 बार गिरी और 17वीं बार चढ़ गई. तो राजा ने उस स्पाइडर से प्रेरणा ली कि कोई बात नहीं, मैं भी युद्ध हार गया, फिर से अपनी सेना इकट्ठी करूंगा और फिर से अभियान चलाऊंगा, मैं भी जीतूंगा. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, अगर ये 16वीं बार जीत सकती है तो मैं क्यों नहीं जीत सकता, है तो छोटा सा जीव है, तो मैं तो एक मानव हूँ, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ, मैं भी जीत सकता. तो उसको ताकत मिली और उसने अपना अभियान चलाया और वो जीत गया
1: जी. जी, चाहे वो आपकी संस्कारों के क्षेत्र में हो, चाहे स्थूल में हो,
0: चाहे वो आपका किसी ने राज्य जीत लिया, चाहे आप कोई नौकरी चाहते हैं उसमें फेल हो रही हैं बार बार, चाहे आप अपनी किसी बुराई को जीतना चाहते हैं, वो बुराई फिर अड़के खड़ी हो जाती है, आपको जीतने नहीं देती है, लेकिन जीत आपकी ही होगी, क्योंकि बुराई में कोई जान नहीं होती है, आप में तो जान है, आप तो जीवित हैं, आपके पास तो एक विल पावर, बुराई में कोई विल पावर नहीं होती है. और चाहे वो आपका बिजनेस सेटअप नहीं हो रहा है, चाहे आपकी कोई जमीन है वो आपको अच्छी उपज नहीं दे रही है, चाहे आपका कोई और सपना है, कोई भी किसी भी प्रकार का, तो किसी भी क्षेत्र का हो, आप अपने सपने को बनाए रखिए. लेकिन कहते हैं सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वही होते हैं जो जागृत आंखों से देखे जाते हैं. तो जागृत आंखों से आपने जो भी सपना देखा है वो केवल सपना नहीं, उसको प्रैक्टिकल धरातल पे उतारने के लिए मेहनत भी कीजिए
1: जी.
0: ऐसे नहीं विजुअलाइज कर रहे हैं, हाँ मैं विदेश चला गया, मैं पढ़ गया, मुझे बड़ी सी डिग्री मिल गई, मैं वापस आ गया, केवल सपना नहीं, प्रैक्टिकल में आपको उसको साकार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा. सपना वो नहीं जो आपको सुला दे, सपना वो जो आपकी नींद फिटा दे.
1: जी बिल्कुल। तो इस तरीके से आप सपने देखें और अपने संस्कार अगर परिवर्तन नहीं भी हो रहे तो अलग अलग तरीके से ट्राई करिए, सहन शक्ति हो या फिर कोई भी प्रकार से शक्ति या वैल्यूज को आप अपनाना चाहते हैं और जितने का कि उम्मीद रखना है तो अंत तक कोशिश करना है। तो आइए इस गाने को सुनते हैं हम, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप हमें 9414151415 पर मैसेज करके बता सकते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। दीदी उर्मिला जी आज हमारे मध्य हैं, ज्ञानामृत पत्रिका के संपादिका हैं आप और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, तो उनसे आप सवाल कर सकते हैं, जरूर आपको जवाब मिलेगा। आइए लेते हैं यहाँ पर ब्रेक।

0: अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है।
1: क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए।
0: त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
0: 9414152250
1: या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल।
2: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। और हम आज बात कर रहे हैं, ये सफर बहुत है कठिन मगर ना उदास हो मेरे हम सफर। और हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं दीदी उर्मिला जी। दीदी आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है।
3: थैंक यू
2: जी। दीदी जैसे हम गाना सुन रहे थे तो इसमें कठिन सफर के बारे में बात हो रही थी, और लेकिन उदास नहीं होने के लिए यहाँ गीतकार कह रहे हैं, तो आपसे पूछना चाहेंगे कि गम की जो शाम होता है, यहाँ पे कहा गया लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है, लेकिन वो जो शाम है वो बहुत कठिन लगता है, और जो उस शाम में गुजारा करता है उस शाम को देखता है ना वही महसूस कर पाता है शायद। तो क्या इस दुनिया में दर्द बांटने वाला कोई है जो हमें बिना जज किए दर्द बांटता हो, सुनता हो हमारी कहानी?
3: देखिए ये दुनिया गम से भरी पड़ी है
2: जी।
3: पहले तो व्यक्ति का जो अपना जीवन है वो भी गम से भरा पड़ा है। कहीं गरीबी है, कहीं बीमारी है, कुछ भी है, और फिर सामाजिक जीवन में भी बहुत गम है
2: जी।
3: कई तरह की लोक लाज, कई तरह की कुरीतियाँ, कई तरह की रीति रस्में व्यक्ति को जकड़ के रखती हैं
2: जी।
3: कोई भी क्षेत्र लीजिए, राजनीतिक क्षेत्र ले लीजिए, समाज सेवा का क्षेत्र ले लीजिए, हर एक में व्यक्ति के सामने गम आता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो गम है वो व्यक्ति को परिपक्व बनाता है। जो गम है, दुख है, कष्ट की घड़ियां हैं, वो उसको समझदार बनाती हैं, अनुभवी बनाती हैं, और जिंदगी को सही दृष्टिकोण से देखने का तरीका सिखाती हैं। जैसे एक अभियान शकुंतलम नाम का नाटक है, कालिदास का लिखा हुआ, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। तो दुष्यंत जब शकुंतला के आश्रम पे यानी के कण्व ऋषि के आश्रम पे जाता है तो वहाँ फूलों को देखता है, लताओं को देखता है, पेड़ों को देखता है, तो वो कहता है कि मेरे बगीचे में भी फूल है, लताएं, लेकिन वो मालियों के द्वारा सुरक्षित, इसलिए उनमें ना तो इतनी खुशबू और ना इतनी ब्यूटी
2: जी।
3: और ये जो अपने आप उग रही हैं और अपने आप बढ़ रही हैं, इनमें एक नेचुरल खुशबू और नेचुरल ब्यूटी है। तो ये आंधी तूफान धूप सब कुछ सहन करती हैं, लेकिन जो मेरे बगीचे में हैं वो तो आंधी तूफान और उनसे बची हुई है। तो देखने में ये आता है कि जो प्रकृति के संरक्षण में पलता है वो व्यक्ति ज्यादा अनुभवी और समझदार बनता है। वैसे भी हम देखते हैं कि जितने भी महान लोग हुए, आप भारत या विदेश के महान लोगों की अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो उनमें से अधिकतर का बचपन अभावों में या कठिनाइयों में गुजरा है। कोई गिनती के लोग हैं, जैसे कोई महात्मा बुद्ध है, चलो राजकुमार था, महावीर जैन बचपन में राजकुमार था, कुछ गिनती के लोग हैं। अदरवाइज तो कष्टों को सहन करते हुए वो लोग बड़े हुए और फिर उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया
2: जी।
3: जो लोग, जो गमला छाया में रखा जाता है वो ज्यादा वृद्धि को नहीं पाता। तो एक तो हम ये बात सोच लें कि जो कष्ट आया है वो हमें कुछ देने आया है। एक कहावत है कि चेंज योर चैलेंजेज इंटू अपॉर्चुनिटीज, वो लोग अपनी चुनौतियों को ही अपनी एक तरह से अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं, अपने लिए सु अवसर बना लेते हैं। तो अब देखिए भारत की आजादी का संघर्ष कितना कड़ा था
2: जी।
3: कितने लोगों ने कष्ट सहे, मारी खाई, अपना धन दौलत लुटाया, जेलों में रहे, कई लोग तो जेलों में ही मर गए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनको क्या मिला, उनको बहुत कुछ मिला
2: जी।
3: एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो देश पे शहीद हो गए अगले जन्म में वो देश में फिर आएंगे और फिर से वो देश में कोई ऊंचा स्टेटस प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनका किया हुआ त्याग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आत्मा अविनाशी है
2: जी।
3: अविनाशी आत्मा को इस जन्म में अगर नहीं मिल पाया, छोटा जीवन था, तो अगले जन्म में मिलेगा। और अगर किसी ने धोखे से इस जन्म में अधिक ले भी लिया तो अगले जन्म में उसका माइनस हो
2: जाए।
3: इसलिए एक तो हम गम से डरे नहीं। अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें जज किए बिना हमें अपनापन दे दे? तो दो ही ऐसे लोग हैं जो हमें जज नहीं करते हैं, अनकंडीशनल लव देने वाले, एक परमात्मा और एक प्रकृति
2: जी।
3: और आज हम देखते हैं कि व्यक्ति का इन दोनों से कनेक्शन कट है, ना तो वो परमात्मा के लिए समय निकालता और ना वो प्रकृति के सानिध्य में जाता है
2: जी।
3: इसलिए उसे कोई राहत दे, कोई सोलेस दे, कोई उसके गम को बटाए, वो चीज नहीं हो पा रही है। क्योंकि ले दे के वो फिर मनुष्य के पास जाके खड़ा होता है कि भाई तू मेरा गम बटा ले, तू मुझे सहयोग दे दे। लेकिन मनुष्य से तो उसने धोखा खा ही लिया ना, एक से धोखा खाया फिर दूसरे के बाजू में जाके खड़ा हो गया, वो भी मनुष्य है। वो प्रकृति के सानिध्य में जाए। आप प्रकृति को देखिए, आप पेड़ को देखिए, नदी को देखिए, हवा को देखिए, निरंतर दे रही है हमें, इनसे हम कुछ ना कुछ सीखे। पेड़ का जन्म होता है, पेड़ को देखो, उसका जो घेरा है वो कितना होगा? वो छोटा घेरा है, इतने उसने जमीन घेर रखी है, घेरा मतलब इतनी जमीन घेर रखी है, और ज्यादा जगह वो लेता नहीं है, या तो ऊपर फैलता है और या फिर जमीन के नीचे फैलता है। किसी व्यक्ति को परेशानी पैदा नहीं करता कि भाई वो बहुत सारी जगह घेर ले। अब वो जब ऊपर फैलता है तो उसके पत्ते भी सेवा करते हैं, डाली भी सेवा करती है, उसका फल भी सेवा करता है, फूल भी सेवा करता है, और सबसे अधिक वो ऑक्सीजन देता है
2: जी,
3: देता ही देता है। अंत में जब वो गिरता है तो भी किसी ना किसी का चूल्हा जलाता है या किसी की छत बनवा देता है, लेकिन उसका एक अंग भी व्यर्थ नहीं। तो इसलिए मनुष्य को प्रकृति से सीखना चाहिए, मनुष्य को परमात्मा का भी सानिध्य करना चाहिए। परमात्मा गुप्त है लेकिन सबके सुनता है, और वो किसी को देता है कहते है उसकी लाठी की आवाज नहीं होती, और किसी को देता है तो शोर मचा के नहीं देता है, बिना शोर मचाए गुपचुप उसकी अंतरात्मा में ऐसा कुछ भर देता है कि उस व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देता है। इसलिए इन दोनों से जुड़िए।
2: तो दोनों से जुड़ने की क्या माध्यम है?
3: प्रकृति तो देखिए हमारे चारों ओर है ही। आप कुछ समय निकालिए, बगीचे में जाके बैठिए, खेतों में जाके बैठिए, नदी किनारे जाके बैठिए, नदी नहीं है तो तालाब के किनारे जाके बैठिए और वहां चिंतन कीजिए। एक एक चीज को ध्यान से देखिए कि ये जो जल है इसमें क्या क्या खूबियां हैं, ये सबको जीवन देता है, और जल जो है वो कितना हम कहेंगे कि निष्पक्ष है। आप वो जल एक गरीब की झोपड़ी पे भी गिरता है, राजा के महल पे भी गिरता है
2: जी,
3: और उसमें कितनी एडजस्टिंग पावर है। कटोरी में डालो कटोरी जैसा, नली में डालो नली जैसा, बोतल में डालो बोतल जैसा। कभी ये नहीं कहता कि नहीं जी ये छोटी जगह मैं नहीं समा सकता, ये बड़ी जगह मैं नहीं समा सकता, हर जगह एडजस्ट हो जाता है
2: जी।
3: तो व्यक्ति को पानी को देख देख के कितने गुण सीखने चाहिए। इधर से नल में से पानी निकालो, इधर से निकालो, ऊपर से तल उसका समतल मिले, झगड़ा नहीं है कि नहीं इधर से तू चला गया, मैं ऊंचा, इधर वाला ऊंचा हो जाए, टिल्ला बन जाए, इधर से खिसक गया, नहीं वो फिर एक समान है। तो कहते हैं वैसे भी जल से पतला क्या, तो जल में बहुत गुण है। प्रकृति की हर चीज को देखिए, आप धरती को देखिए, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, और कटु वचन संत सहे, और से सहे न जाए। धरती को कितना भी खोद लो सहन कर लेती है, पेड़ों को कितना भी काट लो फिर नए पत्ते दे देती है, फिर से नया सब कुछ हो जाता है, और कड़वे वचन केवल संत व्यक्ति सहन कर सकता है, सबसे सहन नहीं होते हैं। तो जब आप इनके नजदीक बैठोगे आप में सेंट की क्वालिटी जाएगी, ये अपने आप में सेंट, पेड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा संत है
2: जी, बिल्कुल
3: तपस्वी है
2: जी। इसलिए बड़े बड़े जो तपस्वी हैं उनको पीपल के पेड़ के नीचे और पेड़ के नीचे बैठ के साधना करते हुए दिखाते हैं जी। और परमात्मा से

0: कैसे जुड़े?
1: परमात्मा इन आंखों से तो दिखने वाली चीज सत्ता है नहीं, क्योंकि ये आंखें वास्तव में परमात्मा को देखने के लिए बनी ही नहीं। ये भौतिक आंखें भौतिक जगत को देख पाती है, परमात्मा को हमें देखने के लिए चाहिए तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र, जिसे हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं और जिसे हम अलौकिक नेत्र कहते हैं, बुद्धि का नेत्र कहते हैं, मन का नेत्र भी कहते हैं। तो वो तो हमारे पास है ही, उस मन के नेत्र से तो देखो हम क्या क्या देख लेते हैं। यहाँ बैठे अमेरिका को देख सकते हैं, लंदन को देख सकते हैं, बैठे आबू रोड में दिल्ली को देख सकते हैं
0: जी।
1: तो ऐसे नहीं कि कोई नेट से देख सकते। मान लीजिए हमारा कोई मित्र बॉम्बे में रहता है तो हमारी मन की आंख वहां पहुंच जाती है
0: जी,
1: नेट के बिना ही। तो भगवान भी हमारा परम मित्र है, पर वो रहता कहाँ है? हम हमेशा उंगली का इशारा ऊपर की तरफ करते हैं, ऊपर वाला जा
0: जी।
1: तो इस दुनिया से पार एक बहुत सुंदर दुनिया है, लाल सुनहरे काश की, वहां वो परम सत्ता है जिसको हम कहते हैं डिवाइन लाइट, माइट, यूनिक लाइट, जिसे हम कहते हैं शाश्वत सत्ता, परम सत्ता, दिव्य सत्ता, अलौकिक सत्ता, सनातन सत्ता, कई नाम है उसके
0: जी।
1: तो वो एक प्रकाश रूप में वहां पे मौजूद है। तो हम अपने मन को वहां ले जा सकते हैं, उसे बातें कर सकते हैं बहुत मीठी मीठी कि प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, जो आपके गुण है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप कितने निष्पक्ष हैं, कितने दयालु हैं, आप सब कुछ करते हैं फिर भी अपने आप को छिपा के रखते हैं, तो मैं भी चाहता हूँ मैं आप जैसा बनूं, क्योंकि आपकी क्वालिटीज मेरे जीवन में आएंगी तो मैं ताकतवर बन जाऊंगा
0: जी।
1: जितने गुण और क्वालिटीज आएंगे उतने हम ताकतवर बनेंगे, गुण और क्वालिटीज नहीं होंगे तो हम कमजोर बनेंगे
0: जी।
1: तो ताकतवर व्यक्ति ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है, गम की रात को एक खेल की तरह से बिता सकता है। मुसीबतों से खेलते हम जैसे खेलते खिलौने, तो हमें मुसीबतें भी ऐसे ही लगती हैं जैसे हम खिलौने से खेल रहे हैं
0: जी।
1: के हमारे में ताकत, तो वो ताकत परमात्मा की याद से मिलती है, और उसका जो अनकंडीशनल लव है तो वो भी हमें ताकत देता है
0: जी।
1: क्योंकि कोई हमें जज नहीं कर रहा, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तुमने ये गलती कर दी, तुमने ये कर दी, वो कहता है तुम जो हो जैसे हो मेरे हो
0: जी,
1: आई एक्सेप्ट, और मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। जैसे एक माँ लंगड़े बच्चे को भी प्यार करती है, अंधे बच्चे को भी प्यार करती है, अगर कोई बॉडीली और डिफेक्ट है उसको भी प्यार करती है, जज थोड़े करती है कि नहीं तुम अंधे हो, तुम काम के नहीं हो, तुम लंगड़े हो, तुम काम के नहीं, बल्कि और ज्यादा प्रेम देती है। तो परमात्मा पिता भी हम बच्चे अगर कहीं किसी चीज में कम है तो हमें अधिक प्रेम दे करके उस कमी को पूरा करते हैं, इसलिए वो प्रेम के सागर कहे जाते हैं। आप किसी मनुष्य को प्रेम का सागर नहीं कह सकते
2: जी। बिल्कुल, तो परमात्मा से जरूर जुड़े, और दीदी ने जैसे कहा कि असीमित शक्तियाँ आप प्राप्त करेंगे तो गम के अंधेरे को भी आप पार कर सकते हैं, और प्रकृति में वो हीलिंग पावर है, प्रकृति से बहुत कुछ सीखने का है, तो आप प्रकृति से भी जुड़ सकते हैं, और ये दोनों ही केवल हमारे दर्द बांट सकते हैं। दीदी कहते हैं कि भगवान के घर जो है वो देर है लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है कि ये सितम की रात है ढलने को, है अंधेरा गम का पिघलने को, जरा देर इसमें लगे अगर ना उदास हो मेरे हम सफर। तो इसलिए कहा गया है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, लेकिन कई बार पूरी जिंदगी कट जाती है लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलता। क्या कोई तरीका है गम में भी खुशी से जिया जाए, जैसे आपने कहा कि
1: हम तो कहते हैं कि
2: जरूरी है।
1: भगवान के घर में ना देर है और ना अंधेर है,
2: दोनों ही नहीं,
1: दोनों ही नहीं है
2: जी।
1: होता क्या है कि हमारा धैर्य बहुत छोटा है, अपने धैर्य को अगर हम बढ़ाएं
2: जी
1: तो हमें लगेगा कि हमारा काम चुटकियों में हो गया। जब हम कोई भी बीज बोते हैं तो उसके लिए धैर्य तो रखना पड़ता है, आज बीज बोया और सुबह हमें फल मिल जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं। मान लीजिए हमने एक अच्छा कर्म किया है तो उस कर्म को फलीभूत होने में कुछ तो समय लगेगा ना, तुरंत तो नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए परिस्थितियां बनती है, वातावरण बनता है, उसके लिए अनुकूल लोग चाहिए, तब हमें उस कर्म का रिवार्ड मिलेगा। अभी आजकल देखिए ना, हमारी जो माननीय राष्ट्रपति जी है उन्होंने पद्म पुरस्कार लोगों को बांटी है
2: जी,
1: तो क्या वो पुरस्कार एक दिन के प्रयास से मिले कि उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, और अब अंत में वो जब 80-90 साल की हो गई तब उन्हें पद्म पुरस्कार के लिए बुलाया गया है
2: जी,
1: और उन्होंने वो पद्म पुरस्कार की कामना भी नहीं की थी
2: जी,
1: वो तो अपना काम किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, इसलिए हम ये ना सोचें कि मैंने इतना किया तो मुझे इसका फल कब मिलेगा। असल में अच्छा कर्म ही अपने आप में फल, क्योंकि जब हम एक अच्छा कर्म करते हैं तो हमें तुरंत खुशी की प्राप्ति होती है, हमारा वही पद्म पुरस्कार, सबसे पहला पुरस्कार तो वो है। बाद में अगर हमें कोई रिकॉग्नाइज करता है और हमें पुरस्कार देता है तो चलो वो सेकेंडरी बात, मिले ना मिले, मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, लेकिन हम जो कर रहे हैं, करते वक्त जो इंद्रिय सुख मिलता है, करते वक्त जो आत्मा को संतुष्टि मिलती है, भीतर से जो आत्मा गुनगुनाती है कि मैंने एक अच्छा कर्म किया, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, ये भीतर से जो आवाज निकलती है वही हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार। और अच्छे काम करने वाले को अच्छा फल भी मिलता है और बुरे को बुरे का फल भी मिलता है। शेक्सपियर ने एक बहुत अच्छा नाटक लिखा है, वीनस का सौदागर, द मर्चेंट ऑफ वीनस। वीनस एक नगरी का नाम है और उसका एक सौदागर है। तो उसमें दो पात्र दिखाए हैं, एक का नाम है एंटोनियो, एक का नाम है शाइलाक।
2: जी,
1: तो जो एंटोनियो है वो बहुत अच्छा व्यक्ति है और जो शाइलाक है वो ऐसा व्यक्ति है कि लोगों को कर्ज देता है, पैसे उसके पास बहुत है, और जब लोग उसका कर्जा टाइम पे नहीं चुकाते तो किसी की जमीन ले लेता है, किसी का घर ले लेता है और गरीब लोगों को बहुत सताता है।
2: जी,
1: तो इधर एंटोनियो कहता है तुम उससे मत लो कर्ज, मेरे से ले लो, मैं कम ब्याज पे कर्ज दूंगा और टाइम पे नहीं चुका पाओगे तो भी मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। तो शाइलाक इससे जलता है कि इसने मेरा धंधा ही बिगाड़ दिया, ये बीच में कहां से आ गया। तो एक बार क्या होता है कि एंटोनियो का एक दोस्त बेसिनियो, उसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, वो कहता भाई मुझे कुछ तो पैसे उधार दे दे। वो कहता है इस टाइम तो मेरा सारा पैसा बिजनेस में लग गया है, हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मैं शाइलाक से उधार लेके तुमको दे देता हूँ। कहता हूँ बहुत खराब आदमी, उधार मत लो। कहता नहीं, तुम्हारी जरूरत जरूर पूरी करूंगा मैं। तो शाइलाक के पास जाता, वो सोचता अच्छी मछली फंसी।
2: जी,
1: तो कितना पैसा चाहिए? वो पैसा उसको जितनी जरूरत है दे देता है। अच्छा कितना ब्याज लोगे? कहता देखो मुझे ब्याज ब्याज की कोई आवश्यकता नहीं है। कहता नहीं, फिर भी ब्याज तो लेना ही चाहिए, तुम इतना उधार दे रहे हो। बोला ठीक है, अगर तुम टाइम पे नहीं चुका पाओगे तो मैं तुम्हारे शरीर से एक पाउंड मांस ले लूंगा, बस बाकी मुझे कोई ब्याज नहीं चाहिए।
2: जी,
1: तो एंटोनियो कहता कोई बात नहीं है, ले लेना, लेकिन ये पैसा तो मुझे चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त की मुझे मदद करनी। तो वो पैसे लेके चला जाता है और उसके बहुत सारे जहाज विदेश में गए हुए।
2: जी,
1: और वो जहाज लौटने ही वाले हैं कि अचानक उसको खबर मिलती है सारे जहाज डूब गए। अब देखो अच्छे आदमी के साथ, कहते हैं ना अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है, अब अच्छे के साथ ही बुरा हुआ, उसके सारे जहाज डूबे। और जैसे ही शाइलाक को ये समाचार मिलता है वो बहुत खुश हो जाता है कि अच्छा हुआ जहाज डूब गए, अब ये टाइम पे पैसे नहीं लौट आएगा और मैं इसका मांस काटूंगा, मांस काटूंगा, ये मर जाएगा।
2: जी,
1: मर जाएगा तो फिर मेरा धंधा अच्छे से चलेगा। तो निश्चित दिन आ जाता है, वो पैसे मांगता है, पैसे वो दे नहीं पाता है।
2: जी,
1: और वो तैयार हो जाता है, बहुत लोग आते हैं गांव के शहर के उसको समझाने, तो इतना क्रूर काम मत कर। कहते नहीं देखो मैंने जो शर्त लगाई है मैं वो पूरी करूंगा, कुछ भी हो जाए।
2: जी,
1: तो वो लोग कचहरी में पहुंच जाते हैं और जज के सामने ही वो फैसला होता है। उस जमाने में इसी तरह से बातें होती थी, इधर एंटोनियो खड़ा, इधर चाकू लेकर के शाइलाक खड़ा हुआ।
2: जी,
1: और जैसे ही वो उसका मांस काटने के लिए एकदम उसके नजदीक पहुंचता है, इतनी देर में दो लोग आते हैं, काला कोट पहने एक जज और उसके साथ एक कलर।
2: जी,
1: और वो कहते ठहरो, तो वो रुक जाता है। वो कहता है ठीक है, इस मामले में अभी एक दलील बाकी है। जज कहता है मैं आया हूँ वो दलील देने, मुझे भी पता पड़ा कि यह मुकदमा चल रहा है। तो वो कहता है कि देखो तुमने लिखा हुआ है कि मैं इसके शरीर से एक पौंड मांस काट लूंगा।
2: जी,
1: लेकिन मांस काटो आपको छुट्टी है, पर खून का एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि खून गिरेगा।
2: जी,
1: अगर खून गिरा तो फिर देखो हम आपको कड़ी सजा देंगे।
2: जी,
1: और आपकी पूरी संपत्ति हम हड़प कर लेंगे। तो चलो काटो काटो। अब वो पीछे हटता है, कहता नहीं मैं नहीं काटूंगा। उसको कहते नहीं काटो, मांस काटो। तो वो कहता नहीं मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मैं नहीं काट सकता, क्योंकि मांस कटने से पहले ही खून निकल आएगा और पहले वो पकड़ा जाएगा।
2: जी,
1: तो फिर उससे वायदा कराते हैं कि तू गरीबों के साथ अन्याय करना बंद कर, ये सब करना बंद कर। तो असल में वो जो जज आई थी वो थी फीमेल, वो उसका जो दोस्त बसिनियो था उसकी पत्नी थी।
2: जी,
1: और वही अपनी एक फ्रेंड को लेकर के और वेश बदल करके और कोर्ट में हाजिर हुई थी। उसको जब पता पड़ा कि मुकदमा ऐसे ऐसे चल रहा, तो बुराई कितना भी जोर लगा ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन उसको हर नहीं पड़ेगा, क्योंकि संसार का ये

0: तो अंतिम जीत सच्चाई की होगी, ये उम्मीद के साथ हम हर विघ्न को पार कर सकते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कुछ लाइंस इस प्रकार से हैं कि नहीं रहने वाली है मुश्किलें, के है अगले मोड़ पे मंजिलें, मेरी बात का तू यकीन कर, ना उदास हो मेरे हम सफ़र। जिसे आपने वो एग्जांपल दी उससे भी ये हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये अगले मोड़ पर ही मंजिल हमें मिल रहा है, ये एहसास कैसे हो सकता है?
1: एक्चुअली जब व्यक्ति हिम्मत से पांव उठाता है ना
0: जी,
1: तो उसको ऊंचाई भी लिफ्ट लगती है
0: जी,
1: और जब वो बिना हिम्मत के पांव उठाता है तो उसे लिफ्ट में बैठना भी पहाड़ चढ़ना लगता है
0: जी।
1: सारी कहानी हिम्मत की है, हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा। तो आप अपनी हिम्मत को ना छोड़ें, कुछ भी हो जाए। हिम्मतवान व्यक्ति को लगता है कि बस अभी आया कि आया, बस अभी आया कि आया, मेरा जो मकसद है वो पूरा हुआ कि हुआ, ये हिम्मतवान को लगता है। हिम्मत जिसमें नहीं होती उसको लगता है कितनी देर हो गई चलते, कितनी देर हो गई मेहनत करते, कितनी देर हो गई पुरुषार्थ करते, अभी तो कुछ मिला ही नहीं। और अगर उसे कुछ मिल भी जाएगा तो उसका बहुत अच्छा सदुपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई प्लानिंग नहीं, उसको केवल चीज को अचीव करने की हबस है
0: जी,
1: उसका सदुपयोग करने की प्लानिंग नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत से बढ़ रहा है वो साथ साथ प्लानिंग भी करता जाता है कि मुझे वो अचीव होगी तो मैं उसको किस तरह से अच्छे कार्य में लगाऊंगा या किस तरह से सबके कल्याण में लगाऊंगा। तो इसलिए अगले मोड़ पे ही मंजिल है, आपका हर कदम आप यही समझो कि मंजिल को ही प्राप्त कर रहा है, आप उसे खाली वार मत समझो, आपके हर वार में कोई ना कोई अचीवमेंट, अचीवमेंट मान के चली। मंजिल वो नहीं होती जो फाइनल मिलती है, रास्ते में आपको जो कुछ मिला वो भी मंजिल के हिस्से, तो उनको भी आप मंजिल के हिस्से की तरह स्वीकार कीजिए।
0: जी बिल्कुल, और कहते हैं कि कभी ढूंढ लेगा ये कारवा वो नई जमीन है आसमां, जिसे ढूंढती है तेरी नजर, ना उदास हो मेरे हम सफर।
1: नई जमीन और नया आसमां
0: जी,
1: हम सब चाहते हैं, हमारा भी एक कारवा है
0: जी,
1: हम भी चल रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें नई जमीन मिले, नया आसमान मिले। असल में जमीन तो यही रहेगी, क्योंकि और कोई जमीन है ही नहीं, आसमान तो यही रहेगा, लेकिन जब हमारे विचार नए बन जाते तो हमें सब कुछ नया लगता है। इसलिए हम अपने विचारों में नयापन लाएं, विचारों में नवीनता लाएं। विचारों में नवीनता का अर्थ क्या है, जैसे किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो आपका पास्ट है उस पास्ट को जब आप याद करो तो इस तरह से याद करो कि मैं अपने पास्ट से बहुत संतुष्ट हूँ
0: जी,
1: और पास्ट की झोली में से कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई पॉजिटिविटी उठा लो
0: जी।
1: पास्ट की झोली में तो एक लंबा पीरियड है, बहुत कुछ पड़ा है उसकी झोली में, आपको वो सब नहीं देखना है, आपको उसमें से केवल पॉजिटिविटी, केवल प्रेरणाएं और केवल ऑप्टिमिज्म वाली बातें उठानी
0: जी
1: पास्ट, और फिर आपको कहना है कि मेरा पास्ट बहुत अच्छा था, बहुत गुड था। तो पास्ट को मुस्कुरा के पास कीजिए
0: जी।
1: अब दूसरा है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट तो वास्तव में है ही एक गिफ्ट, प्रेजेंट गिफ्ट को भी कहते हैं ना, तो प्रेजेंट एक गिफ्ट है, इसको गिफ्ट मानो। जो मोमेंट मेरे हाथ में है ये मेरे लिए गिफ्ट, मैं इसका मैक्सिमम सदुपयोग करूँ
0: जी,
1: अपने लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए, इसको यूं ही गंवा ना दूं, सो करके, खा करके, सोना खाना ये सब गंवाना है
0: जी,
1: इसका सदुपयोग करूं। और तीसरा है फ्यूचर, तो जिसका पास्ट मुस्कुरा हट देता है, जिसका प्रेजेंट गिफ्ट के रूप में है, उसका फ्यूचर बेटर बनेगा ही बनेगा, क्योंकि फ्यूचर का महल वर्तमान की नींव पे खड़ा होता है
0: जी,
1: और अगर हमारी वर्तमान की नींव सॉलिड है, मजबूत है, तो फ्यूचर का महल बहुत सुनहरा बनेगा ही बनेगा
0: जी।
1: आप प्रेजेंट को सफल कीजिए, फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा
0: जी। तो जब जब भी मान लीजिए कोई परिस्थिति आए तो हमारे लाइफ में मुश्किलों को पार करने के लिए क्या अफर्मेशंस होना चाहिए, पॉजिटिव विचार होनी चाहिए?
1: हमको यही सोचना है कि ये एक मेरी परीक्षा है, मुझे अगली क्लास में ले जाएगी, ये एक तूफान है जो मुझे तोहफा देगा,

0: और ये जो समस्या आई है ये कोई नया समाधान देकर के जाएगी और मुझे अनुभवी बनाएगी
1: जी,
0: मैं इससे कुछ ना कुछ सीखूंगा। और जब वो समस्या चली जाए उसके बाद आप एक कॉपी पेन लेकर के लिखो कि इस समस्या ने आपको क्या क्या दिया, तो आप पाएंगे कि उसने आपको बहुत कुछ सिखाया। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया और आपने उस धोखे को सहन कर लिया, आपका नुकसान हो गया 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का। अब आपने धोखे को सहन कर लिया और आपने अपने मन को मायूस नहीं होने दिया, कोई बात नहीं है, चलो 50,000 का नुकसान हो गया, अब कोई ऐसा भी मौका आएगा कि मुझे 50,000 का फायदा भी हो जाएगा, हानि लाभ तो चलता ही रहता है। लेकिन उस धोखे से क्या फायदा हुआ? नंबर एक, आप आदमी को परखना सीखे
1: जी।
0: नंबर दो, आप आदमी पे तुरंत आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे तो वो जो अंधविश्वास उसके प्रति आप जागरूक हो गए। नंबर तीन, परिस्थिति को सहन करने की आप में ताकत बढ़ी। और नंबर चार, आपने अपनी आशावादिता नहीं खोई, आप में ऑप्टिमिज्म बढ़ा कि कोई बात नहीं है, धोखा हो गया तो कभी ना कभी मेरे साथ मुझे प्रॉफिट भी हो जाएगा, संसार में सब कुछ चलता है, आंधी तूफान भी आता है उसके बाद शांति भी हो जाती है, तो कितने सारे फायदे हो गए
1: जी।
0: हर तूफान आपको कुछ ना कुछ तोहफा दे के जाता है
1: जी, तो हर तूफान कोई ना कोई तोहफा दे करके जाता है, वो क्या तोहफा मिला वो आप चिंतन करें, उसके बारे में सोच विचार करके आगे बढ़ते रहिए। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं। और यहाँ पर हमारे सुभाष भाई, इन्होंने मैसेज किया है, उनको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला दीदी को भी उन्होंने नमस्ते और ओम शांति कहा है, और भ्राता जगदीश जी के बारे में जो उन्होंने सुना उनको भी अच्छा लगा। तो यहीं पर हम रुकना चाहेंगे। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत।
1: तो दोस्तों अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। नमस्ते।

मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

simplicity.

is made up of light. Lightness.

ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, अब इस पुरानी दुनिया का अंत है और इसीलिए तुम्हें संगम युग पर ही भविष्य राजाई के लायक बनना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। बाबा कहते हैं, एक तरफ है पाप की दुनिया, दूसरी ओर है पुण्य की दुनिया। पाप की दुनिया को ही पतित दुनिया कहा जाता है, पुण्य की दुनिया को पावन दुनिया कहा जाता है। बाप आकर के हम पतितों को पावन बना करके उस दुनिया में चलने के लिए लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को ऐसी पावन दुनिया का वर्षा देता हूं और वो भी 21 जन्म के लिए, तो तुम बच्चों को कितना न नशा होना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। किस बात की खुशी? बाबा कहे, एक तरफ पढ़ाई की खुशी होनी चाहिए या पढ़ाई का नशा भी हो, और साथ में नई सतयुगी दुनिया के जो राज्य पद है उसका भी नशा होना चाहिए। ऐसे डबल नशा डबल खुशी तुम बच्चों में रहना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बाबा जो हम बच्चों को श्रीमत देते हैं वो श्रीमत को जीवन में धारण करना है और योग्य बनना है। सभी बुराइयों की जड़ देह अभिमान है, इसीलिए बाबा हम बच्चों को बार बार ये शिक्षा देते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसीलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं? उत्तर है, ऑलराउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, बाबा कहते जो बच्चे ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। उजूरा यानी रिटर्न भी प्राप्त होता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहती हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही यह जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है, पतित दुनिया किसको, पावन दुनिया किसको कहा जाता है। बल मनुष्य कहते हैं कि हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, परंतु जानते नहीं है उस पतित पावन बाप को, जानते नहीं है। यह भी आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन, सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, परंतु ये किसको भी पता नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है, वो पावन दुनिया कैसी थी, किसको कहा जाता है, वह कब और कैसे स्थापन होगी। अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो, इसलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम ही जानते हो और कोई बिल्कुल नहीं जानते कि पावन दुनिया फिर पतित कैसे बनती है, पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है, पतित दुनिया में कौन रहते हैं और पावन दुनिया में कौन रहते हैं। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। जरूर पावन दुनिया भारत में भी तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। पावन दुनिया में
भारत में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, इसलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया जाता है। अभी तुम समझते हो हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप युक्तियां बता रहे हैं। बाप कहते हैं, एक सेकंड में युक्ति बताता हूं। बाबा आकर कहते, बच्चे मैं एक सेकंड में युक्ति बताता हूं। क्या युक्ति बताते हैं? बाप आते ही है नई दुनिया का राज्य भाग्य देने। यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं। हम राजयोग सीख रहे हैं। बाप कहते हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान थे, अब फिर से सतो प्रधान बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। देवी देवता धर्म भारत का ही पहले पहले था, फिर जरूर पुनर्जन्म लेते आए होंगे। जैसे क्रिश्चियन लोग भी पुनर्जन्म ले वृद्धि को पाते हैं, बौद्धियों का धर्म स्थापन करने वाला बुद्ध वह हो गया धर्म स्थापक। एक बुद्ध से कितने ढेर बौद्धी निकले, कितनों ने अपना जीवन परिवर्तन किया, कितने ढेर बौद्धी निकले हैं। क्राइस्ट एक था, अभी देखो कितने क्रिश्चियन हो गए हैं। सब धर्मों का ऐसे ऐसे चलता आया है। वैसे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो यह और कोई थे नहीं, और कोई धर्म थे नहीं। औरों का तो जानते हैं, क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया। अच्छा, जो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह किसने स्थापन किया? सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी चली है ना, तो जरूर कोई ने राज्य स्थापन किया है। अवश्य कोई ने राज्य जरूर स्थापन किया है। सतयुग में देवी देवता धर्म था, वह अभी बाप स्थापन करते हैं। इसलिए बाप को आना ही पड़ता है संगम युग पर। वो देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए बाप को आना ही पड़ता है संगम युग पर। अभी सब मनुष्य मात्र पतित दुनिया में बैठे हैं। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य है, और नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो न सके। वहां एक धर्म था, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थे। वह देवता धर्म अब प्राय लोप है। वह कैसे भगवान ने स्थापन किया था ये कोई नहीं जानते। देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं, हिंदू धर्म कह देते हैं। अब बाप समझा रहे हैं, मैं आता ही तब हूं, कब? जब पुरानी दुनिया को बदलना है तब बाबा आते हैं। अब इस पुरानी दुनिया की एंड है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ये महाभारी लड़ाई से ही पुरानी दुनिया की एंड हुई थी। गीता में दिखाते हैं सब खत्म हो गए, कोई नहीं रहा। पांच पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे। परंतु ऐसा कोई होता नहीं है, जैसा शास्त्रों में दिखाया है। बाबा कहते ऐसा कोई होता नहीं है, यह तो बाप स्थापन करते हैं। प्रलय अथवा जलमय तो होती नहीं, यानी कि बिल्कुल ही दुनिया खत्म हो जाए। बाबा को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हमारे दुख हरो, सुख दो, क्योंकि अभी रावण राज्य है। राम राज्य चाहते हैं तो जरूर रावण राज्य है ना। बाप समझाते हैं, अभी राम राज्य की स्थापना, रावण राज्य का विनाश हो जाता है। मैं जो युक्ति सिखलाता हूं, जो सीखते हैं वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं।
ये ज्ञान वहां कुछ भी रहेगा नहीं। नई दुनिया में ये ज्ञान बिल्कुल नहीं रहेगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जिनकी बुद्धि में है वो औरों को समझाते हैं। नंबर वार तो है ना, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है।

बाबा कहते इस संगम पर ही ये स्थापना होगी दैवी संप्रदाय की। जब बाजोली खेलते हैं, बाजोली मालूम है ना, पैर और सिर ऐसे गोल गोल लोग घूमते हैं। जब बाजोली खेलते हैं तो पांव और चोटी मिलते हैं। तुम ब्राह्मण हो फिर याद आता है, विराट रूप का चित्र भी जरूरी है, इसकी समझानी बड़ी अच्छी है। कहते भी है बाबा हम आपके 6 मास के बच्चे हैं, कोई कहता है 4 दिन के बच्चे हैं, और कोई कहते हम 1 दिन का बच्चा हूं, अर्थात आज ही बाबा का बना हूं, मुख वंशावली बना हूं। जो जीते जी बाप के बनते हैं तो कहते हैं बाबा हम आपके हैं। छोटा बच्चा तो कह न सके ये ज्ञान है बड़ों के लिए, कहते हैं बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूं। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूं। छोटे बच्चों को चित्र पर समझाना सहज है, दिन प्रतिदिन समझाने विस्तार को पाती रहती है। यह चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मुआफिक निकली है। ये चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मुआफिक निकली है। इसमें यह कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकली, अभी क्यों। ड्रामा अनुसार जो युक्ति जब निकलनी होगी तब निकलेगी। बाबा कहते सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार चलता है, तो जिस समय जो युक्ति निकलनी होगी वह निकलेगी। स्कूल में पढ़ाई के नंबरवार दर्जे होते हैं, ऐसे थोड़ी पहले से ही बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे जाना होता है। ऐसे थोड़ी है पहले से ही बड़ा इम्तिहान पास कर लेंगे, पहले सिर्फ अलफ बे पढ़ाया जाता है ना। ये तो बाप का बच्चा बनने से ही बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाप को बाप कहने बाद फिर निश्चय टूटता थोड़ी है, जब बाप कहा तो समझ के ही कहा, तो बाबा कहे फिर निश्चय टूटता थोड़ी है। यहाँ तो क्या होता है, दुनिया में निश्चय नहीं टूटता, यहाँ तो बाबा बाबा कहते निश्चय टूट जाता है। तुम जानते हो यह तो बेहद का बाप है, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, चलते फिरते यह याद रहने से खुशी भी रहेगी। परंतु यह याद ठहरती क्यों नहीं है। बाबा कहते याद अगर ठहर जाए तो खुशी भी रहेगी, लेकिन ये याद ठहरती क्यों नहीं है। तुम्हारी तो गारंटी है, ये भी बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा, हम आपकी मत पर ही चलूंगा। बाप भी कहते हैं श्रीमत पर न चलने से भूले होती रहेगी, श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा, आत्मा को अतींद्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग्य दिया था जो 84 जन्म लेते लेते गवा दिया है, फिर बाप दे रहे हैं तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहते अपार खुशी होनी चाहिए ना, अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना, इस लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। बल अज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में होते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। मनुष्य सृष्टि में सबसे उच्च पोजीशन किसका है, मनुष्य सृष्टि में सबसे उच्च पोजीशन किसका है। यूं तो सबसे उच्च है शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। जब बाप आए तब आकर अपना परिचय दे। अभी तुम बच्चे

जानते हो हमको बाबा से वैकुंठ की राजाई मिलती है, खुशी होनी चाहिए ना। हम नर से नारायण बनते हैं, कोई भल हाथ उठा लेते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं है। हम भले हाथ उठा लेते, हम नर से नारायण बनेंगे परंतु बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं। जिनको निश्चय रहता है तो उनको ये खुशी रहती है कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को नशा तो है ना। बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने, बिगर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल ना सके। बाबा के बिगर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल ना सके, बाबा भी कब मिलते नहीं है। इसीलिए बाबा बच्चों से ही मिलते हैं जो बाबा को यथार्थ रीति जानते हैं। बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा कहते सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा को जानते हो, बल ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं। परंतु बुद्धि में ये नहीं रहता है कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। न बाप को न वर्षे को याद कर सकते हैं। याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना। जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है। बाबा कहते हैं पहले जमाने में ये रिवाज था कि जब कन्या की शादी होती है तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते थे। बाप भी तुमको विश्व की बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं। तुम नए सत्युगी विश्व का उद्घाटन करते हो। कितनी सुंदर बाबा ने कंपैरिजन किया कि जैसे पहले के समय में कन्या की शादी होती है तो उनको गुप्त दान दे करके पेटी बंद करके चाबी हाथ में दे देते। ऐसे ही हम सभी बच्चे, बाबा हमेशा कहते इस समय वनवा में है, हमें पियर घर से ससुर घर जाना है। तो जब नई दुनिया में सतयुगी दुनिया में जाएंगे तो शिव बाबा भी हमें नए विश्व की बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं और नए सत्युगी विश्व का उद्घाटन करते हो। स्वर्ग में भी तुम ही जाएंगे, बाबा तुमको लायक बनाते हैं। भगत तो स्वर्ग में जाने लायक बन न सके जब तक बाबा ज्ञान न दे, पवित्र न बने। इसलिए नारद का मिसाल है, बल भगत तो अच्छे अच्छे बहुत है परंतु आत्मा तो पतित है ना। जन्म जन्मांतर वह पतित बनते आए हैं, जब तक बाप न मिले तब तक स्वर्ग में जा न सके। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, जो तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। दूसरे कोई राजा स्थापन करते ही नहीं है, न किसको मालूम है। बाप ही संगम युग पर आकर भविष्य 21 जन्मों की राजा स्थापन कर रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था, गीता का ज्ञान सुनाया था जिससे मनुष्य से देवता बने थे। गीता है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सतयुग में तो कोई शास्त्र आदि होते नहीं। बाप कहते मैं संगम युग पर ही आता हूं, फिर से आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूं। वही देवी देवता बनते हैं, फिर 84 का चक्र लगाकर अब अंत में आते हैं। बाबा कहते सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूं, वही देवी देवता बनते, फिर 84 का चक्र लगाकर जब अंत में आते हैं तो उन्हों को ही आकर फिर समझाता हूं। बीच में कभी भी मैं आता ही नहीं हूं। ऐसा थोड़ी कि क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा,
नहीं, जब धर्म स्थापन करना है उसी समय आता है, और जो भी धर्म स्थापन करते हैं वह इस दुनिया के लिए। मैं आता ही हूं संगम पर नई दुनिया स्थापन करने। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करती है। यह बाप तो राजा ही स्थापन करते हैं, वो खाली धर्म स्थापन करते, यहाँ धर्म के साथ राजाएं भी स्थापन करते हैं। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये बाप तो राजाएं स्थापन करते हैं, ये किसको भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण की राजाएं कब और किसने स्थापन की। यह जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं उन्होंने पूछना चाहिए, तुम सभा में भी पूछ सकते हो, यह राज तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं कल्प कल्प, और कोई जान न सके। अक्षर भी है परंतु यथार्थ रीति किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। कोई कोई बच्चों पर ग्रहाचारी भी बैठ जाती है, देह अभिमान है पहले नंबर की ग्रहाचारी। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भव। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। बाबा को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है, बहुतों का इससे कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद देरी है इसलिए विघ्न पड़ते हैं राजधानी स्थापन होने में। बाप खुद कहते हैं बहुत विघ्न पड़ते हैं, माया बड़ी समर्थ है, मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती है। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी ग्रहचारी बैठी हुई है। तुम सेकंड में सिद्ध कर सकते हो कि यही भारत पावन हीरे जैसा था, अब विकारी कौड़ी मिसल बन पड़ा है, फिर हीरे जैसा बनना है। कहानी सारी भारत की है, बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं, फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। बे अभिमान का तो बड़ा भारी विघ्न पड़ जाता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसको समझाना बड़ा सहज है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म की है ना, बहुतों को सुख देते हैं तो उसका उजुरा भी बहुत मिलता है। कोई ऑलराउंड हड्डी सर्विस करते हैं, खुशी रहनी चाहिए, हमको ऑलराउंड बनना है। बाबा हम सर्विस में हाजिर है, ऑफर करना चाहिए बाबा को, बाबा हम सर्विस में हाजिर है। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी ले लेते हैं। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं, अब माताओं कुमारियों को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए, अर्थात तैयार हो जाना चाहिए, मम्मा जैसी सर्विस कर दिखानी चाहिए, शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा करने से क्या फायदा, उन जैसा बनना चाहिए, मम्मा जैसी धारणाएं हो, मम्मा जैसी सर्विस हो। अच्छा मीठे मीठे से किलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, देह अभिमान के ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है। देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, अपनी पढ़ाई और सत्योगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। डबल नशा डबल खुशी, एक तो इस समय की पढ़ाई
और दूसरा सतयुगी पद के पोजीशन की। बाबा कहते श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता बाबा। रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता बाबा। बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। महीनता ही महानता है, लेकिन इसके लिए रोज अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही करो। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। तब महीन बुद्धि बन फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। महान आत्मा वह है जो हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। आज का व्यक्ति इशारा है, परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारी पर भी उपकार करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखूट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहना, यही है परोपकार करना। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए, ऐसे अखंड दानी बनो, ऐसे अखंड दानी बनो। अच्छा,